मीडियम वेव 401.6 मीटर अर्थात 747 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। आज सोमवार है, शक संबत 1948 के आषाढ़ मास की पहली तिथि, तदनुसार 22 जून सन 2026, सुबह के 5:56 और 48 सेकंड हुए हैं। हमारी प्रातःकालीन सभा अब आरंभ होती है।

47 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। आज सोमवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की पहली तिथि, तदनुसार 22 जून सन 2026। सुबह के 5:56 और 48 सेकंड हुए हैं। हमारी प्रातःकालीन सभा अब आरंभ होती है।

0: मनुज सोया पड़ा है, जाग उठ जग को जगा दे, जाग उठ स्वागत उषा का कर, अरे अब मुस्कुरा दे। सो रहा है तू अभी तक, हो रहा है भोर अब तो, जाग उठ सुन गीत कवि का, तू जगत में भोर ला दे। प्रभात की मंगल वेला में मैं रेखा मिश्रा आप सभी श्रोताओं का स्वागत करती हूँ हमारे मॉर्निंग शो नमस्कार लखनऊ में। सुबह के 6 बजने वाले हैं। समाचार सुनने के लिए आइए चलते हैं दिल्ली केंद्र।
1: समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि किसी भी देश की आर्थिक और सामरिक शक्ति उसके समुद्री सामर्थ्य पर काफी हद तक निर्भर करती है, इसलिए भारत अपनी समुद्री क्षमताओं को लगातार मजबूत कर रहा है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह पर स्वदेश निर्मित 3 युद्ध पोतों को भारतीय नौसेना में शामिल करने के बाद प्रधानमंत्री ने ये बात कही। इनमें अत्याधुनिक स्टील फ्रिगेट INS दूनागिरी, संशोधक और अग्रय शामिल है।
2: भारत अपने पूरे मैरिटाइम इकोसिस्टम को सशक्त बना रहा है, इसलिए भारत अपने बंदरगाहों का आधुनिकीकरण कर रहा है, नई क्षमता तैयार कर रहा है, नई कनेक्टिविटी बना रहा है, नदी जलमार्गों का विस्तार कर रहा है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक नेटवर्क विकसित कर रहा है, सागरमाला जैसे अभियान इसी व्यापक सोच का हिस्सा है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 को वैश्विक उत्सव बनाने के लिए विश्व भर के लोगों का आभार व्यक्त किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि ये देखकर खुशी होती है कि योग

क्षेत्रों और विभिन्न देशों के लोगों को स्वस्थ जीवन तथा कल्याण की साझा खोज में एकजुट कर रहा है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि योग दिवस आने वाले समय में अधिक लोगों को दैनिक जीवन में योग अपनाने के लिए प्रेरित करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मध्य प्रदेश के श्योपुर स्थित कूनो राष्ट्रीय उद्यान का दौरा करेंगी। वे चीता पुनर्स्थापन परियोजना की प्रगति की समीक्षा करेंगी और चीतों की देखभाल करने वाले वन कर्मियों तथा स्थानीय लोगों से बातचीत करेंगी। राष्ट्रपति ने कल चीता कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का दौरा किया। इस दौरान अधिकारियों ने उन्हें बताया कि इस समय देश में 52 चीते हैं, जिनमें 49 कूनो राष्ट्रीय उद्यान में हैं। भारत आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की 2 दिवसीय बैठक की मेजबानी करेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में साइबर सुरक्षा, डिजिटल खतरों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े जोखिमों तथा अन्य गैर पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा होगी। प्रतिनिधि आतंकवादी रोधी सहयोग और सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी के सुरक्षित उपयोग से जुड़े मुद्दों पर की भी समीक्षा करेंगे। बैठक में भारत, ब्राजील, चीन, रूस, दक्षिण अफ्रीका सहित ब्रिक्स के 11 सदस्य देशों के सुरक्षा प्रमुख भाग लेंगे। चीन के विदेश मंत्री वांग यी भी इसमें शामिल होंगे। नीट यूजी पुनर्परीक्षा कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच संपन्न हो गई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने बताया कि देश भर के 5,440 जबकि विदेश के 14 केंद्रों पर 20 लाख से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। ये परीक्षा हिंदी और अंग्रेजी सहित 13 भाषाओं में आयोजित की गई। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कक्षा 12वीं के अंकों के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के परिणाम जारी करने शुरू कर दिए हैं। बोर्ड के अनुसार 87% से अधिक आवेदनों के परिणाम घोषित किए जा चुके हैं, जबकि शेष परिणाम जल्द ही जारी किए जाएंगे। तमिलनाडु के पेरियापालियम स्थित सी फूड निर्यात कंपनी में अमोनिया गैस रिसाव के कारण 7 लोगों की मौत हो गई और 70 से अधिक श्रमिक प्रभावित हुए हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 6 विकेट से हरा दिया। मैनचेस्टर में ग्रुप ए मुकाबले में भारत के 159 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए दक्षिण अफ्रीका ने 5 गेंद शेष रहते 4 विकेट पर 161 रन बना लिए। दक्षिण अफ्रीका की मारिजान केप ने नाबाद 81 रन की शानदार पारी खेली और उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। फीफा फुटबॉल विश्व कप में ग्रुप जी के मुकाबले में ईरान और बेल्जियम के बीच मैच बिना किसी गोल के ड्रॉ रहा। वहीं ग्रुप एच में स्पेन ने सऊदी अरब को 4-0 से हराकर अगले दौर में जगह बनाई। आज ग्रुप एच में उरुग्वे और केप वर्डे के बीच मुकाबला 2-2 गोल से बराबर रहा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: मीडियम वेव के मीटर पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। अगर आप जुड़ना चाहते हैं खेती किसानी के कार्यक्रमों से, तो हर दिन आपके लिए होता है कार्यक्रम कृषि चर्चा। इसमें आज का विषय है किसानों के लिए वरदान ड्रोन तकनीक। इस विषय पर रुचि तिवारी से बात कर रहे हैं डॉक्टर सुशील कुमार राय।
1: नमस्कार किसान भाइयों बहनों, आजकल उन्नत कृषि यंत्रों में ड्रोन आ गया है, जिसका खेती में इस्तेमाल हो रहा है, जिससे खेती की लागत घट रही है और दक्षता बढ़ रही है, या हानिकारक कीट बीमारियों या खरपतवारों के प्रबंधन के लिए कृषि रक्षा रसायनों का प्रयोग करना हो तो ड्रोन का खेती में इस्तेमाल हो रहा है। किसानों के लिए वरदान कैसे है ड्रोन, इसी विषय पर जानकारी के लिए आज हमारे साथ हैं इफको लखनऊ से कृषि विशेषज्ञ रुचि तिवारी। स्वागत है कार्यक्रम में। रुचि तिवारी, ये बताएं कि किसानों के लिए वरदान कैसे है ड्रोन।
2: नमस्कार किसान भाइयों एवं बहनों, तो पहले आपको बता दें कि इसकी आवश्यकता हमें पड़ी क्यों। आज जो खेती करने के लिए सबसे बड़ी समस्या हमारे किसान भाइयों और बहनों के सामने है, वो है श्रमिकों की उपलब्धता और दिनों दिन बढ़ती उनकी मजदूरी, जिसकी वजह से खेती का जो खर्च है वो बढ़ता जा रहा है। बहुत बार तो ये देखा गया है कि सही समय पे मजदूरों की उपलब्धता न होने की वजह से कृषि कार्य संपन्न नहीं किए जा पाते।

0: वजह से जो कुछ किसान हैं जो पूर्णकालिक नहीं है वो खेती ठीक ढंग से नहीं कर पा रहे हैं। इसी सब समस्या को देखते हुए ड्रोन के प्रचलन से विशिष्ट उर्वरक तथा जैसे हमारे स्मार्ट उर्वरक हैं एवं जो कृषि में पौधे की वृद्धि के लिए इजाद किए गए नए नए उत्पाद हैं उनके कारगर उपयोग के लिए जो ड्रोन है वो बहुत ही किफायती और लाभदायक साबित हो रहा है।
1: और कृषि रक्षा रसायनों के प्रयोग में भी काफी अच्छा है।
0: बिल्कुल, इससे हम कृषि रक्षा रसायनों का भी प्रयोग कर सकते हैं।
1: तो ये खेती में ड्रोन कैसे फायदेमंद हो सकता है? जैसे अभी तक पारंपरिक रूप से स्प्रेयर के माध्यम से चाहे कृषि रक्षा रसायन है या जल विलेय उर्वरक है या बहुत सारे जो पादप वृद्धि नियामक हैं उनका इस्तेमाल करते हैं, ड्रोन और स्प्रेयर में क्या अंतर है और फायदा क्या है?
0: जी, आपको बता दें किसान भाइयों बहनों, जब हम तुलनात्मक तौर पर स्प्रेयर और ड्रोन की बात करते हैं तो कुछ मुख्य बिंदुएं हमारे सामने आती हैं। जैसे कि अगर हम जब स्प्रेयर से उर्वरकों का छिड़काव या कृषि रक्षा रसायन का छिड़काव करते हैं तो ये एक बहुत मेहनत कश काम है, वहीं ड्रोन से छिड़काव जो है वो मानव श्रम की बचत करता है।
1: हाँ।
0: अगर हम एक एकड़ में छिड़काव की बात करें तो 100 से 125 लीटर पानी की आवश्यकता स्प्रेयर द्वारा होती है अगर हम स्प्रेयर से छिड़काव करते
1: हैं। अगर टंकी की बात करें तो?
0: अगर हम ड्रोन की टंकी की बात करते हैं तो वो एक एकड़ जो छिड़काव करती है ड्रोन की टंकी वो केवल 10 लीटर की होती है, यानी 10 लीटर पानी की ही आवश्यकता होती है।
1: और जबकि स्प्रेयर से 6 से 8 टंकी की जरूरत?
0: बिल्कुल बिल्कुल, वो 15 लीटर वाली 6 से 8 टंकी का हमें जरूरत पड़ता है जब हम स्प्रेयर से छिड़काव करते हैं। और जब बात करते हैं लेबर खर्च की, जो एक बहुत ही ज्वलनशील मुद्दा है हमारे किसान भाइयों के सामने, तो 300 से 400 रुपए प्रति लेबर का खर्च आता है स्प्रेयर से जब हम छिड़काव करते हैं, वहीं 200 से 300 रुपए में ही ड्रोन द्वारा एक एकड़ में छिड़काव संभव हो जाता है।
1: चाहे वो स्मार्ट उर्वरकों का हो, जल विलेय उर्वरक हो या कृषि रक्षा रसायन।
0: बिल्कुल,
1: और समय भी कम लगता है।
0: समय जैसे अगर हम तुलना करें स्प्रेयर से छिड़काव में तो उसमें अगर एक लेबर है तो वो आपका एक एकड़ छिड़काव 2 घंटे में करेगा। अगर हम ड्रोन की बात करते हैं तो ड्रोन से 10 से 12 मिनट में ही एक एकड़ का छिड़काव हो जाता है।
1: कई बार असामयिक स्थितियां रहती हैं जैसे बारिश हो गई या कोई अन्य दिक्कत हो गई तब भी छिड़काव नहीं हो पाता है।
0: बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा डॉक्टर साहब कि जैसे असामयिक वर्षा हो गई या फिर अगर हमारी फसल को पानी की आवश्यकता है उसकी आवश्यकता के अनुसार हमने सिंचाई कर दी तो उस समय स्प्रेयर द्वारा जो छिड़काव किया जाता है उससे हम फसल में मतलब खेत में हम घुसना ही हमें मुश्किल पड़ता है, यानी उस समय हम अगर तुरंत हमारे फसलों को पोषक तत्वों की आवश्यकता है तो हम नहीं दे पाएंगे, यानी छिड़काव करना मुश्किल हो जाता है। वहीं ड्रोन के विषय में ऐसी विषम परिस्थितियों में भी ड्रोन से बड़ा ही आसानी से छिड़काव हो जाता है।
1: और स्वास्थ्य संबंधी भी बात करें कि जैसे स्प्रेयर से छिड़काव करते हैं तो कई बार जो भी छिड़क रहा है वो प्रभावित होने की संभावना रहती है।
0: बिल्कुल, और जब हम स्प्रेयर से छिड़काव की बात करते हैं तो जैसे ड्रोन में तो एक ही टंकी इस्तेमाल हो रही तो हमें सिर्फ एक बार उसका सोल्यूशन बनाना है। जब हम स्प्रेयर से हम छिड़काव करते हैं तो 6 से 8 टंकी का इस्तेमाल होता है तो बार बार सोल्यूशन बनाते हैं जिसके कारण जो कण हैं जो हमारे कृषि रक्षा रसायनों के कण होते हैं उसका आंतरिक अंगों में प्रवेश कर जाने की संभावना होती है जिससे बहुत सारे जो रोग जैसे स्वास्थ्य संबंधी रोग के भी होने की संभावना होती है तथा चर्म रोग भी होने की संभावना होती है, जबकि ड्रोन में ऐसा कोई प्रश्न नहीं उठता। किसान भाइयों से मेरा यही आग्रह है कि आप भी ड्रोन का प्रयोग अपनी खेती में करें, ये काफी किफायती है, ज्यादा लाभकारी है, बहुत आसानी से छिड़काव हो जाता है और ये अत्यंत प्रभावकारी भी है।
1: रुचि तिवारी, आज आप कार्यक्रम में आई और किसानों के लिए वरदान ड्रोन कैसे साबित हो रहा है इसके बारे में आपने ढेर सारी जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद।
2: किसानों के लिए वरदान ड्रोन तकनीक, इस विषय पर अभी आपने रुचि तिवारी से डॉक्टर सुशील कुमार राय की बातचीत सुनी। कार्यक्रम था कृषि चर्चा।

आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, दिन की शुरुआत जब एक अच्छे विचार से होती है तो मन का हर कोना प्रसन्न चित्त रहता है। नमस्कार, लखनऊ में अब समय हो गया है आज के सुविचार का। सुविचार हमारे जीवन की वो अवधारणा है जो जीवन को बदलाव की ओर ले जाती है और उसी से हमारा मार्ग भी प्रशस्त होता है। मनस्विनी

युद्ध में पराजित होकर रणभूमि से भागे हुए अपने भयभीत पुत्र से कहा, हे वत्स, जीवन रण में पराजित होकर दीन दुखी और हताश मन से छुपकर बैठ जाने वाले व्यक्ति को कापुरुष कहते हैं। ऐसे लोग न केवल अपना मान सम्मान खोते हैं, अपने बंधु बांधवों को कभी समाप्त न होने वाला दुख देते हैं, बल्कि शत्रुओं के परमानंद का कारण बनते हैं। अकर्मण्य और कायर लोग थोड़ा कुछ पाकर भी उसी प्रकार संतुष्ट हो जाते हैं जैसे उथली नदियां थोड़ी वर्षा से ही लबालब भर जाती हैं, या फिर मूषिकांजलि अर्थात चूहिया की मुट्ठी कुछ कणों से ही सुपूरित हो उठती है। हे वत्स, इमली के कोयले की भांति प्रकाश और उष्णता सहित मुहूर्त मात्र के लिए जलकर भस्म होना श्रेयस्कर है, न कि तुष अर्थात धान की भूसी की भांति जलकर दीर्घ काल तक धुआं देकर सुलगते हुए रहना। इस संसार में अजा यानी बकरी की तरह दूसरों का भोजन बनकर या निरीह गर्दभ के समान भारवाहक बनकर जीना अच्छा नहीं है। जिस मनुष्य के महान और अद्भुत कार्यों की यशोगाथा संसार में नहीं गाई जाती, वह न स्त्री कहने योग्य है और न ही पुरुष, वह तो केवल बढ़ी हुई गिनती मात्र है। अपने ज्ञान, तपस्या, पराक्रम अथवा अर्जित की हुई धन संपत्ति से या फिर अन्य किसी विशिष्ट कार्य से जो लोग अन्य मनुष्यों का उपकार करते हैं, वे ही मनुष्य कहलाने योग्य हैं। केवल जन्म, यौवन, जरा और मरण के वशीभूत होकर जीना मनुष्यत्व की पहचान नहीं है। इसलिए उठो, जो उत्साह से शून्य हैं, जिनमें पराक्रम नहीं है, जो दूसरों की उन्नति देखकर अमर्ष से भर नहीं उठते, जो तुलना करके यह नहीं सोचते कि मेरी उपलब्धियां इससे अधिक होनी चाहिए, जिसके शत्रु सदा आनंदित रहते हों, ऐसे मनुष्य को जन्म देने वाली माता का स्त्रीत्व सार्थक नहीं हो सकता, वह सीमंतिनी कहलाने योग्य नहीं है। इसलिए उठ खड़े हो, आलस्य और निद्रा छोड़कर चैतन्य हो जाओ, सांसारिक कर्तव्यों में जुट जाओ, अपने मन को सुदृढ़ कर लो। यह कार्य प्रत्येक दशा में करना ही है, ऐसा दृढ़ निश्चय करके अनवरत प्रयत्न में जुट जाओ, यही कर्मण्यता है। हार मानकर बैठ रहना ही अकर्मण्यता है। ये था आज का सुविचार।

मीडियम वेव 401.61 मीटर अर्थात 747 किलोहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र। नमस्कार, लखनऊ में आप हैं अपनी दोस्त रेखा मिश्रा के साथ। अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना।

यदि मिला साकार तो वह अवध का अभिराम होगा, हृदय उसका धाम होगा, नाम उसका राम होगा।

भक्त यदि चाहे तो भगवान को भी अपने वश में कर सकता है। बस चिंतन मनन, लोभ मोह और माया से परे हो।

जीवन चक्र की संपूर्ण प्रक्रिया ईश्वर की कृपा से ही पूर्ण होती है। माया रूपी संसार में सब मिथ्या है, इसीलिए भगवत भजन में ही मन को लगाना चाहिए।

ईश्वर का द्वार हमेशा ही हमारे लिए खुला रहता है, बस जरूरत होती है वहां तक पहुंचने की। वहां पहुंचकर हम जीवन नैया की पतवार उनके हाथों में सौंप दे तो भव सागर से पार होना निश्चित है।

आपके सर पर ईश्वर का हाथ हमेशा ही विराजमान रहे, इसी मंगल कामना के साथ ही संपन्न होती है आज की आराधना।

अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। मीडियम वेव के मीटर पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस से आज के प्रसंग की संगीत में प्रस्तुति। आज आप सुनेंगे भाग 209।

भरत का दल बल समेत और विशेषकर चतुरंगिनी सेना के साथ पर्णकुटी आने का समाचार सुन लक्ष्मण का क्रोध जाग उठा था और उन्होंने भरत का वध करने की सौगंध ले ली। तभी आकाशवाणी हुई कि कोई भी काम उचित अनुचित जानकर तथा खूब सोच समझ कर करना चाहिए। देववाणी सुनकर लक्ष्मण सकुचा गए। श्री राम ने तब उन्हें समझाया कि भरत सरीखा श्रेष्ठ पुरुष ब्रह्मा की सृष्टि में न तो कहीं सुना गया न ही देखा गया। अंधकार चाहे तरुण सूर्य को निगल जाए, आकाश भले ही बादलों में सिमट जाए, गोखुर जितने जल में अगस्त्य ऋषि डूब जाएं, पृथ्वी चाहे अपनी स्वाभाविक सहनशीलता छोड़ दे, किंतु भरत को राजमद हो ही नहीं सकता। श्री राम के वचन सुनकर देवलोक में उनकी जय जयकार होने लगी। यदि जगत में भरत का जन्म नहीं होता तो पृथ्वी पर संपूर्ण धर्मों की धुरी को कौन धारण करता।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस से आज के प्रसंग की संगीतमय प्रस्तुति। गायक स्वर श्रीकांत पारगांवकर और रवींद्र साठे का, संगीत था सतीश भाटिया का।
1: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
2: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुँचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
2: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
2: 8700001-4242।
3: फिल्म आकाश के रोशन सितारों की महफिल, आज के मेहमान, विविध भारती पर हर बुधवार शाम 4 बजे पिटारा में सुनिए। रहिए कहीं भी, सुनते रहिए विविध भारती। विविध भारती, आपकी बात पहुंचाए करोड़ों तक।
0: एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे से। प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान आप सुनेंगे हर मंगलवार को शाम 7:45 पर। मीडियम वेव 401.61 मीटर अर्थात 747 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। 6:55 होने वाले हैं। संस्कृत समाचार कुछ ही पलों में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।
4: आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्, प्रवाचिका साधना शर्मा। अथ वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अवदत् यत् आधुनिके विश्वस्मिन् सामुद्रिक शक्तिः राष्ट्रस्य सामरिक प्रभावस्य प्रमुखा आधारा अस्ति। कोलकातायां श्यामा प्रसाद मुखर्जी जलपोत स्थात्रे तेन स्वदेश निर्मिताः त्रयः नौ सैनिक पोताः आईएनएस दुनागिरिः, आईएनएस संशोधकः, आईएनएस अग्रयश्च भारतीय नौसेनायै समर्पिताः।
5: आईएनएस विक्रांत से लेकर आज तक की यात्रा केवल नए युद्ध पोतों की यात्रा नहीं है, यह भारत की बढ़ती आत्मनिर्भरता की यात्रा भी है। इनका निर्माण भारत में हुआ है, इनकी डिजाइन भारत में तैयार हुई है, इनके निर्माण में भारतीय उद्योगों की प्रतिभा लगी है और यही नए भारत की सबसे बड़ी ताकत है।
4: तेन उक्तं यत् एतेषां पोतानां निर्माणे 200+ सूक्ष्म लघु मध्यमोद्यमाः योग

0: सह संवादं करिष्यति। अधिकारिणाम् अनुसारेण भारते सम्प्रति पञ्चशताधिकाः व्याघ्राः सन्ति, तेषु अधिकांशतः कुनो राष्ट्रिय उद्याने वसन्ति। भारतम् अद्यारभ्य नवदिल्ल्यां ब्रिक्स राष्ट्राणां राष्ट्रिय सुरक्षा परामर्शदातॄणां द्विदिवसीय सम्मेलनस्य आयोजनं करोति। अस्य अध्यक्षताम् अजीत डोभालः करिष्यति। नीट यूजी षड्विंशत्युत्तर द्विसहस्र पुनर्परीक्षा सुदृढ सुरक्षा व्यवस्थायां सुसम्पन्ना। राष्ट्रीय परीक्षा अभिकरणस्य अनुसारेण देशे विदेशे च स्थितेषु चत्वारिंशत् अधिक चतुश्शतोत्तर पञ्चसहस्र परीक्षा केन्द्रेषु लक्षशः अभ्यर्थिनः सहभागिनः अभवन्। दिव्यांग अभ्यर्थिभिः सह सर्वेषां परीक्षार्थीनां सुविधार्थाः विशेष व्यवस्थाः अपि कृताः। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड इत्यनेन द्वादश श्रेण्याः उत्तर पुस्तिका सत्यापनस्य पुनर्मूल्यांकनस्य च परिणामाः क्रमशः प्रकाशिताः। मण्डलेन प्राप्तेषु उक्तं यत् प्राप्तेषु आवेदनपत्रेषु सप्ताशीत्यधिक शतं प्रतिशतं परिणामाः घोषिताः सन्ति, अवशिष्ट परिणामाः अपि शीघ्रमेव चरणबद्धरीत्या प्रकाश्यन्ते। छात्राः स्व आवेदनस्य स्थितिं डिजी लॉकर पटले परीक्षितुं शक्नुवन्ति। मण्डलेन निष्पक्षतां शुद्धतां च सुनिश्चित्य सर्वाः प्रक्रियाः सावधानतया सम्पन्नाः इति उक्तम्। छात्राः मिथ्या प्रचारेषु सामाजिक माध्यमेषु प्रसारितान् अप्रमाणित सन्देशान् च न विश्वसन्तु इति केवलं CBSE इत्यस्य आधिकारिक सूचनाः एव अनुसरन्तु इति परामर्शः दत्तः। तमिलनाडु राज्यस्य पेरियापालम क्षेत्रे स्थितायां समुद्री खाद्य निर्यात समवाये अमोनिया वायुः स्रवण घटनायां सप्त जनाः मृताः, सप्तत्यधिकाः श्रमिकाश्च प्रभाविताः जाताः। घटनास्थले उत्थार चिकित्सा कार्याणि निरन्तरं प्रचलन्ति। राष्ट्रिय आपद मोचन बलस्य तथा रासायनिक जैविक परमाणु आपदा विशेष दलानां च सदस्याः त्वरितं आपद उत्थार अभियानम् आरब्धवन्तः। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजयः उच्चस्तरीय अन्वेषणस्य आदेशं दत्त्वा त्रिसदस्यीयां समितिं नियुक्तवान्। फीफा विश्व कप चषके केप वर्डे उरुग्वे च अनयोः दलयोः स्पर्धा तत्र द्वि-द्वि अंकेन समतायाम् अभवत् इति वार्ता।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं
2: आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है। नमस्कार, लखनऊ में एक बार फिर से आपका स्वागत है। श्रोताओं, सेहत के प्रति जागरूक रहना हम सभी का पहला दायित्व है। इसी बात का रखते हैं हम ख्याल और हर दिन आपके लिए लेकर आते हैं कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा। आज आपके लिए खास है स्वास्थ्य के लिए पौष्टिक खिचड़ी। जानकारी दे रही हैं नीना सोनकर।
3: श्रोताओं नमस्कार, मैं हूं नीना सोनकर और स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में आप सबका एक बार फिर स्वागत करती हूं। श्रोताओं, आज का जो विषय है वो एक ऐसे पकवान से जुड़ा हुआ है जिसे भारत के हर कोने में पसंद किया जाता है, जिसे हम खिचड़ी कहते हैं। चाहे सर्दियों की ठंडी शाम हो, बरसात का मौसम हो या फिर बीमार होने पर हल्का खाना खाने की डॉक्टर की सलाह हो, खिचड़ी हमेशा एक अच्छा विकल्प साबित होती है। आज हम जानेंगे कि खिचड़ी का क्या महत्व है और इसके स्वास्थ्य लाभ क्या हैं और इसे कैसे अलग अलग तरीकों से बनाया जा सकता है। खिचड़ी भारत के लगभग हर घर में बनाई जाने वाली एक साधारण और पोषक भोजन है। इसे मुख्य रूप से चावल और दाल को मिलाकर बनाया जाता है, लेकिन इसे स्वादिष्ट और पौष्टिक बनाने के लिए इसमें कई अन्य चीजें भी मिलाई जा सकती हैं। खिचड़ी की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये पचने में बहुत आसान होती है। इसमें मौजूद चावल और दाल दोनों ही पाचन तंत्र के लिए हल्के होते हैं, जिससे पेट को आराम मिलता है और पाचन प्रक्रिया बेहतर होती है, खासतौर पर जब हम बीमार होते हैं या पेट में कोई समस्या होती है, तब खिचड़ी को एक आदर्श आहार माना जाता है।

0: जाता है। खिचड़ी में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर और कई महत्वपूर्ण विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं। इसमें मौजूद दाल से प्रोटीन मिलता है जो शरीर की मांसपेशियों को मजबूत बनाने में मदद करता है। चावल से हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं जो ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। इसके अलावा खिचड़ी में अगर आप सब्जियां मिलाते हैं तो ये और भी पौष्टिक बन जाती है। सब्जियों से फाइबर और विटामिन्स मिलते हैं जो शरीर की आवश्यक पोषक तत्वों की जरूरत को पूरा करते हैं। खिचड़ी को कई तरीकों से बनाया जा सकता है। मूंग दाल की खिचड़ी सबसे सामान्य है जो पचने में बहुत हल्की होती है और बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक हर किसी के लिए उपयुक्त होती है। इसमें आप सब्जियां जैसे कि गाजर, मटर, आलू और शिमला मिर्च मिलाकर इसे और भी पौष्टिक बना सकते हैं। इसके अलावा अरहर दाल की खिचड़ी ये भी बहुत स्वादिष्ट होती है और इसमें आप दाल के साथ हींग, जीरा और हल्दी डालकर इसका स्वाद बढ़ा सकते हैं। एक और प्रकार की खिचड़ी है जिसे हम बाजरे या ज्वार की खिचड़ी कहते हैं। सर्दियों के मौसम में ये खिचड़ी विशेष रूप से फायदेमंद होती है क्योंकि बाजरा और ज्वार शरीर को गर्माहट प्रदान करते हैं और ठंड से बचाने में मदद करते हैं। इस खिचड़ी को दाल और बाजरे को मिलाकर बनाया जाता है और इसे देसी घी के साथ खाने से इसका स्वाद और पोषण दोनों ही बढ़ जाते हैं। खिचड़ी का सेवन न केवल पेट के लिए हल्का होता है बल्कि ये शरीर को आवश्यक पोषण भी प्रदान करती है। सर्दियों के दौरान खिचड़ी को घी के साथ खाना विशेष रूप से फायदेमंद होता है क्योंकि घी शरीर को गर्म रखने में मदद करता है और भोजन को और भी स्वादिष्ट बनाता है। इसके अलावा घी में मौजूद स्वस्थ वसा शरीर के लिए कई तरह से फायदेमंद होती है। खिचड़ी को अक्सर संक्रांति जैसे त्योहारों पर भी विशेष रूप से बनाया जाता है। इस दिन इसे खास तौर पर विभिन्न दालों और चावल के साथ बनाया जाता है और इसके साथ दही, अचार और पापड़ का सेवन किया जाता है। ये हमारी संस्कृति का हिस्सा है और इसे बनाना भी बेहद आसान है। श्रोताओं, खिचड़ी को बनाते समय आप इसमें कुछ मसालों का उपयोग भी कर सकते हैं जैसे कि जीरा, हींग, हल्दी और अदरक। ये मसाले न केवल खिचड़ी के स्वाद को बढ़ाते हैं बल्कि इसके पोषक गुणों में भी इजाफा करते हैं। अदरक और हींग पाचन में मदद करते हैं और शरीर को गर्म रखते हैं जो खासतौर पर सर्दियों में बहुत जरूरी होता है। खिचड़ी को और भी पौष्टिक बनाने के लिए इसमें मूंगफली, मटर, पालक और मेथी जैसी हरी पत्तेदार सब्जियां भी डाल सकते हैं। श्रोताओं, कल फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नीना सोनकर को दीजिए अनुमति। सभी को नमस्कार।
1: स्वास्थ्य के लिए पौष्टिक खिचड़ी, ये विषय था आज के कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा का। जानकारी दे रही थी नीना सोनकर। मीडियम वेव के मीटर पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र। अब हम आपको बता दें हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से सुबह 10:10 पर होगा कार्यक्रम विश्व दर्पण। उर्दू कार्यक्रम में सुबह 9:30 पर समाज फरमाइएगा मकाला मिर्जा हादी रुस्वा नावेल उमराव जान अदा के आईने में, मकाला निगार डॉक्टर जूही बेगम, कलामे शायर में होंगे आफताब अहमद अंसारी। आज का ये कार्यक्रम हमारे प्रयागराज केंद्र का योगदान होगा। सुबह 9:15 पर कार्यक्रम जिले की हलचल में, आज के जिले होंगे कुशीनगर और मिर्जापुर। कार्यक्रम विविधा में आज हमने विषय चुना है कण कण में संगीत, सुनना ना भूलें सुबह 7:10 पर। कार्यक्रम घर आंगन दोपहर 1:15 पर, जिसमें आज बहनें सुनेंगी डॉक्टर सत्येंद्र कुमार तिवारी से की गई भेंटवार्ता, विषय त्वचा संबंधी समस्याएं, कारण लक्षण उपचार और बचाव, अरहर उत्पादन की उन्नत तकनीक, ये भेंटवार्ता प्रसारित होगी कार्यक्रम विज्ञान और किसान में दोपहर 2:30 पर। जानकारी देंगे डॉक्टर राम भरोसे, भेंट करता होंगे डॉक्टर सुशील कुमार राय।

कार्यक्रम युवाणी में युवा साथियों के लिए लेकर आएंगे भेंटवार्ता, मछलियों का अद्भुत संसार। इस विषय पर कृपाल दत्त जोशी से भेंट करेंगे डॉक्टर नगेंद्र सिंह रघुवंशी। प्रसारण समय रहेगा शाम 5:45 पर होगा कार्यक्रम नई उड़ान। डॉक्टर प्रवीण कुमार शर्मा से की गई भेंटवार्ता आप सुन सकते हैं कार्यक्रम लोकायतन में शाम 6:30 पर। विषय रहेगा बदलते मौसम में सांस संबंधी बीमारियां, कारण और निवारण। शाम 6:50 पर कार्यक्रम खेती किसानी में डॉक्टर नुरूस सबूर रहमानी जानकारी देंगे जल कृषि और समन्वित मत्स्य पालन की। इनसे बात करेंगे डॉक्टर सुशील कुमार राय। स्वास्थ्य वार्ता में आज का आकर्षण है प्रोफेसर लोकेश शर्मा द्वारा दी गई जानकारी, बच्चों में थायराइड की समस्या और समाधान। साथ ही तनावमुक्त जीवन और योग के बारे में बताएंगे डॉक्टर दीपेश्वर सिंह। समय याद रखें शाम 7:30। गुणवत्ता परक शिक्षा और शिक्षकों के दायित्व, अरुण कुमार निषाद की ये वार्ता सुनवाई जाएगी हिंदी कार्यक्रम में रात्रि 8:00। उस्ताद इल्मास हुसैन खान का 3 ताल और रूपक ताल में तबला वादन सुना जा सकेगा शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सुबह 7:30 और रात 10:30 पर। कार्यक्रम लोक रंग और लोक माधुरी में आज की कलाकार होंगी सुरुचि उपाध्याय और अपर्णा सिंह। इनके गाए युगल औधि लोकगीत आप सुन सकते हैं सुबह 9:50 पर और दोपहर 2:45 पर। सौरभ श्रीवास्तव के गाए भजनों का आनंद उठाया जा सकता है रात 8:10 पर। कार्यक्रम होगा सुगम संगीत। फरमाइशी फिल्म संगीत का फोन इन कार्यक्रम कुछ तुम कहो कुछ हम कहें का समय रहेगा दिन में 11:00। 1:50 पर कार्यक्रम जवानों के लिए और आपकी पसंद रात 9:30 पर। इसके अलावा हमारे केंद्र से समय समय पर फिल्म संगीत और प्रायोजित कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। ये थी हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी।

कण कण में संगीत बसा है, स्वर स्वर में संसार, धड़कन धड़कन राग सुनाए, सांसों में झनकार। कार्यक्रम विविधा में एक बार फिर से हाजिर हूँ मैं, आपकी दोस्त रेखा मिश्रा। आप सभी को मेरा नमस्कार। आज के इस कार्यक्रम में हमने विषय चुना है कण कण में संगीत। श्रोताओं, जहाँ शब्द मौन हो जाते हैं वहां से संगीत बोलना शुरू करता है। कल्पना कीजिए एक ऐसे प्रभात की जब सूरज की पहली किरण धरती के आंगन में उतरती है। ओस की बूंदें सितार के तारों सी झिलमिलाती हैं। पक्षियों का कलरव है और कहीं दूर किसी मंदिर की घंटियां वातावरण में मधुर तरंगे बिखेरती हैं। तभी ऐसा लगता है मानो प्रकृति स्वयं कोई अनदेखा राग छेड़ रही हो। उसे पल ये अनुभव हो जाता है कि वास्तव में कण कण में संगीत बसा है। संगीत मानव जीवन की सबसे सुंदर और दिव्य अभिव्यक्तियों में से एक है। ये केवल स्वरों और तालों का संयोजन नहीं बल्कि भावनाओं, संवेदनाओं और आत्मा की भाषा है। संगीत में वो शक्ति है जो शब्दों के बिना भी मन की गहराइयों में पहुंच जाती है। अगर हम ध्यान से सुने तो पाएंगे कि संगीत

वाद्य यंत्र और गायन से परे एक अनोखी धुन है। ये जीवन की धड़कनों में बहता हुआ वो प्रवाह है जो हर पल हमें स्पंदित करता रहता है। बहती हुई नदियों की कलकल, झरझर झरते झरनों का निनाद, पवन की सरसराहट, कोयल की कूक, भौंरे की गुंजन और वर्षा की रिमझिम फुहारें, ये सब प्रकृति के महान संगीत समारोह के अलग अलग स्वर हैं। बादलों की गर्जना, समुद्र की लहरों का तट से टकराना, ये भी संगीत का ही एक रूप है। धरती की हरियाली जब झूमने लगती है तो संगीत का आवागमन चलायमान रहता है। पर्वत अपनी नीरवता में भी एक गहन संगीत समेटे रहते हैं। रात के सन्नाटे में झींगरों की आवाजें और जुगनों की चमक भी एक अनूठे संगीत को जन्म देती है। ऐसा लगता है मानो सृष्टि का प्रत्येक तत्व अपनी अपनी भूमिका निभाते हुए किसी ऐसे ऑर्केस्ट्रा का हिस्सा है जिसमें संगीत की अलग अलग स्वर लहरियां जीवन को आनंदित करने में लगी रहती हैं। श्रोताओं, मनुष्य का जीवन भी संगीत से ही सजा है। संगीत है नवजात शिशु की पहली किलकारी में, संगीत है माँ की लोरी में, बच्चों की हंसी में, बुजुर्गों की अनुभूति में, प्रेम की अभिव्यक्ति में और भक्ति की गहराई में भी संगीत की मधुरता समाई रहती है। हमारे हृदय की धड़कनें भी एक निश्चित लय में चलती हैं। सांसों का आना जाना भी एक अनवरत ताल है। मनुष्य जब मन से प्रसन्न होता है तो उसकी बातों में संगीत सुनाई देता है। वहीं दुखी मन की मौन संवेदनाएं भी एक करुण राग का रूप ले लेती हैं। श्रोताओं, भारतीय संस्कृति में संगीत को साधना का माध्यम माना गया है। हमारे प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है कि संपूर्ण ब्रह्मांड नाद से उत्पन्न हुआ है। नाद ब्रह्म की अवधारणा इस सत्य को प्रकट करती है कि संगीत स्वयं ईश्वर का स्वरूप है। मां शारदे की वीणा के तारों से लेकर भोलेनाथ के डमरू तक, कृष्ण की बांसुरी से लेकर भगवान राम के धनुष की टनकार तक, संगीत हमेशा आत्मा और परमात्मा के बीच की कड़ी बना है। मंदिरों में बजते घंटे घड़ियाल, आरती के मंत्र, भजन कीर्तन, संतों की वाणी और सूफी कव्वालियां हमें आध्यात्मिक ऊंचाइयों तक पहुंचाने का माध्यम बनती हैं। पूजा प्रार्थना भक्ति आराधना सब संगीत की सरगम से होकर ही गुजरते हैं। वास्तव में संपूर्ण ब्रह्मांड एक महान राग है। ग्रहों की परिक्रमा, ऋतुओं का परिवर्तन, दिन रात का क्रम, जन्म और मृत्यु का चक्र, सब कुछ एक अद्भुत लय में बंधा हुआ है और यही लय संगीत है। संगीत हमें स्वयं से जोड़ता है और भीतर की यात्रा पर ले जाता है। संगीत केवल मनोरंजन का साधन नहीं, ये भावनाओं का सेतु है। ये टूटे मन को संबल देता है, थके कदमों को गति देता है और जीवन में आशा का संचार करता है। संगीत वो दीपक है जो अंधेरे में भी रोशनी खोज लेता है। संगीत की भाषा को समझने के लिए शाब्दिक ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती। जब सुर से सुर मिलते हैं तभी समरसता जन्म लेती है। संगीत हमें सिखाता है कि मिलकर रहना, मिलकर गाना और मिलकर ही जीवन को सुंदर बनाना। आखिर में हम आपसे यही कहना चाहते हैं कि संगीत केवल सुनने की नहीं बल्कि महसूस करने की अनुभूति है। जब अनुभूति गहरी हो जाए, जब तारों तरफ से एक ही स्वर सुनाई देता है, कण कण में संगीत बसा है।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विविधा, आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है। प्रादेशिक समाचार थोड़ी ही देर में गोरखपुर केंद्र से रिले किए जाएंगे।

0: सुबह का पहला संकल्प ये लें कि मैं दुनिया में किसी से नहीं डरूंगा, केवल भगवान से डरूं। मैं किसी के प्रति बुरा भाव न रखूं, मैं किसी के अन्याय के समक्ष झुकूं नहीं, मैं असत्य को सत्य से जीतूं और असत्य का विरोध करते हुए मैं सभी कष्टों को सह सकूं। महात्मा गांधी।
1: मन का धर्म है मनन करना, मनन में ही उसे आनंद है, मनन में बाधा प्राप्त होने से उसे पीड़ा होती है। रविंद्रनाथ ठाकुर।
0: अपने ज्ञान पर जरूरत से ज्यादा यकीन करना मूर्खता है। सबसे मजबूत कमजोर हो सकता है और सबसे बुद्धिमान गलती कर सकता है। APJ अब्दुल कलाम।
1: जैसे सूर्य सबको एक सा प्रकाश देता है, बरसात सबके लिए बरसती है, उसी तरह विद्या वृष्टि सब पर बरकरार होनी चाहिए। महात्मा गांधी।
0: आकाश की तरफ देखिए, हम अकेले नहीं हैं, सारा ब्रह्मांड हमारे लिए अनुकूल है और जो सपने देखते हैं, मेहनत करते हैं, उन्हें प्रतिफल देने की साजिश करता है। APJ अब्दुल कलाम। निरंतर विकास जीवन का नियम है और जो व्यक्ति खुद को सही दिखाने के लिए हमेशा अपनी रूढ़िवादिता को बरकरार रखने की कोशिश करता है, वह खुद को गलत स्थिति में पहुंचा देता है। महात्मा गांधी।
1: मानव का दानव होना उसकी हार है, मानव का महामानव होना उसका चमत्कार है और मनुष्य का मानव होना उसकी जीत है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन।
2: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं विकास राय। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महोबा और हमीरपुर में विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, डबल इंजन सरकार की नीतियों से विकास की राह पर तेजी से अग्रसर है बुंदेलखंड। उत्साह के साथ मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने झांसी में आयोजित कार्यक्रम में किया योगाभ्यास। प्रदेश के 59 जिलों में नीट यूजी की पुनर्परीक्षा शांतिपूर्वक हुई संपन्न। करीब 3.5 लाख अभ्यर्थी हुए शामिल। और प्रदेश के अधिकांश जिलों में पड़ रही भीषण गर्मी से जनजीवन हुआ प्रभावित। अगले 3-4 दिन तक गर्मी से राहत के नहीं है आसार। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि नए भारत की तर्ज पर उत्तर प्रदेश ने भी अपनी नई और विशेष पहचान बनाई है। डबल इंजन सरकार की नीतियों से बुंदेलखंड विकास की राह पर तेजी से अग्रसर है। मुख्यमंत्री कल बुंदेलखंड के महोबा में 697 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 88 विकास परियोजनाओं और हमीरपुर जिले में 636 करोड़ से अधिक लागत की 75 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने के बाद आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। महोबा जिले की आध्यात्मिकता, ऐतिहासिकता और वीरता की चर्चा करते हुए कहा कि महोबा गुरु गोरखनाथ की साधना स्थली है। स्थानीय जनप्रतिनिधियों के सहयोग से गोरखगिरी पर्यटन स्थल के नए केंद्र के रूप में स्थापित हुआ है। श्री योगी ने कहा कि गोरखगिरी में रोपवे लगाया जाएगा और इसे एडवेंचर टूरिज्म के केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि बुंदेलखंड का विकास राज्य सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। इस क्रम में विभिन्न विकास योजनाओं से बुंदेलखंड को

0: आच्छादित किया गया है। श्री योगी ने कहा कि जल्द ही बुंदेलखंड मिसाइल हब के तौर पर भी जाना जाएगा।
1: उत्तर प्रदेश की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर में बनी हुई मिसाइल ने साबित करके दिखाया और उसका हब हम चाहते हैं आने वाले समय में हमारा महोबा बने, हमीरपुर बने, चित्रकूट बने, झांसी बने, ऊर्जा के केंद्र के रूप में विकसित हो। और इसलिए विकास की योजनाओं को लेकर के औद्योगिक निवेश के लिए भी हम लोगों ने एक औद्योगिक क्लस्टर यहाँ विकसित करने की कार्रवाई को आगे बढ़ाया है। करवई बांध के जिन किसानों ने जमीन दी थी, वर्षों से की भूमि का पैसा नहीं मिला था, उसको निस्तारित करके उसका भुगतान की कार्रवाई को संपन्न किया गया।
0: मुख्यमंत्री ने कहा कि बुंदेलखंड में जल समाधान, संरक्षण, पर्यटन की संभावनाओं और कनेक्टिविटी बेहतर करने के लिए डबल इंजन सरकार काम कर रही है। इस अवसर पर महोबा के विकास को समर्पित लघु फिल्म भी दिखाई गई। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल उत्साह के साथ मनाया गया। इस अवसर पर देश ही नहीं दुनिया भर में योगाभ्यास के कार्यक्रम आयोजित किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मुख्य समारोह से देश की अगुवाई की। श्री मोदी ने योगाभ्यास कर योग को दिनचर्या का अनिवार्य हिस्सा बनाने का संदेश दिया।
2: योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है। इसलिए योग के विषय में युक्त चेष्टस्य कर्मसु कहा गया है, यानी हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसका बोध।
0: प्रदेश में भी योग दिवस के अवसर पर सभी जिलों में कार्यक्रम आयोजित किए गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुंदेलखंड के झांसी में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए और योगाभ्यास कर निरोगी रहने का संदेश दिया।
1: अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की पूरे प्रदेशवासियों को हृदय से बधाई देता हूं। हम सब आभारी हैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने भारत की परंपरा को, भारत की विरासत को वैश्विक मान्यता देकर के भारत के 140 करोड़ भारतवासियों को दुनिया के अंदर गौरव के साथ आगे बढ़ने और उसकी नींव पर एक विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए हम सबके लिए एक विजन प्रस्तुत किया।
0: इस अवसर पर लखनऊ के जनभवन में महिला योग सत्र आयोजित किया गया, जिसमें राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के नेतृत्व में महिलाओं ने योगासन, प्राणायाम और ध्यान का अभ्यास किया। उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य प्रयागराज और ब्रजेश पाठक लखनऊ में योग दिवस पर हुए कार्यक्रमों में सम्मिलित हुए। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। प्रदेश के 59 जिलों में आयोजित नीट UG की पुनर्परीक्षा कल शाम शुचिता के साथ शांतिपूर्वक रूप से संपन्न हो गई। एक रिपोर्ट।
3: देश के विभिन्न जिलों में बनाए गए परीक्षा केंद्रों पर करीब 3.5 लाख अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। ये मेडिकल प्रवेश परीक्षा उत्तर प्रदेश सहित देश के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में आयोजित की गई। इस परीक्षा में 22 लाख से अधिक अभ्यर्थी शामिल हुए। इससे पहले 3 मई को हुई नीट की परीक्षा कथित पेपर लीक विवाद की वजह से रद्द कर दी गई थी। NTA ने परीक्षा को पारदर्शी, शांतिपूर्ण और नकलविहीन तरीके से कराने के लिए सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए थे। सभी केंद्रों पर CCTV कैमरों से हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही थी। केंद्रों पर मजिस्ट्रेट और पर्याप्त सुरक्षा बल तैनात थे। समाचार कक्ष से फजल इनाम।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाने का आह्वान करते हुए कहा है कि मौसम की अनिश्चितता और मानसून की संभावित अनियमितता को देखते हुए प्रत्येक प्रदेशवासी को जल संचयन एवं जल संरक्षण के प्रयासों से जुड़ना होगा। उन्होंने कहा कि पानी की एक भी बूंद व्यर्थ नहीं जानी चाहिए। कैच द रेन अभियान को और अधिक प्रभावी ढंग से संचालित किया जाए तथा वर्षा जल संचयन को व्यापक जन भागीदारी से जोड़ा जाए। उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य कल प्रयागराज में खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों और खेल संगठनों के पदाधिकारियों द्वारा आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। इन सभी से संवाद करते हुए श्री मौर्य ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है और इस दिशा में कई योजनाएं जारी हैं। उन्होंने खिलाड़ियों और खेल संगठनों के पदाधिकारियों को आश्वस्त किया कि वह खिलाड़ियों के सहयोग

0: के लिए तैयार हैं ताकि प्रयागराज सहित सभी जिलों के खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना सकें। केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उस दावे का खंडन किया है जिसमें कहा गया था कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 6,550 रुपए के प्रोसेसिंग शुल्क पर 10 लाख रुपए तक का ऋण दिया जा रहा है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इसे पूरी तरह से फर्जी बताया है। राज्य सरकार ने आदिवासी बाहुल्य सोनभद्र जिले में 257 करोड़ रुपए लागत से 86 किलोमीटर लंबी सड़कों का जाल बिछाने का फैसला किया है। जिलाधिकारी चर्चित गौड़ ने जानकारी देते हुए बताया कि सड़क निर्माण के संबंध में जल्द ही सर्वे और टेंडर प्रक्रिया संपन्न कराकर सड़क निर्माण का कार्य शुरू करा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इन सड़कों के बन जाने से सीमावर्ती 4 राज्यों से कनेक्टिविटी बेहतर हो जाएगी। इस कनेक्टिविटी से उद्योगों के लिए कच्चे माल और तैयार उत्पादों की ढुलाई में लोगों को आसानी होगी। प्रदेश के अधिकांश जिलों में इस समय भीषण गर्मी पड़ रही है। कई जिलों का अधिकतम तापमान 40 डिग्री से अधिक रिकॉर्ड किया जा रहा है। गर्मी के चलते जनजीवन प्रभावित हो गया है। मौसम विभाग के अनुसार गर्मी का यह सिलसिला अगले 3-4 दिन तक जारी रहेगा। पूर्वी उत्तर प्रदेश में महीने के अंत तक मानसून के पहुंचने की संभावना है। उधर प्रदेश में बढ़ते तापमान और लू की स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार ने बेसिक शिक्षा परिषद से जुड़े स्कूलों और मान्यता प्राप्त स्कूलों में ग्रीष्मकालीन अवकाश को 24 जून तक बढ़ा दिया है। इसे लेकर शासन से जारी निर्देश के अनुसार अब तक हर साल गर्मियों की छुट्टियां 20 मई से 24 जून तक रहेंगी और नियमित शैक्षणिक गतिविधियां 25 जून से शुरू होंगी। गतिविधियां 25 जून से शुरू होंगी। हालांकि शिक्षक, शिक्षा मित्र, प्रशिक्षक और गैर शिक्षण कर्मचारी 22, 23 और 24 जून को स्कूलों में उपस्थित रहेंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महोबा और हमीरपुर में विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, डबल इंजन सरकार की नीतियों से विकास की राह पर तेजी से अग्रसर है बुंदेलखंड। उत्साह के साथ मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने झांसी में आयोजित कार्यक्रम में किया योगाभ्यास। प्रदेश के 59 जिलों में नीट यूजी की पुनर्परीक्षा शांतिपूर्वक हुई संपन्न। करीब 3.5 लाख अभ्यर्थी हुए शामिल। और प्रदेश के अधिकांश जिलों में पड़ रही भीषण गर्मी से जनजीवन हुआ प्रभावित। अगले 3-4 दिन तक गर्मी से राहत के नहीं है आसार। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो ये दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। APJ अब्दुल कलाम।
2: यदि युवा को है रोजगार पाना तो होगा उसे कौशल बढ़ाना। अपने कौशल का विकास कीजिए, अपने भविष्य को संवारिए, वृद्धों का सम्मान करें, मर्यादा का ध्यान रखें, बड़े बुजुर्गों की करें मदद, आशीर्वाद मिले वही बड़ी दौलत, जो सिखाए हमें व्यवहारिक ज्ञान, करें ज्येष्ठ लोगों का सम्मान।
1: असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
3: नमस्कार। लखनऊ में एक बार फिर से आपका स्वागत। आप हैं अपनी दोस्त रेखा मिश्रा के साथ। हमारे केंद्र से प्रसारित कार्यक्रमों को आप मीडियम वेव के साथ ही न्यूज ऑन AIR ऐप और DTH के माध्यम से भी सुन सकते हैं। समय हो गया है शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम का, जिसमें आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं उस्ताद इल्मास हुसैन खान का तबले पर बजाया 3 ताल। हारमोनियम पर लहरा दे रहे हैं दिनकर द्विवेदी।

0: शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आप सुन रहे थे उस्ताद इल्माज हुसैन खान का तीन ताल में तबला वादन। हारमोनियम पर लहरा दे रहे थे दिनकर द्विवेदी। इसके साथ ही ये कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। नमस्कार, लखनऊ से अब दें इजाजत रेखा मिश्रा को और आप सुनते रहें हमारे अन्य कार्यक्रमों को। मीडियम वेव के मीटर पर यह आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। सुबह के 8 बजने वाले हैं समाचार प्रभात। कुछ ही पलों में हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीष शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मजबूत समुद्री क्षमता किसी भी देश के आर्थिक और रणनीतिक प्रभाव में निर्णायक है और भारत इस ओर अग्रसर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मध्य प्रदेश के कोनो राष्ट्रीय उद्यान के दौरे पर हैं, चीता परियोजना की समीक्षा की। भारत आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 2 दिवसीय बैठक की मेजबानी करेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी आज से यूजीसी नेट जून 2026 परीक्षा का आयोजन करेगी। अमरीका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा, स्विट्जरलैंड में प्रतिनिधिमंडलों की बैठक के बाद ईरान वार्ता में प्रगति। और पुरुष हॉकी में भारत ने FIH प्रो लीग रॉटरडम चरण के अपने अंतिम मैच में नीदरलैंड को 3-2 से हराया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि किसी देश की आर्थिक और सामरिक शक्ति में समुद्री क्षमता की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और भारत इसे मजबूत बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। कोलकाता में कल स्वदेश निर्मित 3 नौसैनिक पोतों दूनागिरी, संशोधक और अग्रह को नौसेना में शामिल करने के बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहा है और केवल हथियारों का खरीदार देश बनकर नहीं रहना चाहता।
2: आज भारत रक्षा क्षेत्र में केवल खरीदार बनकर नहीं रहना चाहता। हमारी सैन्य शक्ति दुनिया के लिए बाजार नहीं बन सकती। मेरी शक्ति की, सामर्थ्य की पहचान मेरी आत्मनिर्भरता पर है।
1: श्री मोदी ने कहा कि समुद्री सामर्थ्य के बिना कोई भी देश वैश्विक शक्ति नहीं बन सकता। विकास, सुरक्षा और समृद्धि का सीधा संबंध समुद्र से है। श्री मोदी ने कहा कि INS विक्रांत से शुरू हुई आत्मनिर्भरता की यात्रा को इन नए पोतों के शामिल होने से और गति मिलेगी।
2: INS विक्रांत से लेकर आज तक की यात्रा केवल नए युद्ध पोतों की यात्रा नहीं है, यह भारत की बढ़ती आत्मनिर्भरता की यात्रा भी है।

0: इनका निर्माण भारत में हुआ है, इनकी डिजाइन भारत में तैयार हुई है, इनके निर्माण में भारतीय उद्योगों की प्रतिभा लगी है और यही नए भारत की सबसे बड़ी ताकत है।
1: प्रधानमंत्री ने बताया कि पिछले कुछ वर्षों में 40 से अधिक युद्धपोत और पनडुब्बियां नौसेना में शामिल की गई हैं।
0: भारत निर्माता बनना चाहता और जिस दिन निर्माता होगे ना उस दिन हम निर्णायक भी होंगे। बीते वर्षों में 40 से अधिक मेड इन इंडिया युद्धपोत और पनडुब्बियां नौसेना में शामिल हुई है। वर्तमान में भी 45 बड़े नौ सैनिक प्लेटफॉर्म निर्माणाधीन है। यह केवल संख्या नहीं है, यह भारत की औद्योगिक क्षमता का प्रमाण है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 को वैश्विक उत्सव बनाने के लिए विश्व भर के लोगों का आभार व्यक्त किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि ये देखकर खुशी होती है कि योग सभी क्षेत्रों और विभिन्न देशों के लोगों को स्वस्थ जीवन तथा कल्याण की साझा खोज में एकजुट कर रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल मध्य प्रदेश के कुनो राष्ट्रीय उद्यान का दौरा किया। उन्होंने भारत के प्रमुख पहल चीता पुनर्वास परियोजना की प्रगति की समीक्षा भी की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज सुबह कूनो नेशनल पार्क में सफारी की। इसके बाद वे कूनो के चीता कमांड एवं कंट्रोल सेंटर का दौरा कर चीता परियोजना से जुड़ी प्रदर्शनी का अवलोकन किया था। अधिकारियों ने उन्हें बताया कि वर्तमान में भारत में 52 चीते हैं। उन्हें चीतों की निगरानी और ट्रैकिंग व्यवस्था के बारे में भी जानकारी दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2022 में अपने जन्मदिन पर नाम्बिया से लाए गए 8 चीतों को कूनो नेशनल पार्क में छोड़कर भारत की महत्वाकांक्षी चीता पुनर्स्थापन परियोजना की शुरुआत की थी। इसके बाद दक्षिण अफ्रीका और बोत्सवाना से भी चीते लाए गए। संरक्षण और प्रजनन के प्रयासों के कारण अब कूनो में चीतों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जिसे परियोजना की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी न्यूज, भोपाल।
1: भारत आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 2 दिवसीय बैठक की मेजबानी करेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल बैठक की अध्यक्षता करेंगे। एक रिपोर्ट।
3: इस दौरान साइबर सुरक्षा, डिजिटल खतरों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े जोखिमों तथा अन्य गैर पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा होगी। प्रतिनिधि आतंकवाद रोधी सहयोग और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के सुरक्षित उपयोग से जुड़े मुद्दों की भी समीक्षा करेंगे। बैठक में भारत, ब्राजील, चीन, रूस, दक्षिण अफ्रीका सहित ब्रिक्स के 11 सदस्य देशों के सुरक्षा प्रमुख भाग लेंगे। चीन के विदेश मंत्री वांग यी भी इसमें शामिल होंगे। ये चौथी बार है जब भारत ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है। इस वर्ष भारत की अध्यक्षता का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास का निर्माण। समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की UGC नेट जून 2026 परीक्षा आज से शुरू होगी। ये राष्ट्रीय स्तर की पात्रता परीक्षा कंप्यूटर आधारित टेस्ट CBT माध्यम से 30 जून तक प्रतिदिन 2 पालियों में आयोजित की जाएगी। UGC नेट परीक्षा उन अभ्यर्थियों के लिए आयोजित की जाती है जो जूनियर रिसर्च फेलोशिप JRF, सहायक प्रोफेसर के पदों और PhD पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए पात्रता प्राप्त करना चाहते हैं। नीट UG पुनर्परीक्षा कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच संपन्न हुई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने बताया कि देशभर के 5,440 जबकि विदेश के 14 केंद्रों पर 22 लाख से अधिक अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हुए। इस बीच NTA ने नीट UG पुनर्परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक होने के दावे को खारिज किया है। सोशल मीडिया पर प्रसारित एक वीडियो में प्रश्न पत्र टेलीग्राम पर लीक होने का दावा किया गया था। NTA ने कहा है कि परीक्षा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सफलतापूर्वक आयोजित की गई है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कक्षा 12वीं के अंकों के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के परिणाम जारी करने शुरू कर दिए हैं। बोर्ड के अनुसार 87% से अधिक आवेदनों के परिणाम घोषित किए जा चुके हैं जबकि शेष परिणाम जल्द ही

0: जारी किए जाएंगे। पश्चिम बंगाल विधानसभा में आज भाजपा सरकार अपना पहला पूर्ण बजट पेश करेगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली सरकार के इस बजट पर सभी का ध्यान है। 19वां मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2026 कल शाम संपन्न हो गया। मुंबई में आयोजित समापन समारोह को संबोधित करते हुए महाराष्ट्र के राज्यपाल जिष्णुदेव वर्मा ने महोत्सव को गैर काल्पनिक सिनेमा के लिए विश्व के सबसे प्रतिष्ठित समारोहों में से एक बताया। हमारी संवाददाता ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता वर्ग में पोलैंड के वृत्तचित्र सिल्वर ने सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र के लिए प्रतिष्ठित गोल्डन कॉन्च पुरस्कार जीता।
1: अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता विभाग में माया सॉन्ग को सर्वश्रेष्ठ एनिमेशन फिल्म के लिए सिल्वर कॉन्च और अंडर द स्नो को सर्वश्रेष्ठ लघु कथा फिल्म का सिल्वर कॉन्च दिया गया। राष्ट्रीय प्रतियोगिता विभाग में आर्मस्ट्रांग फ्रॉम अंगलम्मन कोविल स्ट्रीट को सर्वश्रेष्ठ एनिमेशन फिल्म का सिल्वर कॉन्च मिला। वहीं स्मॉल क्लाउड्स को सर्वश्रेष्ठ लघु कथा फिल्म और वाई को सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फिल्म का सिल्वर कॉन्च प्रदान किया गया। द ओल्ड बुल नोज और वंस न्यू को सर्वश्रेष्ठ छात्र फिल्म का पुरस्कार मिला, जबकि द लास्ट शेल्टर को विकसित भारत वंदे मातरम के 150 वर्ष भारत एट 2026 विषय पर बनी सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म का पुरस्कार दिया गया। इसी के साथ मिफ 2026 का समापन हुआ। अंकिता आप्टे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है कि ईरान के साथ वार्ता में प्रगति हो रही है। स्विट्जरलैंड में ईरान के परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय सुरक्षा मुद्दों पर अमेरिका और ईरान के वरिष्ठ प्रतिनिधिमंडलों के बीच बातचीत जारी है। एक रिपोर्ट।
2: लेक ल्यूर्सन के निकट बर्गनस्टॉक रिजॉर्ट में बंद कमरे में हो रही इस वार्ता से पहले जेडी वेंस ने कहा कि अब तक की बातचीत के उत्साहजनक परिणाम सामने आए हैं और आगे भी प्रगति की उम्मीद है। वार्ता का मुख्य केंद्र ईरान का परमाणु कार्यक्रम है। इसके साथ ही इसराइल और लेबनान के बीच युद्ध विराम बनाए रखने सहित क्षेत्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर भी चर्चा जारी है। जेडी वेंस ने कहा कि हाल के कूटनीतिक प्रयासों से सकारात्मक परिणाम मिले हैं और क्षेत्र में शांति तथा स्थिरता बनाए रखने के लिए अमरीका लगातार प्रयासरत है। पश्चिम एशिया में तनाव कम करने और कूटनीतिक समाधान की दिशा में इस वार्ता पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की नजर बनी हुई है। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल नागरिक अलंकरण वर्ष 2026 के दूसरे समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस अवसर पर हम अपनी विशेष श्रृंखला पीपुल्स पद्म ऑन आकाशवाणी के तहत 15 विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं।
3: हम लिख के गया ऐसे करते करते लेखक का दर्जा मिल गया।
4: सोना घाटी की पहाड़ी, पहाड़ी को देखा तो उस पहाड़ी पर एक भी पेड़ नहीं था। वृक्ष विहीन पहाड़ी हो गई थी, झाड़ियाँ कुछ बची थी और वहाँ पर 8000 से ज्यादा हमने जल संरचनाएं बनाई।
5: समाज चेतना के लिए हम सोचा, समाज जागरण के लिए, आदमी के लिए हम सोचा क्या करना है और क्या नहीं करना है।
6: मेरे मन माया कि हम इनको आत्मनिर्भर करना है तो इनको साक्षरता बनाना है, इनको शिक्षा देना है।
0: ये विशेष कार्यक्रम आज और कल प्रातः 9:10 पर आकाशवाणी गोल्ड से प्रसारित होंगे, जिन्हें न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी सुना जा सकता है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में अपर केंद्रीय आयुक्त पूर्णेंदु भूषण वर्मा इस परिचर्चा में भाग लेंगे। पुरुष हॉकी में भारत ने कल रॉटरडैम में FIH प्रो लीग के अपने अंतिम मुकाबले में नीदरलैंड्स को 3-2 से हराकर शानदार जीत दर्ज की। भारत की ओर से जुगराज सिंह, अभिषेक और राजेंद्र सिंह ने गोल किए। मौसम विभाग ने असम और मेघालय में आज मूसलाधार बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के तराई वाले इलाकों और सिक्किम में भी आज तेज वर्षा की संभावना है। मौसम विभाग ने बताया कि बिहार, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, माहे, कोंकण, गोवा और लक्षद्वीप में कल तक तेज बारिश का अनुमान है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
7: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी समाचार पत्रों के मुख्य

0: प्रश्नों पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के भव्य आयोजन और कड़ी सुरक्षा के बीच फिर से नीट परीक्षा कराए जाने के समाचार छाए हुए हैं। वीर अर्जुन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कथन को शीर्ष समाचार बनाया है। शांति का मार्ग प्रशस्त कर सकता है योग। कोलकाता में योग दिवस समारोह के दौरान एक प्रतिभागी की मदद करते हुए प्रधानमंत्री की तस्वीर भी अखबार में प्रमुखता से प्रकाशित है। दैनिक जागरण ने इस खबर को शीर्षक दिया है, पहाड़ से मैदान तक योगमय हुई दुनिया। सियाचिन ग्लेशियर की बर्फीली ऊंचाइयों और पानी की गहराइयों में योग करते सैनिकों के चित्र भी ध्यान आकर्षित करते हैं। पंजाब केसरी और दैनिक भास्कर ने क्रिकेट खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी की तस्वीरों को पहले पन्ने पर सबसे ऊपर छापते हुए उनकी उपलब्धियां बयां की हैं। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, वैभव क्रिकेट की दुनिया का अजूबा। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, नीट देने 2 लाख अभ्यर्थी पहुंचे। दैनिक जागरण बताता है कि देश विदेश के 5,454 केंद्रों पर यह परीक्षा हुई और गड़बड़ी की कोई सूचना नहीं है। परीक्षा में भाग ले रहे उम्मीदवारों को कोई कठिनाई ना हो इसलिए प्रधानमंत्री मोदी के हवाई अड्डे पर 45 मिनट प्रतीक्षा करने को भी अखबार ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। जनसत्ता ने पहलगाम हमले की जांच के सामने आए कुछ तथ्यों को सचित्र प्रकाशित करते हुए खबर को शीर्षक दिया है, सीमा पार से आए ड्रोन ने गिराए थे हथियार।
1: और अंत में सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मजबूत समुद्री क्षमता किसी भी देश के आर्थिक और रणनीतिक प्रभाव में निर्णायक है और भारत इस ओर अग्रसर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मध्य प्रदेश के कुनो राष्ट्रीय उद्यान के दौरे पर हैं, चीता परियोजना की समीक्षा की। भारत आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 2 दिवसीय बैठक की मेजबानी करेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी आज से यूजीसी नेट जून 2026 परीक्षा आयोजित करेगी। और पुरुष हॉकी में भारत ने FIH प्रो लीग रॉटरडैम चरण के अपने अंतिम मैच में नीदरलैंड्स को 3-2 से हराया। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 FM पर। श्रोताओं, प्रातः के 8:15 हुए हैं और अब आप सुनेंगे कार्यक्रम नमस्ते बरेली।

श्रोताओं, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम नमस्ते बरेली में, और साथ ही कीजिए स्वीकार हमारा प्यार भरा नमस्कार। और श्रोताओं, आज यानी कि हम 22 जून को मनाते हैं इंटरनेशनल बीइंग यू डे, यानी हर साल ये 22 जून को मनाया जाता है। और इसका जो मतलब है वो ये है, इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य है लोगों को खुद के वास्तविक स्वरूप को अपनाने, अपनी विशिष्टता यूनिकनेस का जश्न मनाने और बिना किसी डर या संकोच के जैसे हैं वैसे रहने के लिए प्रेरित करना है। जी हाँ, आज के समय में है क्या कि हर व्यक्ति ये चाहता है कि जैसा दूसरा कर रहा है मैं वैसा ही करूं? नहीं, ये ऐसा हो भी नहीं सकता है, क्योंकि हमारी अपनी अलग परिस्थितियां हैं, अलग स्थितियां हैं, अलग सिचुएशंस हैं और दूसरे की अलग हैं। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि जो दूसरा कर रहा है वो हम भी कर सकते हैं, है ना? लेकिन हाँ, हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश तो करनी ही चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप दूसरे को कॉपी करें। और सबसे खास बात यह है, इस दिवस की शुरुआत 2021 में नेशनल डे कैलेंडर और डॉक्टर हैन हीर द्वारा की गई थी। डॉक्टर हीर ने 2011 में बीइंग यू चेंजिंग द वर्ल्ड के नाम से पुस्तक भी लिखी थी। इसका मुख्य उद्देश्य था लोगों को ये एहसास दिलाना कि वे जैसे हैं वैसे ही दुनिया के लिए एक उपहार हैं। ये दिन सामाजिक दबावों और अपेक्षाओं से मुक्त होकर एक आत्म यानी सेल्फ एक्सेप्टेंस को बढ़ावा देना है। इस दिन को मनाने के लिए दुनिया भर में ऑनलाइन और व्यक्तिगत स्तर पर कई कार्यक्रम, सेमिनार, वर्कशॉप आयोजित किए जाते हैं। लोग अपनी सच्ची पहचान को व्यक्त करने के लिए रचनात्मक गतिविधियां करते हैं और बीइंग यू डे हैशटैग के साथ अपने विचार साझा करते हैं। और सबसे खास बात यह है कि जब हम ये सोचते हैं आप जैसे

वैसे ही जब आप रहेंगे ना रियलिटी, तो आपको लोग वैसा ही पसंद करेंगे। और जब आप किसी की कॉपी करेंगे या आप ओवर जो है वो करेंगे, स्मार्टनेस दिखाएंगे, तो उसे ये पता चल जाता है कि आप कहीं ना कहीं बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, और दूसरे को भी ये समझने में दिक्कत होती है कि आप किस प्रकार के व्यक्ति हैं। आप खुद ही नहीं समझ पाएंगे आप क्या चाह रहे हैं, तो आप दूसरे को क्या बता पाएंगे कि आप कौन सी कैटेगरी बिलोंग करते हैं, एक अच्छे व्यक्ति की, एक डबल रोल व्यक्ति की, या एक बिल्कुल सीधे और टू द पॉइंट बात करने वाले व्यक्ति की। और आज ही के दिन हम मनाते हैं विश्व वर्षावन दिवस। जी हाँ, 22 जून को मनाया जाता है विश्व वर्षावन दिवस। इसका उद्देश्य जागरूकता बढ़ाना और सभी को वर्षावनों के संरक्षण के लिए समय निकालने के लिए प्रोत्साहित करना है। आज ही हमारे साथ जुड़ें और वर्षावनों के संरक्षण के लिए कदम उठाने को प्रोत्साहित करें। जी हाँ, वर्षा को लाने के लिए पेड़ पौधे बहुत सहायक होते हैं, मह अहम भूमिका निभाते हैं वर्षा को लाने के लिए। वर्षावन आंशिक रूप से स्वजलीकरण करते हैं, जिसका अर्थ है कि पौधे वायुमंडल में पानी छोड़ते हैं। वाष्पोत्सर्जन के रूप में जाने माने वाली ये नमी वर्षावन के ऊपर नमी का बादल बनाती है और वर्षावन को सल रखती है। और सबसे खास बात यह है कि पेड़ पौधे तो हमें अभी हमने पिछले ही महीने बनाया है, जी हाँ, बल्कि इसी महीने 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस क्यों मनाते हैं? ताकि लोग सतर्क रहें, जागरूक रहें कि कितनी ज़रूरत है। आज हम अपने घरों में एसी लगाते हैं, सच पूछिए, अभी भी कहीं रास्ता चलते राह चलते पेड़ दिख जाता तो ये सोचते हैं इस गर्मी में कि इसके नीचे से गुजर जाएं तो थोड़ी राहत मिलेगी। तो कोशिश कीजिए कि एसी तो आप अपने घरों में लगा सकते हैं, लेकिन जगह जगह पेड़ लगाएंगे ना, तो लोग अपने आप ही दुआएं देंगे कि अरे पता नहीं आज ये किसने लगाया होगा और आज ये वृक्ष हमें छाया दे रहा है। इस वार्षिक दिवस के आयोजकों का कहना है कि हम जो ऑक्सीजन में सांस लेते हैं और जो मीठा पानी पीते हैं, उसका 20% हिस्सा अमेजन के वर्षावनों से आता है। ये वर्षावन कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं, जलवायु को स्थिर रखते हैं और दुनिया की आधी से ज़्यादा वनस्पतियों और जीव जंतुओं का घर है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज के समय में विश्व भर में वर्षावन जो है खतरे में है। पेड़ों की कटाई, खनन और कृषि इनके घटने का मुख्य कारण है। पिछले 50 वर्षों में अमेजन वर्षावन का लगभग 20% हिस्सा नष्ट हो चुका है। वर्षावन भूमि के कम होने के साथ साथ हम कई ऐसे पौधे और जीवों को भी खो रहे हैं जो हमारे वातावरण और समाज के लिए लाभकारी हैं। वास्तव में वर्षावनों में पाए जाने वाले कई पौधों का उपयोग अब कैंसर रोधी दवाओं सहित औषधियां बनाने में किया जा रहा है। जरा सोचिए, कभी कभी क्या होता है, हमारे शरीर में कोई चोट लग जाती है, वो जल्दी ठीक होने में नहीं आती है, या एलर्जी हो जाती है, तो हम ये जो जड़ी बूटियां होती हैं, जो काम एलोपैथी नहीं कर पाती है, वो ये जड़ी बूटियां आयुर्वेदिक चीजें कर जाती हैं, जड़ से करती हैं, धीरे धीरे करती हैं, जड़ से करती हैं, और फिर आदमी को वो चीज़ दोबारा लौटने भी नहीं देती हैं उस बीमारी के लिए। तो कोशिश कीजिए हम और आप ये प्रण लें कि हम जगह जगह जो हैं पेड़ लगाएंगे, और जाहिर सी बात है किसी और ने लगाए तो उसकी छाया आज हम पा रहे हैं, ठीक है, तो हम लगाएंगे तो उसकी छाया भी हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए मिलेगी। पेड़ पौधों का ज़रूर ध्यान रखें। और एक बात और, इस समय तो आम बहुत आ रहा है, तो उसे आप खा के उसकी जो गुठलियाँ हैं ना उनको फेंके नहीं, आप उनको सुखा लीजिए, और जब आप कहीं जाते हैं घूमने, ट्रेन के माध्यम से जाते हैं या बस के माध्यम से जाते हैं, तो जगह जगह जो किनारे पे ये मिट्टी पड़ी होती है ना कच्चे की तरफ साइड से, वहाँ ये डालते हुए जाइए, क्या पता कब बारिश हो और ये जो है अपने उसमें आकर के फिर ये जो बीज आपने डाला है कब ये फले फूले एक आम के वृक्ष के रूप में। छाया तो फल तो देगा ही देगा, सबसे पहले ये छाया का एक वो जो है इसके लिए शानदार तरीका है कि हमें ये छाया देगा। फल तो बात की बात है, फल तो मिलेंगे ही मिलेंगे, कोशिश तो कीजिए। इसलिए ये कोशिश जरूर कीजिए कि पेड़ पौधे आपकी एक इसे लाइफ में शामिल होना चाहिए, कि मुझे ये बागवानी करनी करनी शौक नहीं होना चाहिए, ये हमें करना ही चाहिए, क्योंकि ये हम अपने लिए तो कर ही रहे हैं, जब तक जिएंगे हम तो इसका लाभ उठाएंगे ही, बाद में हमारी जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो इसका लाभ उठाएंगी।

श्रोताओं, एक बार फिर स्वागत है आपका कार्यक्रम नमस्ते बरेली में। और ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के बरेली केंद्र से। जहां हैं आप वहां हैं हम, ओनली ऑन 100.9।

फोर एफएम पर। श्रोताओं, कल 21 जून को हम सभी लोगों ने सेलिब्रेट किया है, जी हाँ, विश्व योग दिवस। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर स्टेडियम में 3,200 लोगों ने एक साथ किया योग, जिले भर में लगाए गए शिविर और योग से निरोगी जीवन का दिया संदेश, साथ ही किया सामूहिक योगाभ्यास। योग दिवस पर एनसीसी कैडेट्स ने किया प्राणायाम। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर एनसीसी कैंडिडेट यूपी गर्ल्स बटालियन ने सीएटीसी 99 शिविर में कैंडिडेट्स के लिए विशेष योग एवं प्राणायाम सत्र का आयोजन किया गया। और साथ ही साथ जो हमारे सबसे ज़्यादा सीनियर सिटीजन हैं, उन्होंने भी अपना भरपूर सहयोग दिया योग को करने में। भारतीय संस्कृति की अमूल्य धरोहर योग और संगीत। अंतर्राष्ट्रीय संगीत दिवस व योग दिवस के अवसर पर श्री परिवार की ओर से योगा, प्राणायाम और ध्यान सप्ताह का भव्य समापन गोल्डन ग्रीन पार्क में किया गया। निगम कर्मियों ने योग कर स्वस्थ वृद्धावस्था का दिया संदेश। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर रविवार को नगर निगम की ओर से योग शिविर लगाया गया। महापौर डॉ. उमेश गौतम की अगुवाई में नगर आयुक्त संजीव कुमार मौर्य समेत अन्य विभागाध्यक्षों ने योग में शामिल होकर हर किसी को स्वस्थ जीवन जीने के लिए योग अपनाने की अपील की। योग स्थल पर स्वच्छ भारत मिशन की आईसीसी टीम द्वारा आकर्षक योग सेल्फी प्वाइंट, हस्ताक्षर पट और जागरूकता संदेशों से युक्त प्रदर्शनी एवं व्यवस्थित कार्यक्रम प्रबंधन प्रतिभागियों के आकर्षण का केंद्र रहे। और साथ ही साथ ये भी बताया गया कि जो दिन हमें मिले हैं, भाई एक जो हमारी उम्र है वो तो हमारे हाथ में नहीं होती कि हम कितने दिन जिएंगे, है ना, लेकिन जो दिन जिएंगे वो हम अच्छे से जिएंगे। होता क्या है कि हम बहुत सी चीज़ों की तो हम लोगों ने बिना बात टेंशन ले रखी है, कुछ चीज़ें तो हमारे जीवन में होती ही नहीं है जिन्हें हम सोचे बैठे होते हैं। अपनी टेंशन को भी मैनेज करना सीखिए। ये तो निश्चित बात है कि थोड़ी बहुत तो टेंशन ऑलरेडी अपने आप होती है कि हमें ये काम करना है या ये काम कैसे होगा, लेकिन उतनी टेंशन कीजिए कि जिसमें आपको ये ना सोचना पड़े कि अरे आप पता लगा कि बीपी, हाइपरटेंशन, डिप्रेशन इस चीज़ के शिकार हो जाएं। थोड़ा बहुत तो होता ही है सबके लिए, लेकिन ओवर बिल्कुल ना लें, क्योंकि उससे आप अपने साथ तो परेशान होते ही हैं, अपने शरीर से साथ साथ आप अपनी फैमिली को भी परेशान करते हैं। और सबसे बड़ी बात पता क्या है, टेंशन सबसे ज़्यादा उस व्यक्ति को होती है जो खाली रहता है। अपने आप को बिजी रखें, एक लक्ष्य निर्धारित करें, जो हमारे पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, एक लक्ष्य निर्धारित करें और वो अपने 24 घंटे उसको पाने में लगाएं, हर तरीके से अपना टाइम मैनेजमेंट करें। जब आपके पास अपने काम के लिए टाइम होगा ना, रूटीन होगा कि ये करना है, तो और बातों को सोचने के लिए आपके पास टाइम होगा ही नहीं। लेकिन आपको ये शेड्यूल जो करना पड़ेगा वो बहुत ऑनेस्टी के साथ इस टाइम टेबल को आपके लिए फॉलो करना होगा। बहुत से लोग कहते हैं कि मेरे पास इस काम के लिए मैं बहुत बिजी हूँ, टाइम नहीं बचता, और अगर उनसे सच पूछा जाए तो वो एक दो घंटे इस मोबाइल में आराम से दे सकते हैं, एक दिन के नहीं, रोज़ के दे सकते हैं। और फिर कहते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं बचता। क्यों नहीं बचता? क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, जो आपके ज़रूरी काम हैं उन्हें आप लिस्टेड कर ही नहीं रहे हैं, और जो आपको ज़रूरी काम नहीं है उसमें आप पूरा डिवोशन के साथ लगे हुए हैं, रील स्क्रॉल कर रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल ना करें। कभी कभी आपने ध्यान दिया होगा, अच्छा नहीं, ज़रा 5 मिनट मोबाइल देख रहे हैं कि मैसेज तो नहीं आए हैं, या कोई ग्रुप में कोई मैसेज तो नहीं पड़ा है, ऑफिशियल मैसेज है और अदर पर्सनल मैसेज है, लेकिन वो 5 मिनट देखने के चक्कर में आपके आधे घंटे निकल जाता है। कोशिश कीजिए कि उसको फटाफट देखे, वहीं का वहीं उसको रखिए, क्योंकि आप जब तक अपने ऊपर कंट्रोल नहीं करेंगे, आप अपनी लाइफ को भी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। अपने ऊपर कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। हम लोग दूसरों के ऊपर कंट्रोल करते हैं, नहीं, अपने ऊपर कंट्रोल कीजिए, दूसरे तो अपने आप कंट्रोल हो जाएंगे। अपने आप को सुधारिए, दूसरा अपने आप सुधर जाएगा, क्योंकि आपका पहला हक आपका अपने ऊपर है। और जो हमारे आजकल की जनरेशन है, बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, हम लोग कहते हैं कि ये दिन भर मोबाइल देखता है, बिना मोबाइल देखे खाना नहीं खाता है, नहीं खाती। सही बात तो ये है कि वो मदर फादर के हाथ में मोबाइल देखते हैं तो वही वो चीज़ फॉलो कर रहे हैं। बहुत से मदर फादर सोचते हैं अरे 2 मिनट दे दीजिए तो शांत हो जाएगा, हम अपना काम कर लेंगे। वो जो आपके 2 मिनट देते हैं ना आप उसे, आप उसकी ज़िंदगी के बहुत से मिनट

आप कर रहे होते हैं, क्योंकि फिर उसको ऐसी लत लगती है कि आपको वो देना ही पड़ जाता है। बच्चा आपको वहां तक पहुंचा देता है कि आपको वो देना ही पड़ जाएगा। उसे शुरू में ही मत दीजिए, कोशिश कीजिए उसे और बातों में एंगेज कीजिए। जब ये नहीं था तब भी तो बच्चे रहते थे, तो उस चीज को आप अपने घर में इस तरीके का माहौल बनाइए किताबें पढ़ने का। लेकिन इस मोबाइल से तो खास तौर से बच्चों की दूरी बेहद बना के रखिए, क्योंकि इससे उनकी आईज पर अभी से ही असर पड़ रहा है।

और श्रोताओं, अब बड़ी शहर की अहम खबरें। फिजिक्स के सवालों ने उलझाया, केमिस्ट्री बायोलॉजी रही आसान। 3 घंटे 15 मिनट की परीक्षा में पूछे गए 180 सवाल और 10,644 अभ्यर्थियों ने दिया नीट। आंखों में चिकित्सक का बनने का सपना लिए रविवार को जिले के 24 केंद्रों पर 10,644 परीक्षार्थियों ने नीट दिया। और साथ ही साथ गर्मी का सितम जारी है, 26 जून को राहत मिलने के हैं आसार। जिले में गर्मी का सितम जारी है, जिससे जनजीवन प्रभावित हो रहा है। रविवार को अधिकतम तापमान 38.6 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। गर्मी से बेहाल लोग खुद को तरोताजा रखने के लिए ठंडे पेय पदार्थों और शीतल जल का सहारा लेते दिखे। जो लोग किसी जरूरी कार्य से घर से बाहर निकले तो उन्हें भीषण गर्मी से बचने के लिए पेड़ों की छाया या दुकान के शेड के नीचे कुछ देर रुक रुक कर अपना सफर तय करना पड़ा। जी बिल्कुल, और ये जो बदलाव अब होगा, ये 26 जून से मौसम में बदलाव आ सकता है। उस दिन आंधी के साथ साथ बूंदाबांदी होने की भी संभावना है, जिससे लोगों को कुछ राहत गर्मी से मिलेगी। और जैसा कि अभी हमने आपसे थोड़ी देर पहले बात की थी कि आज हम मना रहे हैं विश्व वर्षा वन दिवस। देश का पहला कार्बन निगेटिव छावनी बरेली सोख रहा 60,000 टन कार्बन। जी, द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट ने जमीन के नीचे व ऊपर किए अध्ययन के बाद जारी की रिपोर्ट। और ग्रीन बेल्ट कूड़ा निस्तारण व पानी के शोधन पर काम किए जाने से मिली है ये अहम सफलता। अन्य छावनी के लिए भी मॉडल बनाए हमारा बरेली कैंट। बरेली कैंट क्षेत्र के कार्बन निगेटिव छावनी बनने के अन्य शहरों व छावनी क्षेत्र में मॉडल के रूप में प्रस्तुत करने की योजना बनाई जा रही है। इसके लिए प्रदेश सरकार की ओर से प्रदेश के अन्य बड़े छावनी बोर्ड लखनऊ, कानपुर और मेरठ में भी इस तरह का इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट और TERI आधारित कार्बन स्टॉक मूल्यांकन शुरू करने पर विचार किया जा रहा है। इस दिशा में स्मार्ट सिटी और सोलर सिटी की पहल पहले से बरेली समेत 17 नगर निगमों को सोलर सिटी के रूप में विकसित करने के साथ चल रही है। पुराने ये ऐसा कैसे संभव हो सका है वो हम आपको जरूर बताएंगे। सुनिए ध्यान से, वर्षों पुराने वृक्षों को संजोने और कूड़ा प्रबंधन में उत्कृष्ट प्रयास कर बरेली छावनी परिषद ने पर्यावरण संरक्षण में अहम सफलता अर्जित की है। छावनी परिषद बरेली देश का पहला कार्बन निगेटिव छावनी बन गया है। कितनी बड़ी उपलब्धि की बात है ये बरेली कैंट के लिए और साथ ही हमारे जिला बरेली के लिए। TERI द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट के विज्ञानियों ने छावनी क्षेत्र पर हर वर्ष 60,000 टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर कार्बन सोखने की क्षमता कार्बन सिंक का दावा किया है। इसके पीछे क्षेत्र में घने जंगल, विशाल हरित पट्टियां, ग्रीन बेल्ट, वेस्ट टू एनर्जी प्लांट से हर दिन 35 से 40 टन कचरे से प्रतिदिन ग्रीन एनर्जी, बिजली और बायो CNG का उत्पादन कर इसे कार्बन न्यूट्रल से आगे ले जाकर निगेटिव श्रेणी में लाते हैं। जल संरक्षण और STP यानी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाकर सीवर और नालों के पानी को शोधित किया जा रहा है। टेरी की रिपोर्ट के अनुसार छावनी के पूरे इकोसिस्टम का वैज्ञानिक मूल्यांकन किया गया है और विज्ञानियों की टीम ने जमीन के ऊपर और नीचे मौजूद बायोमास और मिट्टी के नमूनों की जांच की। पाया कि मिट्टी और घने वृक्षों की उच्च कार्बन सोखने की क्षमता के कारण ये क्षेत्र सालाना 60,000 टन कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण से कम करता है। ये मात्रा छावनी द्वारा किए जाने वाले कुल कार्बन उत्सर्जन से कहीं अधिक है, जो इसे कार्बन नेगेटिव बनाती है। और साथ ही छावनी परिषद के CEO डॉक्टर तनु जैन के अनुसार नगर निगम और आसपास के क्षेत्रों से जो प्रदूषण

प्रदूषित पानी नदियों या तालाबों की ओर से जाता है उसे शुद्ध करने के लिए कैंट बोर्ड ने 6 MLT क्षमता का सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट STP लगाया है, जिससे जलाशयों और नदियों के पानी का शोधन हो रहा है। इससे छावनी क्षेत्र के सरोवर और सभी प्रमुख नालों के पानी को साफ किया जा रहा है। तो ये जो वृक्ष हैं, ये हमारे लिए कितने ज़रूरी हैं, ये तो अब आप समझ ही गए हैं। इसीलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमें ज़रूरत है वृक्ष यानी पेड़ पौधे लगाने की, ये तो अपनी आदत में शुमार कीजिए।

श्रोताओं, इसी के साथ कार्यक्रम नमस्ते बरेली आज का आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। आपका पत्र मिला में ईमेल के माध्यम से और आप अपने पत्रों के भी माध्यम से। इसी के साथ मुझे दीजिए अब अनुमति कार्यक्रम नमस्ते बरेली से। खुश रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए, साथ ही हमारे छोटे छोटे पेड़ पौधों को जरूर लगाते रहिए।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नमस्ते बरेली। हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 FM पर, और अब आप आनंद लेंगे लोकगीतों का। आज कलाकार हैं प्रतिभा पी दवे।

0: श्रोताओं, अभी आप आनंद ले रहे थे लोकगीतों का, और आज कलाकार थी प्रतिभा पी दवे। हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 FM पर, प्रातः के 9 बजे हैं और अब आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम सेहत की पाठशाला।
1: दीपमाला हॉस्पिटल के द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम सेहत की पाठशाला लाया दीपमाला।
2: बरेली शहर में गंभीर और अति गंभीर मरीजों की सांस बंद होने पर
3: अब विश्व स्तरीय चिकित्सीय सुविधाएं उपलब्ध हैं।
2: बरेली शहर का सबसे किफायती ICU अति गंभीर मरीजों के लिए विशेष आइसोलेशन ICU
4: दीपमाला हॉस्पिटल, निकट टेलीफोन एक्सचेंज, चौपला, बरेली।
2: हार्ट अटैक, ब्रेन हैमरेज, फालिज और जहर खाए मरीजों के आधुनिकतम इलाज की विशेष किफायती सुविधा क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट डॉक्टर सोमेश मेहरोत्रा के द्वारा।
3: इमरजेंसी सेवाओं के लिए हमारा मोबाइल नंबर
2: 9837000048।
5: सेहत की पाठशाला लाया दीपमाला, ये है कार्यक्रम और मेरे साथ मौजूद हैं दीपमाला अस्पताल के न्यूरो सर्जन डॉक्टर विकास गुप्ता। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
6: थैंक यू।
5: डॉक्टर साहब, एक समस्या है हमारे समाज में, लोगों को स्लिप डिस्क की समस्या हो जाती है, कमर में दर्द रहता है और कई तरह के मिथक इससे जुड़े हुए हैं, तो वाकई में डॉक्टरी भाषा में एक डॉक्टर होने के नाते आप क्या बताएंगे, स्लिप डिस्क और कमर के दर्द का आपस में क्या रिश्ता होता है?
6: देखिए, जनरली क्या होता है कि स्लिप डिस्क होती है, डिस्क है वो हमारी एक रीढ़ की जो हड्डी है, रीढ़ की हड्डी में जो हड्डियां हैं उनके बीच में एक कुशन दिया होता है
5: जी,
6: जिसको बोलते हैं डिस्क।
5: अच्छा।
6: उसका काम होता है कि जब मरीज चले या उस पर कोई वजन उठाए तो उनके बीच में हड्डियों पे जोर ना पड़े, उसका काम है गद्दे वाला।
5: अच्छा।
6: कि दोनों के बीच में कंप्रेशन ना पड़े, जनरल भाषा में हम बात करें
5: जी। जी,
6: होता क्या है कि एक एज के बाद 40-50 साल के बाद क्या होता है कि उसमें जो होता है पानी की मात्रा उस डिस्क में कम हो जाती है।
5: अच्छा।
6: डिस्क सूखने लगती है तो उसका जो कंप्रेशन का पावर है वो कम हो जाता है, जिससे वो शॉक एब्जॉर्ब करता है, वो चीजें कम हो जाती है। धीरे धीरे फिर क्या होता है, वो डिस्क जो है वो हड्डी के बाहर निकलना शुरू हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं स्लिप डिस्क बेसिक भाषा में, कि उसमें पानी की मात्रा कम हुई, डिस्क सूख गई। अब उसका काम था जो लोड के टाइम, जो शरीर पे वजन के टाइम उठाने के समय, मुड़ने के समय, चलने के समय
5: जी,
6: जो भार पड़ता था उसको प्रेशर नहीं आने देती थी हड्डियों पे, अब वो प्रेशर बढ़ गया।
5: अच्छा।
6: अब वो डिस्क निकलेगी और फिर क्या होता है, जहां से डिस्क निकलती है पीछे होती है हमारी सारी रगें होती हैं जो नीचे पैरों में आ रही हैं, कमर में आ रही हैं, तब वो जो डिस्क निकलती है फिर वो क्या करती है, उस रगों पे प्रेशर डालती है।
5: अच्छा, ये जो रीढ़ की हड्डी है, हम अगर समझने के लिए अपने श्रोताओं को बताना चाहें तो जिस तरह से शॉकर होता है, चाहे वो दोपहिया वाहन हो या चार पहिया वाहन हो, शॉकर का जो काम है किसी भी झटके को या किसी भी दबाव को बर्दाश्त करना और ऊपर का जो सिस्टम है, जो बैठी हुई सवारी है, उनको रिलैक्स में रखना।
6: बिल्कुल बिल्कुल सही एकदम उदाहरण है,
5: उसी तरह हमारी रीढ़ की हड्डी
6: का काम है। ये डिस्क का काम यही है कि शॉक एब्जॉर्बर, शॉकर वाला काम करती है।
5: जी जी, आपने बताया डॉक्टर साहब कि पानी सूख जाता है और जो गद्दी है वो कमजोर हो जाती है, बाहर की तरफ निकलने लगती है, तो ये एक शब्द इस्तेमाल करते हैं आप डॉक्टर लोग, L4 L5, ये क्या है और L से

0: मतलब होता है?
1: L4 L5 या L का मतलब होता है लंबर। ये बॉडी में हमारी पूरी रीढ़ की हड्डी जो है
0: जी,
1: वो कई रीजन में डिवाइड है। चार रीजन मेन हो गए हैं जिनका बोलते हैं सर्वाइकल, जिसको हम बोलते हैं जो सबसे गर्दन वाली है।
0: अच्छा।
1: फिर नीचे सर्वाइकल से शुरू होती है हमारी थोरेसिक या डोर्सल।
0: अच्छा।
1: जो होती है हमारे सीने से और जहाँ पे रिब्स होती है वहां तक होती है डोर्सल,
0: पसलियों तक।
1: पसलियों तक
0: जी जी।
1: उसके नीचे शुरू होती है लंबर।
0: अच्छा।
1: जो मेन हमारी बॉडी का वजन सब ऊपर से आके लंबर में आ जाता है। लंबर वो तो इंग्लिश वर्ड है जो हमने, तो उसकी को बोलते हैं एल शॉर्ट फॉर्म में।
0: अच्छा, अच्छा।
1: वो होती है पांच।
0: अच्छा।
1: L1 से लेके L5 तक।
0: अच्छा।
1: और फिर उसके नीचे होती है सैक्रम, जो एक इकट्ठी जो कूल्हे की हड्डी होती है उससे जुड़ी हुई, और उसके लास्ट में होती है कॉसिक्स।
0: अच्छा।
1: तो ये पांच रीजन में हमारी पूरी वर्टिब्रा डिवाइड है। तो मेन रीजन है जो एल वाला है वो लंबर होता है।
0: रीढ़ की हड्डी को पांच तरह से समझने के लिए डिवाइड किया गया है, और जो आपने बताया L4 L5 वाली स्ट्रक्चर है वो नीचे की कूल्हे की हड्डी से ऊपर का एरिया होता है, उसमें मात्र पांच हड्डियां होती हैं।
1: पांच हड्डियां होती हैं।
0: अब डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि जो L4 L5 कहा जाता है
1: जी,
0: वो कहाँ किस किस चीज़ में इन्वॉल्व होता है? क्या L4 L5 में ही दिक्कत होने की वजह से कमर में दर्द होता है?
1: हाँ, उसमें बेसिकली ये होता है कि अब कमर दर्द की बात करें तो कमर दर्द के कई रीजन हो जाते हैं, मतलब कई कारण हो सकते हैं।
0: जी जी।
1: एक डिस्क होगा जो जनरली हमारे कॉमन हो जाती है 50-60 साल के बाद। उसके अलावा क्या होता है, कभी कभी जो मांसपेशियां जिन कमर की हड्डी को जो रोक के रखती हैं, जिनको बोलते हैं लीगामेंट्स हैं, उनमें भी कभी लूजनेस आ जाती है, मतलब थोड़ा सा वो ढीले हो जाते हैं, जिसकी वजह से हड्डियां भी आगे पीछे हो जाती हैं
0: जी।
1: स्पोंडलोडिस्काइटिस या स्पोंडलाइटिस बोलते हैं उनको हम
0: जी।
1: तो उसमें क्या होता है कि हड्डियों को आगे पीछे मूवमेंट के होने की वजह से भी दर्द होता है। तो कमर दर्द का डिस्क भी एक रीजन हो गया, स्लिप डिस्क बोलते हैं।
0: अच्छा।
1: या फिर हड्डी में मूवमेंट हो गया उसकी वजह से भी हो जाता है
0: जी।
1: कभी कभी वजन बहुत ज्यादा हो जाता है, पोस्चर जो मतलब हमारे बैठने का तरीका एक साइड हो जाता है, उसकी वजह से प्रेशर आ जाता है, उसकी वजह से भी दर्द हो जाता है। मांसपेशियों में कभी कभी एक तरफ से सिकुड़न आ जाती है, स्पाज्म जिसे बोलते हैं, उसकी वजह से भी दर्द शुरू हो जाता है
0: जी।
1: तो ये कई रीजन हो जाते हैं कमर दर्द के बेसिकली
0: जी। डॉक्टर साहब, कमर दर्द की वजह तो आपने बता दी, स्लिप डिस्क के भी विषय में बता दिया, ये तय कैसे करते हैं आप? कौन सी जांचें कराते हैं जिनसे ये तय हो पाता है कि ये स्लिप डिस्क है, L4 L5 में दिक्कत है या कोई और वजह है?
1: हाँ, अब मैं इस पे बता दूं, जिससे L4 L5 एक कॉमन हो गया, मोस्ट कॉमनली जनरली L4 L5 या L5 S1 में डिस्क हो जाती है सबसे ज्यादा। डिस्क का वही
0: सुनने में आता है।
1: हाँ, सबसे ज्यादा यही होता है कि जनरली L4 L5 या L5 S1 दो लेवल के, लेकिन डिस्क उसके ऊपर भी हो सकती है।
0: अच्छा।
1: और नीचे भी हो सकती है, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ डिस्क वही होती है, बट ये कॉमन सबसे ज्यादा इन्हीं लेवल पे सिर्फ डिस्क होती है।
0: अच्छा।
1: इस वजह से होता है, बट कमर दर्द L3 L4 से भी हो सकता है, L2 L3 पे भी हो सकता है, L1 L2 पे भी हो सकता है।
0: अच्छा अच्छा, ये कहीं भी हो सकता है।
1: ये कहीं भी हो सकता है। ऊपर से जो हम सर्वाइकल बोलते हैं,
0: हाँ,
1: तो वहां भी सिर्फ डिस्क ही होती है, बट वो सर्वाइकल गर्दन वाले रीजन वाले
0: भी होती है,
1: तो वहां भी कंप्रेशन होता है, तो वहाँ हाथ पैरों में, हाथों में दर्द शुरू हो जाता है
0: जी जी।
1: ये नीचे आ गया क्योंकि नीचे का सिस्टम है, तो यहाँ पैरों में दर्द शुरू हो जाता है, कमर में।
0: सर्वाइकल
1: में चक्कर इसलिए आ जाता है क्योंकि वहां से ऊपर के हाथों के अलावा भी कई जो हमारे बैलेंस बनाने की भी चीजें होती हैं, उसकी वजह से भी आता है। बहुत से नर्व वहां पे और ज्यादा नसें होती हैं
0: जी,
1: तो उस लेवल के हिसाब से वो सिम्टम में वो लक्षण आ जाते हैं।
0: डॉक्टर विकास गुप्ता, आपसे मेरा प्रश्न ये है कि आप लोग कैसे ये तय कर पाते हैं आखिर समस्या कहाँ है? कौन सी जांचें हैं जो आपको मदद करती हैं ये तय कर पाने में कि बीमारी क्या है और कहाँ से संबंधित है?
1: उसका भी देखो कई चीज़ें, पहले तो हम करते हैं एक एग्जामिनेशन जिसे हम बोलते हैं, अपनी जांच करते हैं मरीज से बात करके, मरीज के सिम्टम से कि दर्द कहाँ पे है, उसको कहाँ तक जा रहा है, कमजोरी हाथ पैरों में कहाँ तक है, तो उससे हमें एक लेवल का आइडिया लग जाता है कि L2 पे, L3 पे, L4 पे हम उससे लगाते हैं। एक जो हमारी जांच होती है, फिर मरीज को चल के देखते हैं, मरीज के सारे एग्जामिन करते हैं, उससे हमें लगता है। फिर दूसरी जो हम एक इन्वेस्टिगेशन जो हर जगह हर कोई करा लेता है, MRI कराते हैं।
0: अच्छा।
1: MRI से हमें एक डिस्क किस लेवल पे निकली हुई है उसमें कंफर्म हो जाती है।
0: अच्छा।
1: जो हम टेस्ट करते हैं उसमें कंफर्म इतना नहीं होता, जो हम अपना जांच करते हैं मरीज की उसमें कभी कभी डाउट रहता है किस लेवल पे, लेकिन MRI से हमें कंफर्म हो जाती है कि किस लेवल पे डिस्क निकली हुई है।
0: अच्छा। MRI एक ऐसी जांच है जिससे आप ये निश्चित कर लेते हैं कि समस्या कहाँ है,
1: कहाँ है।
0: अब इलाज के विषय में भी हम जानना चाहेंगे आपसे।
1: अब इलाज उसमें ये हो जाता है, अब डिस्क में भी कई जगह होती है, एक हम जो बोलते हैं सीधा डिस्क है सेंट्रल होता है
0: जी।
1: एक होती है कि थोड़ा सा सेंट्रल में ना होके थोड़ा सा बाहर की साइड में डिस्क निकली हुई है, या एक होती बहुत बाहर निकली हुई है डिस्क, एक वो एक पूरा रीजन होता है, उसमें हम जैसे सेंट्रल, पैरासेंट्रल, लैटरल, कई कंडीशन में डिस्क स्लिप डिस्क होती है
0: जी।
1: उसी हिसाब से उसमें लक्षण चेंज हो जाते हैं।
0: अच्छा।
1: अब बहुत ज़्यादा सिल्फ डिस्क है और उसके बाद से जो जो जिसमें रगें निकल रही हैं वो कैनाल बोलते हैं हम, लंबर कैनाल जिसको बोलते हैं,

0: लेकिन वो ये ना कि जिससे रगें पास हो रही हैं एक रास्ता है वहां पे।
1: अच्छा।
0: अब कितना दबाव उस डिस्क ने डाला है उस बेसिस पे हम उसका ट्रीटमेंट असेसमेंट लगाते हैं कि मतलब करते हैं कि क्या करना होगा इसमें।
1: जी जी।
0: तो अब ज्यादा अगर बहुत ही ज्यादा कंप्रेशन है और जो रगों को बहुत ज्यादा दबाव हो गया तो फिर उसमें इलाज बचता है सर्जरी।
1: अच्छा।
0: जिसको हम कहते हैं डिस्केक्टमी या डिस्क को हम निकालते हैं।
1: क्या दवाइयों से भी ये ठीक होती है समस्या?
0: दवाइयों से ठीक हो सकती है अगर उसमें हमें करना होता है कि बहुत ज्यादा कंप्रेशन नहीं है, जो रगें हमारी उस रास्ते से पास हो रही हैं उनके लिए पूरा स्पेस है, रगों में बहुत ज्यादा कंप्रेशन नहीं है, थोड़ा है, तो उसमें हम कुछ एक्सरसाइज होती है मरीजों को, कुछ दवाइयां लिखते हैं, थोड़ा रेस्ट बोलते हैं, जिससे कि धीरे धीरे वो उसमें फर्क आ जाता है।
1: कई बार डॉक्टर साहब कमर में बेल्ट बनवा देते हैं आप लोग मरीज की?
0: हाँ, वो बेल्ट इसीलिए बनवाते हैं कि बहुत ज्यादा लोड ना पड़े, मरीज झुके ना।
1: जी।
0: क्योंकि जितना झुकेगा, ज्यादा वजन उठाएगा तो वो डिस्क और स्लिप होने के चांसेस बढ़ जाते हैं जितना लोड आएगा, इसलिए हम कहते हैं कि थोड़ा रेस्ट करें।
1: जी।
0: तो उससे फर्क आता है, तो कभी कहीं कई मरीजों में 60-70% में ऑलमोस्ट की फर्क आ जाता है अगर पूरा डिस्क में मतलब जो रगों की जो जगह है पूरी अगर दबी नहीं है।
1: जी। सर्जरी की बात आपने की डॉक्टर साहब, ऑपरेशन,
0: ऑपरेशन,
1: चूंकि ऑपरेशन या सर्जरी ऐसा नाम है जिसको सुन के ही घबराहट होने लगती है लोगों को, और वो भी रीढ़ की हड्डी की सर्जरी, कमर की सर्जरी, पता नहीं क्या भविष्य रहेगा, चल पाएंगे नहीं चल पाएंगे। आज तो सर्जरी में बहुत कुछ नया आ चुका है, किस तरह सर्जरी करते हैं आप?
0: देखिए, सर्जरी तो अब जैसे, हाँ जैसे बोल लो, एडवांसमेंट आ गया, अब तो रोबोटिक्स आ गया और बहुत से ज़्यादा नेविगेशन गाइडेड आ गए, तो चीज़ें में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आ गया। लेकिन एक बेसिक बात करी जाए तो डिस्क है, डिस्क को हमें निकालना है। अब उनके तरीके बदल गए, पहले हम खोल के चीरा लगा के करते थे, थोड़ा सा चीरा बड़ा लगता था, वो बेसिक था, ट्यूबलर डालते थे, एक ट्यूब एक आती थी छोटी सी ट्यूब डाल के निकालते थे।
1: जी।
0: उसके बाद आ गया एंडोस्कोप आया।
1: अच्छा।
0: फिर हम एंडोस्कोप से डालते थे और छोटा चीरा हो गया निकाल लेते थे।
1: जी।
0: अब आ गया रोबोट्स, आप मरीज के पास डॉक्टर सर्जन जाता ही नहीं, बाहर रोबोट्स पे काम करता, रोबोट्स में आर्म्स होती हैं जैसे हमारे हाथ हैं, उसमें 4-5 हाथ हैं, उनमें इंस्ट्रूमेंट पकड़ा दिए जाते हैं, दूर बैठ के पैनल पे सर्जन ऑपरेट करता है।
1: जी।
0: तो ये सब चीजें एडवांसमेंट हुई हैं।
1: जी।
0: लेकिन बेसिक चीज जो है कि वो डिपेंड करता है डिस्क किस लेवल पे है और कहाँ पे है।
1: जी जी।
0: अगर बहुत ज्यादा डिस्क बाहर निकली हुई है तो एंडोस्कोप से हो जाती है, जिसको बोलते हैं एक्सट्रूडेड डिस्क हमारी भाषा में, जिसके डिस्क पूरा ही निकल के बाहर आ गई, साइड में आ गई, एंडोस्कोप डाल के आप निकाल लोगे।
1: यानी दूरबीन के द्वारा ऑपरेशन जो कहा जाता है उसके बारे में आप बता रहे हैं?
0: जी, दूरबीन जो एंडोस्कोप जो बोले, हाँ बेसिकली वो दूरबीन, दूरबीन के, बट उसमें दोनों चीजों में फर्क आता है। ओपन सर्जरी में होता है कि अगर जो कैनाल जिसमें रगों की जगह है उसमें कई चीजें होती है, कभी डिस्क की वजह से होती है, और क्या होता है कि जब डिस्क बहुत लंबे समय से होती है वहां पे दर्द हो रहा होता है, जो हड्डियां आगे पीछे चल रही हैं उसकी वजह से आसपास की मांसपेशियां या जिनको लिगामेंट हम बोलते हैं वो भी मोटी हो जाती हैं, थिकनेस हो जाती है उसको मतलब रोकने के लिए कि मूवमेंट ना हो।
1: जी।
0: उन कंडीशन में क्या होता है कि इंडोस्कोप से हम उनको नहीं निकाल पाते हैं।
1: अच्छा।
0: उसमें हम सिर्फ डिस्क निकाल सकते हैं, जिसमें हम कभी लिगामेंट होते हैं वहाँ पे, फ्लैब हम बोलते हैं जिसको, वो भी हाइपरट्रॉफी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है।
1: अच्छा।
0: उन कंडीशन में हम ओपन सर्जरी ज़्यादा है वो प्रेफर करते हैं, वो एंडोस्कोपिक ज़्यादा, लेकिन एंडोस्कोपिक से लिमिटेड होता है, उसमें हमें विजन भी कम होता है।
1: जी।
0: एंडोस्कोपिक के कई ड्रॉबैक भी हैं, कई एडवांटेज भी हैं। तो एडवांटेजेस में हो जाते हैं कि छोटे चीरे से सिंपल सा डिस्क निकाल दिया, ड्रॉबैक ये हो जाता है छोटा सा, ड्रॉबैक मतलब कि उसके
1: नकारात्मक
0: पहलू हो जाते हैं कि उसमें छोटा सा एंडोस्कोप है तो उतनी जगह हमें दिखेगी।
1: जी जी।
0: तो हमें बहुत सी चीजें आसपास की नहीं दिखती हैं, तो हम उसमें फोकस डिस्क ही निकाल पाते हैं।
1: जी।
0: तो ये फर्क होता है, बाकी इलाज के वही तरीके, ओपन जो पुराना हमारा सिस्टम पुराना है उसमें ओपन में ही करते हैं।
1: जी, आपने बताया 70% लोग बिना ऑपरेशन के भी ठीक हो सकते हैं जिनको स्लिप डिस्क की समस्या या फिर कमर में दर्द जैसी समस्या है, मात्र 30% लोगों में ही ऑपरेशन की जरूरत होती है, और उसमें भी आपने कहा दो तरह के ऑपरेशन होते हैं, एक तो दूरबीन के द्वारा और एक खुला ऑपरेशन। सर, दोनों परिस्थितियों में कितने समय तक के लिए मरीज को अस्पताल में रहने की जरूरत पड़ती है?
0: दोनों में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, दूरबीन वाले में आप अगले दिन भी जा सकते हो, और सर्जरी वाले जो हम ओपन भी करते हैं उसमें भी कोई नहीं, हम एक दिन या दूसरे दिन उसमें भी मरीज घर जा सकता है।
1: अच्छा।
0: उसमें कुछ नहीं, दूसरे दिन से डिस्क एक बहुत छोटी सी सर्जरी होती है, इसमें बहुत कुछ घबराने वाला नहीं होता, सिंपल सा होता, जो रग है रग को हम साइड में करते हैं, अंदर से जो डिस्क निकली होती है उसमें छोटा सा चीरा देके, और जो भी बाहर निकला होता है उतना डिस्क निकाल के निकाल दिया जाता है, जिससे कंप्रेशन खत्म हो जाता है।
1: अच्छा।
0: तो इसमें बहुत बड़ा कुछ घबराने का नहीं, लोगों में रहता है कि डिस्क की होगी हम चल नहीं पाएंगे,
1: जी,
0: तो वो चीजें नहीं है, दूसरे दिन से मरीज चलना शुरू कर देता है।
1: अच्छा।
0: हाँ, तो वो सब कुछ भी घबराने वाला नहीं होता है।
1: जी, यानी बहुत रिस्की नहीं है ये कह सकते।
0: और सर्जरी के छोटे मोटे रिस्क होते हैं, वो कभी 0.1% किसी 2% में वो होते हैं जनरली, वरना कोई ऐसा कोई मेजर रिस्क नहीं है।
1: जी जी। अच्छा, ऑपरेशन हो गया उसके बाद भी क्या

0: किसी इलाज की किसी तरह की दवाइयों की जरूरत रह जाती है
1: जी? कुछ दिन तक, एक हफ्ते तक कुछ हम एंटीबायोटिक्स वगैरह चलाते हैं, कुछ दवाइयां देते हैं जिससे कि जब तक घाव सूख जाता है।
0: अच्छा।
1: घाव सूखने के बाद फिर टांके कट जाते हैं 10-12 दिन में, उसके बाद फिर कुछ दवाइयों की जरूरत नहीं रहती है।
0: बड़ी महत्वपूर्ण बात है डॉक्टर साहब, चूंकि स्लिप डिस्क या कमर का दर्द एक ऐसी समस्या है जो आदमी को बेचैन करी रहती है, ना रात को नींद आती है ना सुकून मिलता है। आपने बड़ी महत्वपूर्ण बातें बताई हैं, चलते चलते क्या खास संदेश है आपका उन लोगों के लिए जो डिस्क स्लिप की समस्या से या फिर कमर के दर्द से परेशान है, तड़प रहे हैं?
1: देखिए उस, मैं सबसे पहली चीज़ यही बोलूँगा कि थोड़ा सा हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए लोगों को। ज़्यादातर डिस्क में क्या होता है कि जो लोग वर्कआउट करने जिम में जा रहे होते हैं, आज की ये यंग जनरेशन की बात कर रहा हूँ, वो ज़्यादा लोड उठाते हैं बिना किसी ट्रेनर के उठाते हैं, उससे क्या होता है बहुत ज़्यादा कंप्रेशन मतलब प्रेशर आता है हमारी उसके ऊपर, बहुत दबाव आता है रीढ़ की हड्डी पे, उसकी वजह से भी वो स्लिप डिस्क होगी। दूसरा चीज़ है वजन बढ़ जाना, उसकी वजह से भी स्लिप डिस्क होगी, जिनको हम अब कंट्रोल कर सकते हैं। तो बेसिकली ये कि थोड़ा वजन कम किया जाए, थोड़ा एक्टिव रहा जाए, तो इन चीज़ों में हम बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर सकते हैं
0: जी। आपकी लापरवाही समस्याओं की वजह होती है और आपकी जागरूकता आपको समस्याओं से बचाती है। डॉक्टर विकास गुप्ता जो कि न्यूरोसर्जन है, उन्होंने आपको बता दिया है श्रोताओं किस तरह स्लिप डिस्क और कमर दर्द से आप अपने आप को बचा सकते हैं। तो जागरूक रहिए और सुनते रहिए हमारा कार्यक्रम सेहत की पाठशाला लाया दीपमाला।
2: आप सुन रहे थे दीपमाला हॉस्पिटल के द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम सेहत की पाठशाला लाया दीपमाला।
3: श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम, हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 FM पर। अब आप सुनेंगे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रमों को, रिले करेंगे मुंबई केंद्र से।

इस अंतराल के बाद आप सभी का कार्यक्रम चित्रलोक में एक बार फिर से स्वागत है। आइए अब आपको सुनवाते हैं साधना सरगम और उदित नारायण की आवाजों में क्यों हो गया ना। इस फिल्म का गीत जावेद अख्तर के बोल, शंकर एहसान लॉय का संगीत।

0: एक बेटी की यादों में उसके पिता
1: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर, एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है, उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
0: सदाशिव अमरापुरकर।

0: यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
1: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था, तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक है।
0: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
1: हम लोग बंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा, रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी, और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
0: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: और इसी के साथ आज का चित्रलोक कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। दीजिए आज्ञा पूजा नारायणिया को, नमस्कार।
3: हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 FM पर। श्रोताओं, अब आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम जान है तो जहान है।
4: लीजिए सुनिए फोकस नेत्रालय बरेली द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम जान है तो जहान है। फोकस नेत्रालय, जहां विश्व की सबसे आधुनिक अमेरिकन फेको मशीन से मोतियाबिंद का ऑपरेशन किया जाता है, जो आयुष्मान के अंतर्गत फ्री में होता है। आंख में पड़ने वाले सभी प्रकार के देशी या विदेशी लेंस की सुविधा उपलब्ध। पर्दे, काला पानी, नासूर, पलकबंदी के इलाज की सुविधा। हर माह के आखिरी बृहस्पतिवार को रेटिना का क्लिनिक होता है, जिसमें पर्दे की जटिल समस्याओं का उपचार किया जाता है। फोकस नेत्रालय, राजेंद्र नगर, निकट डेलापीर तालाब, बरेली। डायल करें 9068805050। मोबाइल नंबर पुनः सुने 90 68 80 50 50।
5: बहनों भाइयों, कीजिए स्वीकार रविंद्र कुमार मिश्र का सप्रेम नमस्कार। जान है तो जहान है कार्यक्रम में आज उपस्थित हैं फिर से डॉक्टर कनुप्रिया अग्रवाल जी।
6: दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर कनुप्रिया, डायरेक्टर एंड कंसल्टेंट फोकस नेत्रालय आई हॉस्पिटल बरेली से।
5: डॉक्टर कनुप्रिया अग्रवाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब, मैंने आज अनुमान लगा लिया है कि आज जो विषय है नेत्रदान के बारे में है, और कुछ चर्चा होगी मोतियाबिंद के बारे में।
6: आज आपको एक किस्से के साथ में इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। कुछ समय पहले एक व्यक्ति आए मेरे पास में, बिल्कुल भी आंखों से दिखाई नहीं देता था। जब मैंने उनकी जांच करी तो मैंने पाया कि उनकी आंख की काली पुतली सफेद हो गई है, बाकी पीछे का लेंस, आंख में जेल होता है जिसको विट्रियस कहते हैं, वो आंख का पर्दा जिसको रेटिना कहते हैं, वो सब लगभग मोटे तौर से सही था। लेकिन उनकी सिर्फ और सिर्फ आंख की काली पुतली खराब हो गई थी चोट लगने की वजह से बहुत समय पहले, और उसकी वजह से जब काली पुतली सफ़ेद हो गई थी तो वो देख नहीं पा रहे थे। तो ये इस स्थिति के बाद मैंने सोचा कि हमारे आसपास कोई भी आई बैंक नहीं है और एक आई बैंक की शुरुआत किया जाए। तो आज की चर्चा हम आई बैंक के ऊपर करेंगे कि आई बैंक क्या है और उससे क्या फ़ायदे हो सकते हैं। तो आई बैंक क्या है? जैसे कि आप सबको पता है, बैंक में क्या करते हैं, बैंक में हम अपने पैसे जो हैं वो जोड़ कर रखते हैं, उनको संभाल कर रखा जाता है, उससे जो है हम लोन ले सकते हैं, उससे हम जोड़ते हैं उसको, आगे चल के किसी कामों में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आई बैंक होता है। तो आई बैंक में करते क्या हैं हम? आई बैंक में आँख को प्रिजर्व करके रखते हैं ताकि हम उन लोगों के लिए इस्तेमाल कर सकें जिन लोगों की आंख की पुतली खराब हो गई है। आप लोगों ने इस बारे में सुना होगा कि किडनी का ट्रांसप्लांट हुआ है, इस बारे में आपने ज़रूर सुना होगा। आपने ये भी सुना होगा कि लेंस का ट्रांसप्लांट, जो आंख में पड़ने वाला लेंस है उसका भी, वो भी बदला जाता है। इसी तरीके से आंख का एक और अंग जिसको हम बदल सकते हैं वो है कॉर्निया। कॉर्निया मतलब जब आप आँख को देखेंगे तो दो हिस्से होते हैं, एक सफ़ेद हिस्सा होता है, एक काला हिस्सा होता है। इस काले हिस्से को कहते हैं कॉर्निया, और कॉर्निया की सफ़ेदी की वजह से रोशनी ना आना हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ा कारण है। और इस कॉर्निया का इलाज, सफ़ेदी का इलाज कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कॉर्निया ट्रांसप्लांट है, यानी कि कॉर्निया का प्रत्यारोपण, यानी कॉर्निया को बदलना।
5: डॉक्टर साहब, हमारे जहन में एक सवाल उठता है, हमारे श्रोता भी आपसे पूछना चाहेंगे कि ये जो

0: कॉर्निया ब्लाइंडनेस है, तो इससे हिंदुस्तान में कितने लोग पीड़ित हैं ये हमारे श्रोताओं को जरूर बताएं।
1: हिंदुस्तान में लगभग 4.8 मिलियन लोग को अंधापन है, जो कि प्रिवेंटेबल है, यानी कि बचाया जा सकता है, जिसका मुख्य कारण मोतियाबिंद है। उसके बाद इस 4.8 मिलियन लोगों में से 1.3 मिलियन, यानी लगभग लगभग 1.25 मिलियन लोग ऐसे हैं जो कि कॉर्नियल ब्लाइंडनेस से पीड़ित है। कॉर्नियल ब्लाइंडनेस मतलब पुतली के खराब होने की वजह से आँख में रोशनी कम होना। ये रोशनी कम होने का कारण ये जो है ये प्रिवेंटेबल नहीं है, यानी कि ये किसी भी दवाई से, किसी भी और उपचार से सही नहीं हो सकता है, तो इसका प्रत्यारोपण ही किया जाता है। तो ऐसे हमारे देश में लगभग लगभग 1.25 मिलियन लोग इफेक्टेड हैं। और आँख में ट्रांसप्लांट अपने देश में मात्र 50 से 60 हज़ार हो पा रहे हैं साल में। वो इसलिए हो पा रहे हैं इतने क्योंकि लोग अपने देहांत के उपरांत अपनी आंखें डोनेट करने में झिझकते हैं। वो ये सोचते हैं कि आंख की, शरीर की बनावट खराब होगी। बहुत सारे लोग जो चाहते भी हैं वो जागरूक नहीं हैं ये समझने के लिए कि हमारा आंख को दे सकते हैं। आंख किसी और के, हमारी आंख, हमारी कॉर्निया किसी और की कॉर्निया में लगाई जा सकती है और वो इंसान आपकी आंखों से अपनी दुनिया संवार सकता है। आपके जाने के बाद भी आपकी आंखें जीवित रहेंगी और वो आपकी आंखों से दूसरा व्यक्ति देख पाएगा। तो कॉर्निया बैंक जो है वो देहांत के बाद जो लोग अपनी कॉर्निया को डोनेट कर देते हैं उनको संभाल के रखता है, फिर उन लोगों को बुलाता है जिनको कॉर्नियल ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है, और सही सारी जांचें सही होने के बाद कॉर्नियल प्रत्यारोपण होता है।
0: डॉक्टर साहब, आंखें दान करने के लिए क्या कोई उम्र होती है? परिवार के लोग दान कर सकते हैं, स्त्री या पुरुष? जी, इस बारे में जरूर बताइए हमारे श्रोताओं को।
1: किसी भी उम्र में और किसी भी लिंग में, मतलब चाहे बच्चा हो चाहे 100 वर्ष का बुजुर्ग हो, अगर उसकी आंख स्वस्थ है तो वो नेत्रदान कर सकता है। चाहे उसको चश्मा लगा हो, चाहे उसका मोतियाबिंद का ऑपरेशन हो चुका हो, चाहे उसको मधुमेह यानी डायबिटीज़ की बीमारी हो, चाहे उसे हाइपरटेंशन हो या उसको हार्ट का कोई बीमारी से पीड़ित हो, तो भी वो अपनी आँखों को दान कर सकता है। पहले सर्जरी हो चुकी हो चाहे आँखों की, चाहे वो मोतियाबिंद की सर्जरी हो चुकी हो, चाहे वो लेसिक सर्जरी हो चुकी हो, तो भी वो नेत्रदान कर सकता है। यदि किसी व्यक्ति का रेटिना या ऑप्टिक नर्व की समस्या है जिसकी वजह से उसकी आँख में रोशनी नहीं है लेकिन उसकी कॉर्निया स्वस्थ है, तो भी वे व्यक्ति आँख को दान कर सकता है, कॉर्निया दान कर सकता है।
0: डॉक्टर साहब, ऐसी कौन कौन सी बीमारी हैं जो होने पर आंख काम नहीं करती है, वो आंखें बेकार हो जाती हैं?
1: कौन दान नहीं कर सकता? कभी कभी कुछ कुछ ऐसे शरीर के रोग होते हैं जिनकी वजह से नेत्रदान स्वीकार नहीं किया जा सकता है, और इस तरीके के रोग हैं जैसे कि HIV एड्स, या फिर हेपेटाइटिस बी या सी, रेबीज, सेप्टिसीमिया, ल्यूकीमिया, या फिर मेनिनजाइटिस, दिमागी रूप से क्या कहते हैं जो व्यक्ति ठीक नहीं होते हैं और जिनको ICU में बहुत लंबे समय तक जो रहते हैं, उन लोगों का नेत्रदान नहीं हो सकता है। तो ऐसे कुछ ही लोग हैं जिनका नेत्रदान नहीं हो सकता है, लेकिन ज्यादातर सारे लोग।
0: डॉक्टर कनुप्रिया जी, आंख कौन कौन दान कर सकता है? बच्चे, बूढ़े, या कोई खास उम्र होती है, या स्त्री या पुरुष? जी,
1: किसी भी उम्र में, किसी भी, कोई भी लिंग हो, चाहे बच्चा हो चाहे बुजुर्ग हो, वो नेत्रदान कर सकता है।
0: डॉक्टर साहब, एक्सीडेंट में अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो क्या उसकी आंख किसी के काम आ सकती है?
1: आपने सही सवाल किया रविंद्र जी। चाहे एक्सीडेंट की वजह से मृत्यु हुई हो या क्या कहते हैं कोई और कारण की वजह से मृत्यु हुई हो जिसमें आंख की बनावट सही है और कॉर्निया सही है, तो हमारा नेत्रदान हो सकता है।
0: डॉक्टर साहब, समाज में कुछ रीति रिवाज भी होते हैं, उनके बारे में आप क्या कहेंगी?
1: कुछ रीति रिवाजों में बहुत अजीब अजीब सी भ्रांतियां हैं, जैसे कि अगले जन्म में आँख नहीं मिलेगी, या फिर क्या कहते हैं शरीर की बनावट खराब हो जाती है तो शरीर पूरा होना चाहिए क्रिया करने के लिए। तो इस तरीके की भ्रांतियों से दूर रहें। आपका आँख किसी और की आँखों को रोशनी दिखा सकता है, इससे बड़ा दान और कोई नहीं हो सकता है। तो आप अपनी आँखों को क्या कहते हैं उन लोगों के लिए दान जरूर करें जो कि क्या कहते हैं जिनको आंखों की या कॉर्निया की प्रॉब्लम्स हैं और वो नहीं देख पा।
0: डॉक्टर कनुप्रिया अग्रवाल जी, नेत्र

0: बैंक की क्या सुविधा आपके नेत्रालय में है? जी ये जरूर हमारे श्रोताओं को बताइए, इससे हमारे श्रोता अवगत होना चाहेंगे।
1: ये सुविधा फोकस नेत्रालय में जल्दी ही शुरू हो जाएगी और आप अपने आप को रजिस्टर करा सकते हैं। वो लोग भी रजिस्टर करा सकते हैं जो कि प्लेज लेते हैं, यानी कि वो सोचते हैं कि हम आँख को दान करेंगे। वो अपने साथ में अपने रिश्तेदारों को लाकर अपनी आँख की डोनेशन का प्लेज कर सकते हैं, और वो लोग जिनकी आँखों को कॉर्निया ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है वो लोग भी आके अपने आप को रजिस्टर करा सकते हैं, ताकि जब हमारे पास में पुतली हो तो हम उन लोगों की आँख में ट्रांसप्लांट कर सकें।
0: बहनों भाइयों, आप सोच रहे होंगे कि दान कैसे होता है, भाई दान करते हैं कपड़े का दान करते हैं, अन्न का दान करते हैं, तो ये आंख का दान कैसे होता है?
1: बहुत लोग ये पूछते हैं कि आई डोनेशन होता कैसे है। तो जब किसी व्यक्ति का देहांत होता है तो परिवार आई बैंक को इन्फॉर्म करते हैं। ये इन्फॉर्मेशन फौरन ही होना चाहिए, क्योंकि आई डोनेशन जो है या पूरे प्रोसेस जो है वो देहांत के बाद 6 घंटे के भीतर भीतर हो जाना चाहिए, तभी आँख प्रिजर्व होके दूसरी जगह ट्रांसप्लांट होनी चाहिए। अस्पताल से एक ट्रेंड टीम आपके घर पे पहुँचती है, जो कि बहुत ही कायदे से और स्टेराइल तरीके से लगभग 15 से 20 मिनट में आपकी आँख में जो काली पुतली, जिसको कॉर्निया कहते हैं, उसको निकाल लेती है। हम समझते हैं कि ये समय बहुत ही मुश्किल होता है हर परिवार के लिए, लेकिन और उस समय माहौल नहीं होता है कई बारी, लेकिन ये भी समझना आपको ज़रूरी है कि अपनी ज़िंदगी में अगर हम किसी के लिए कुछ छोड़कर जाते हैं तो उससे बड़ा और कोई चीज़ नहीं होती है। कुछ लोग अपनी ज़िंदगी में दान करते हैं, कुछ लोग अपनी ज़िंदगी में यादें छोड़ते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो रोशनी को छोड़कर जाते हैं। सोचिए, आप जिस दुनिया में हैं, आपके बाद भी आपकी आँखों से अगर कोई माँ अपने बच्चे को देख पाती है या कोई बुजुर्ग अपने परिवार को देख पाता है सिर्फ आपकी वजह से, तो इससे बड़ा दान कोई भी नहीं हो सकता है। तो मैं आप सब श्रोताओं से निवेदन करूंगी कि आई डोनेशन के बारे में जानें, आई बैंकिंग के बारे में जानें, अपने परिवार से बात करें, अपनी इच्छा उनके साथ रखें, उनकी इच्छाओं को जानें, क्योंकि जब कभी परिवार में कुछ ऐसा होता है तो हम एक दूसरे की इच्छाओं को पूरा कर पाएं, तो इससे बड़ी बात कोई नहीं होती है। एक लाइन से मैं इस बात को ख़त्म करना चाहूँगी, आँखें बंद होने के बाद भी किसी की दुनिया रोशन की जा सकती है। आई डोनेशन करें, अवेयरनेस बढ़ाएं और किसी की ज़िंदगी में रोशनी बनकर वापस आएं।
0: श्रोताओं, कुछ याद आ गया, आँख से देखोगे तो खुश पाओगे, दिल से पूछोगे तो दर्द का सैलाब हूँ मैं, अगर रख सको तो एक निशानी हूँ मैं, खो दो तो सिर्फ एक कहानी हूँ मैं, अगर आँख दान दोगे तो किसी के लिए उजाला है जीवन में।
2: फोकस नेत्रालय, जहां विश्व की सबसे आधुनिक अमेरिकन फेको मशीन से मोतियाबिंद का ऑपरेशन किया जाता है, जो आयुष्मान के अंतर्गत फ्री में होता है। आंख में पड़ने वाले सभी प्रकार के देशी या विदेशी लेंस की सुविधा उपलब्ध, पर्दे, काला पानी, नासूर, पलकबंदी के इलाज की सुविधा। हर माह के आखिरी बृहस्पतिवार को रेटिना का क्लिनिक होता है, जिसमें पर्दे की जटिल समस्याओं का उपचार किया जाता है। फोकस नेत्रालय, राजेंद्र नगर, निकट डेलापीर तालाब, बरेली। डायल करें 9068805050। मोबाइल नंबर पुनः सुने 90 68 80 50 50।
0: डॉक्टर कृपया अग्रवाल जी, कुछ धारणाएं अंधविश्वास की गर्मी में ऑपरेशन आंखों का नहीं कराना चाहिए, मोतियाबिंद पक जाए तब ऑपरेशन होना चाहिए, ये भ्रांतियां हैं, तो ये भ्रांतियां आज दूर कीजिए हमारे श्रोताओं की।
3: मैं डॉक्टर कनुप्रिया अग्रवाल, फोकस नेत्रालय, आंखों के अस्पताल बरेली से आज आपके साथ कुछ धारणाएं और अंधविश्वास जो आंखों से जुड़े हुए हैं आपको जागरूक करने के लिए कुछ बातें करना चाहूंगी और कहना चाहूंगी।
4: अच्छा, फिर ये धारणाएं के बारे में, अंधविश्वास के बारे में पहले बता दीजिए, मोतियाबिंद के बारे में, आंख के बारे में, ताकि रोशनी, क्या क्या सावधानियां। जी,
3: सबसे बड़ा जो अंधविश्वास है वो एक ये है कि गर्मी में मोतियाबिंद का ऑपरेशन नहीं किया जा सकता है। बहुत सारे लोग जो है, अब क्योंकि गर्मियां आने वाली हैं, तो वो ये सोचते हैं कि गर्मियों में मोतियाबिंद का ऑपरेशन नहीं किया जा सकता है, और वो इससे बचते हैं, और इससे क्या होता है कि उनका मोतियाबिंद पकने लगता है और आँख में समस्याएं आने लगती हैं, उसकी वजह से समलवाई उतर आती है, आँख का प्रेशर उतर आता है, आँख में रोशनी खत्म होने लगती है। तो ये एक बहुत बड़ा अंधविश्वास है कि गर्मी में मोतियाबिंद का ऑपरेशन नहीं किया

0: जा सकता है। आजकल जमाना बदल गया है, नए जमाने में नए तरीके से दूरबीन विधि से, जिसको फेको विधि कहते हैं या आम भाषा में लेजर भी कहते हैं, ऐसे समय में मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ हम लोग फोकस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मोतियाबिंद का ऑपरेशन कर रहे हैं, जिसमें कोई चीरा नहीं लगता, कोई टाके नहीं लगते हैं, कोई इंजेक्शन की जरूरत नहीं होती है, सही समय पे अगर आप कराते हैं पट्टी की जरूरत नहीं होती और उसी दिन छुट्टी हो जाती है।
1: डॉक्टर साहब, के फोकस नेत्रालय में क्या ये सारी सुविधाएं हैं?
0: जी बिल्कुल, फोकस नेत्रालय में ये सारी सुविधाएं हैं और फोकस नेत्रालय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ऑपरेशन हो रहा है। और इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो हमारे रोहिलखंड मंडल में पहली बार ये मशीनें आई हैं जिनसे जो है मोतियाबिंद का ऑपरेशन हो रहा है, और इन ऑपरेशनों में हमें उसी दिन छुट्टी मिल जाती है और गर्मी सर्दी बरसात इन सबका, धूप का या किसी चीज का कोई परहेज नहीं है। सही समय जरूरी है कि आप अपना ऑपरेशन मोतियाबिंद अगर है आंख में और मोतियाबिंद की वजह से आपकी आंख में रोशनी कम है, तो आप अपना दूरबीन विधि से अपना आपका ऑपरेशन सही समय पे करवाएं। तो सबसे पहले मैं फिर से बात ये कहूंगी कि गर्मी में मोतियाबिंद के ऑपरेशन कराने का कोई परहेज नहीं है और आप मोतियाबिंद का ऑपरेशन का मौसम से कोई ताल्लुकात नहीं है, किसी भी मौसम में सही समय पे आप मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराएं।
1: डॉक्टर साहब, पसीना आता है गर्मियों में तो बार बार नहाना भी पड़ेगा, तो क्या इससे भी कुछ फर्क पड़ता है या आराम से?
0: आंख में वही, जैसे मैंने आपको समझाया कि मोतियाबिंद का ऑपरेशन में बिल्कुल भी इस चीज का फर्क नहीं है कि आप जो है क्या कहते हैं बार बार अगर नहाना पड़ेगा, तो ये दूरबीन विधि में आप गर्दन से नीचे रोज नहा सकते हैं। आप चेहरे को, तौलिए को पानी से, साफ पानी से निचोड़ के तौलिए से चेहरे को पोछिए, आंख को साफ करिए, सर को साफ कर सकते हैं और गर्दन से नीचे आप रोज नहा सकते हैं।
1: डॉक्टर साहब, नहाते वक्त थोड़ा ये भी ध्यान रखें कि पानी ज्यादा ना खर्च हो। ये बताइए कि ज्यादा लोग पानी फैलाते हैं तो पानी की समस्या भी आ सकती है ना, तो भविष्य में अपनी पीढ़ी के लिए जल को ही बचाना है, क्या कहेंगे आप?
0: नहीं बिल्कुल, ये बात तो बहुत ही जरूरी है कि हमें इस बात का भी ख्याल रखना है और अपने बच्चों को इस बात के लिए भी शिक्षित करना है कि हम जो है क्या कहते हैं पानी का बचाव करें, ताकि क्या कहते हैं हमारे आगे चलकर जो समस्याएं, जीरो वाटर सिटीज जिनको कहा जा रहा है, जैसे बैंगलोर है वो जीरो वाटर सिटी में आ गया है। अभी मैंने रिसेंटली पढ़ा था कि पानी ज्यादा उन्होंने इस्तेमाल करने की वजह से एक घर को ₹1,000 का फाइन तक देना पड़ा था। तो ये सारी समस्याएं भी आने लगी हैं, तो इन हमें इस बात का ध्यान रखना है कि बरेली जीरो वाटर सिटी में कभी भी ना आए और बरेली और आसपास का क्षेत्र जो है वो अभी से ही हमारे बच्चे शिक्षित हो जाएं कि हमें उचित पानी का इस्तेमाल करना है।
1: डॉक्टर साहब, मोतियाबिंद ऑपरेशन करने के बाद जो आज का गर्मी है तो लोग स्विमिंग भी करना चाहेंगे, तैरना चाहते हैं, तो क्या तैर सकते हैं?
0: मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद मैंने जैसे आपको बताया कि आप गर्दन से नीचे जरूर नहा सकते हैं, लेकिन किसी भी पानी में सर से ऐसे डुबकी अभी मात्र एक हफ्ते के लिए नहीं करना है, ठीक है? एक हफ्ते के लिए, जैसे पुराने जमाने में जब चीरे वाला ऑपरेशन होता था तो आप जो है एक महीने के लिए नहाने के लिए परहेजी होती थी, लेकिन ये परहेजी क्या कहते हैं दूरबीन वाले ऑपरेशन में नहीं है। ये परहेजी दूरबीन वाले ऑपरेशन में सिर्फ एक हफ्ते के लिए है, जो कि एक महीने के लिए चीरे वाले में हुआ करती थी। एक महीने के लिए आपको ऐसे कोई गतिविधि नहीं करनी है कि आपको तालाबों में नहाना है या पूल्स में नहाना है या बाथटब में नहाना है, लेकिन आप गर्दन से नीचे आराम से रोज नहा सकते हैं, उसमें कोई परहेज नहीं है। आप चाहे सुबह शाम भी नहाइए, उससे कोई दिक्कत नहीं है।
1: गर्मियों में डॉक्टर साहब लू भी चलती है, हवाएं भी चलती है, उसमें फिर धूल में मिट्टी आ जाते हैं, कण आ जाते हैं, तो क्या क्या सावधानी रखें, ये भी तो जरूरी होगा।
0: हाँ, इस बात का आपको ध्यान रखना है, हम जो है ऑपरेशन के बाद एक काले रंग का चश्मा दिया जाता है, ये काले रंग का चश्मा जो है ये गॉगल्स नहीं होते हैं, ये काले रंग के चश्मे की बनावट अलग तरीके से होती है, जो कि ऊपर से और किनारे से आंख को ढक कर रखती है। तो इसकी वजह से क्या कहते हैं हमारी आंख किसी भी प्रकार के धूल मिट्टी हवा से सुरक्षित रहती है और ये चश्मा हमको लगाना रहता है। ये चश्मा सिर्फ और सिर्फ सोते समय हटता है, तो इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप जो है क्या कहते हैं कहीं पे भी जा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आप आराम से सब जगह जा सकते हैं। और दूसरे दिन से ही मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद अपने आप 95% तक आप अपने सारे काम जो है वो गतिविधि कर सकते हैं।
1: डॉक्टर साहब, जैसे ही पता चला कि आपसे पता चला या किसी ने बता दिया कि मोतियाबिंद है, दिखाई नहीं दे रहा ठीक से, तो लोग कहते हैं अभी छुट्टी नहीं मिल रही है, तो इसके लिए वो कितना समय लगता है, कितने दिन उनको आराम करना पड़ेगा, ये हमारे श्रोताओं को बताइए।
0: तो बहुत सारे लोग मोतियाबिंद का ऑपरेशन

0: इसलिए भी नहीं कराते हैं क्योंकि उस समय उनको छुट्टी नहीं मिल रही है, या उस समय उनको, या किसी ना, हर परिवार में कोई ना कोई ऐसा चलता ही है कि वो चीजें भी जरूरी होती हैं। लेकिन हमें जो है समय अपने लिए खुद ही निकालना पड़ेगा, हमें अपने लिए खुद ही जागरूक होना पड़ेगा, हमें अपनी सेहत का, अपनी आंखों का ध्यान खुद ही रखना पड़ेगा। तो समय निकालना तो हमारे को अपने लिए जरूरी है, और इसीलिए आंख के ऑपरेशन में मात्र 2 से 3 दिन की छुट्टी लेनी पड़ती है। फ्राइडे वाले दिन आप अपना ऑपरेशन कराएं, सैटरडे संडे वैसे ही छुट्टी होती है, सैटरडे संडे के बाद सोमवार से आप अपना ऑफिस दोबारा से ज्वाइन कर सकते हैं। तो मात्र 2 दिन में ही आप जो है अपना काम जो है, जैसे कि मैंने बताया कि दूसरे दिन से ही आप 95% यानी 95% अपना काम जो है कर सकते हैं। तो इसलिए ऐसी आपको बहुत लंबी 1 महीने की छुट्टी लेने की जरूरत नहीं है, और अपना आप मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराए और आप अपना ऑफिस का भी काम कर रहे हैं और सब काम कर सकते हैं।
1: इस समय आप सुन रहे हैं फोकस नेत्रालय बरेली द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम जान है तो जहान है। आज इस कार्यक्रम में मेहमान हैं वरिष्ठ नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कनुप्रिया अग्रवाल। डॉक्टर कनुप्रिया अग्रवाल जी, मान लीजिए किसी को ऑफिस में काम करने की लगन तो है, पर कंप्यूटर पर या फाइल पर सही से देख नहीं पा रहे हैं, उसे पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो कार्य तो समय पर पूरा ही नहीं होगा। ये भी तो आंखों की समस्या है ना, तो ये समस्या कैसे दूर होगी?
0: जो काम हम 10 मिनट में कर सकते हैं अगर हमें दिखाई दे रहा है, और अगर हमें नहीं दिखाई दे रहा है तो उसी काम को, समस्या को, वो ही काम को हमें करने में क्या कहते हैं कम से कम आधा घंटा लग जाएगा। तो इसलिए जब हमें नहीं दिखाई दे रहा है तो परेशानियां होती हैं, चाहे ऑफिस में हो चाहे कहीं पे भी। 2 दिन की छुट्टी जो आप लेंगे वो काम ऑपरेशन के बाद आप 2 घंटे में कर पाएंगे। तो इसलिए क्या कहते हैं सही समय पे ऑपरेशन करा के अपने आंखों की रोशनी को तेज करिए, क्योंकि शरीर में बहुत सारे उम्र के बदलाव है। मोतियाबिंद शरीर का एक उम्र का बदलाव है। जैसे मोतियाबिंद आप इस तरीके से समझिए कि मोतियाबिंद जो है बालों के, जो बाल होते हैं वो जिन प्रोटीन से बना है उसी प्रोटीन से बालों का एक गुच्छा है। जैसे हम ऊन का गोला बनाते हैं ना, उसी तरीके से ऊन के गोले की तरीके से जैसे धागे लिपटे हुए होते हैं, उसी तरीके से आंख में जो है वो प्रोटीन के धागे से लिपटे हुए हैं। ये धागे जो है एक एक करके उम्र के साथ साथ में सफेद होते रहते हैं, और जैसे ये उम्र के साथ सफेद होते हैं, हमारे बाल सफेद होते हैं, झुर्रियां आती हैं, शरीर में ताकत कम होती है, थकान जल्दी हो जाती है, उसी तरीके से एक ये बदलाव आंख का है कि इस समय हमारे आंख में मोतियाबिंद बनने लगता है।
1: डॉक्टर साहब, आंखों में मोतियाबिंद है, सोचते हैं कि ऑपरेशन करा लेंगे, सर्दी में करा लेंगे, अभी रहने दें, गर्मी में ना कराएं, और ये आंख का ऑपरेशन ना कराने पर क्या और भी समस्या आगे बढ़ सकती है आंख की रोशनी के लिए?
0: हाँ बिल्कुल, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आंख में जो लेंस है हमारा वो एक क्या कहते हैं ऊन के गुल्ले की तरीके से है जिसपे धागे हमारे लिपटे हुए हैं। तो वही धागे हमारे शुरुआत में 2 धागे सफेद हुए, फिर 4 धागे सफेद हुए, फिर 10 धागे सफेद हुए, ऐसे करते करते सारे धागे सफेद होने लगते हैं और लेंस पूरा सफेद हो जाता है। जब लेंस पूरा सफेद हो जाता है तो हम उसको कहते हैं कि हमारे आंख में मोतियाबिंद पक गया है। लेकिन जब आंख में मोतियाबिंद पक जाता है तो बहुत सारी समस्याएं आने लगती हैं। समस्याएं कॉम्प्लिकेटेड कैटरेक्ट इसको हम कहते हैं कि आंख में मोतियाबिंद अब कॉम्प्लिकेट कर गया है, मतलब अब उसमें समस्याएं पैदा होंगी। क्या समस्याएं पैदा होंगी? मोतियाबिंद जो पक जाता है किसी भी समय फूट सकता है। जब मोतियाबिंद फूटता है तो रोशनी आने की संभावनाएं कम हो जाती हैं, काला पानी उतर आता है, आंख का प्रेशर बढ़ जाता है। आंख का प्रेशर बढ़ जाता है तब हमारे आंख में बहुत सारी समस्याएं आने लगती हैं, और रोशनी ऐसे समय में जब मोतियाबिंद बिल्कुल पक चुका है तो ऑपरेशन के बाद कितनी रोशनी आएगी, नहीं आएगी, कैसी आएगी, ये कहना मुश्किल हो जाता है। इसलिए कम पके मोतिये पे ही या कच्चे मोतिये पे ही दूरबीन का ऑपरेशन ज्यादा सक्सेसफुल है। जब हमारा मोतियाबिंद पक जाता है तो दूरबीन विधि से, आजकल क्योंकि हम लोग मोतियाबिंद का ऑपरेशन कर रहे हैं तो दूरबीन विधि में पावर का इस्तेमाल करना पड़ता है। ये पावर हमें ज्यादा देनी पड़ती है, जितना मोतिया पका हुआ होगा उतनी पावर देनी पड़ेगी। जितनी हमें पावर देनी पड़ेगी आंख के और जो हिस्से हैं उस पावर से उनको नुकसान होता है। तो हमें क्या कहते हैं आंख को नुकसान होने लगता है, इसलिए हमें जो है सही समय पे कम पावर में ऑपरेशन कराना चाहिए। आंख के और लेंस के चारों तरफ जो झिल्ली होती है वो सड़ने लगती है, और कई बार ये स्थिति भी आ जाती है कि लेंस ज्यादा पक के जो है वो अपनी जगह से गिर जाता है, और ऑपरेशन के बाद लेंस पड़ने की संभावनाएं भी कम हो जाती है।
2: डॉक्टर साहब, ये ब्लड प्रेशर बढ़ता है घटता है, तो आपने भी प्रेशर की बात की आंखों में, ये कौन सा प्रेशर?

0: करता है, ये क्या हानि पहुंचाता है, ये बताइए हमारे श्रोताओं को।
1: आपने बिल्कुल सही एक बार ये बात कही, जिस तरीके से शरीर में ब्लड प्रेशर होता है कि खून का एक दौरान होता है, खून का दौरान होना जरूरी है। अगर खून का दौरान बीपी लो हो गया और खून का दौरान या बीपी एकदम हाई हो गया तो खून की नली फटेगी। बीपी एकदम लो हो गया तो खून का प्रभाव उस क्षेत्र में कम हो जाएगा, और खून का प्रभाव किसी भी क्षेत्र में कम हो या ज्यादा हो उससे उस क्षेत्र का परमानेंट डैमेज हो जाता है। इसी तरीके से आंख जो है वो शरीर से थोड़ी सी भिन्न है, और आंख में एक प्रेशर होता है। जैसे गुब्बारे में, आप इस चीज को समझे, जैसे गुब्बारे में आप हवा भरते हैं तो गुब्बारा जो है तो फूलता रहता है ना, जितनी हवा भरेंगे उतना बड़ा होता चला जाएगा, और एक समय ऐसा आएगा कि जब बहुत ज्यादा आप उसमें हवा भर देंगे तो गुब्बारा फट जाएगा। लेकिन आंख ऐसी नहीं है, आंख में प्रेशर बढ़ता रहेगा तो आंख तो बड़ी छोटी नहीं होंगी, आंख के अंदर की जो नस है वो खराब होने लगेगी, वो सड़ने लगेगी। तो इसलिए जब मोतियाबिंद पकता है, समलवाई उतरती है, तो आंख का प्रेशर बढ़ने लगता है और इससे हमारी आंख की नस सूखने लगती है और ऑपरेशन के बाद रोशनी बहुत कम आती है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमारा मोतियाबिंद किसी भी समय पके ना, और पकने से पहले ही ऑपरेशन सही समय पे हो जाए।
0: डॉक्टर साहब, अगर मोतियाबिंद पका के कराएंगे तो क्या बहुत नुकसान हो सकते हैं?
1: हाँ, वही मैंने, यही तो मैं आपको समझा रही हूँ।
0: कैसे कैसे नुकसान होंगे जी?
1: यही मैं आपको समझा रही हूँ कि आंख में मोतियाबिंद पकता है तो कॉम्प्लिकेटेड कैटरेक्ट बनता है, समलवाई उतरती है, झिल्ली सड़ने लगती है, हमें बहुत ज्यादा पावर का इस्तेमाल करना पड़ता है ऑपरेशन के दौरान, रोशनी भी ऐसी स्थिति में कम आती है, और कभी कभी स्थिति ऐसी भी बन जाती है कि मोतियाबिंद के ऑपरेशन में लेंस नहीं पड़ पाता है, लेंस नहीं पड़ पाएगा तो आंख में रोशनी नहीं आएगी। तो इसलिए शरीर के जितने भी बदलाव है, आंख में मोतियाबिंद एक ऐसा बदलाव है जिसमें क्या कहते हैं, हमारी रोशनी जो है वो पूरी की पूरी वापस वैसे ही आ जाती है। तो आपको जब एक ऐसी सुविधा, एक ऐसा ऑपरेशन है आपके पास में जिससे आप उसी तरीके से देख सकते हैं जिस तरीके से आप पहले देखा जा सकता था, तो क्यों अंधेरे में जीना? आपको दूर जब आप चंद्रमा को देखेंगे तो वो चंद्रमा आपको एक नहीं, दो दो, तीन तीन, चार चार उसके चारों तरफ दिखाई देते हैं, और ये भी क्या कहते हैं, एक मोतियाबिंद का ही लक्षण है। तो अगर आपको ये सारे लक्षण दिखाई दे रहे हैं, या आपके दादी बाबा कह रहे हैं कि चंद्रमा एक ना होकर तीन चार हमारे मेरे को दिखाई दे रहे हैं, तो फिर आप इस बात को समझ सकते हैं कि इनको मोतियाबिंद की शुरुआत हो गई है, और आप फोकस नेत्रालय उनको लेकर आ सकते हैं।
2: इस समय आप सुन रहे हैं फोकस नेत्रालय बरेली द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम जान है तो जहान है। आज इस कार्यक्रम में मेहमान हैं वरिष्ठ नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कनुप्रिया अग्रवाल।
0: डॉक्टर साहब, जैसे कि आज का विषय है अंधविश्वास और धारणाएं और उनका जो सही तथ्य है, डॉक्टर पास नहीं जाना पड़ेगा।
1: सबसे बड़ा अंधविश्वास है कि मोतियाबिंद ड्रॉप से ठीक हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है, ड्रॉप से ठीक नहीं होता है। उसके लिए एक छोटी सी मात्र 10 मिनट की ऑपरेशन होता है, उस ऑपरेशन को सही समय पे कराएं। दूसरा एक बहुत बड़ा अंधविश्वास है कि गर्मियों में मोतियाबिंद का ऑपरेशन नहीं होता है। ये सब परहेज उस जमाने के थे जिस जमाने में चीरा लगता था, टाके लगते थे, टाके पक जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब ना चीरा लग रहा है ना टाके लग रहे हैं, दूरबीन द्वारा बिना पट्टी बिना इंजेक्शन के ऑपरेशन हो रहा है, और फोकस में तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ऑपरेशन हो रहा है। तो आप जो है गर्मी में मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराएं, चाहे सर्दी में कराएं, चाहे बरसातों में कराएं, मौसम से और मोतियाबिंद के ऑपरेशन से कोई रिलेशन नहीं है।
0: सब मौसम का लोग आनंद लें और खूब घूमें, और लेकिन जब आंखें स्वस्थ होंगी तो बहुत अच्छा लगेगा। तो आखिर में आप हमारे श्रोताओं से क्या कहेंगे, रोशनी सही रहे, क्या खाएं गर्मियों में खास तौर पे?
1: मोतियाबिंद और आंख स्वस्थ रहे, मोतियाबिंद ना बने, इसके लिए क्या कहते हैं, हमारी आंख में विटामिन सी और विटामिन ई जो जिनमें ज्यादा होते हैं, रिच फूड्स होते हैं, जैसे कि अब गर्मियों में आएगा आम, तरबूज, लाल, पीले और हरी फल सब्जियां जितनी भी हैं उनमें बहुत अच्छा मात्रा में होता है। संतरे हैं, मौसमी हैं, और नारंगियां हैं, नींबू है ना, ये सारे फल हैं। फिर तरबूज है, और क्या कहते हैं, काशी फल है, ये सब चीज़ें हमारी आंखों के लिए बहुत अच्छी होती हैं। स्मोकिंग अवॉइड करें, जो धूम्रपान करते हैं लोग, वो धूम्रपान से हमारी आंखों में मोतियाबिंद उन लोगों को जल्दी होता है। अपने डायबिटीज़ और बीपी को कंट्रोल करके रखें, क्योंकि जिन लोगों का डायबिटीज़ अनकंट्रोल्ड होती है उनको भी मोतियाबिंद के शिकार जल्दी होते हैं, या मोतियाबिंद उनकी आंखों में जल्दी पकता है। तो इसलिए इन सब बातों का ध्यान रखें, और अपने आंखों का और अपनी सेहत का ध्यान रखें, क्योंकि जीवन अनमोल है।

जान है तो जहान है कार्यक्रम समाप्त करने के लिए अपने दोस्त रविंद्र मिश्रा को अनुमति दीजिए। श्रोताओं नमस्कार। फोकस नेत्रालय, जहां विश्व की सबसे आधुनिक अमेरिकन फेको मशीन से मोतियाबिंद का ऑपरेशन किया जाता है, जो आयुष्मान के अंतर्गत फ्री में होता है। आंख में पड़ने वाले सभी प्रकार के देशी या विदेशी लेंस की सुविधा उपलब्ध। पर्दे, काला पानी, नासूर, पलकबंदी के इलाज की सुविधा। हर माह के आखिरी बृहस्पतिवार को रेटिना का क्लिनिक होता है, जिसमें पर्दे की जटिल समस्याओं का उपचार किया जाता है। फोकस नेत्रालय, राजेंद्र नगर, निकट डेलापीर तालाब, बरेली। डायल करें 9068805050। मोबाइल नंबर पुनः सुने 9068805050।

0: सुविधा उपलब्ध, पर्दे, काला पानी, नासूर, पलकबंदी के इलाज की सुविधा। हर माह के आखिरी बृहस्पतिवार को रेटिना का क्लिनिक होता है, जिसमें पर्दे की जटिल समस्याओं का उपचार किया जाता है। फोकस नेत्रालय, राजेंद्र नगर, निकट डेलापीर तालाब, बरेली। डायल करें 9068805050। मोबाइल नंबर पुनः सुने 9068805050। अभी आप सुन रहे थे फोकस नेत्रालय डेलापीर बरेली द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम जान है तो जहान है।
1: हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 FM पर। श्रोताओं, प्रातः के 10 बजने वाले हैं और अब आप सुनेंगे आपकी पसंद में अपनी पसंद के गीतों को।

श्रोताओं, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपकी पसंद में। और साथ ही कीजिए स्वीकार हमारा प्यार भरा नमस्कार। और पहला कमेंट आप सभी का हम तक पहुंचा है आज आपकी पसंद में, कस्बा पराडा जिला अंबाला हरियाणा से हैं रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका, मन्नत, गुरकीरत, गुरशब्द सिंह राहुल और इनके परिवार के सभी सदस्य व साथी इनके दोस्त। मोहल्ला हलवाइयां शेरकोट जिला बिजनौर से हैं मोहम्मद वक्कार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, साजदा रानी और हिना कौसर का। नगरिया कला बरेली से हैं मोहम्मद अकरम अंसारी और इनके परिवार के सभी सदस्य व साथ ही इनके दोस्त। जसपुर उत्तराखंड से हैं रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज रिफाकत, मोहम्मद रेहान, समरीन परवीन और माहिरा नूर का। पलानौर से हैं नरेंद्र शर्मा, किरण शर्मा, नितिन और मयंक शर्मा। छबिलपुर गुन्नौर से हैं हरवेश कश्यप, अर्जित कश्यप और दिव्यांश कश्यप। और ये कमेंट हमारे पास पहुंचा है आप सभी का। दीदार रेडियो श्रोता संघ बलराम गेट कासगंज से हैं एम असलम सैफी, जेबुनिशा बेगम, सद्दाम सैफी, सोनी सैफी, जाहिद सैफी और आबाद खान का। जिला मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से हैं मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक और बलवीर सिंह का। गंज डुंडवारा से हैं मोहम्मद कलीम अंसारी, जहीरा बेगम अंसारी, मोहम्मद अयान अंसारी, मोहम्मद उस्मान अंसारी। नागपुर महाराष्ट्र से हैं कमल सहाने, हाजी डर अफजल मलिक, संदीप मक्कड़। रामगढ़ कैंट झारखंड से हैं निप्पी सहाने और इनके परिवार के सभी सदस्य व साथ ही इनके दोस्त। ग्राम व पोस्ट हर हरपुर मटकरी जिला बरेली से हैं शाहरू नूर अंसारी, फरियाद हुसैन अंसारी, शकील अहमद इदरीसी, मोइन अंसारी, तस्लीम अंसारी और डीजे प्रधान का। सब्जी मंडी कस्बा उसावा वार्ड नंबर एक जिला बदायूं से हैं धर्मवीर कश्यप, उषा कश्यप, ध्यानपाल कश्यप, संजय कश्यप, अनमोल, अंश, करिश्मा और मुस्कान कश्यप का। ज्योति नगर नोखा राजस्थान से हैं पुखराज बड़गुजर, कैलाश मिस्त्री, गोवर्धन धरा, घनश्याम भार्गव, बाबू गौरी और हसन सिक्का का। मोताला महाराष्ट्र से हैं विजय सुल्लरकर, रतनमाला, कोका भिलाई छत्तीसगढ़ से हैं उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल। धमदा ग्राम सुखरी कला से हैं अमित जंघेल, शकुन, आरुषि, ओशिका, आदित्य और अंजलि जंघेल का। पाकुड़ झारखंड से हैं उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, किसु तासु, अर्णव आनंद और सत्यम आनंद। बोड़ागाछी पश्चिम बंगाल से हैं मुन्ना भगत और गुड्डी भगत। नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से हैं महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मीन देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी

ट्विंकल टिंपल मीनाक्षी निशा तुलसी और दिशा गोस्वामी का। राजधानी रायपुर से है नीलू मेघ नीलम, डॉक्टर वंदना कुमार और बिट्टू कुमार का। दोहरी तेरी वाला उत्तराखंड से है निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया और आयान बाबू। बागपत उत्तर प्रदेश से है संजय ढिंगिया, नमन ढिंगिया और अपार ढिंगिया का। पद्मा टाकिज नेपानगर मध्य प्रदेश से हैं सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर, कुशल, नीति शाह, सुरभि, अश्विन, मंगलाबेन और राजेंद्र जी शाह का। दुर्गा कॉलोनी हासी से हैं राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी और बब्बू डब्बू का। और ये कमेंट हमारे पास आया है आप सभी लोगों का। ढानकी रोड उमरखेड़ महाराष्ट्र से हैं भाई रज्जाक खान और शबाना बेगम। गांव फरासी जिला हिसार से हैं राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी और पुष्पेंद्र सिंह डूडी का। सादुल शहर राजस्थान से हैं राम कुमार रेवाड़ और चंद्रकला रेवाड़। आप सभी ने पसंद किया है फिल्म चोरी चोरी का ये गीत, जिसे गाया है लता मंगेशकर और मन्ना डे ने।

0: बूढ़े और जवान, 100 बात की 1 बात है सही। सिर्फ पैसे भेजने के लिए QR स्कैन करते हैं या पिन डालते हैं, पैसे मिलने के लिए नहीं।
1: RBI कहता है QR कोड स्कैन करते समय या पिन डालते समय थोड़ा ध्यान से।

रामपुर लिसनर क्लब से हैं आप सभी लोग नवाबुद्दीन, निजामुद्दीन, मोहम्मद जमालुद्दीन, सादिया, अक्सा और हम मादका। दही गांव नादुरा से हैं धोंडू भातुरकर, मंगला, विवेक कुमार भारती, प्रतीक्षा कोमल, समाधान भातुरकर। संत नगरी शेगांव से हैं शुभम राउत, कुमार रुद्र राउत। चंदौसी रोड चमनपुरा से हैं मुकेश गौतम, सुनील गौतम, अमन गौतम। बुद्धनगर खंडवा से हैं नदीम भाई, पैजोई से हैं राजू जी। प्राण तालाब डुमराव से हैं वली उल्लाह अंसारी, अस्मा नाज अंसारी और शबनम बानो। जेल रोड बक्सर से हैं राज एस डी अंसारी और फातिमा नाज। चमन पार्क दिल्ली से हैं सोनम और अदीबा। गढ़ी कोटाहा जिला पंचकूला हरियाणा से हैं सराजुद्दीन अंसारी, नसीवन बेगम, अक्रम अंसारी, शानिया अंसारी, मोहम्मद इलियास, मुशाहिद हुसैन, अक्सा अंसारी, आयशा अंसारी, उमर अंसारी और समीना अंसारी। पलेरा हाल टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से हैं राजेश कुमार अकेला, यशोदा यादव, राजीव यादव और संजीव यादव। सहारनपुर से हैं राधा नामदेव, अपर्णा नामदेव, अभिषेक नामदेव और हर्षित शर्मा। बीजना मुरादाबाद से हैं राजवीर सिंह यादव, कुणाल यादव, हर्ष यादव, मनीष, अंशिका, यूनुस खान और सोफिया खान। जलालाबाद वेस्ट से हैं सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल प्रिया, दिशानी और निमित आहूजा का। जिला मुरादाबाद ग्राम महेशपुर खेम से हैं तौफीक अहमद सिद्दीकी, अतीक अहमद सिद्दीकी, मोहम्मद दानिश सिद्दीकी। कृष्णा पार्क दिल्ली से हैं सुखविंदर सिंह जोड़ा, सिटी दीवाना। उन्हेल जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से हैं भैरूलाल वाकतरिया धाकड़, भोला वाकतरिया, प्रवीण, प्रियांश वाकतरिया और प्रतीक वाकतरिया का। चर डोगरी एपरिया से हैं जिला कबीरधाम छत्तीसगढ़ से दुर्गा राम साहू, अजय कुमार साहू, जय किशन साहू, श्रीमती कुमारी साहू, श्रीमती इंद्राणी माया साहू। रायपुर छत्तीसगढ़ से हैं विनोद मंडलकर, वीणा मंडलकर और विविधा मंडलकर। गांव हाड़ीखेड़ा जिला सिरसा हरियाणा से हैं राधेश्याम शर्मा, इंदिरा शर्मा और सार्थक शर्मा। आष्टी जिला जालना मराठवाड़ा से हैं सैयद यूनुस, सैयद नुमान, तनवीर मसरत, सैयद निजामुद्दीन, राम भाऊ तांदले। धोतर जोड़ा आष्टी से हैं दर्श सागुते, अनुष्का सागुते। पलारी छत्तीसगढ़ से हैं दिनेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन, पराग टेलर, पूरा राम देवांगन और कृष्णा देवांगन। गांव लोडडा जिला बागपत से हैं जगमोहन सिंह प्रजापत, श्रीमती मुनेश देवी, अर्जुन भारती, अंजलि, नितिन जगमोहन, सुधीर नूतन। भुवनेश्वरी देवी करावल नगर दिल्ली से हैं रामनाथ प्रजापति, श्रीमती सुमन देवी। कुतुब खाना सब्जी मंडी बरेली से हैं सुल्तान रजा, इकबाल रजा, जीशान रजा, अफजल रजा, मोनिश रजा, सादिक और इनके मम्मी पापा और इनके परिवार के सभी सदस्य व साथी इनके दोस्त। बहड़ी से हैं अंजुम भाई और खालिदा बेगम। कुंडलेश्वर वार्ड खंडवा से हैं योगेश गुजराती और अभय गुजराती। जिला मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से हैं मोहम्मद फरमान, सलमान, इरफान, इसरार और नरगिस खातून का। हिंगड़ी आलोट जिला रतलाम एमपी से हैं जगदीश धाकड़ नायमा, श्रीमती रंजूबाई धाकड़, युवराज सिंह धाकड़ और शिवांगी धाकड़। कस्बा मीरगंज बिजली घर से हैं आदर्श दिवाकर, लव दिवाकर, ओमेंद्रपुरी गोस्वामी, भाई कल्लू मिस्त्री। और सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से हैं टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप। कालका से हैं शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज, बिट्टा बजाज। ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंदशहर से हैं मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन अब्बासी, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान।

अब्बान अब्बासी और इनके परिवार के सभी सदस्य व साथी इनके दोस्त उत्तम नगर दिल्ली से हैं बोधराज खोरवाल, कमला रानी, गीतिका खोरवाल और भानु प्रकाश का। गांव खोखरा वाले श्री गंगानगर से है विनोद बारासा, विशाल बारासा, विकास रोशनी और शगुन बारासा। बड़ा बम चौक खंडवा से हैं ममता बमारकंडे, संजय बमारकंडे और बेबी किट्टू। धाड़ी नांदुरा महाराष्ट्र से हैं श्री कृष्ण बाठे, संदीप बाठे और अमूल्य बाठे। लाल कुर्ती रुड़की कैंट से हैं राजेश वर्मा, मंजू वर्मा, निशांत वर्मा, कौशिकी वर्मा, दीपाली वर्मा, युवान और आरके राजा का। जिला पटियाला पंजाब से हैं नाभा से आप लोग सोमदत्त, कैरव ज्योति, रानी कुरमंत कौर, मनु। रघुवीर नगर से हैं दिलावर खान, हसीना बानो, एलिजा नायाब। भोजपुर तक सहारनपुर से हैं मोहम्मद इंतजार, मोहम्मद जावेद, राहत अली, जाकिर हुसैन और वकील अहमद। आप सभी लोगों ने पसंद किया है ये गीत। फिल्म का नाम है हरियाली और रास्ता और इस गीत को गाया है लता मंगेशकर ने।

श्रोताओं, इस समय आप सुन रहे हैं आपकी पसंद में अपनी पसंद के गीतों को आकाशवाणी के बरेली केंद्र से, जहां हैं आप वहां हैं हम, ओनली ऑन 100.4 FM पर। और ये कमेंट हम तक पहुंचा है आप सभी लोगों का। गांधी चौक बाड़ में राजस्थान से हैं बबलेश पवार, डैनी पवार, मनीष पवार रामदेवरा से हैं, दिनेश चौहान डांगरी से हैं, बाबूराम जयपाल खलीफों की बावड़ी से हैं, खुदा बख्श खलीफा, जवाहरनगर दुर्ग से हैं आरसी कांबड़े, करुणा मीना अश्वनी और विपुल कांबड़े, शास्त्री नगर बीड शहर से हैं किशन सपकाल, आशा सपकाल, सोनिया सपकाल और विशाल सपकाल, मुजफ्फरपुर बिहार से हैं राजू कुमार, बिट्टू कुमार, अर्चना कुमारी, कल्पना कुमारी, मुन्नी कुमारी, चांदनी कुमारी, नंदनी कुमारी, और जिला अंबागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से हैं रिजवान खान, आयशा सबीहा, अनस और रेहान, बेरडी मध्य प्रदेश से हैं हुकुम करमरकर, सुनीता करमरकर, गांव मुरादगढ़ जिला करनाल हरियाणा से हैं रमेश कुमार कंबोज, पिंकी वंश व भुवेश कुमार कंबोज का, रावर करनाल से हैं विनोद लखनपाल, हजारीबाग झारखंड से हैं वीरेंद्र भगत, मालती भगत, विकास, जितेंद्र ऋषि और राहुल, झुमरी तलैया से हैं राजकुमार ठाकुर, बघेरा दुर्ग से हैं संतोष नामदेव, सार्थक समर्थ और शौर्य नामदेव का, चर डोगरी विपरिया जिला कबीरधाम छत्तीसगढ़ से हैं दुर्गाराम साहू, अजय कुमार साहू, जय किशन साहू, श्रीमती कुमारी साहू, श्रीमती इंद्राणी माया साहू, गुजरात गांधीग्राम से हैं प्रवीण सोनी, कलावती सोनी और जगदीश जौहरी, रानीगंज बंगाल से हैं रवि और इंदर, ग्राम रसुड़िया पाता तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ मध्य प्रदेश से हैं गोविंद वैष्णव दिव्या, सुमन कोमल परी, कृतिका रमेश चंद्र डागी, अलकनाथ मंदिर के पास सामने गंगवार बैग लाइन बरेली से हैं बेचेलाल गंगवार, गुड्डी देवी, प्रशांत देव, कैरेंद्र देव और इला देवी गंगवार, बर्फा देवी, सुनील यादव, संजय अग्रवाल, अश्विनी कुमार मौर्य, विनोद दीक्षित राज, महावीर कश्यप, रमेश चंद्र सैनी और गौतम राम का, उदयपुर से हैं नजीब खान, सबीहा खानम, जब्बार मोहब्बत मोहम्मद, फरीदा शबनम, अशरफ खान और मंजू निम्मी का, गणेशपुर गंजनवारा एटा उत्तर प्रदेश से हैं एम फारूक शेख, शमा परवीन शेख, सैमा फारूक, सरफराज शेख, गुलफराज शेख और बेबी मुस्कान का, शेरकोट बिजनौर से हैं नदीम बाकी, कलीम बाकी, अलीम बाकी, अजीम बाकी, अदीम अब्दुल और इनके परिवार के सभी सदस्य व साथी इनके दोस्त, छत्तीसगढ़ डोंगरगांव से हैं राष्ट्रपाल गजबिये, राधिका गजबिये, बेबी अनिष्का और तन्मय गजबिये का, पटियाली रोड गंजनवारा से हैं एम खलील कुरैशी, नुसरत बेगम, बेबी अरीबा, हबीबा, गांव खावरी अव्वाल से हैं चौधरी राजवीर सिंह और चौधरी अवन्या कांचव और इनके परिवार के सभी सदस्य व साथी इनके दोस्त। बन्ने बुजुर्ग परेरा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से हैं ब्रजेंद्र विश्वकर्मा, दाया देवी विश्वकर्मा, सोनाली विश्वकर्मा, सोनम और आशीष, ग्राम लोहेडी जिला महोबा बुंदेलखंड यूपी से हैं जयपाल यादव, इंद्रपाल यादव, राघवेंद्र अरविंद, रागिनी रिया रेणु, दिव्यांशी आराधना, रोनिका यादव, चंद्रेश कोहर और सुनील पाठक का, पीपरपारा पालचुवा मुंगेली छत्तीसगढ़ से हैं उत्तरा दिवाकर, परमेश्वरी दिवाकर, भानुप्रिया, योगिता, नितिन और वंशिका दिवाकर का, उड़ीसा से हैं नारायण प्रधान और उनके परिवार के सभी सदस्य व साथी इनके दोस्त, कस्बा उगहती से हैं देवेंद्र कुमार गुप्ता, धीरज कुमार गुप्ता, पंकज कुमार, प्रिंस कुमार, प्रशांत, कार्तिक गुप्ता और निर्भय गुप्ता का। आप सभी लोगों ने पसंद किया है जूली फिल्म का ये गीत। इस गीत को गाया है लता मंगेशकर और किशोर।

श्रोताओं, ये कमेंट हम तक पहुंचा है आप सभी लोगों का। छत्तीसगढ़ डोंगरगांव से हैं राष्ट्रपाल गजबिये, राधिका गजबिये, बेबी अनिष्का और तन्मय गजबिये का। पटियाली रोड गंजुंडवारा से हैं एम खलील कुरैशी, नुसरत बेगम, बेबी अरीबा हबीबा। गांव खावरी अव्वल से हैं चौधरी राजवीर सिंह, चौधरी अवन्या कांचव और इनके परिवार के सभी सदस्य व साथी इनके दोस्त। बन्ने बुजुर्ग पलेरा टिकमगढ़ मध्य प्रदेश से हैं ब्रजेंद्र विश्वकर्मा, तारादेवी विश्वकर्मा, सोनाली, सोनम और आशीष विश्वकर्मा का। चक 15 PS जिला श्री गंगानगर राजस्थान से हैं सर्वजीत सिंह जोसन, सर्वजोत कौर जोसन, गुरमन मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया से हैं आदर्श पाल सिंह जोसन और वैंकूवर कनाडा से हैं रोबिन सिंह जोसन। नंगलखेड़ा फगवाड़ा पंजाब से हैं बालकृष्ण शर्मा, प्रवीण शर्मा, मुनि शर्मा और राहुल शर्मा। गंज डुंडवारा से हैं आफ्ताब अंसारी, रियाज अंसारी, मोहम्मद कैफ, अनवर मास्टर, लुबना अंसारी और आलिया अंसारी। रघुनाथपुरा जिला श्री गंगानगर राजस्थान से हैं लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हिना, हर्षित और खुशी गोस्वामी। कुंभार गली श्रीरामपुर से हैं अशोक दले, सविता दले, अनिकेत दले, रोहिणी दले, ऋषिकेश, जीविका दले। पुनावले पुणे से हैं अजय सोनवने, करिश्मा सोनवने, अविका सोनवने और विशाखा सोनवने। जेल रोड दिल्ली से हैं लाल बाबू दीवाना, उमा राज, दिव्या भारती। बेताब रेडियो लिसनर्स क्लब बिहार से हैं वसीम अकरम बेबी, जोई और गुड़िया खातून का। प्रतिष्ठान रेडियो श्रोता संघ नेहरू चौक पैठड़ से हैं डॉक्टर सुरेश जाधव, अनीता जाधव, आरती पूजा, प्रसाद जाधव, सोनल जाधव, बेबी सिया और इनका समस्त जाधव परिवार। झज्जर हरियाणा से हैं बिट्टू भाटिया, रीटा भाटिया, रजत भाटिया और मयंक भाटिया। सांगली से हैं आप अल्ताफ हुजरे। कटरा चांदखा प्राण शहर बरेली से हैं जमुना प्रसाद मौर्य, किरण मौर्य, दृष्टि मौर्य और मानवी मौर्य। गांव हीरावली फजलका पंजाब से हैं सुभाष गोदारा, विमला गोदारा, इंदु पार्वती, हिमांशु और इनके परिवार के सभी सदस्य व साथी इनके दोस्त। छप्पर वाली मस्जिद गाजगंज से हैं मोहम्मद जाहिद अली सैफी, आबाद खान, मोहम्मद जुहान सैफी, लीबा मलिक। गनगोला दातागंज से हैं इसरत खान, शायरा बेगम, रहूब खान, सावरीन बेगम, शाहबाज खान, सैफ खान, ईशान खान, आजम खान और अरहान खान का। बनियापारा धमतरी छत्तीसगढ़ से हैं रामचंद्र माखीजा, काफिर भाई, सविता माखीजा, बेबी स्वाति, महेश कुमार कुकरेजा, संध्या कुकरेजा, माही, पूजा छुटकी, शरद कुमार डोंडवानी और इनके परिवार के सभी सदस्य व साथी इनके दोस्त। बाबा कुटी रायगढ़ से हैं शिव कुमार चौहान, संक्रांति चौहान, रितेश कुमार, राजेश्वरी चौहान, उत्कर्ष चौहान। भाटापारा छत्तीसगढ़ से हैं सोहन जोशी, श्रीमती अर्चना जोशी, हरमिंदर सिंह चावला, श्रीमती वानी चावला, लोकेश, पायल जोशी, बेबी वैदेही जोशी, बेबी हंसिका जोशी। अंकित अनूपपुर मध्य प्रदेश से हैं श्रीमती जयवंती केवर जी, खंडवा मध्य प्रदेश से हैं अब्दुल गफ्फार डाबर जी। सिद्ध बाबा भाटा पास छत्तीसगढ़ से हैं संतोष कुमार संतोषी, वैष्णवी वैष्णव, वैभव काना, शिवम वैष्णव। मालवा रेडियो श्रोता संघ तहसील आलोट जिला रतलाम MP से हैं कुंवर कृपाल सिंह, विक्रम सिंह, दिलीप सिंह, नरेंद्र सिंह, समस्त इनके परिवार के सभी सदस्य व साथी इनके दोस्त। भिलाई छत्तीसगढ़ से हैं मुकेश शर्मा, गौरव शर्मा और गरिमा शर्मा। कोल सिटी बरका काना से हैं अफजाल ताज, शाहीन सुल्ताना, सोनू तस्नीम, लिपि सानी, मोहम्मद अफजल मलिक।

एटा रोड गंजवारा से हैं बीपी गौतम, सरिता गौतम, एम कलीम शेख, डी एच बच्चन। लेवई छत्तीसगढ़ से हैं गुलाब दास मानिकपुरी, राजा दास मानिकपुरी, रानी मानिकपुरी। गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हैं हरदेव मीका, बलविंदर विरक, जैतेक विरक, मीका विरक। सनावत से हैं शेख मूसा मोहसिन, अशोक वर्मा, राजकुमार बोडाना। आदर्श नगर मलोट पंजाब से हैं राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, निवान शर्मा, सौरभ, शाइना और मैंडी शर्मा का। चंडीगढ़ से हैं आप सभी सतीश अनेजा और विमला अनेजा। भोजीपुरा बरेली से हैं हसमुख जी, हसन, समस, इनाया, शानूर, फलकनूर, ताज, मोहम्मद अबानूर और गुप्ता जी का। नलेश्वर नगर नरविल महाराष्ट्र से हैं पीएस नभाकर, निर्मला नभाकर, विशाल। मलकापुर से हैं सोपान ताड़े, नारायण इंगले और आशीष मुहेकर का। आप सभी ने पसंद किया है ये गीत। फिल्म का नाम है लव इन टोक्यो। इस गीत को गाया है लता मंगेशकर ने।

श्रोताओं, इस समय आपने ट्यून किया है 100.4 FM आकाशवाणी का बरेली केंद्र और सुन रहे हैं आप आपकी पसंद में अपनी पसंद के गीतों को। रामपुर रोड किला छावनी बरेली से हैं प्रदीप पाल और नमन, साथी हैं आरती, राधा, पिंकी, रिंकी, माला, गरीब भाई, श्री राम राठौर और इनके साथ के सभी लोग और सभी इनके दोस्त। कस्बा गुन्नौर यूपी से हैं फारूक अली खान, फैजी फराज, फरीन फरहान, फारिया ताहिरा। रायगढ़ छत्तीसगढ़ से हैं रोहित जयलक्ष्मी। पंचकूला सेक्टर 9 से हैं आप सभी लोग आशु चुग, अश्वनी चुग, गोविंद चुग, टोनी दीवान, लव दीवान और राधे ढिंगरा। प्रोफेसर कॉलोनी खंडवा से हैं आनंद जोशी, तनुजा जोशी, ध्रुवी जोशी और फाल्गुनी जोशी। बंगाली पंचा नागपुर से हैं प्रकाश रंभाड़े, भारती रंभाड़े, जाह्नवी रंभाड़े के साथ वैष्णवी और हर्षल रंभाड़े। कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से हैं ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय। दुविहा नेवादा जिला गाजीपुर से हैं प्रतीक राय, रोशनी राय और प्रांजल राय। पदमपुर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से हैं मेहर अरोड़ा, ममता अरोड़ा, कीर्ति अरोड़ा और भूमिका अरोड़ा का। शिवाजी नगर खंडवा से हैं राजेश सेन। राज पैलेस महुनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से हैं राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक आर्यन वर्मा। शिव मंदिर हकीकतपुरा मऊ से हैं मुन्ना भाई सोनकार, पिंकी सोनकार, आर्यन कृष्णा और पीहू सोनकार का। जमानिया गाजीपुर से हैं सुरेश जायसवाल, उर्मिला जायसवाल, दीपक और स्वाति जायसवाल का। मंसूरी रेडियो लिसनर्स क्लब बाजार रोड मुंगीसापुर से हैं मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरू निशा, शविस्ता मोहम्मद, नसीब पलक, लुबना और यश मंसूरी का। रामगंज खंडवा मध्य प्रदेश से हैं विजय सिंह मोहबिया, कविता मोहबिया, कुंडलेश्वर वार्ड खंडवा से हैं योगेश गुजराती। बरवट बकाल बुल्डाणा से हैं नारायण हागे, कमल हागे, दिव्या हागे और जय हागे। ग्राम पंचायत बठेना पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से हैं बलकर्ण वर्मा, अंजनी ज्योति वर्मा, प्रहलाद राजेंद्र वर्मा। गांव टोरोवाल जिला नवाशहर पंजाब से हैं गगनदीप थांदी, तृप्ता कुमार थांदी, प्रियंका, प्रशांत, प्रियम, बेबी वामिका और वाणी थांदी का। शाहू नगर यवतमाल से हैं राहुल मनवर, सरला मनवर, विशाल तथा चेतना मनवर का, रोशनी मनवर और बेबी प्रियांशी। स्योहारा जिला बिजनौर से आसिफ चौधरी, अराफत आदिब और कादिर चौधरी का। घिसू दिलवारे लक्ष्मी माधुरी, सोनाली भगवान, पुष्पा नेहा, एकता, अस्मिता, सौरभ, कुणाल दिवारे दिलवारे, आप सभी ने भेजा है ये कमेंट हमारे लिए। राजपुर मध्य प्रदेश से अनारकली बाजार जगराव पंजाब से हैं सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गाव्या मल्होत्रा, भाई सुच्चा सिंह पाठक, विनोद पुरी, जयपाल यादव और इनके परिवार के सभी सदस्य व साथी इनके दोस्त। वीरम गांव गुजरात से हैं अजीत भवसार, प्रमीला भवसार, भावेश सनी भवसार। राजमाता नगर बुलडाणा महाराष्ट्र से हैं नरेंद्र नरवाड़े, ज्योति नरवाड़े, आकांक्षा नरवाड़े, आकाश कुमार लगान।

छत्तीसगढ़ से हैं उत्तम कुमार बघेल, रुक्मणी बघेल, साहिल भारती बघेल। गांधीनगर गुजरात से हैं सुरेश राठौर, मंजुला राठौर, विशाल निशा। गांव बांडी वाला फाजिलका पंजाब से हैं ओम बगड़िया, क्रियांश बगड़िया, योगेश बगड़िया, रजत और बेबी गरिमा बगड़िया का। उदयपुर राजस्थान से हैं बाबू भाई, भारती देवी, रमेश नाचानी, विनीत नाचानी और मिथिल नाचानी। मनकारा मंदिर वीडियो कॉलोनी करगेना बरेली से हैं बेनी सिंह सागर, पन्नीलाल सागर, आशीष कुमार सागर, अमर सिंह, हितेश सागर, उर्वंटी, राजेश कुमार वर्मा, रूबी, एकता, दिव्या, रचना, ओमवती भारती, खनक, शगुन, सारांश, आयाश, अदिति वर्मा, शिवांश और प्रताप सिंह का। किशनगंज बिहार से हैं रविन्द्र मोहन दास और आशा देवी। जनकपुरी नई दिल्ली से हैं प्रदीप सलूजा, संगीता सलूजा और प्रथम सलूजा का। आजाद नगर लक्सर हरिद्वार उत्तराखंड से हैं मेहराज जहां, गुलाम साबिर रही और ताज मोहम्मद अंसारी। फरुखाबाद मोहल्ला साहबगंज चौराहा से हैं सुरेश चौरसिया, श्रीमती सरोज चौरसिया, सुबोध सलोनी, संजू लल्ला चौरसिया, बाबू शिवा शिवानी चौरसिया, योगेंद्र नायक कासगंजी। आगरा से हैं श्रीमती सुजाता, पंकज चौरसिया, पीहू और दिया। आगरा से हैं श्रीमती सरिता, सुमित और अबीर चौरसिया का। ग्राम देगवाओ तहसील पूर्ण महाराष्ट्र से हैं सदाशिव थोरात, कविता, श्रेया और बंटी थोरात का। बुलडाणा महाराष्ट्र से हैं राजू माठे, गजानन माठे, संजय माठे, ज्ञानेश्वर माठे, प्रकाश दाड़गे जी का। और साथ हैं शेगांव से श्री संतोष काले जी, गजानन सालोकर जी और सुरेश भिसे पाटिल जी। मानेवाड़ा रोड नागपुर से देवेंद्र भटकर जी। पटियाली रोड खिंचवाड़ा से हैं आमिर हुसैन, बेगम तैयबा शेख, फौजिया शेख, आहिल हुसैन और अरहान हुसैन का। भवानीपेट सोलापुर महाराष्ट्र से हैं विष्णु मस्कीन, रितिका वाणी, आदर चंद्रकला, काशीनाथ, गणेश, संगीता आरोही और प्रियांशी का। वडिंग खेड़ा पंजाब से हैं मिंटू टॉमस, लवली टॉमस और आरती अरोड़ा का। आप सभी लोगों ने पसंद किया है ये गीत, फिल्म का नाम है सावन की घटा और इस गीत को गाया है आशा भोसले ने।

श्रोताओ, ये कमेंट हम तक पहुंचा है आप सभी लोगों का। ईदगाह जानूबी जिला बहाकार पंजाब से हैं मोहम्मद हफिजुर रहमान, हबीब मलिक, खलील मलिक और अली रहमान का। सागर लखनादौन मध्य प्रदेश से हैं लाडली जी चौबे, रिमझिम चौबे और सक्षम चौबे। नेवासा खुपटी महाराष्ट्र से हैं बंडू लोहार पोपलगढ़, चंद्रकला पोपलगढ़, देवीदास पोपलगढ़। रतलाम मध्य प्रदेश से हैं रचना मालवीय, विक्रम मालवीय, कमलाबाई वनदेवी, आकाश महेश्वरी और इनके परिवार के सभी सदस्य व साथी इनके दोस्त विनायक। कर्मचारी नगर रोड बरेली से हैं गौतम ऋषि मौर्य, मिहिलाल मौर्य, प्रीति मौर्य, रीना मौर्य और सुनीता मौर्य। 16 नंबर वार्ड गरीब नवाज कॉलोनी इंदौर से हैं रेखा पूजा, बबीता नंदिनी, शोभा रघुवंशी, कुमारी वंदना मराठा, भाऊ मराठा ललित, नारायण खड़से और इनके परिवार के सभी सदस्य व साथी इनके दोस्त। गनगुला दत्तागंज से हैं इसरत खान, शायरा बेगम, रहूब खान, सावरीन बेगम, शाहबाज खान, सैफ खान, ईशान खान, आजम खान और अरहान खान का। ये कमेंट हम तक पहुंचा है आप सभी लोगों का। इन्होंने अपनी जगह का नाम जो लिखा है वो लिखा है इंग्लैंड और भेजने वाले हैं जावेद इनायत और यूसुफ इनायत। सौगा मगर लोड छत्तीसगढ़ से हैं मोहित कुमार चंदन, देविका रानी चंदन, हेयांश कुमार चंदन, फनेश कुमार चंदन, सावित्री देवी चंदन और गजेंद्र कुमार चंदन का। मस्जिद गली सिराजपुर जिला सुपौल बिहार से हैं मोहम्मद वकील, अहमद नाजनी बेगम, मोहम्मद आकीब, मोहम्मद जैद। टैगोर गार्डन न्यू दिल्ली से हैं रविंद्र सिंह छावड़ा, उनके परिवार के सभी सदस्य व साथी इनके दोस्त। गांव नाईवाला जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से हैं वेद मिड्डा और अलका मिड्डा। खेल बाजार पानीपत से हैं नरेश मल्होत्रा, नीटू मल्होत्रा, लक्ष्य लाडो कोयल मल्होत्रा, नानक चंद मल्होत्रा। शिवाजी कॉलोनी रोहतक से हैं पीयूष सिक्का, कोयल सिक्का, डुग्गू भाविक सिक्का। शाहजी नगर देगलूर जिला नांदेड़ महाराष्ट्र से हैं संतोष भाकरे, सुनैना सुकन्या और सबिता भाकरे का। बुलडाणा महाराष्ट्र से हैं राजू माठे, गजान संजय, यज्ञानेश्वर, प्रकाश दागड़गे जी और साथ हैं शेगांव से संतोष काले जी, गजानन सालोकर जी और सुरेश भीसे पाटिल जी। मानेवाड़ा रोड नागपुर से हैं देवेंद्र भटकर जी।

जी श्रोताओं, कोशिश किया कीजिए, जब आप एक बार हमें कमेंट कर देते हैं तो दोबारा कमेंट ना किया कीजिए। ऐसा नहीं कि हम लोग पढ़ते हैं तो हमें पता नहीं रहता, लेकिन हम लोग सोचते हैं कि जब कोई चीज़ लिस्टेड है तो उसे हम पढ़ें, लेकिन आप कोशिश कीजिए कि एक चीज़ को एक ही बार लिस्टेड कीजिए अपने नाम, बार बार नहीं, क्योंकि पढ़े तब भी जाएंगे और पढ़े तब भी जाएंगे, लेकिन बार बार करने से कोई फ़ायदा नहीं होता, बल्कि और लोगों को आप मौका कम दे पाते हैं। तो ऐसी गलती हम उम्मीद करते हैं आप दोबारा हमें कहने का मौका बिल्कुल भी नहीं देंगे, हमारे सभी प्यारे श्रोता। और मजनू का टिल्ला से हैं कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा, उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक और माही मलिक। जिला खरगोन सनावत मध्य प्रदेश से हैं मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज वर्मा, आयुषी वर्मा, रमेश चंद्र वर्मा, शेख मूसा भाईजान, भाई राजकुमार बोडाना। सुदामा नगर खंडवा से हैं लक्ष्मी नंदिनी, रोहित ऋतु और मुकेश जगताप का। वडिंग खेड़ा से हैं पंजाब से मिंटू टॉमस, पिंकी लवली और आरती अरोड़ा। अल्लागंज जनपद शाहजहांपुर से हैं डॉक्टर आरवी सिंह, अरजीत यादव, प्रशांत यादव, उदित यादव, अभय यादव, दीक्षा और इनके परिवार के सभी सदस्य व साथी, इनके दोस्त। नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से हैं पीएस नभाकर, निर्मला नभाकर, विशाल नभाकर। मलकापुर से हैं सोपान ताड़े, नारायण इंगले और आशीष मुहेकर। कांठोड लदावली से हैं माया देवी, ऋतिक, आदित्य कसाना और अजीत कसाना। सांगली से हैं अल्ताफ उजरे और दातार सिंह शेखावत, संगीता कंवर, तुषार सिंह और रिंकी शेखावत। आप सभी ने हमें भेजा है ये गोविंदपुरा सीकर राजस्थान से। किशनगंज बिहार से हैं रविंद्र मोहन दास, आशा देवी। समता नगर काष्टी से हैं लक्ष्मण जी जगताप, श्रेया शिंदे, मानसी शिंदे और निशांत जगताप का। पंचकूला चंडीगढ़ से हैं राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशु और रिधान और खुराना का। ओखला संगम बिहार दिल्ली से हैं रणधीर गुप्ता, बबीता रानी गुप्ता, सत्यम गुप्ता और सुंदरम गुप्ता का। आप सभी लोगों ने पसंद किया है ये गीत, फिल्म का नाम है अनपढ़ और इस गीत को गाया है लता मंगेशकर ने।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे आपकी पसंद में अपनी पसंद के गीतों को। हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 FM पर। प्रातः के 11 बजे हैं और अब आप सुनेंगे सब रंग में ये भजन अनूप जलोटा के स्वर में।

श्रोताओं, इस समय आप सुन रहे हैं सबरंग आकाशवाणी के बरेली केंद्र से, जहां हैं आप वहां हैं हम, ओनली 100.4 FM पर। और लीजिए सुनिए अब ये भजन अनूप जलोटा के स्वर में।

और इस भाषा का आनंद भी है तभी कोई अर्थ है। इसमें दी गई शिक्षाओं पर ध्यान दीजिए और अपने जीवन में उतारने का प्रयास कीजिए।

तन के भीतर पांच लुटेरे डाल रहे हैं डेरा। ये कौन है पांच लुटेरे जो दिन रात हम सब की वास्तविक संपत्ति को लूटा करते हैं? इन पांचों लुटेरों को हम अपने साथ रखते हैं, इनका पालन पोषण करते हैं, इनको प्रसन्न रखते हैं और ये हमें लूटा करते हैं। इन्हें पहचानिए, इनसे दूर रहिए, नहीं तो सब लूट के ले जाएंगे एक दिन। तन के भीतर

अंतिम पंक्तियां हैं और हमारे आपके जीवन में, सबके जीवन में बचपन से लेकर बुढ़ापे तक जो होता है, जो गुजरता है,

श्रोताओं लीजिए, अब आप सुनिए सब रंग में ये गजल भूपेंद्र सिंह और मिताली सिंह के स्वर में। श्रोताओं इस समय आप सुन रहे हैं सब रंग आकाशवाणी के बरेली केंद्र से, जहां हैं आप वहां हैं हम, ओनली 100.4 FM पर।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे सब रंग। हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 FM पर। प्रातः के 11:30 होने वाले हैं। अब आप सुनेंगे हमारे अगले कार्यक्रम, जिन्हें हम

करेंगे आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से। बस कुछ पलों की प्रतीक्षा कीजिए।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, आम सरिये के मुकाबले लगभग 10% ज्यादा भूकंप रोधक।
3: RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास
2: और भरोसा।
3: जानो फिर मानो।
4: जी हाँ दोस्तों, अगेन वेलकम बैक। 11:31 का वक्त, आपके साथ आपका दिल आरजे निकल ऑनली ऑन 100.7 FM रेनबो। आपका पसंदीदा प्रोग्राम चल रहा है संदेश आपके गीत हमारे, और आपके लगातार बहुत सारे लोगों तक हम तक कॉल भी आ रहे हैं और ईमेल्स भी आ रहे हैं। तो कॉल के बाद अब हम बात करते हैं उन ईमेल्स की जो बहुत देरी से इंतजार कर रहे हैं उनको रीड करने का। तो हमारे पास जो मेल है वो ब्रह्मेश सोनी जी का है। लिखते हैं, सादर प्रणाम, मैं पिंकू सोनी। जी हाँ, मेरे संदेश ये है कि आप सब मोबाइल से दूरी बनाकर रखें, रेडियो से जुड़ जाइए, आपके जीने के ढंग में बहुत ज्यादा बदलाव हो जाएगा, आप अपडेट्स हो जाएंगे। और बाराबंकी से इन्होंने ये हमें मेल किया हुआ है, साथ में कुछ नाम लिखे हैं जैसे कि कुलदीप जी, उंधौली, आकाश जी और मरूरपुर, रिंकी, पिंकी जी, गुलप्सा जी और सभी लिसनर्स, थैंक यू सो मच आपके इस प्यारे से मेल के लिए। इसके अलावा MK राज जी का भी आया हुआ है हमें मेल, और ये मेल आया हुआ है हमें भानपुर हरौआ जिला लखीमपुर खीरी से। कार्यक्रम की प्रस्तुति बहुत ही लाजवाब है। निखिल सर, हमारी ये लाइन पढ़ने की कृपा करें। बिल्कुल हम पढ़ेंगे भाई, आप लोगों ने भेजा है इतना अच्छा तो जरूर पढ़ेंगे। इन्होंने लिखा है कि मस्त रहने वाला बचपन मोबाइल में व्यस्त है। कुछ लाइन ऐसी है जैसे कि, अच्छी थी पगडंडी अपनी, सड़कों पर तो जाम बहुत है, फुर्सत हो गई फुर्सत, अब तो सबके पास काम बहुत है, नहीं जरूरत बूढ़ों की अब, हर बच्चा बुद्धिमान बहुत है, उजड़ गए सब बाग बगीचे, दो गमलों में शान बहुत है, मट्ठा दही नहीं खाते हैं, कहते हैं जुकाम बहुत है, पीते हैं जब चाय तब कहीं कहते हैं आराम बहुत है, बंद हो गई चिट्ठी पत्री, व्हाट्सएप पर पैगाम बहुत है, आदि हैं AC के इतने, कहते बाहर घाम बहुत है, झुके झुके स्कूली बच्चे, बस्तों में सामान बहुत है, नहीं बचे कोई संबंधी, अकड़ ऐठन एहसान बहुत है, सुविधाओं का ढेर लगा है पर इंसान परेशान बहुत है। इतनी अच्छी लाइनें आपने मुनेश जी लिखी हैं, और बचपन से लेकर के हमारी जवानी तक और साथ में बुढ़ापे को भी इसमें शामिल करते हुए आपने जिस तरीके से इस चीज को बयां किया है ना, वाकई में काबिले तारीफ है। तो आपकी ये जो संदेश है ये बिल्कुल सराखों पर है और बहुत ही अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। शिवेन शुक्ला जी का भी हमें मेल आया हुआ है, लिखते हैं, हेलो सर, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? आई एम टोटली फाइन एंड हाउ आर यू? इन्होंने लिखा है कि आज बहुत दिनों बाद आपको सुनकर अच्छा लग रहा है, आपका प्रोग्राम करने का अंदाज और सॉन्ग बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। शिवेंद्र शुक्ला, विलेज बुजुर्ग पोस्ट, शंकरपुर, डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर खीरी से इनका ये हमें मेल आया हुआ है। इसके अलावा हमें गुजरात से भी मेल आया है, कौशिका वर्धन एंड वंदना जी का, जो कि कौशिक अस्मिता वड़वाना परिवार, हेलो नमस्ते निखिल सर, कैसे हो आप, सुप्रभात, ये मेल इन्होंने हमें भेजा है, आपके भी इस मेल के लिए थैंक यू सो मच। इसके अलावा जावेद अख्तर जी, सोनू परवाना जी, बाबू अंसारी जी और भैया मोनू सेठ जी, आपके भी हमें मेल मिल चुके हैं। और एक प्यारा सा म्यूजिकल ट्रैक आ रहा है आप सबके रेडियो सेट पर,
5: लगा बैठे।
4: Yes, this musical track from the movie Julie. So stay tuned and stay musical with the large Nikhil. सुनते रहिए।

जी हाँ, क्यों नहीं लगाएंगे दिल अपना, क्योंकि भैया जी आपकी दो पुरानी अच्छी वाली आदतें साथ हैं, एक जबरदस्त गाने और दूसरा बैकग्राउंड म्यूजिक। कुछ ऐसा ही ईमेल हमें किया हुआ है भैया मोनू सेठ जी ने। भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस मेल के लिए और इस तारीफ के लिए। बाबू अंसारी जी का भी हमें मेल आया हुआ है अहमदपुर बाजार बाराबंकी से, और इन्होंने

0: फोटो भी भेजा है और जिस जगह ये बैठे हैं उस जगह की लोकेशन की इन्होंने हमें फोटो भेजी हुई है। बहुत ही अच्छी है। लोग तो फिलहाल नहीं दिखाई दे रहे हैं लेकिन काम तो चल ही रहा होगा क्योंकि दिन है। लिखा इन्होंने, नमस्ते आरजे निखिल सर, कैसे हैं आप? प्रोग्राम अच्छा लग रहा है और इनका संदेश ये है कि इंसान को किसी को देखकर कॉपी नहीं करना चाहिए कोई भी चीज, बल्कि अपना कुछ अलग करने का जज्बा होना चाहिए। और गर्मी बहुत हो रही है इसलिए अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। धूप बहुत ज्यादा हो रही है इसलिए जब भी निकले अपना ध्यान रखें और जरूरी सामान लेकर बाहर निकले और जरूरी काम हो तभी बाहर निकले। बाबू अंसारी जी, आपका दिल से शुक्रिया। सोनू परवाना जी का मेल है और इन्होंने लिखा है कि अधिकतर ऊर्जा स्रोतों को ना तो पुनः उपयोग में लाया जा सकता है और ना ही नवीनीकृत किया जा सकता है। गैर अक्षय ऊर्जा स्रोतों का ईंधन उपयोग में हिस्सा 80% है, इसलिए ऐसा कहा गया है कि अगले 40 सालों में हमारी ऊर्जा के सभी स्रोत समाप्त हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकते हैं अगर हम अपने ऊर्जा स्रोतों का ध्यान नहीं रखेंगे और खासकर पेड़ों का ध्यान नहीं रखेंगे तो इनका संदेश यह है कि हम ऊर्जा की बचत करके अपने देश की बहुमूल्य मुद्रा की बचत करते हैं। लगभग 75% अपनी जरूरतों का कच्चे तेल आयात से पूरा करते हैं। तो आपको भी ध्यान रखना है कि भाई किसी भी तरीके से आपको किसी भी चीज की वेस्टेज नहीं करनी है। तो सोनू परवाना जी का मेल था। इसके अलावा जावेद अख्तर, तालिब अंसारी जी, धर्मेंद्र जी, वारिस अली खान जी, कोमल तिवारी जी और मनोहर लाल जी, आपके मेल आए हुए हैं हम तक, हम उसको भी पढ़ेंगे। लेकिन एक कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर, उनसे भी बात करेंगे। हेलो, हेलो, वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप?
1: बहुत अच्छे हैं सर, आप बताइए।
0: हम भी बहुत अच्छे हैं। आपका गुड नेम?
1: जिला सीतापुर पचैनापुर मस्जिद के पास से शमा परवीन अंसारी बात कर रहे हो। सभी सुनने वालों को मेरा प्यार भरा अस्सलाम वालेकुम, मेरा प्यार भरा नमस्कार। सर आपको भी मेरा प्यार भरा नमस्कार।
0: जी आपको भी बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। और बताइए कैसी हैं आप?
1: हम बहुत अच्छे हैं सर, हम बच गए वरना तो हमारा आज फोन काटने वाले आपसे। हम बहुत डर गए, जैसे आपने कहा कि अभी तो आपने फोन किया वो थी साहिबा अंसारी
0: जी,
1: और आपने कहा कि अब दूसरे लिसनर को मौका दो, हमने कहा रे ऐसा ना हो ये सर फोन काट में।
0: बिल्कुल, आपकी और आपकी जो फ्रेंड है ना वो, उनका बिल्कुल भी एकदम वॉइस सेम टू सेम लग रहा था, मैं कंफ्यूज हो गया। खैर कोई बात नहीं, आप अभी हमारे साथ ऑन एयर हैं तो बताइए क्या संदेश देना चाहेंगी?
1: संदेश हम यही देना चाहते हैं कि अब बच्चों के स्कूल खुलने वाले हैं
0: जी,
1: और सब लोग मेहनत से पढ़ाई करें और कुछ बन के दिखाएं। बिल्कुल। कोई टेलर बने तो कोई डॉक्टर बने, कोई इंजीनियर बने तो कोई डीएम बने, सब बन के दिखाएं।
0: बिल्कुल, तो बताइए
1: के मतलब अनपढ़ में गिनती ना आए, कोई सब अपनी पढ़ाई बर्बाद ना करें, पढ़ाई में बहुत पैसा लगता है।
0: जी बिल्कुल सही कहा आपने।
1: जैसे हमारी फ्रेंड साहिबा अंसारी है, हर लड़की टेलर बने।
0: क्या बात है।
1: तो ये साहिबा अंसारी कुर्ता पैजामा सिल लेती है सर।
0: जी जी जी जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात है। टैलेंट है ये, अपना कारीगरी का काम है, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि आपके पास कोई टैलेंट होता है।
1: हमारी सूट भी अच्छे सिलती है, सब कुछ सिलती है।
0: चलिए किसी का नाम लेना चाहेंगे?
1: अपने भाई बहन का जरूर नाम लेना चाहेंगे।
0: लीजिए,
1: साहिबा अंसारी
0: जी,
1: वकील अहमद भाई, मोहम्मद आसिफ भाई
0: जी,
1: और जो छोटे भाई हिमांशु भाई जो अभी फोन किए थे
0: जी जी,
1: और जावेद अख्तर भाई, बाबू अंसारी भाई। बाबू अंसारी भाई कभी कभी मेरा नाम भी लिख दिया करो, मेल करते हो कभी फोटो भेज देते हो, कम से कम मेरा नाम भी लिख दिया करो।
0: क्या बात है, बड़ा अच्छा लगा कि हमारा प्रोग्राम है। संदेश
1: अच्छा लगता है जब कोई मेल में हमारा नाम शामिल करते भाई बहन है, और फोन लगता नहीं है, बहुत मुश्किल लगता है जब नाम सुन के ही खुशी मिल जाती है कि हमारे भाई बहन नाम तुम्हारा लिखे।
0: बिल्कुल, आपकी बात सुन के मुझे अच्छा लगा कि मतलब हमारा जो प्रोग्राम है संदेश, आपके गीत हमारे, आपने बहुत ही अच्छा संदेश दिया और संदेश हमारे माध्यम से अपने भाई तक पहुंचाया है, ये अच्छा लगा हमें।
1: सर आप प्रोग्राम बहुत अच्छा करते हैं, आप गाने बहुत अच्छे बजाते हैं।
0: थैंक यू सो मच।
1: जल्दी आया करो प्रोग्राम करने, और शाम को 4 से 8 के बीच में आया करो।
0: अच्छा,
1: हमेशा मॉर्निंग में आप आते हैं।
0: जी कोशिश करेंगे, बिल्कुल कोशिश करेंगे। फिलहाल
1: कोशिश करो शाम को 4 से 8 आया करो।
0: श्योर श्योर, बिल्कुल। थैंक यू सो मच आपका हमें कॉल करने के लिए। तो सुना दोस्तों, कितनी सारी बातें की इन्होंने और अपना संदेश किस तरीके से पहुंचाया। इस तरीके से आप भी हमें संदेश पहुंचा सकते हैं ईमेल के जरिए fmakashwanilakhnow@gmail.com पर। अगर आप हमें कॉल करना चाहते हैं तो जल्दी से कीजिए, हमारी फोन लाइंस ओपन है 0522 2238852 पर या फिर 0522 2238845 पर। स्टे ट्यून्ड विद योर दिल आरजे निखिल, सुनते रहिए।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, सीमेंट से 9.5% तक आम सरिया के मुकाबले बेहतरीन पकड़।
3: आरएचएल गोल्ड टीएमटी सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
4: तो दोस्तों 11:49 का वक्त, आपके साथ आपका दिल आरजे निखिल, प्रोग्राम चल रहा है संदेश आपके गीत हमारे। बहुत सारे लोगों के ईमेल्स भी आ रहे हैं और फोन कॉल भी आ रहे हैं, तो चलिए पहले थोड़े से ईमेल पढ़ लेते हैं। जावेद अख्तर जी का ईमेल

0: लाया हुआ है और लिखते हैं कि निखिल जी, इस बदलते मौसम में अपना और अपने बच्चों का पूरा ख्याल रखें। बिल्कुल, मैं तो रखता हूँ, आप भी रखिए और बाकी सब लोग भी रखिए, क्योंकि अक्सर हमारे बच्चे लापरवाही का शिकार हो जाते हैं। जैसे कि इस कड़कड़ाती हुई धूप में बच्चे खेलते रहते हैं और उन्हें लड़कपन में कुछ पता नहीं चलता है और वो बीमार पड़ जाते हैं। आजमगढ़ से इनका ये मेल आया हुआ है, उन्होंने नाम लिखा हुआ है शमशुल कमर राही बेगम रुखसार और रकीबा शाहीन। थैंक यू सो मच आपके इस मेल के लिए और आपके संदेश के लिए। आंचल सेठ जी का मेल आया, उन्होंने लिखा है कि मौजूदा दौर में भवन निर्माण में ऊर्जा का अधिक उपयोग होता है, कृत्रिम बिजली से दूर रहा जाए, प्राकृतिक हवा और ऊर्जा संसाधनों के उपयोग पर जोर दिया जाए, भवन निर्माण में पर्यावरण मित्र संबंधी पदार्थों का प्रयोग किया जाए, तभी हम ऊर्जा की बचत कर सकते हैं। और रायबरेली से यह मेल है आंचल और अंकित सेठ जी का। इसके अलावा तालिब अंसारी जी का भी हमें मेल आया हुआ कटरा बाराबंकी से, लिखते हैं कि सभी स्टूडेंट और एग्जाम प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट के लिए मैसेज है कि एग्जाम सेंटर पर वक्त से पहले पहुंचने और ताकि आपके पास पर्याप्त टाइम रहे। रूल्स तो रूल्स होते हैं, माना कि सारे लोगों को देखना है, जो वक्त वो लेते हैं और लेट से पहुंचते हैं एग्जाम से वंचित रह जाते हैं, इसलिए टाइम से पहले पहुंचे और एग्जाम सेंटर पर सारी जानकारियां हासिल करें और अपना पेपर अच्छे से दे। बिल्कुल, धर्मेंद्र जी का अगला मेल आया हुआ है, राम राम लिखते हैं, राम राम आपको भी और धर्मेंद्र कुमार प्रजापति जी, शुभम कुमार और मीना प्रजापति जी परिवार ग्राम, इन्होंने हमें बाराबंकी जिले से ये ईमेल किया हुआ है। वारिस अली खान जी का भी मेल आया हुआ है, लिखते हैं नमस्कार, मुहर्रम का महीना चल रहा है इसलिए आपसे गुजारिश है कि कुछ पंक्तियां ऑन एयर कर दें। बिल्कुल करते हैं। फलक पर जन्नत हुसैन की है, जमी पर काबा हुसैन का है, जो सारी उम्मत की लाज रखे वो एक सजदा हुसैन का है। का संदेश यह है कि जिंदगी अपने हिसाब से जियो, लोगों की सोच तो बदलती रहती है। मक्खी अगर चाय में गिरे तो चाय फेंक देते हैं, मक्खी अगर देसी घी में करे गिरे तो मक्खी फेंक देते हैं। क्या बात है, बहुत ही अंदरूनी बात कही आपने। फिलहाल एडवोकेट वारिस अली खान जी का संजय नगर ऐशबाग से ये हमें मेल आया हुआ है। कोमल तिवारी जी आपका मेल आया हुआ है कि निखिल भैया जल्दी आया करो, अपना ख्याल रखें। बिल्कुल, हम कोशिश करते हैं पूरी तरह जल्दी आने से और ख्याल रखने की भी कोशिश करते हैं। फिलहाल तो अच्छा यही होगा कि आप सभी लोग भी अपना ख्याल रखें। इसके अलावा हमारे साथ फोन लाइन पे भी कोई जुड़ा हुआ है, आइए जानते हैं कौन है वो, क्या संदेश है उनका। हेलो,
1: हेलो,
0: बहुत बहुत नमस्कार और स्वागत है आपका एफएम रेनबो में।
1: नमस्कार,
0: बहुत बहुत शुक्रिया। ये बताइए आपका गुड नेम क्या है।
1: हमारा छोटू सक्सेना जी, हम लखनऊ से बोल रहे हैं।
0: जी जी,
1: ये यादव मार्केट से, आलमनगर लखनऊ।
0: आलमनगर से, क्या करते हैं आप?
1: हम सर यही गैस लगाते हैं, इंडियन गैस पर।
0: क्या बात है, मतलब लोगों लोगों तक ऊर्जा पहुंचाते हैं ताकि वो अपना खाना बना सके। बहुत ही अच्छी बात है और बहुत ही मेहनत का काम आप करते हैं सर।
1: जी,
0: वैसे क्या संदेश देना चाहेंगे इस गर्मी में?
1: गर्मी तो सर बहुत है रही है।
0: जी,
1: थोड़ी बहुत हवा चलती है।
0: बिल्कुल,
1: जो है गर्मी बहुत है।
0: एक्चुअली आप जो मेहनत का काम करते हैं ना, उसमें गर्मी जब लगती होगी तो आप भाई क्या करते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है सिलेंडर बहुत भारी होता है गैस का और आप उसको बिल्कुल इस गर्मी में लेके चलते हैं, घर घर तक पहुंचाते हैं, तो बहुत ही मेहनत वाला काम है, बहुत ही हिम्मत चाहिए इसके लिए। किसी का नाम लेना चाहेंगे?
1: हाँ, हमारे परिवार में हमारे गोविंद तक सेना है, शिवम तक सेना है, श्याम तक सेना है।
0: जी,
1: और आप लोगों को सभी मतलब सुनने वालों को
0: जी
1: हमारी तरफ से धन्यवाद।
0: जी,
1: और सर गाना सुनना चाह रहे थे।
0: बिल्कुल, गाना आपको सुनाया जाएगा, अभी मैं जो बजाऊंगा वो सुनाया जाएगा, क्योंकि आपके आपके पसंद का प्रोग्राम 7 बजे हेलो एफएम में आपका पसंद का गाना सुनाया जाएगा।
1: जी, इंग्लिश का गुटा देरी करते।
0: गाना तो आपका सर बहुत अच्छा है, लेकिन सॉरी अभी हम इसको नहीं सुना सकते, क्योंकि फरमाइशी प्रोग्राम 7 बजे का हेलो एफएम है, उसमें आपको सुनने को मिल सकता है। फिलहाल के लिए थैंक यू सो मच आपका हमें कॉल करने के लिए। एक प्यारा सा म्यूजिकल ट्रैक अगेन आप सबके लिए फ्रॉम द मूवी तेरी बातों में उलझा जिया। 11:54 का वक्त और आपके साथ आपका दिल आरजे निखिल।

0: सर कुछ।
1: फिलहाल दोस्तों प्रोग्राम को वाइंड अप करने का टाइम भी हो रहा है, 11:54 का वक्त भी हो चुका है। तो और भी जिन लोगों ने हम तक मेल पहुंचाया है उनके अभी नाम ले लेते हैं जल्दी से। विजय सिंह जी का बहराई से मेल है, ये लिखते हैं कि निखिल सर जी मणिमाता मंदिर गोलाघाट दर्शन करने आए हुए हैं और कुछ लोग बीच बीच में सेल्फी लेने लगते हैं, प्लीज ऐसा ना करें क्योंकि ऐसा करने से बहुत ही ज्यादा तकलीफ होती है और बाधा भी आती है। तो आपका संदेश हमने बहुतों तक पहुंचा दिया है, प्लीज इसको

लोग करें। गुलशफा सिद्दीकी जी का मेल आया हुआ है और ये लिखते हैं कि प्रोग्राम अच्छे लग रहे हैं इनको, और संदेश ये है कि हमें किसी को कुछ भी बोलने से पहले 1000 बार सोच लेना चाहिए, क्योंकि हम क्या बोल रहे हैं बहुत जरूरी हो जाता है। सही कह रहे हैं बिल्कुल, कुछ भी कहने सुनने से पहले। रतन जी का भी मेल आया है, इन्होंने कहा हमारा मेल जरूर शामिल कीजिएगा क्योंकि ये प्रोग्राम सुन रहे हैं मैनपुरी से और इन्हें प्रोग्राम बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। थैंक यू रतन जी आपके इस बेहतरीन से मेल के लिए। इसके अलावा गीता सेठ जी का मेल है और साथ में हमें मेल आया हुआ है मोहम्मद फरहान जी का ये, और साथ में मेल आया हुआ है सभी अंसारी जी का। हैदराबाद से इन्होंने हमें मेल किया हुआ है, उन्होंने कहा है नाम ले लीजिए, तो नाम हम जरूर लेंगे। तालिब अंसारी राजा कटरा से, इस्माइल अंसारी कानपुर से और अली अंसारी जी कानपुर से। तो ये इन लोगों के मेल आए हैं। थैंक यू सो मच आप सबके इस मेल के लिए और प्रोग्राम में हमारे साथ बने रहने के लिए और एफएम रेनबो सुनने के लिए। फिलहाल मैं आपको कहता हूँ टाटा बाय बाय, क्योंकि ये वक्त 11:55 का और मुझे अलविदा कहने का। सो स्टे ट्यून्ड विद योर दिल आरजे निखिल विद दिस म्यूजिकल ट्रैक ओनली ऑन 100.7 एफएम रेनबो।

नमस्कार। दोपहर के 12 बजे हैं, अब सुनिए मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की अपार सफलता इस बात का प्रमाण है कि योग न केवल विश्वभर में लाखों लोगों को शारीरिक रूप से स्वस्थ रखने में मदद कर रहा है, बल्कि उन्हें आत्मविश्वास के साथ सकारात्मक जीवन जीने के लिए भी प्रेरित कर रहा है। सोशल मीडिया पर एक संस्कृत श्लोक साझा करते हुए मोदी ने कहा कि योग मन को पूर्णतः शांत करने का साधन है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मन को शांत करना और श्वास प्रवाह को नियमित करना

नमस्कार, दोपहर के 12 बजे हैं। अब सुनिए मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की अपार सफलता इस बात का प्रमाण है कि योग न केवल विश्वभर में लाखों लोगों को शारीरिक रूप से स्वस्थ रखने में मदद कर रहा है, बल्कि उन्हें आत्मविश्वास के साथ सकारात्मक जीवन जीने के लिए भी प्रेरित कर रहा है। सोशल मीडिया पर एक संस्कृत श्लोक साझा करते हुए मोदी ने कहा कि योग मन को पूर्णतः शांत करने का साधन है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मन को शांत करना और श्वास प्रवाह को नियमित करना इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा है कि सरकार सभी नागरिकों के लिए न्याय को अधिक सुलभ और आसान बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। एक लेख में श्री मेघवाल ने कहा कि टेलीलो और न्याय बंधु जैसी सेवाओं ने न्याय तक पहुंच को आसान बनाया है। वहीं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वर्चुअल कोर्ट और अदालती कार्रवाई के सीधे प्रसारण से न्यायपालिका आम लोगों की और करीब आई है। उन्होंने बताया कि एआई आधारित उपकरणों की मदद से न्यायालयों के निर्णयों और आदेशों का 18 भारतीय भाषाओं में अनुवाद किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश विशेष कार्यबल एसटीएफ के साथ कल सहारनपुर में हुई मुठभेड़ में कुख्यात अपराधी ललन सिंह मारा गया। उस पर 1.25 लाख रुपए का इनाम था। एसटीएफ के अनुसार वो कई जघन्य अपराधों में शामिल था, जिसने 7 हत्याएं, बैंक डकैती, लूट और सरकारी हत्याओं की चोरी शामिल थी। स्विट्जरलैंड में अमरीका और ईरान के बीच वार्ता समाप्त होने के बाद आज कच्चे तेल की वैश्विक कीमत में 3% तक की तीव्र गिरावट दर्ज की गई। इसमें आपूर्ति बाधा को लेकर चिंताएं समाप्त होने और ईरान के तेल निर्यातों में वृद्धि की आशा बढ़ गई है। अंतर्राष्ट्रीय ब्रेंट क्रूड की कीमत प्रति बैरल में 2% से अधिक की गिरावट के साथ लगभग $79 पर आ गई है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने 14 जुलाई से शुरू होने वाले आगामी इंग्लैंड दौरे के लिए भारत की 15 सदस्यीय एक दिवसीय टीम की घोषणा कर दी है। टीम में विराट कोहली और जसप्रीत बुमराह जैसे वरिष्ठ खिलाड़ियों की वापसी हुई है। इस दौरे में शुभमन गिल कप्तान और श्रेयस अय्यर उप कप्तान होंगे। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित किया जाएगा। तब तक आप सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो धड़कन लखनऊ की।

0: सुबह मुस्कुराती हुई, गुनगुनाती हुई,
1: हौले से जिंदगी को छूती हुई, जगाती हुई, जिंदगी के नए दिन के नए सफर पर निकलिए पुराने खूबसूरत गीतों का दामन थाम कर। सदाबहार गीत
0: सिर्फ 100.7 FM रेनबो पर हर सुबह 7 बजे।

0: घर से लेकर ऑफिस तक, बच्चों से लेकर बॉस तक, फैमिली से लेकर फैंटेसी तक, फैशन से लेकर फन तक, अगर आपको चाहिए इन चीजों की लेटेस्ट अपडेट, सो डोंट बी लेट।
1: सुनिए नारी शक्ति को समर्पित कार्यक्रम शत्रुपा, सोमवार से गुरुवार दिन में 12 से 1, 100.7 FM रेनबो पर, धड़कन लखनऊ की।
2: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
3: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, आम सरिये के मुकाबले लगभग 20% ज्यादा ताकत।
4: RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
5: बरकत है ये औरत के कदमों की कि दरो दीवार को लोग घर कहते हैं, ये काजल जिन आंखों में आकर समर जाता है, ये माथा जो बिंदिया की किस्मत निखार जाता है। रसोइयों से उड़ती ममता की खुशबुएं त्योहारों और उत्सवों पर सजती महफिलें, संघर्ष की मिट्टी में खिलते मुस्कुराहट के फूल, दुनिया को खूबसूरत बनाने वाली खुद को न जाने।

बात तो ये 110% सही है कि जब आप अपने मन से अपने दिल से खुश होती हो तो जमाना जो है आगे नहीं, आप आगे होती, बाकी सब आपके पीछे होते हैं। और इसीलिए आप शत्रुपा कहलाती, क्योंकि आप सिर्फ एक काम नहीं बल्कि हजार सारे काम करती हैं जो कई बार आपको मेंटल स्ट्रेस में भी रखते हैं। आप सोच रहे होंगे इतनी अच्छी सारी बात के बीच ये मेंटल स्ट्रेस कहाँ से आया, तो बता देंगे क्योंकि आजकल शत्रुपा जो है ना विमेन हेल्थ से जुड़ा हुआ है। तो क्या खास होने वाला है जानना है ना, तो कहीं मत जाइए, दिल को शायराना रखिए। और दिल जब शायराना होता है तो मुझे ऐसा लगता है कि मेंटल स्ट्रेस कम होते। बहरहाल दोपहर के 12:05 का वक्त आपके साथ, मैं आपकी दोस्त आपकी आरजे रचा, आपकी अपने 107 FM रेनबो पर। यस, गुड आफ्टरनून।

बट पता है कई बार इस शायराना से दिल में व्यवधान पड़ जाते हैं, तब जब हम बात करते हैं बढ़ते तनाव की, खासकर तब जब बात हो कामकाजी महिलाओं या फिर घरेलू महिलाओं की। तो आज का जो शत्रुपय है ना, हमारी कामकाजी यानी कि वर्किंग वुमेन वर्सेस हाउसवाइफ्स, इनके बीच बढ़ते तनाव, इनके बीच बढ़ता जो डिप्रेशन है, जो अवसाद है ना, इससे जोड़ते हुए आज आपके साथ साझा करने वाले हैं। तो जहां कहीं भी हैं आप बिल्कुल मेरे साथ जुड़िए, क्योंकि ये जो टॉपिक है आज का, ये सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। जब बात कामकाजी और घरेलू महिलाओं की है तो कहते हैं कि दोनों की जिंदगी की चुनौतियां अलग अलग हैं, लेकिन मानसिक तनाव का बोझ कहीं ना कहीं दोनों पर एक सा होता है। हाँ, आप बेहतर जानती होंगी, मेरे बताने से ज्यादा आप इस बात से इत्तेफाक रखती होंगी कि हाँ, दोनों का जो तनाव का बोझ है वो लगभग एक सा है। तो ये जो तनाव है, वर्किंग वुमेन वर्सेस घरेलू जो महिलाएं हमारी हाउसवाइफ्स हैं, आज का टॉपिक।

उनके बीच बढ़ते तनाव मानसिक, और खासकर तब जब बात हम बात करते हैं भावनात्मक और मानसिक तनाव की, इन तनावों के बीच में योग किस तरीके से आपके लिए कारगर हो सकता है, कैसे आपको इन तनावों से बाहर निकाल सकता है, तमाम सारी बातें आज के इस चतुर्पा में रहेंगी, लेकिन वो आप तभी जान पाएंगे जब आप यहां जुड़ेंगे मेरे साथ। तो मेरी आपसे गुजारिश हमेशा की तरह कि आप आए जुड़े मेरे साथ, और सिर्फ महिलाएं नहीं बल्कि वो भी जो आपके घर को संभालती हैं, आपका जो घर है, जो आप कहते हैं ना पुरुष वर्ग जिसकी बात होती है, तो मेरे साथ उनका भी यहाँ रहना बेहद जरूरी है, क्योंकि जब आप सुनेंगे तब आप अपनी साझेदारी उनके साथ शेयर कर पाएंगे, और फिर वो जो तनाव है उनके मन में उससे कहीं दूर कर पाएंगे, क्योंकि मन कहते हैं चंचल है, बहता है, भागता है सब तरफ, लेकिन उसे एकाग्र कर पाना ये बड़ी बात होती है, और वो तभी होगा जब आपका साथ उसे मिलेगा। 12:10 शत्रुपा आपकी अपने 107 FM रेनबो पर।

बस इसी बात को तो पता लगाना है कि वो जो मन भागता है ना, कई बार जो तनाव आपके आसपास होते हैं, जो डिप्रेशन का कारण बनते हैं, अवसाद का कारण बनते हैं, उनको आप कैसे रोक सकते हैं, कैसे बचा सकते हैं। आज के क्षत्रपा में हम आपसे इस बारे में बात करने वाले हैं। अगर हम आधुनिक समय की बात करें तो महिलाओं की भूमिकाएं वैसी की वैसी हैं, वो बिल्कुल नहीं बदली हैं, लेकिन समाज और परिवार में उनसे उम्मीदें आज भी वैसी हैं। वही पारंपरिक सोच है कई बार, और यही विरोधाभास और असंतुलन अक्सर महिलाओं में मानसिक तनाव, अवसाद और बर्नआउट का कारण बन जाता है। तो क्षत्रपा में हम इस बात के बारे में बात करने वाले ही हैं, लेकिन कुछ रिसर्च भी हैं, थोड़ा सा उन पर ही बात करते हैं और फिर जानेंगे उन कारणों को और उन कारण के निवारण हम कैसे कर सकते हैं, और उन तमाम कारणों और निवारणों के बीच में योग किस तरीके से सहायक हो सकता है, तब जब हम एक घरेलू या फिर वर्किंग वीमेन की बात करते हैं। अभी हाल में एक रिसर्च हुई जो ये कहती है कि अगर हम महिलाओं को देखते हैं तो उनकी शारीरिक जो बनावट है, हार्मोनल चक्र और बीमारियां पुरुषों से बिल्कुल अलग है, और इसी वजह से उनके ऊपर प्रभाव जब किसी चीज का पड़ता है तो बिल्कुल एक डिफरेंट तरीके से पड़ता है, एक अलग तरीके से पड़ता है। अभी हाल में एक रिसर्च हुई जो ये कहती है कि तकरीबन 60% जो वर्किंग वीमेन हैं, उन्होंने माना है कि घर और दफ्तर के दोहरे दबाव के कारण मेंटल जो फटीग है उसका शिकार होती है, यानी कि मानसिक थकावट जो होती है। तो वहीं अगर हम घरेलू महिलाओं की बात करें तो उनमें डिप्रेशन के अंतर्गत एक सोच को देखने के लिए एक रिसर्च किया गया, जिसमें तकरीबन 15-18% जो आपकी वर्किंग माफ कीजिएगा हाउस वाइव्स हैं, वो कहीं ना कहीं डिप्रेशन का शिकार पाई जाती हैं। शोध ये कहते हैं कि जिन महिलाओं में को घरेलू कामों में परिवार का सहयोग नहीं मिलता, बेसिकली उनमें डिप्रेशन का खतरा कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है वर्किंग वीमेन के कंपैरिजन में। तो क्या चुनाव है, क्या कारण है, क्या निवारण हो सकते हैं, सब कुछ जानना है तो बस यहीं रहिए मेरे साथ, क्योंकि ये जो आज का विषय है डेफिनेटली आपके लिए। आप जो घर की धुरी हैं, जो पूरा घर संभालती हैं, और तब कई बार जब आपको ऐसे किसी सिनेरियो का सामना करना पड़ता है जहां से आप मानसिक अवसाद का शिकार बने, तो ये हम बिल्कुल नहीं चाहते, क्योंकि जहां आप हैं वहीं हम हैं, ये बात आप अच्छी तरीके से जानते हैं। और आपकी विडंबना अगर हम नहीं समझेंगे तो और कौन समझेगा। 12:17 का वक्त है, एक दूसरे के हाथ में हाथ हो तो जिंदगी वाकई बहुत खूबसूरती से कटती है। बाकी चीजों के लिए बस यही रहिए मेरे साथ, आप सुन रहे हैं क्षत्रपा।

रोने दे आज हमको, तू आंखें सुजाने दे, बाहों में ले ले और खुद को भीग जाने दे। है जो सीने में कैद दरिया, वो छूट जाएगा, है इतना दर्द कि तेरा दामन भीग जाएगा।

एग्जैक्टली एक बार ये करके देखिए, अगर एक दूसरे के हाथ पे दूसरे का हाथ रहेगा, ये मैं उनके लिए कह रही हूँ जो घर के पुरुष वर्ग है, कई बार आप नहीं समझ पाते, आपके द्वारा कही गई बातें जो है ना दिलों में ऐसे सीधा घर करती है कि जाने अनजाने कहीं ना कहीं वो महिलाओं के घर की जो महिलाएं हैं उनके दिलों में एक जो डिप्रेशन का जो रीजन है ना उसको पैदा कर देती हैं। तो घरेलू महिलाओं की बात भी कर रहे हैं लेकिन साथ साथ वर्किंग वीमेन की बात भी आपसे पहले मैं करना चाहूंगी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है दफ्तर में अपनी योग्यता साबित करनी होती है, उन्हें घर तो संभाल ही रही है और जब घर की बात आती है तो एक आदर्श बहू पत्नी या फिर माँ की भूमिका भी निभानी है। तो ऐसे में शोध ये भी कहते हैं कि कामकाजी महिलाएं दफ्तर की 8 से 9 घंटे की शिफ्ट के बाद जब घर आकर घरेलू कामों की दूसरी शिफ्ट शुरू करती हैं तो इसे डबल बर्डन यानी कि दोहरा बोझ कहा जाता है, जो कहीं ना कहीं उन्हें स्ट्रेस करता है और फिर यहीं से जनरेट होता है अपराध बोध। वो अपराध बोध जो घर से जुड़े हुए कामों को पूरा अच्छे ढंग से ना कर पाने का एक अपराध देता है। बात जब बच्चों की हो या परिवार की हो, माता पिता की हो, सास ससुर की हो, ऐसा मन में कहीं ख्याल आने लगता है कि अरे हम सबकी जिम्मेदारियों को अच्छे से नहीं निभा पा रहे हैं, बच्चे कहीं बैठे हैं मोबाइल में लगे हुए हैं, हम उन्हें टाइम नहीं दे पा रहे क्योंकि हम खुद स्ट्रेस्ड हैं, या फिर कुछ प्रॉपर तरीके से घर में बनना है वो नहीं बना पा रहे क्योंकि हम इस खुद ही स्ट्रेस में हैं, हम उसको पूरा कैसे करें। तो ये तमाम सारे तनाव जो हैं ये डबल बर्डन की तरीके से महिलाओं के सिर पर कहीं एक बोझ को देते हैं जो अपराध बोध को जनरेट करता है और फिर एक मदर गिल्ट एक टर्म है वो यहां से पैदा होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें वर्क प्लेस बिजनेस की तो पुरुषों की तुलना में समान पद पर होने के बावजूद भी कई बार, ये नहीं कहते कि हमेशा ऐसा होता है बट अक्सर ऐसा होता है कि महिलाओं को कम आंका जाता है। और कहीं ना कहीं देखिए तो समाज की प्रथा भी रही है, ये कहा जाता है कि महिलाएं हैं थोड़ा सा सलीके से रहे, चौका चूल्हा संभाले, उन्हें तो घर की चार दीवारी में होना चाहिए। तो कहीं ये एक सोच एक ये प्रथा पुरातन काल से चली ही आ रही है, तो इसमें ना आप कुछ कर पाते हैं कई बार ना हम कुछ कर पाते हैं। तो ये एक सोच दिमाग में चलती ही चलती है जो अपराध बोध देती है, जो मेंटल फटीक देती है, जो डिप्रेशन का कारण बनती है, मेंटल लोड बढ़ता है दफ्तर की डेडलाइंस के साथ साथ, घर का काम सब खत्म करना है, बच्चों की पीटीएम कब है, उनको स्कूल भेजना है, सवेरे का नाश्ता, फिर दोपहर के खाने में क्या होगा, जब रात आएंगे, तमाम सारी चीजें हैं कैसे प्लानिंग करनी है, सारी प्लानिंग कहीं ना कहीं एक महिला के दिमाग में बैकग्राउंड में चलती है, खासकर जब वो एक वर्किंग वुमेन भी है और फिर वही स्थिति तनाव की, डिप्रेशन की, मेंटल फटीग की। तो कैसे इससे निपटेंगे ये आपको बताना है, लेकिन घरेलू महिलाओं के साथ क्या चुनौतियां होती हैं ये भी जानना जरूरी है। तो जब इस गाने की बात लौटेंगे तो उन चुनौतियों की बात होगी, उसके बाद हम उन निवारणों पर पहुंचेंगे, साथ ही योग कैसे आपके लिए मददगार हो

सकता है इन तनावों से निकलने के लिए, ये जानना भी बेहद रहेगा, जरूरी आपके लिए। तो बस फिलहाल जब तक ये गाना आप तक आ रहा है, खुद को थोड़ा सा सवार जाइए, संवारिए, अपने लिए भी थोड़ा सा वक्त निकालिए, क्योंकि आप खुश रहेंगी तो डेफिनेटली आपका मन खुश रहेगा, आपका परिवार खुश रहेगा, परिवार खुश रहेगा तो आप अपनी जिंदगी को बेहतर जिएंगी। और जीने के लिए एक और अच्छा साधन ये कि आप रेनबो से हमेशा यूं ही कनेक्ट रहें।

हम तो ये चाहते हैं कि कोई तो बहाना बने जब आपके दिल का हाल सवरे, आप खुद सजे सवरे, क्योंकि आपका ही जन्मसिद्ध अधिकार है। आप खुश रहेंगी तो जाहिर सी बात है आपका परिवार खुश रहेगा, आपसे जुड़े लोग खुश रहेंगे, और उसके लिए पूरी कोशिशों के साथ हम यहाँ आपके साथ तैनात हैं। तो बात कर रहे हैं हम आज आपसे वर्किंग वुमेन वर्सेज हाउस वाइफ्स, बढ़ता तनाव मानसिक एंड भावनात्मक, और उसमें जो योग है ना वो किस तरीके से सहायक हो सकता है। तो अभी हमने आपसे पहले बात की थी जब कामकाजी महिलाओं की बात आती है तो उनके साथ क्या क्या चीजें हो सकती हैं, लेकिन वहीं एट द सेम टाइम अगर हम घरेलू महिलाएं जो हमारी होम मेकर से जिनको हम कहते हैं, कई बार बहुत कुछ सुनना भी पड़ता है ना आपको, हाँ मुझे पता है दिल से कई सारी आवाज आई होगी, देखो ये बात तो होती है, अक्सर लोग कह देते हैं घर ही में तो रहती हो करती क्या हो, बट आपका सिर्फ ये कह देना कितना बड़ा दंश होता है शायद आप खुद भी नहीं समझ पाते। अक्सर ये मान लिया जाता है कि घरेलू महिलाएं चूंकि घर पे ही रहती हैं होम मेकर्स है इसलिए उन्हें कोई तनाव

अब नहीं होगा करना क्या है, दिन भर बस खाना बनाना है, घर को साफ सुथरा करना है, बच्चों की देखभाल करनी है, सास ससुर का ख्याल रखना है, पूरा दिन आपको सिर्फ और सिर्फ यही करना है। एक बार अगर मैं आपसे ये कह दूं, महाशय जो मेरे साथ जुड़े हैं इस वक्त, अगर मैं एक बार ये कह दूं कि आपको पूरा दिन रह करके आज घर की साफ सफाई करनी है, खाना बनाना है, बच्चों को भी देखना है, आपके मदर फादर को भी देखना है, यकीन मानिए आप रात तक आते आते निढाल हो जाएंगे। और फिर शायद आप ये समझ सकते हैं कि एक जो होम मेकर है, जो एक हाउस वाइफ है, वो सिर्फ हाउस वाइफ नहीं है बल्कि आपकी जिंदगी का एक वो हिस्सा है जो आपके आशियाने को सजा रही है, संवार रही है, बहुत कुछ आपको दे रही है। लेकिन हम और आप, हमारी ये सोच कि तुम तो घर में हो, करती क्या हो। घरेलू महिलाओं में डिप्रेशन का खतरा बहुत गहरा होता है, मानसिक शोध ये बताते हैं, जब इस तरीके की कोई बात आप कभी कई बार कह देते हैं। अक्सर कोई जब आपको जो काम घर पे कर रही है, जब उसकी कोई मान्यता, या फिर जैसे अगर एक वर्किंग वुमेन है वो घर से बाहर निकल रही है तो उससे एक माना भी जा रहा है कि हाँ घर से काम करने जा रही है, प्लस कुछ पैसा भी घर पे ला रही है, वेतन भी ला रही है। लेकिन एक होम मेकर तो घर में रह रही है तो कुछ काम का तो खास काम है नहीं, और पैसा भी नहीं मिल रहा अगर देखा जाए तो, वेतन भी नहीं मिल रहा, सुबह से रात तक बिना रुके काम करने के बावजूद उनके काम को अदृश्य काम यानी कि अनपेड लेबर माना जाता है। दिन भर में बस तमाम सारी टिप्पणियां, बदले में खाली यही आता है, और फिर नतीजा ये अकेलापन और एक रास्ता जो कहीं ना कहीं मानसिक अवसाद, डिप्रेशन, अकेलेपन और मेंटल जो फटीक है उसका कारण बनती है। और तो और रोज सुबह से रात तक एक जैसी दिनचर्या और जो चार दीवारी के भीतर रहने से ना सामाजिक रूप से जो कट जाती है ना, सोशल जो उनका एक स्टिग्मा होता है उसको भी झेलना पड़ता है, ये भी कहीं ना कहीं अवसाद का बहुत बड़ा रीजन बनता है। होंगी आपके आसपास ऐसी बहुत सारी महिलाएं, अगर आप ढूंढें तो अक्सर कहीं मन चिड़चिड़ा सा है, मन दुखी सा है, आपसे भी शेयर करती होंगी कि मुझे तो समाज की बहुत ज्यादा जानकारी नहीं, हमें ये नहीं आता या फिर हम वो नहीं कर सकते, क्योंकि उसके पीछे का रीजन उनसे सिर्फ इतना कह दिया गया है कि आप घर संभालिए, घर की जिम्मेदारियां देखिए, बाकी चीजों से आपका कुछ लेना देना नहीं। और जब ये तमाम सारी चीजें आती हैं जहां वो खुद पर निर्भर नहीं है, वित्तीय निर्भरता नहीं है, जहां पर वो अपने फैसले खुद नहीं ले सकती, जहां अपने लिए कुछ सोच नहीं सकती, एक हेल्पलेसनेस आती है और फिर यहां से शुरू होता है आइडेंटिटी क्राइसिस यानी कि पहचान का संकट। परिवार की देखभाल में अपनी खुद की पसंद, शौक और खुद की पहचान को पूरी तरह भुला देती हैं हम महिलाएं, और ये हम कतई नहीं चाहते। इसलिए बस अपने पर ध्यान देना है, अपने बारे में भी सोचना है, और इसमें पूरा पूरा साथ आपको भी देना है जिनका घर वो संभाल रही हैं। योग कैसे इसमें कारगर हो सकता है, अभी थोड़ी देर में जब हम आगे बढ़ेंगे आपके साथ उस पर भी बात करेंगे। साथ ही वो तमाम सारे और निवारण क्या हो सकते हैं, क्या आप खाएं, क्या आप करें, किन किन चीजों को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाएं, ये भी बातें आप तक पहुंचेंगी। बहरहाल 12:33 का वक्त, शत्रुपास वक्त आप सुन रहे हैं आपके अपने 107 FM रेनबो पर, आपकी दोस्त आपकी रुचा के साथ, स्पेशली ये आपके लिए, क्योंकि हम नहीं चाहते कि आप जो हैं तनाव में रहें, खुद को तनाव मुक्त रखिए, क्योंकि आप हैं तो दुनिया है, आप हैं तो घर है, आपसे हम हैं। इस बात को हमेशा अपने मन में रखिए, क्योंकि एक सिक्के के दो पहलू की तरह हैं आप भी और आपसे जुड़े परिवार के तमाम सारे लोग भी। मानते हैं आप इस बात को? अगर मानती हैं तो बस यही सुनते रहिए, जुड़े रहिए 107 FM रेनबो के साथ।

तो बस ये हाँ के ना वाली जो बात है ना, इसी को आपको अपने अंदर बैठा लेना है, इसी के साथ जिंदगी में आगे बढ़ना है कि कई बार कुछ चीजों के लिए हाँ तो कभी कभी कुछ चीजों के लिए ना भी कहना जरूरी है। अभी वो कैसे जरूरी है जब आगे बढ़ रहे हैं तो इसके बारे में भी जान लेते हैं। तनाव को कम कर, देखिए तनाव जो है ना वो हम सभी की जिंदगी का एक बहुत जरूरी जरूरी जरूरी हिस्सा बन ही गया। आप चाह कर भी उससे अलग नहीं हो सकते, लेकिन जब बात हमारी आपकी आती है, हमारी आपकी मतलब महिलाओं की आती है, तो ये तनाव कुछ ज्यादा ही घर कर जाता है। और फिर चाहे वो वर्किंग हो, फिर चाहे वो हाउस वाइफ हो, हमें इससे दो चार होना ही पड़ता है। लेकिन हमारी काबिलियत भी इसमें, कोई माने या ना माने, हम हैं तो महारथी, हम उससे भी खुद को निकाल ले कर बाहर ले आते हैं, तभी तो मल्टीटास्कर भी कहे जाते हैं। लेकिन पता है रिसर्च ये भी कहती है कि मल्टीटास्कर होने का भी बहुत बड़ा असर कहीं ना कहीं आपकी लाइफस्टाइल, आपके दिल और दिमाग पर पड़ता है, क्योंकि एक वक्त में कई सारे काम आपके दिमाग में चल रहे हैं, सब कुछ करना है और सब कुछ परफेक्टली करना है। ये जो एक बोझ है ना, ये आपके दिमाग की नसों में एक्स्ट्रा लोड डालता है। तो मल्टीटास्कर होना अच्छा है, बट कई बार खराब भी हो जाता है। लेकिन अगर बात जब है क्या करें क्या ना करें, तो कई बार हमें ना कहना भी सीखना चाहिए, जो अक्सर हम नहीं कहते, हम नहीं सीखते। बात जब महिलाओं की आती है तो जो हमारी शारीरिक और मानसिक क्षमता है ना, उसमें हम कई बार बहुत सारी जिम्मेदारियां ले लेते हैं, चाहते और ना चाहते हुए भी। तो अब कोशिश ये करनी है कि अगर थके हैं तो स्पष्ट रूप से आराम के लिए थोड़ा सा समय हमें मांग लेना चाहिए उनसे जो आपके अपने ही हैं। फिर चाहे वो ऑफिस की बात भी, अगर ऑफिस में थोड़ा थकी भी हैं आप, तो कुछ एक थोड़ा सा वक्त लीजिए जहां आप रिलैक्स हो सकती हैं। 5 मिनट के लिए बैठिए, सोचिए कि क्या करना है, उसकी प्लानिंग कर लीजिए, उसके बाद अगला काम करिए। हालांकि ऑफिस में थोड़ा दिक्कत हो जाती है, मुश्किल हो पाता है कि आप ये समय निकाल सके, लेकिन अगर आप एक हाउसवाइफ हैं तो आपके पास ये मौका हो सकता है कि आप अपने शरीर को थोड़ा सा रुकने के लिए, थमने के लिए कहीं एक वक्त निकाल लें। ना कहना सीखें कई बार, जो हम नहीं कहते, बाउंड्रीज सेट करना सीखें जो हम नहीं कहते। मी टाइम जो कि बहुत जरूरी है वो हम निकालते नहीं। दिन भर में कम से कम 30 से 45 मिनट हमें सिर्फ और सिर्फ अपने निकालने चाहिए। और जो आपके पसंदीदा शौक हैं, फिर वो चाहे संगीत हो, बागवानी हो, अगर कुकिंग भी है, पढ़ना भी है, लिखना भी है, या फिर खुद को सजाने संवारने का शौक भी है, तो वो भी आप इस जो मी टाइम है उसमें आप कर सकती हैं। इसके अलावा सबसे जरूरी जो चीज़ है वो है फाइनेंशियल, एक जो लिटरेसी है, वित्तीय साक्षरता जिसे कहते हैं, वो भी बहुत बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। आखिरी बार शॉपिंग कब की थी याद है आपको? याद भी होगा, या फिर कई सारे ऐसे हैं जिन्हें नहीं भी याद होगा। क्यों? क्योंकि आपके पास आपके अपने पैसे नहीं होंगे, आपने जो बचत बचत की भी होगी वो भी कहीं घर के ही खर्चों में निकल गई होगी, और फिर आप खड़ी होंगी कि हाय मुझे ये चीज लेनी थी, अब मैं कैसे लूं? बहुत दिनों से मैंने कोई कॉस्मेटिक नहीं खरीदा अपने लिए, मैं उसे कैसे लूं? बहुत दिनों से कोई अच्छी ड्रेस नहीं खरीदी, उससे कैसे लूं? और फिर ये जो लिटरेसी है ना, वित्तीय लिटरेसी जिसे आप कहते हैं, यहां से आप खुद को बहुत हेल्पलेस महसूस करती हैं, और ये आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी को लाता है। तो करना क्या है? करना यह है कि जिम्मेदारियों का समान बंटवारा कीजिए, और अगर जो घर के लोग हैं वो सराहना और संवाद की जो प्रक्रिया है उसको जरूर से रखें, बैठें, सुने, जाने, समझें कि आपकी घर की महिलाओं के दिल दिमाग में चल क्या रहा है, वो चाहती क्या है। और सबसे बड़ी जो जरूरी चीज है वो ये कि जो परफेक्शनिस्ट बनने का जो मोह है ना, उसको आपको छोड़ना होगा। सारे काम खुद पे लेने हैं, सब कुछ बढ़िया से करना है, क्योंकि आप तो मल्टीटास्कर हैं, आपको सुनना अच्छा लगता है, क्योंकि आप तो परफेक्शनिस्ट हैं, आपको सुनना अच्छा लगता है। तो माई ऑल डियर लवली लेडीज, जरा रुक जाइए, जरा थम जाइए, मोह रखिए, लेकिन हमेशा मोह रखना भी कई बार दिल को थोड़ा सा सुकून कम देता है, तो रुकना होगा। योग कैसे आपके लिए सहायक है, अब जब लौटेंगे ना तब इस बारे में बात करेंगे। 12:40 का वक्त, शत्रुपा आपके अपने 100.7 FM रेनबो पर।

अगर आपके मन में भी शंका है कि जो गिरे हैं ये कैसे सुलझे, जो मोह मोह के जो धागे हैं ना, इन्हें आप थोड़ा सा कम कैसे कर सके, इनकी उलझनों को आप कैसे सुलझा सके, तो बस आप बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पर हैं। वो प्लेटफॉर्म जिसे आप कहते हैं 100.7 FM रेनबो, जहां पर इस वक्त आप सुन रहे हैं शत्रुपा आपकी दोस्त रिचा के साथ। अच्छा, बात हमने आपसे करी हाउस वाइफ वर्सेज वर्किंग जो वीमेन है उनमें बढ़ते तनाव और कारणों की, लेकिन अब इनको इनका निवारण कैसे करना है वो भी थोड़ी सी बात बताई, लेकिन इन तमाम सारे निवारणों के बीच में योग आपके लिए कैसे कारगर हो सकता है, वो गिरह खोलने की जो बात कर रही है ना उसका रास्ता सीधा आपको योग से मिल सकता है। अभी देखिए कल ही हम सबने योग दिवस सेलिब्रेट किया है, आपने भी योग किया होगा, नहीं किया तो क्यों नहीं किया ये भी मेरा सवाल है, क्योंकि लाइफ के लिए ये बेहद जरूरी है। ये अगर आप

अपनी लाइफ में कहीं ढाल लेते हैं ना, तो यकीन मानिए लाइफ के बड़े सारे जो तनाव है वो तो कहते हैं चुटकियों में, ऐसे बोलते हैं ना चुटकियों में, यूं हल हो जाते हैं। तो इसलिए आपको आपकी लाइफ में योग का जो सम्मिश्रण है, योग का संयोजन है, उसको बना के रखना भी बेहद जरूरी है। कहते हैं कि न्यूरोलॉजिकल शोधों के अनुसार अगर हम देखें तो नियमित योग और प्राणायाम करने से शरीर में स्ट्रेस हार्मोन का जो स्तर है वो बहुत तेजी से घटता है और इम्यून सिस्टम मजबूत होता है। सोचिए थोड़ा सा योग और कितने सारे आपको लाभ उससे मिल सकते हैं। न केवल आपका मेंटल स्ट्रेस दूर होगा, जिसे आप बर्नआउट कहते हैं, जो काम की थकावट है, आप उसको भी रोक पाएंगे, बल्कि प्रभावी जरिया भी पाया जाता है। तब जब आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस में हो और खुश रहना चाहती हूँ, तो योग आपको खुश रख सकता है। एक रिपोर्ट ये कहती है कि महिलाओं में हार्ट अटैक के लक्षण जो है पुरुषों जैसे उनके सीने में दर्द वगैरह शुरू होता है, उससे बिल्कुल अलग होते हैं। दिल का दौरा अगर पड़ने पर जो होता है ना, वो एकदम से दर्द होना नहीं, बल्कि ज्यादातर जब थकान होती है या फिर कई बार सांस जब फूलती है, कई बार उन्हें वोमिटिंग की समस्या हो सकती है, जबड़ों में दर्द की शिकायत होती है, ये तमाम सारे लक्षण दिखते हैं और अक्सर बीमारी को पकड़ने में देर भी होती है। और ये तमाम सारी जो बीमारियां हैं ना, ये न्यूरॉन्स को शांत करती हैं तब जब आप योग का सहारा लेते हैं। तो योग इतना फायदेमंद आपको हो सकता है। अनिद्रा के अगर आप शिकार हैं तो भी आपके लिए योग फायदेमंद हो सकता है। कौन कौन से ऐसे आसन हैं जिनको आप करें, थोड़ा सा यहाँ आपको जरूर बताऊंगी और मैं चाहूंगी कि आप उनको सुने समझें और फिर आपकी जो डेली प्रक्रिया है उसमें उसको इसको कहीं इंक्लूड करें। और वो जो मी टाइम की मैंने आपसे बात की थी ना, डेली 20 से 30 मिनट का मी टाइम, और जब आप उस मी टाइम में इसे इंक्लूड करेंगी तो यकीन मानिए आप न केवल खुद को चुस्त दुरुस्त रखेंगी, बल्कि आपका घर परिवार सब खुश रहेगा। और फिर वो जो एक मन में एक चीज आती है ना कि एक दिन जाकर लाइफ हेल्दी होगी, अच्छी होगी, आप उसे जरूर अवेल करेंगी। तो क्या हो सकते हैं वो आसन, अगर जानना है ना तो बिल्कुल कान और ध्यान लगाकर बैठिए मेरे साथ, क्योंकि इस नेक्स्ट ट्रैक के बाद हम जुड़ेंगे आपसे और कुछ छोटे से आसन आपको बताऊंगी जिनको आप सुनिएगा, समझिएगा और फिर आपकी डेली लाइफ में उसको कम से कम 20 से 30 मिनट जरूर से आप इंक्लूड करेंगे। क्या समझिए आप?

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, आम सरिये के मुकाबले लगभग 20% ज्यादा ताकत।
3: RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास
2: और भरोसा।
3: जानो फिर मानो।
4: बरकत है ये औरत के कदमों की कि दरो दीवार को लोग घर कहते हैं। ये काजल जिन आंखों में आकर समर जाता है, ये माथा जो बिंदिया की किस्मत निखार जाता है। रसोइयों से उड़ती ममता की खुशबुएं त्योहारों और उत्सवों पर सजती महफिलें, संघर्ष की मिट्टी में खिलते मुस्कुराहट के फूल, दुनिया को खूबसूरत बनाने वाली खुद को न जाना भूल। हाँ, तुम हो शत्रु।

तो 12:52 का वक्त हो चुका है। उम्मीद करती हूँ कि अब आप बिल्कुल आपके रेडियो सेट्स के और करीब होंगी, क्योंकि अभी जो आप जानने जा रही हैं वो है योग का करिश्मा, वो योग जो आपको आपके मेंटल स्ट्रेस से चुटकियों में निकाल सकता है। बस जरूरत है कमर कस के उस योग की तरफ आपको बढ़ने की, जो अक्सर आप नहीं बढ़ती, क्योंकि आपको लगता है अरे कौन करे योग, इससे होगा क्या। मेरी बात मानिए, करके देखिए और उसके बाद आप खुद इस का जो फायदा है ना उसको महसूस कर पाएंगी, खासकर तब जब आप मेंटल डिप्रेशन का शिकार हैं, जब आप एंजाइटी का शिकार हैं। और इसके लिए कहते हैं चाइल्ड्स पोज जो है ना, शशकासन, ये बहुत ही आसान सा और बहुत ही अच्छा वाला एक आसन हो सकता है। करना कुछ नहीं है, आसन जो है ना ये आपकी रीढ़ की हड्डी के तनाव को दूर करता है और केंद्रीय जो तंत्रिका तंत्र यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसको शांत कर आपको एंजाइटी का है उसको तुरंत कम करता है। तो आप ये एक जो आसन है इसको आपकी वो जो 20 से 30 मिनट वाली रूटीन है ना मी टाइम वाला, उसमें शामिल कर सकती हैं। साथ ही साथ ताड़ासन जिसको आप, और साथ साथ वृक्षासन, ये दो आसन हैं जिनमें सीधे खड़े होकर किए जाने वाले आसन माने जाते हैं ये, और एकाग्रता को बढ़ाते हैं, आपको फोकस्ड करते हैं आपके काम के प्रति, और वो जो मानसिक भटकाव है ना उसको दूर करते हैं, आलस को दूर करते हैं। तो ये दोनों आसन भी आप आपके डेली रूटीन में शामिल कर सकती हैं, ताड़ासन वृक्षासन के साथ साथ शशकासन, और सबसे इंपॉर्टेंट एक और आसन हो सकता है, छोटा सा है लेकिन अगर आप करेंगी तो यकीन मानिए आप बहुत ज्यादा फायदा खुद में महसूस करेंगी, और वो है भ्रामरी प्राणायाम। सुनते होंगे कई बार, आप सुना आपने कई बार होगा लेकिन करते नहीं है। करना सिर्फ ये है कि आंखें और कानों को बंद करना है, और वो जो ओम की आवाज है ना जो भौरे की तरह गूंजती हुई आती है उसको आपको प्रोड्यूस करना है, और जब आप ये करेंगी तो मस्तिष्क के न्यूरॉन्स को शांत कर सकती हैं आप, वो जो आपको सोने की समस्या अनिद्रा की जो बीमारी है उसको आप नियंत्रित कर सकती हैं, साथ ही गुस्से पर भी आप कंट्रोल कर सकती हैं अगर बहुत ज़्यादा। और ये जाहिर सी बात है जब आप अवसाद में होती हैं, कई बार डिप्रेसिव मोड में होती हैं, तो चिड़चिड़ापन गुस्सा अपने आप कहीं आता ही आता है। तो ये तमाम सारे आसन जो हैं अगर आपको आपने इनको शामिल किया आपकी डेली लाइफ में रूटीन में तो काफ़ी फायदा मिल सकता है। अच्छा, हम कहते हैं चलिए ये सब कुछ भी मत करिए, अनुलोम विलोम तो आपने सुना है ना, किसने नहीं सुना होगा, और अगर आप वो भी नहीं कर सकती हैं तो फिर तो मुझे लगता है कि फिर क्या ही होगा, कैसे होगा, अभी मुझे तनाव दे देगा अगर आपने ये नहीं किया तो। तो बेहतर ये है कि भले आप ये तमाम सारे आसन ना कर सके, अनुलोम विलोम कहते हैं शरीर में ऑक्सीजन के प्रवाह को बढ़ाता है जिसमें कोर्टिसोल का स्तर नियंत्रित रहता है। तो कम से कम आप अनुलोम विलोम तो कर ही सकती हैं आपकी डेली लाइफ में, वो 20 से 30 मिनट के अंदर अगर आप निकालेंगी तो ये काम भी हो जाएगा, और कहते हैं योग का योग भी होगा, आप खुद को स्वस्थ भी रखेंगी, दुरुस्त भी रखेंगी, और जो मानसिक तनाव है उनसे भी खुद को आप बचा पाएंगे। तो योग को आपके जीवन का एक आधार बनाइए, क्योंकि कहते हैं जब आप योग करते हैं तभी जब आप योग करेंगे तभी तो दुनिया समाज में जो चीजें हैं उनको आप एक अच्छे मन अच्छे तन के साथ उसका उपयोग कर पाएंगे ना। साथ ही वो जो एक्स्ट्रा चाय कॉफी आप अपनी डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं उससे आपको बचना है, जंक फूड को बिल्कुल एक तिलांजलि देनी है, उसको मना करना कि भैया रुक जाओ अभी तुम्हारे लिए यहाँ कोई जगह नहीं है, कुछ देर बाद आना, अभी हमें अभी मूड नहीं।

है खाने का, तो कुछ ऐसा भी कहना पड़ेगा, क्योंकि जो जंक फूड है ना, ये चीजें खून में कहते हैं कोर्टिसोल का जो स्तर है उसको अचानक से बढ़ा देती हैं, जिससे आपको पैनिक अटैक और घबराहट बढ़ती है, और फिर वही समस्याएं कि हाँ डिप्रेशन है, थकान है और मेंटल स्ट्रेस है, तमाम सारी बीमारियां आपको होती हैं। शोध और क्लिनिकल डेटा इस बात की पुष्टि करते हैं कि महिलाओं का मानसिक स्वास्थ्य केवल दवाइयों से ठीक नहीं हो सकता। और ये जो बात है मैं स्पेशली घर के पुरुषों के लिए कह रही हूँ, जो आपके साथ हैं, फिर वो चाहे आपके पति हो, आपके घर में आपके पिता हो, भाई हो, ये तमाम सारे लोग जो भी हैं, उनके लिए स्पेशली कह रही हूँ कि सिर्फ और सिर्फ दवाओं से ठीक नहीं होगा, बल्कि यहाँ पर आपके साथ की भी जरूरत पड़ती है, आपका सहयोग भी। बैठ कर दो मिनट अगर आप उनसे बात कर लेते हैं, पूछ लेते हैं कि लाइफ में क्या चल रहा है, क्या अच्छा क्या बुरा, आप उनकी बातों को साझा कर करते हैं, तो यकीन मानिए स्ट्रेस का एस भी उनके पास नहीं आ सकता, क्योंकि साथ का साथ जो उनके साथ होता है, और ये आप ही उनको दे सकते हैं, ये आप ही उनको कर सकते हैं। फिलहाल 12:56 का वक्त हो चुका है, आज के शत्रुपा को हम यहीं वाइंड अप करेंगे, लेकिन इस उम्मीद के साथ कि जो हमारी महिलाएं हैं, अब आप अपना ध्यान पूरी तरीके से रखेंगी, रिश्तों में मधुरता घुलेगी तब जब आप और वो सब एक साथ रहकर, परिवार के साथ रहकर आपके बारे में सोचें, आप उनके बारे में सोचें, और इसके बाद ये जो जिंदगी है ना, ये बेहतर तरीके से आगे बढ़ सकती है। फिलहाल 12:57 का वक्त, उम्मीद करती हूँ कि आप अपनी हेल्थ के लिए अब सजग रहने की कोशिश करेंगे। दीजिए मुझे फिलहाल शत्रुपा से इजाजत, लेकिन अगले घंटे भी हम रहेंगे आपके साथ, लेकर आपके लिए आपका शो होठों पर तेरी बात। सुनते रहिए, इंडिया से जुड़े रहिए।

हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 FM पर। श्रोताओं, दोपहर के 1 बजे हैं और अब आप सुनेंगे आपके पत्रों पर आधारित अनुरोध गीत।

श्रोताओं, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अनुरोध गीत में, और साथ ही कीजिए स्वीकार हमारा प्यार भरा नमस्कार। और दोपहर के बजे हैं एक, और ये टाइम होता है आपके पत्रों पर आधारित अनुरोध गीत का। और पहला पत्र आप सभी का हम तक पहुंचा है अनुरोध गीत में, ग्राम रट्टे नगला अलीगंज एटा से हैं दीपक शाह के, ज्योति शाह के, अंकित, पूजा सक्षम और इनके परिवार के सभी सदस्य। मॉडल टाउन करनाल से हैं सुधीर नूतन, किरण ठाकुर, संदीप बुगलानी, जगमोहन प्रजापति। दौलतबाग मुदाबाद से हैं जाफर हुसैन, नईमा बेगम, कासिम अली, नदीम अली और जुनेद अब्बासी। ग्राम पठेना पाटन से हैं बलकरण, अंजनी वर्मा, ज्योति वर्मा, मुरली, शिवम, चटौदा। सारागांव से हैं सुजान, सुहद्रा वर्मा, आयुषी, निर्मला और क्रश वर्मा। बरेली जंक्शन से हैं गरीब भाई, नासिर भाई, अधिक भाई, मोहनलाल, सोनू, विक्की भारद्वाज, पदम भारद्वाज, सुंदर भाई और प्रदीप पाल नमन का। सुंदरखेड़ राजमाता नगर बुलडाणा महाराष्ट्र से हैं नरेंद्र नरवाड़े, ज्योति नरवाड़े, आकांक्ष नरवाड़े और आकाश कुमार का। लक्षणपुर से हैं रामजी साहू, जीवनलाल रजक। मोपका भाटापारा से हैं भेवेंद्र कुमार साहू, लकी हर्षित और सुमित्रा साहू। करगहना करेली बरेली से हैं गणेश कुमार, शगुन शर्मा, कार्तिक शर्मा, युवराज शर्मा, इशिता, वीर, संदीप, चंचल, सूरज शर्मा, चिंकी, अबलार, अंसारी और इनके परिवार के सभी सदस्य व साथी इनके दोस्त। प्रमीलागंज आलोर जिला रतलाम से हैं बलवंत कुमार वर्मा, राजू भाई, माया वर्मा, शोभा वर्मा, राहुल, ज्योति, अतुल, पायल वर्मा, प्रियांश और ऋषि वर्मा का। आसान नगर लक्सर हरिद्वार से हैं ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही और महराज जहां। आप सभी लोगों ने पसंद किया है ये गीत, फिल्म का नाम है ये दिल लगी और इस गीत को गाया है अभिजीत ने। शब्द रचना है समीर की और संगीत से सजाया है दिलीप सेन और समीर सेन ने।

0: कदरदान बच्चे बूढ़े और जवान, 100 बात की 1 बात है सही। सिर्फ पैसे भेजने के लिए QR स्कैन करते हैं या पिन डालते हैं, पैसे मिलने के लिए नहीं।
1: RBI कहता है QR कोड स्कैन करते समय या पिन डालते समय थोड़ा ध्यान से।

और श्रोताओं, ये पत्र हम तक पहुंचा है आप सभी लोगों का। अजीत नगर मलोट पंजाब से हैं छिंदर सिंह छिंदा, सतनाम कौर, दिलप्रीत सिंह, गणदीप कौर और रौनकदीप कौर का। कटरा चांद खां मौर्य मंदिर वार्ड नंबर 11 पुराना शहर बरेली से हैं अनोखे लाल मौर्य, सुंदर देवी मौर्य, प्रकाश, रिंकी, कपिल, वेदराम, कैलाश, सुनील, खुशबू, आरोही और स्वाति मौर्य का। ग्राम अमलेश्वर से हैं डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारिणी, सूरज, ज्योति, रियांश और गुड़िया ठाकुर का। राजनंद गांव से हैं याकूब आसमा, यूसुफ आसमा, इमरान आसमा, इरफान आसमा। जेल रोड रायगढ़ से हैं रेशमा तिवारी, सोनम तिवारी और आदिबा तिवारी। वजीरगंज जिला बदायूं से हैं प्रेम कमल वाशने, सुशीला कमल वाशने, प्रभात कमल वाशने, अमरीश, सलोनी, सचिन, नीरू, देविका, कार्तिक, वेदरिचा और ऐश्वर्या कमल वाशने का। कुंज निवास धाकुंज इज्जत नगर बरेली से हैं वीके जौहरी विनोद, अर्चना जौहरी, अर्पी जौहरी और शायना बी का। करुला मुरादाबाद से हैं अयूब खान, इरम गुड़िया, शोएब खान, नावेद खान और सिंधौली मीरगंज बरेली से हैं जीशान वारसी। पुराना तालाब डुमराव से हैं वली उल्लाह अंसारी, अरमा नाज अंसारी और इनकी बेटी सोनम। सारिंगपुर बक्सर से शरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून अंसारी, मोहम्मद समी अंसारी। इंदिरा बिहार दिल्ली से हैं डब्लू अंसारी और बेबी अंसारी। छटिया पोखरा डुमराव से हैं लाल बाबू दीवाना और दिव्या भारती। अमरपुर पेंड्रा छत्तीसगढ़ से हैं दीपक कुमार, रोशन कुमार, वंशीलाल, रेखा देवी, श्वेता देवी, सुरुचि देवी, दिशा और लवि श्रीवास्तव का। शिवाजी चौक राजीव छत्तीसगढ़ से हैं अनिल कुमार, अंजुलता, आदित्य कुमार और कृष श्रीवास्तव। महाराजा रेडियो श्रोता संघ जिला खंडवा ग्राम लोहारी से हैं राजेश कुमार धनजे, राहुल कुमार धनजे, विशाल कुमार धनजे, शीला धनजे, गायत्री धनजे। खुर्दी रोड मानपुर से हैं विजय वैद, रानी वैद, महिमा वैद, नीतू वैद और इनके परिवार के सभी सदस्य व साथ ही इनके दोस्त। आप सभी लोगों ने पसंद किया है फिल्म ये है जलवा का ये गीत। इस गीत को गाया है कुमार सानू और अलका याग्निक ने।

0: हर्ट्ज यानी कि आकाशवाणी बरेली आपकी सेवा में सदैव तत्पर है। आपके फरमाइशी गीतों के कार्यक्रम अनुरोध गीत आपकी पसंद आपकी बात आकाशवाणी के साथ को श्रोता न केवल सुनते हैं बल्कि देश के अलग अलग राज्यों से इनमें बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लेते हैं। हमारे केंद्र से हर वर्ग के लिए कोई ना कोई कार्यक्रम प्रसारित होता है। युवा साथियों के लिए युववाणी, बहनों के लिए नारी संसार, किसान भाई बहनों के लिए ग्राम जगत, और अब आप जिस कार्यक्रम में चाहें उस कार्यक्रम में जब चाहें तब अपने प्रोडक्ट्स का विज्ञापन भी करा सकते हैं। जी हाँ, बहुत ही किफायती दरों में विज्ञापन बुक करें आकाशवाणी बरेली केंद्र से। ज्यादा जानकारी के लिए हमें ईमेल करें। हमारी ईमेल आईडी है airbareli@gmail.com। एक बार फिर से सुन लीजिए airbareli@gmail.com।
1: श्रोताओं, रेडियो हेल्पलाइन संबंधी एक सूचना सुनिए। स्वास्थ्य संबंधी विषय पर होने वाले हमारे फोन इन कार्यक्रम रेडियो हेल्पलाइन में मंगलवार दिनांक 23 जून 2026 को शाम 7:31 पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम का विषय है समय से पूर्व पैदा हुए नवजात शिशुओं की गंभीर स्थिति और इलाज में वेंटिलेटर व अन्य मशीनों की भूमिका। इसकी रिकॉर्डिंग हम करेंगे। सोमवार दिनांक 22 जून 2026 को शाम 4:00 से, यानी आज शाम 4:00 से। और इस संबंध में यदि आपका कोई भी प्रश्न हो तो टेलीफोन नंबर 2517200 पर फोन करें। आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए हमारे स्टूडियो में बरेली के बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कुलदीप गंगवार उपस्थित रहेंगे। विवरण एक बार फिर सुन लीजिए श्रोताओं। विषय रहेगा समय से पूर्व पैदा हुए नवजात शिशुओं की गंभीर स्थिति और इलाज में वेंटिलेटर व अन्य मशीनों की भूमिका। रिकॉर्डिंग की तारीख और समय याद रखिएगा, सोमवार दिनांक 22 जून 2026 को शाम 4:00 से। और हमारा टेलीफोन नंबर है 2517200 और बरेली का एसटीडी कोड है 0581। सूचना समाप्त हुई।

श्रोताओं, इन दिनों गर्मी तो बहुत पड़ी रही है, वो तो नेचुरल रूप से है, प्राकृतिक रूप से पड़ी रही है, लेकिन हम जो हैं हम तो बहुत कुछ कर सकते हैं ना। अगर हम अपना विशेष ध्यान रखें तो हम अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखें तो इस गर्मी से हम आराम से सर्वाइव कर जाएंगे। और थोड़ा बहुत वेट भी कीजिए, हो सकता है थोड़े बहुत दिनों में जो है वर्षा वर्षा हो सकती है या छिटपुट बूंदें गिर सकती हैं, आंधी तूफान तो मौसम ठंडा सकता है, लेकिन आप सबसे बड़ी बात ये बहुत ज़रूरी हो तभी दोपहर में घर से बाहर जाइए, जहाँ तक हो शाम में जाइए, अवॉइड कीजिए। जो लोग ऑफिस जाने वाले हैं, जाहिर सी बात है भाई, मतलब वर्किंग लोग हैं, उन्हें तो जाना ही जाना है, लेकिन वो अपने आप को हर तरीके से कहना चाहिए कि एक तो कॉटन के कपड़े पहने, इन दिनों प्योर कॉटन के कपड़े पहने, हल्के कॉटन के, और दूसरी बात ये कि अपने आप को पूरा पैक करके आप गॉगल्स भी लगाइए इस समय अपनी आइस पर। सबसे बड़ी बात है, इस समय ये मत सोचिए कोई कहेगा कि अरे वाह ये तो हीरो बन के चल रहे हैं, मेन बात ये है आपको अपनी आँखें बचानी है इस कड़कड़ाती चिलचिलाती धूप से, क्योंकि आँखों में दर्द होता है आपकी और फिर दिक्कत होती है, आँखों से पानी आने लगता है। इसलिए अपने आप को पूरा रैप कीजिए, अपने फेस मास्क लगाइए, कैप पहनिए, अच्छे से जाइए, अपने हाथों और पैरों को भी पूरा फुल ढक कर रखिए कॉटन वाले, उसे वो कीजिए, ग्लव्स आते हैं कॉटन के, सॉक्स आते हैं, उन्हें पहनिए। और सबसे बड़ी बात, अपने साथ एक पानी की बोतल रखना बिल्कुल ना भूलें। पानी की बोतल अगर आप थोड़ा लंबे टूर पे हैं तो डबल रख लें, पानी की बोतल अपने साथ ज़रूर रखें, बॉडी को हाइड्रेट रखें। ये ना सोचें कि अरे भाई अभी थोड़ी दूर तो जाना है, ये बिल्कुल ना करें, क्योंकि पता नहीं चलता कब हमारी बॉडी जो है मतलब एकदम से बीपी लो हुआ या मतलब हाइड्रेट नहीं, मतलब थोड़ा दिक्कत हुई उसमें, तो वो अपना जो है चक्कर वक्कर आने पर दिख जाएगा कि हाँ हमने ये नहीं करा। थोड़ी सी भी लापरवाही बरतने की आवश्यकता नहीं है। और अब इस ये प्रथम तक पहुँचा है आप सभी लोगों का फूलबाग किला छावनी बरेली से है विशेंद्र।

भारद्वाज, शिवदत्त भारद्वाज, गंगादत्त भारद्वाज, विक्की, वर्षा, कविता, कल्पना, यीशु, भावना, आदित्य, देवकी देवी भारद्वाज, शिप्रा नीलम भारद्वाज, मिनी देवी भारद्वाज और श्री राम राठौर का मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से हैं। अभिजीत घबड़ाकर रही, सरिता घबड़ाकर, सिद्धांत, प्रिंस एकांश, शैलेश वैशाली, श्वेता सुमित और ध्वनि घबड़ाकर का। परीमहल कासगंज से हैं आबाद खान, गजाला खान, अल्ताफ नबील, एम असलम सैफी और गंज डंडवारा से हैं आप शमसुल कमर राही। डाबर तालाब लोनी से हैं रजा अहमद, आरिश हुसैन, ईशान हुसैन, मरियम और बुशरा। लक्षनपुर छत्तीसगढ़ से हैं विश्वनाथ साहू, पंकज साहू, तिरुपति साहू, थनक्ष, आरू साहू और यादव मोहल्ला। सनावत मध्य प्रदेश से हैं दिलीप मालाकार, योगेश मालाकार, सुनीता मालाकार और मुस्कान मालाकार। मोहल्ला हलवाइयां शेरकोट बिजनौर से हैं मोहम्मद बक्कार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, साजदा रानी और हिना कौसर का। सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से हैं कमरुल्ला, नसीम बेगम, आयशा खान, हदिया खान, असमा सालिया, शोएब खान, पोतरा मुस्तफा खान, राउफ भाई, शाहिद भाई और गांधीबाग अकोला से रमेश कटनकर, वैशाली कटनकर। खरगोन मध्य प्रदेश से हैं ग्राम बहरामपुर से डॉक्टर त्रिलोक चंद्र वर्मा, श्रीमती भागवत वर्मा, अभिषेक सीमा वर्मा, अमित वर्मा, सचिन, समर राज, आर्यन वर्मा, बेबी आरोही, इशिका वर्मा, अंजलि, श्वेता वर्मा और इनके परिवार के सभी सदस्य व साथ ही इनके दोस्त। आप सभी लोगों ने पसंद किया है साजन फिल्म का ये गीत जिसे गाया है अनुराधा पौडवाल ने। शब्द रचना है समीर की और संगीत से सजाया है इस गीत को नदीम श्रवण ने। फिल्म का नाम है साजन।

FM 100.4 MHz यानी आकाशवाणी बरेली आपके सेवा में सदैव तत्पर है। आपके फरमाइशी गीतों के कार्यक्रम अनुरोध गीत आपकी पसंद आपकी बात आकाशवाणी के साथ को श्रोता न केवल सुनते हैं बल्कि देश के अलग अलग राज्यों से इनमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा भी लेते हैं। हमारे केंद्र से हर वर्ग के लिए कोई न कोई कार्यक्रम प्रसारित होता है। युवा साथियों के लिए युववाणी, बहनों के लिए नारी संसार, किसान भाई बहनों के लिए ग्राम जगत, और अब आप जिस कार्यक्रम में चाहें उस कार्यक्रम में जब चाहें तब अपने प्रोडक्ट का विज्ञापन भी करा सकते हैं। जी हाँ, बहुत ही किफायती दरों में विज्ञापन बुक करें आकाशवाणी के बरेली केंद्र से। ज्यादा जानकारी के लिए हमें ईमेल करें। हमारी ईमेल आईडी है airbareli@gmail.com।

श्रोताओं, ये पत्र हम तक पहुंचा है आप सभी लोगों का। जसपुर उत्तराखंड से हैं रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज रिफाकत, रानी तबस्सुम रुखसार और मोहम्मद आशिफ का। छत्तीसगढ़ भाटापारा रतरेंगी से हैं द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा और जावेंद्र कुमार वर्मा का। अस्तुपुरा जिला मऊ से यूपी से हैं मजहर अली अंसारी, रजिया बेगम अंसारी, सादिक और साजिद। बहादुरगंज गाजीपुर उत्तर प्रदेश से हैं आजाद अली अनवर, रिजवाना परवीन, अब्दुल्ला आजाद। पाकिजा रेडियो श्रोता संघ इस्लामपुरा सनावत से हैं मोहम्मद सादिक, मोहम्मद शाकिर, मुश्ताक अहमद, बेबी मंतशा और रमेश गौड़ का। वीरमगांव गुजरात से हैं अजीत भवसार, भावेश सनी, हेतल कृष्णा, जैमिन भवसार। झालावाड़ राजस्थान से हैं हर्षिता रामेश्वर कान्हा, सफलता कपिल मीनाक्षी, सत्यनारायण मनोहर पाई और प्रभुलाल बागरी। बरेली कैंट रेलवे केबिन के पास नेठी बरेली से हैं विनेश कुमार, रागिनी श्रीवास्तव और मुस्कान। आदर्श नगर मलोट पंजाब से हैं राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा और शाइना शर्मा का। मोहल्ला दुर्गा प्रसाद बिसलपुर जिला पीलीभीत से हैं विमल वर्मा, विनय वर्मा और उनके परिवार के सभी सदस्य। चंडीगढ़ से हैं सतीश अनेजा और विमला अनेजा। गड़ैया बरेली मस्जिद के पास से हैं मोहम्मद केसर शमसी, मोहम्मद अजीम शमसी, सलीम शमसी, नवेश शमसी, रजिया शमसी और बेबी का। औरंगाबाद से हैं राजेश साबले पाटिल, शीतल राजेश, राजदीप राजेश, राशि राजेश। बिरडी से हैं हुकुम करमरकर, सुनीता करमरकर, हार्दिक प्राची और तनु करमरकर का। ग्राम बगबुड़पा पथरिया से हैं नरेंद्र नेताम, कुसुम नेताम, प्रोनिका प्रोनामिका, उत्कर्ष नेताम। ग्राम बुड़गहन छत्तीसगढ़ से हैं रामदुलारी प्रजापति, रामशरण, चंद्रेश कुमार प्रजापति, चंद्रकांता और शशिकांता प्रजापति। गांव चौहलादा से हैं बागपत से संजय ढिंगिया, नमन मुस्कान और कुणाल। ग्राम करेली प्राणी मस्जिद जिला बरेली से हैं लाल मोहम्मद अंसारी, लालू अंसारी, मोहम्मद तबरेज अंसारी, अब्रार हुसैन अंसारी, बबलू कैप्टन निसार, मस्तान बाबा का। आप सभी लोगों ने पसंद किया है ये गीत, फिल्म का नाम है तुम।

मेगाहर्ट्ज यानी कि आकाशवाणी बरेली आपकी सेवा में सदैव तत्पर है। आपके फरमाइशी गीतों के कार्यक्रम अनुरोध गीत आपकी पसंद आपकी बात आकाशवाणी के साथ को श्रोता न केवल सुनते हैं बल्कि देश के अलग अलग राज्यों से इनमें बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लेते हैं। हमारे केंद्र से हर वर्ग के लिए कोई ना कोई कार्यक्रम प्रसारित होता है। युवा साथियों के लिए युववाणी, बहनों के लिए नारी संसार, किसान भाई बहनों के लिए ग्राम जगत, और अब आप जिस कार्यक्रम में चाहें उस कार्यक्रम में जब चाहें तब अपने प्रोडक्ट्स का विज्ञापन भी करा सकते हैं। जी हाँ, बहुत ही किफायती दरों में विज्ञापन बुक करें आकाशवाणी बरेली केंद्र से। ज्यादा जानकारी के लिए हमें ईमेल करें, हमारी ईमेल आईडी है airbareli@cbs.gmail.com। एक बार फिर से सुन लीजिए airbareli@cbs.gmail.com।

0: श्रोताओं, रेडियो हेल्पलाइन संबंधी एक सूचना सुनिए। स्वास्थ्य संबंधी विषय पर होने वाले हमारे फोन इन कार्यक्रम रेडियो हेल्पलाइन में मंगलवार दिनांक 23 जून 2026 को शाम 7:31 पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम का विषय है समय से पूर्व पैदा हुए नवजात शिशुओं की गंभीर स्थिति और इलाज में वेंटिलेटर व अन्य मशीनों की भूमिका। इसकी रिकॉर्डिंग हम करेंगे सोमवार दिनांक 22 जून 2026 को शाम 4 बजे से। इस संबंध में यदि आपका कोई प्रश्न हो तो हमें टेलीफोन नंबर 2517200 पर फोन करें। आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए हमारे स्टूडियो में बरेली के बाल विशेषज्ञ डॉक्टर कुलदीप गंगवार उपस्थित रहेंगे। विवरण एक बार फिर सुन लीजिए। विषय रहेगा समय से पूर्व पैदा हुए नवजात शिशुओं की गंभीर स्थिति और इलाज में वेंटिलेटर व अन्य मशीनों की भूमिका। रिकॉर्डिंग की तारीख और समय याद रखिएगा, सोमवार दिनांक 22 जून 2026 को शाम 4 बजे से। और हमारा टेलीफोन नंबर है 0581 बरेली का एसटीडी कोड है और 2517200 ये हमारा टेलीफोन नंबर है। सूचना समाप्त हुई।
1: एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे सोमवार से शुक्रवार पूर्वाह्न 11:30

0: एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे सोमवार से शुक्रवार पूर्वाह्न 11:30 पर।
1: श्रोताओं, अनुरोध गीत में ये पत्र हम तक पहुंचा है आप सभी लोगों का। कोटवा नारायणपुर बाबापट्टी बलिया से हैं ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय, दुविहा नेवादा गाजीपुर से हैं प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय, प्रांजल राय, शेरपुर कला गाजीपुर से हैं अवधेश राय, प्रीति राय और नवनीत राय का। पीपरपारा पालचुआ मुंगेली छत्तीसगढ़ से हैं उत्तरा कुमार दिवाकर, परमेश्वरी दिवाकर, योगिता दिवाकर, नितिन वंशिका दिवाकर। दिल्ली शहर मोरी गेट से हैं कन्हैया लाल, रीता देवी, शिल्पा रानी, आकाश कुमार। बनकारा मंदिर बीडीए कॉलोनी से हैं आप सभी लोग करगना बरेली से बेनी सिंह सागर, पन्नीलाल सागर, आशीष कुमार सागर, अमर सिंह, हितेश सागर उर्फंटी, राजेश कुमार वर्मा, रूबी भारती, एकता भारती, दिव्या भारती, रचना भारती, श्रीमती ओमवती भारती, रफनक शगुन, सारांश, आयांश, अदिति वर्मा, शिवांश और प्रथम सिंह का। मिलक भूजपुर आशा जिला मुरादाबाद से बड़ी मस्जिद के पास से हैं रजा हुसैन, शाहिद हुसैन, आदिल हुसैन, शहजाद हुसैन। बड़ी जंक्शन से हैं गरीब भाई, नासिर भाई, सादिक भाई, विक्की भारद्वाज, अमान भारद्वाज, महीपाल, प्रदीप पाल, नमन, संतोष और नितिश सोनू का। बक्सरिया फरीदपुर बरेली से हैं रामप्रसाद तोमर, मुरली देवी, मनोरमा देवी, भाग्यवती तोमर, रक्षपाल और बिट्टू तोमर का। ग्राम शकरपुर पोस्ट सुसावा जिला बदायूं उत्तर प्रदेश से हैं सोमेंद्र यादव, पुष्पेंद्र यादव, आनंद, सनोज, अमन, सोनी, अंकिता, विनीता, अनीता, सुनीता और सूरजश्री यादव का। खुर्जा उत्तर प्रदेश से हैं आप लोग तिलकराज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा। मौला तलैया उड़ला जागीर से हैं फजरुद्दीन भाई, अब्रार भाई, अफजाल भाई, रामप्रसाद शर्मा। गैंगटा काशी धर्मपुर बरेली से हैं फहीमखा, सिद्दीकी अली और साबिया। धुने नगर से हैं ठाकुर मुन्ना सिंह कठेरिया। पीर बहुड़ा बरेली से हैं आजाद खान, दिलशाद, मुस्तकीम और तवस्सुम। कृष्णानगर टीवी टावर सेमिनरी हिल्स नागपुर से हैं नाना डोंगर दीवे, रमाताई डोंगर दीवे, सीमाताई, रीमाताई, दीक्षाताई और राहुल डोंगर दीवे का। नगरिया सोवरनी शीशगढ़ बरेली से हैं जगवती देवी, संतोष शर्मा, अंजू पाठक, राजीव और रघुवीर पाठक का। खमरिया बिलासपुर से हैं साबित खान, सावित्री देवी, धर्मेंद्र प्रजापति और प्रतीक कुमार। आप सभी लोगों ने पसंद किया है फिल्म अजूबा का ये गीत जिसे गाया है मोहम्मद अजीज और अलका याग्निक ने। शब्द रचना है आनंद बख्शी की और संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। आपकी पसंद, आपकी नज़र।

और श्रोताओं, ये पत्र हम तक पहुंचा है अब ये अनुरोध गीत की आखिरी पेशकश आप सभी के अनुरोध पर। बठिंडा पंजाब रेलवे कॉलोनी से हैं जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जेएस नायक, शोभा नायक और उनके परिवार के सभी सदस्य व साथी इनके दोस्त डोंगरगांव जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से हैं। राष्ट्रपाल गजबीय, राधिका गजबीय, बेबी अनिष्का और तन्मय गजबीय का। गंजुंडवारा उत्तर प्रदेश से हैं मुनव्वर अल्लाह भाई, मिर्जा नसरीन बबली, अरबाज खान, शहबाज खान, पप्पू भाई, अफसाना बेगम, महजबी शेख और इनके परिवार के सभी सदस्य व साथी इनके दोस्त गांव कुमार हेड़ा जिला सहारनपुर से हैं सैयद मसरूर, गुलजार जहां, अजहर हसन, इब्राहिम, नाजिया आफिया। गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर विरक, जैतेक विरक और मीका विरक। और ये पत्र हमारे पास पहुंचा है छावनी अशरफ खां मंदिर के सामने से हैं आप सभी लोग, रीता, विनोद कुमार, वंश छोटी, गौरी काकू, वरुणाबा देवी, अजय शर्मा, जयश्री देवी, वंदना शर्मा और राम प्रसाद शर्मा का, वन के परिवार के सभी सदस्य व साथी इनके दोस्त। मलोट कैंप पंजाब से हैं सतीश मिगलानी, सीमा, शाइना, विशाल मिगलानी, सुप्रिया, अनमोल, धर्मपाल, रमेश मिगलानी। गुरु नानक नगर मलोट पंजाब से हैं राजीव सेतिया, रजनी सेतिया, आरती सेतिया, तनिष सेतिया। जब वेदपुर बड़ा बाम्बो गांव सुपाई साई से हैं देवेंद्र तांती, राकेश तांती, कुमारी निशा, प्रकाश और देवेंद्र जी का। आकाशवाणी श्रोता संघ से हैं संतोष कुमार सोनार, त्रेन्द्र डंगवाल, रविंद्र सोनार, सन्नी मनु मुन्ना और बंडू दादा का, जिला जलगांव बहादुरपुर से। आप सभी लोगों ने पसंद किया है ये गीत, फिल्म का नाम है बेवफा सनम और इस गीत को गाया है उदित नारायण और अनुराधा पौडवाल ने। शब्द रचना है समीर और मजू सुल्तानपुरी की और संगीत दिया है आनंद मिलिंद ने।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे अनुरोध गीत में। आप अपनी पसंद के गीतों को हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 FM पर। श्रोताओं, कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि लगातार हम आपके साथ बने हुए हैं। और यातायात के नियमों का पालन कीजिए, यह आपकी जिम्मेदारी है। अपने और अपने आगे के वाहन से उचित दूरी बनाए रखें। बूंद बूंद कीमती है, कृपया जल का दुरुपयोग कदापि ना करें।

स्वागत सभी श्रोताओं का कार्यक्रम रसरंग में। रोचना जी ले चुके हैं स्टूडियो से विदा और मैं आपका साथी श्रृंगार शेखर पाठक स्टूडियो में आ चुका हूं और कार्यक्रम रसरंग का समय है, तो रसरंग कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस भजन के साथ।

0: हम सुन रहे थे ये गीत जबक फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज में, प्रेम धवन के बोल और चित्रगुप्त के संगीत के साथ। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। और आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: जानी मानी फिल्मी गीतकार सुधाकर शर्मा साझा कर रहे हैं अपने फिल्मी गीतों से जुड़े कुछ यादगार लम्हे और किस्से।
2: प्यार किया तो डरना क्या की सेकंड लाइन शकील साहब से अच्छी मैं नहीं लिख पाऊंगा, तो ऐसा मतलब मेरा एक परेशानी थी कि मैं क्या करूं। हिमेश जी ने एक रास्ता निकाला कि उन्होंने प्यार किया तो डरना क्या की एक ट्यून बना ली, कहा कि इस ट्यून को हम निभाएंगे, इसकी सेकंड लाइन नहीं लिखेंगे, बस इसको हुक लाइन रखेंगे। वो गाना करते करते हुक लाइन बनी ओढ़ली चुनरिया तेरे नाम।
1: जरूर सुनिएगा बॉम्बे टॉकीज में 27 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: जिनकी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
4: खून से है क्यों भीगा जिसमें ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती है, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
3: वो है शायर और गीतकार शकील आजमी।
5: एक टुकड़ा धूप का।
3: इस मंगलवार सेल्यूलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी।
4: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
3: 23 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। सदाबहार नगमे कार्यक्रम में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आइए सुनते हैं सदाबहार नगमे कार्यक्रम में ये सुंदर सा गीत जिसे हमने चुना है ससुराल फिल्म से। मोहम्मद रफी की आवाज है, हसरत जयपुरी के हैं बोल और संगीतकार हैं शंकर जयकिशन।

0: हम सुन रहे थे स्त्री फिल्म का यह गीत लता मंगेशकर की आवाज में भरत व्यास के बोलो सी रामचंद्र के संगीत के साथ में। आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
2: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: एक बेटी की यादों में उसके पिता
0: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर, एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
3: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
0: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था, तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक हैं।
3: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
0: हम लोग बंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा,
4: रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी, और इतनी
0: हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
3: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुनते हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे में ससुराल फिल्म का यह गीत लता मंगेशकर मोहम्मद रफी की आवाजों में शैलेंद्र के बोल और शंकर जयकिशन के संगीत के साथ।

0: बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुनते हैं सदाबहार नगमे इस कार्यक्रम में, जब प्यार किसी से होता है फिल्म से, यह गीत जो गाया है लता मंगेशकर ने और मोहम्मद रफी ने। हजरत जयपुरी के बोल हैं और संगीतकार शंकर जयकिशन।

हम सुन रहे थे गीत जब प्यार किसी से होता है फिल्म से, लता मंगेशकर मोहम्मद रफी की आवाजों में, हसरत जयपुरी के बोल शंकर जयकिशन के संगीत के साथ। आइए चलिए सुनते हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे का अगला नगमा, संजोग फिल्म से। लता मंगेशकर मुकेश की आवाजें हैं, राजेंद्र कृष्ण के बोल हैं, मदन मोहन का संगीत।

कार्यक्रम सदाबहार नगमे का अंतिम गीत आइए सुनते हैं, जंगली फिल्म से मोहम्मद रफी की आवाज में, हसरत जयपुरी के बोल और शंकर जयकिशन के संगीत के साथ। और आज्ञा दीजिए मुझे यानी विधि जैन को आज के इस कार्यक्रम से। नमस्कार, आप सबका मंगल हो।

0: सखी सहेली
1: सखी सहेली सुनने वाले सभी सखियों को और श्रोता भाइयों को

0: सखी सहेली
1: सखी सहेली सुनने वाले सभी सखियों को और श्रोता भाइयों को मंजरी वर्मा का प्यार भरा नमस्कार। और आज हमारे साथ हैं दीपा महेश्वरी। तो दीपा, आपको भी मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे
2: मंजरी? बिल्कुल अच्छे हैं। और तुम्हारे साथ हमारे सभी सखियों को, श्रोता भाइयों को मेरा दीपा महेश्वरी का हेल्दी नमस्कार।
1: क्या बात है,
2: हेल्दी इसलिए हमेशा ही बताते हैं कि कोई एक दिन, जैसे कि कल गया हमारा इंटरनेशनल योगा डे, एक दिन स्वास्थ्य को ध्यान रखने के लिए नहीं है, वो इसलिए है ताकि हम साल भर हर दिन अपना ध्यान खूब अच्छे से रख सकें और अपने परिवार को भी उसी वजह से खुशहाल भी रख सकें।
1: बिल्कुल दीपा, और ये बहुत अच्छी चीज है कि हमारे पास देखो मोबाइल की सुविधा भी उपलब्ध है, तो हम हर दिन अपने दोस्तों को ग्रुप में डाल सकते हैं कि आज योग किया कि नहीं किया, तो इस तरह की हम उन्हें याद भी दिला सकते हैं। तो एक दूसरे को जब हम प्रेरणा देंगे ना रोज रोज, गुड मॉर्निंग की जगह साथ में ये भी उसमें लगा दें कि आज योगा किया कि नहीं किया,
2: सही बात,
1: तो सबकी सेहत अच्छी रहेगी।
2: भले ही 10 मिनट के लिए या 15 मिनट के लिए, जितना भी आपके पास वक्त है और जो भी अच्छा लगता है, जो तरीका आपको अच्छा लगता है, जिस तरीके से आप एक कुछ वक्त अपने दिन का अपने स्वास्थ्य पर जरूर समर्पित कीजिए।
1: बिल्कुल। और दीपा, आज हमारी जो सखी सहेली के विषय हैं, तो वो हम बता देते हैं कि आज प्रादेशिक व्यंजन में हम कानपुर उत्तर प्रदेश की रंग बिरंगी चाट और हरी धनिया के आलू की तो बात करेंगे और हमारे साथी जो कुछ लेकर भेजेंगे तो उनको भी इसमें शामिल करेंगे।
2: बिल्कुल। और देखो, वर्षा ऋतु आने को है, इंतजार तो हो ही रहा है, सब लोग चाह रहे हैं कि अब जल्द से जल्द बारिश शुरू हो, तो उसके साथ साथ बहुत सारी सावधानियां शुरू हो जाती हैं, जैसे कि मच्छरों से बचाव, तो इस पे भी हम बात करेंगे। और संदेश आए हैं, हम चाहते हैं और ज्यादा से ज्यादा संदेश हमारे सभी श्रोता लिखकर भेजें।
1: बिल्कुल। और कथा सुधा में आज हम सुनवाने वाले हैं आभूषण कहानी का भाग 4। तो अभी तक लगातार सबने सुनी है आभूषण कहानी, तो आज उसका चौथा भाग, अंतिम भाग सुना जाएगा। और नवीन शिक्षा सत्र की शुरुआत जैसे कि हो गई है और हम देखते हैं दीपा की आज बच्चे जो है, छोटे छोटे बच्चे, बड़े बच्चे सब तैयार होकर स्कूल जा रहे हैं, तो उनका कैसा अनुभव होता है, या आपने बच्चों को स्कूल भेजने के पहले क्या क्या तैयारी करी, वो सब भी हमें छोटी छोटी बातें छोटे छोटे संदेशों में लिख सकते हैं, तो बहुत अच्छा रहेगा।
2: बिल्कुल। और एक ये गुंछा बना लिया है हमने कार्यक्रम का, तो ये सब तो हम कर ही रहे हैं बातें और आप सारे संदेश तो आएंगे, तब तक सुनते हैं ये सुंदर सा गीत।

0: मंजरी, अब तो बिना कुछ कहे हम चलेंगे सीधे कदासुदा की तरफ,
1: बिल्कुल,
0: जहाँ पे हम सुनने वाले हैं आभूषण का भाग 4।
1: जी
2: सुधा, भाव भरी कहानियों का सागर, जिसकी लहरें कभी मुस्कुराहट सजाएंगी तो कभी आंखें नम कर जाएंगी। सामाजिक सरोकार से लेकर परिवार तक की होंगी बातें, कुछ मनोरंजन होगा तो कुछ सीख भी मिल जाएगी। हर बार नई अनसुनी कहानी की अलग अंदाज में होगी बयानी। कहानी की मौलिकता बनाए रखते हुए श्रोताओं के लिए कार्यक्रम रोचक और सुगम हो, इसलिए कहानी में थोड़े बहुत बदलाव किए गए हैं। आशा है आपको कथा सुधा में डूबना अच्छा लगेगा।
3: कथा सुधा में सुनिए मुंशी प्रेमचंद की कहानी आभूषण।
0: पिछले भाग में आपने सुना,
4: विमल सिंह को घर छोड़े 2 साल हो गए थे। शीतला को अब उनके बारे में भांति भांति की शंकाएं होने लगी थीं। आठों पहर उसके चित्त में ग्लानी और क्षोभ की आग सुलगा करती थी। विमल की खेती बेगार में होती थी। उसके जाने के बाद सारे खेत परती रह गए, कोई जोतने वाला न मिला, असामियों ने लगान न दिया। शीतला ने महाजन से रुपए उधार लेकर काम चलाया। दूसरे वर्ष भी यही कैफियत रही। अब की महाजन ने रुपए नहीं दिए, शीतला के गहनों के सिर गई। दूसरा साल समाप्त होते होते घर की सब लेई पूंजी निकल गई, फाके होने लगे। 4 प्राणियों का खर्च था। उस पर ये और मुसीबत हुई, मायके में एक फौजदारी हो गई। 2 छोटे भाई, 1 बहन और माता, 4 प्राणी और सर पर आ डटे। गाड़ी पहले ही मुश्किल से चलती थी, अब जमीन में धस गई। सारी अमंगल शंकाएं इस विरोधाग्नि में शांत हो गईं। बस अब यही चिंता थी कि इस दशा से छुटकारा कैसे हो। उसकी सोचने की शक्ति निश्चल हो गई थी। चारों तरफ निगाहें दौड़ाती कि कहीं कोई शरण का स्थान है, पर कहीं निगाह न जमती। कुंवर साहब को गांव वालों से विमल सिंह के परिवारों के कष्ट की खबर मिली थी। वो गुप्त रूप से उनकी कुछ सहायता करना चाहते थे। मंगला के गृह त्याग के 3 महीने पीछे आज वो पहली बार घर से निकले थे। इसमें संदेह नहीं कि कुंवर साहब मन में शीतला के रूप रस का आस्वादन करते थे। मंगला के जाने के बाद उनके हृदय में एक विचित्र दुष्कामना जाग उठी। मनुष्य में बुद्धि के अंतर्गत एक अज्ञात बुद्धि होती है, जैसे रणक्षेत्र में हिम्मत हारकर भागने वाले सैनिकों को किसी गुप्त स्थान से आने वाली कुमक संभाल लेती

0: है, वैसे ही इस अज्ञात बुद्धि ने सुरेश को सचेत कर दिया। वो संभल गए, ग्लानी से उनकी आंखें भर आईं। उसी क्षण उन्होंने शीतला को पत्र लिखा।
1: बहन, तुमने इतने कष्ट झेले पर मुझे खबर तक न दी। मैं कोई गैर न था, मुझे इसका दुख है। खैर, अब ईश्वर ने चाहा तो तुम्हें कष्ट न होगा। इस पत्र के साथ अनाज और रुपये भेज रहा हूँ।
2: भैया क्षमा करो, जब तक जीऊंगी तुम्हारा यश गाऊंगी। तुमने मेरी डूबती नाव पार लगा दी है।
3: कहानी आगे क्या मोड़ लेती है, इसके लिए सुनिए मुंशी प्रेमचंद की कहानी आभूषण का चौथा और अंतिम भाग।
0: कोयल आम की डालियों पर बैठकर मछली शीतल निर्मल जल में क्रीड़ा करके और मृग शावक विस्तृत हरियालियों में छलांगे भरकर भी इतने प्रसन्न नहीं होते जितना मंगला के आभूषणों को पहनकर शीतला प्रसन्न हो रही है। उसके पैर जमीन पर नहीं पड़ते। वो दिन भर आईने के सामने खड़ी रहती है, कभी केशों को संवारती है, कभी सुरमा लगाती है। कोहरा फट गया है और निर्मल स्वच्छ चांदनी निकल आई है। वो घर का एक तिनका भी नहीं उठाती। उसके स्वभाव में एक विचित्र गर्व का संचार हो गया है। लेकिन श्रृंगार क्या है? सोई हुई काम वासना को जगाने का घोर नाद उद्दीपन का मंत्र। शीतला जब नखशिख से सज कर बैठती है तो उसे प्रबल इच्छा होती है कि मुझे कोई देखे। वो द्वार पर आकर खड़ी हो जाती है। गांव की स्त्रियों की प्रशंसा से उसे संतोष नहीं होता। गांव के पुरुषों को वो श्रृंगार रस विहीन समझती है, इसलिए सुरेश सिंह को बुलाती है। पहले वो दिन में एक बार आते थे, अब शीतला के बहुत अनुनय विनय करने पर भी नहीं आते। पहर रात गई थी, घरों के दीपक बुझ चुके थे। शीतला के घर में दीपक जल रहा था। उसने कुंवर साहब के बगीचे से बेले के फूल मंगवाए थे और बैठी हार गूंथ रही थी, अपने लिए नहीं, सुरेश के लिए। प्रेम के सिवा एहसान का बदला देने के लिए उसके पास और था ही क्या। एकाएक कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनाई दी और दम भर में विमल सिंह ने मकान के अंदर कदम रखा। उनके एक हाथ में संदूक था, दूसरे हाथ में एक गठरी थी। शरीर दुर्बल, कपड़े मैले, दाढ़ी के बाल बढ़े हुए, मुख पीला, जैसे कोई कैदी जेल से निकल कर आया हो। दीपक का प्रकाश देखकर वो शीतला के कमरे की तरफ चले। मैना पिंजरे में तड़फड़ाने लगी। शीतला ने चौंक कर सिर उठाया, घबरा कर बोली, कौन? फिर पहचान गई। तुरंत फूलों को एक कपड़े में छिपा दिया। उठ खड़ी हुई और सिर झुकाकर पूछा,
2: इतनी जल्दी सुध ली?
0: विमल ने कुछ जवाब न दिया। विस्मित हो कर कभी शीतला को देखता, कभी घर को, मानो किसी नए संसार में पहुंच गया है। ये वो अधखिला फूल न था जिसकी पंखुड़ियां अनुकूल जलवायु न पाकर सिमट गई थीं। ये पूर्ण विकसित कुसुम था, ओस के जल कणों से जगमगाता और वायु के झोंकों से लहराता हुआ। विमल उसकी सुंदरता पर पहले भी मुग्ध था, पर यह ज्योति वो अग्निज्वाला थी जिससे हृदय में ताप और आंखों में जलन होती थी। ये आभूषण, ये वस्त्र, ये सजावट। उसके सिर में एक चक्कर सा आ गया, जमीन पर बैठ गया। इस सूर्यमुखी के सामने बैठते हुए उसे लज्जा आती थी। शीतला अभी तक स्तंभित खड़ी थी। वो पानी लाने नहीं दौड़ी, उसने पति के चरण नहीं धोए, उसको पंखा तक नहीं झला। हत बुद्धि सी हो गई थी। उसने कल्पनाओं की कैसी सुरम्य वाटिका लगाई थी, उस पर तुषार पड़ गया। वास्तव में इस मलिन वदन अर्धनग्न पुरुष से उसे घृणा हो रही थी। ये घर का जमींदार विमल न था, वो मजदूर हो गया था। मोटा काम मुखाग्नि पर असर डाले बिना नहीं रहता। मजदूर सुंदर वस्त्रों में भी मजदूर ही रहता है। सहसा विमल की मां चौंकी, शीतला के कमरे में आई तो विमल को देखते ही मातृ स्नेह से विह्वल होकर उसे छाती से लगा लिया। विमल ने उसके चरणों पर सिर रखा। उसकी आंखों से आंसुओं की गरम गरम बूंदें निकल रही थीं। मां पुलकित हो रही थी। मुख से बात न निकलती थी।

0: एक क्षण में विमल ने कहा।
1: अम्मा ये देखता क्या हूँ?
2: अरे तुम तो जानते ही हो, स्वभाव ही ऐसा है तो कोई क्या करे।
1: सुरेश ने मेरा हुलिया क्यों लिखाया था?
2: वो तो तुम्हारी खोज लेने के लिए। अरे उन्होंने दया ना की होती ना तो आज घर में किसी को जीता ना पाते तुम।
1: बहुत अच्छा होता।
3: अपनी ओर से तो तुमने सबको मार ही डाला था, फूलों की सेज नहीं बिछा गए थे।
1: अब तो फूलों की सेज ही बिछी देखता हूँ।
3: तुम किसी के भाग्य के विधाता हो?
0: विमल सिंह उठकर क्रोध से कांपता हुआ बोला।
1: अम्मा अम्मा मुझे यहाँ से ले चलो, मैं इस पिशाचिनी का मुंह तक नहीं देखना चाहता। मेरी आंखों में खून उतरता चला आता है। मैंने इस कुल कलंकनी के लिए 3 साल तक जो कठिन तपस्या की है उससे तो ईश्वर मिल जाता, पर इसे ना पा सका।
0: ये कहकर वो कमरे से निकल आया और माँ के कमरे में लेट रहा। माँ ने तुरंत उसका मुंह और हाथ पैर धुलाए। वो चूल्हा जलाकर पूरियां पकाने लगी, साथ साथ घर की विपत्ति कथा भी कहती जाती थी। विमल के हृदय में सुरेश के प्रति जो विरोधाग्नि प्रज्वलित हो रही थी वो शांत हो गई, लेकिन हृदय दाह ने रक्त दाह का रूप धारण कर लिया। जोर का बुखार चढ़ाया, लंबी यात्रा की थकान और कष्ट तो था ही, बरसों के कठिन श्रम और तप के बाद यह मानसिक संताप और भी दुसह हो गया। सारी रात वो अचेत पड़ा रहा, मां बैठी पंखा झलती और रोती रही। दूसरे दिन भी वो बेहोश पड़ा रहा, शीतला उसके पास एक क्षण के लिए भी ना आई।
3: इन्होंने मुझे कौन से सोने के कौर खिला दिए हैं जो इनकी धौंस सहूं? यहाँ तो जैसे कंता घर रहे वैसे रहे विदेश, किसी की फूटी कौड़ी नहीं जानती। बहुत ताव दिखाकर तो गए थे, क्या लाद लाए।

0: संध्या का समय था, सुरेश को खबर मिली, तुरंत दौड़ते हुए आए। आज 2 महीने के बाद उन्होंने उस घर में कदम रखा। विमल ने आंखें खोली, पहचान लिया, आंखों से आंसू बहने लगे। सुरेश के मुखारविंद पर दया की ज्योति झलक रही थी। विमल ने उसके बारे में जो अनुचित संदेह किया था उसके लिए वो अपने को धिक्कार रहा था। शीतला ने ज्यों ही सुना कि सुरेश सिंह आए हैं तुरंत शीशे के सामने गई, केश छिटका लिए और विपत की मूर्ति बनी हुई विमल के कमरे में आई। कहां तो विमल की आंखें बंद थी, मूर्छित सा पड़ा था, कहां शीतला के आते ही आंखें खुल गईं। अग्निमय नेत्रों से उसकी ओर देखकर बोला,
1: अभी आई है? आज के 3रे दिन आना, कुंवर साहब से उस दिन फिर भेंट हो जाएगी।
0: ये सुनकर शीतला उल्टे पांव चली गई। सुरेश पर घड़ों पानी पड़ गया। मन में सोचा, कितना रूप लावण्य है पर कितना विषाक्त, हृदय की जगह केवल श्रृंगार लालसा। आतंक बढ़ता गया। सुरेश ने डॉक्टर बुलवाए पर मृत्युदेव ने किसी की न मानी। उनका हृदय पाषाण है, किसी भांति नहीं पसीजता। कोई अपना हृदय निकाल कर रख दे, आंसुओं की नदी बहा दे, पर उन्हें दया नहीं आती। बसे हुए घर को उजाड़ना, लहराती हुई खेती को सुखाना उनका काम है, और उनकी निर्दयता कितनी विनोदमय है। ये नित्य नए रूप बदलते रहते हैं, कभी दामिनी बन जाते हैं तो कभी पुण्यमाला, कभी सिंह बन जाते हैं तो कभी सियार, कभी अग्नि के रूप में दिखाई देते हैं तो कभी जल के रूप में। 3रे दिन पिछली रात को विमल की मानसिक पीड़ा और हृदय ताप का अंत हो गया। यम के दूत प्रायः रात ही को सबकी नजर बचाकर आते हैं और प्राण रत्न को चुरा ले जाते हैं। रात शोक का बाह्य रूप है। उसी समय विमल के घर से आर्तनाद सुनाई दिया, वो नाद जिसे सुनने के लिए मृत्युदेव विकल रहते हैं। शीतला चौंक पड़ी और घबराई हुई मरणशैया की ओर चली। उसने मृत देह पर निगाह डाली और भयभीत होकर एक पग पीछे हट गई। उसे जान पड़ा विमल सिंह उसकी ओर अत्यंत

0: तीव्र दृष्टि से देख रहे हैं। बुझे हुए दीपक में उसे भयंकर ज्योति दिखाई पड़ी। वो मारे भय के वहां ठहर न सकी। द्वार से निकल ही रही थी कि सुरेश सिंह से भेंट हो गई। कातर स्वर में बोली,
1: मुझे यहां डर लगता है।
0: उसने चाहा कि रोती हुई इनके पैरों पर गिर पड़ूं, पर वो अलग हट गए। जब किसी पथिक को चलते चलते ज्ञात होता है कि मैं रास्ता भूल गया हूं, तो वो सीधे रास्ते पर आने के लिए बड़े वेग से चलता है, झुंझलाता है कि मैं इतना असावधान क्यों हो गया। सुरेश भी अब शांति मार्ग पर आने के लिए विकल हो गए। मंगला की स्नेहमयी सेवाएं याद आने लगी। हृदय में वास्तविक सौंदर्य उपासना का भाव उदय हुआ। उसमें कितना प्रेम, कितना त्याग, कितनी क्षमा थी। उसकी अतुल पतिभक्ति को याद करके कभी कभी वो तड़प जाते।
2: मैंने घोर अत्याचार किया है, ऐसे उज्जवल रत्न का आदर न किया। मैं यूं ही जड़वत पड़ा रहा और मेरे सामने ही लक्ष्मी घर से निकल गई।
0: मंगला ने चलते चलते शीतला से जो बातें कही थीं, वे उन्हें मालूम थीं, पर उन बातों पर विश्वास न होता था। मंगला शांत प्रकृति की थी, वो इतनी उद्दंडता नहीं कर सकती। उसमें क्षमा थी, वो इतना विद्वेष नहीं कर सकती। उनका मन कहता था कि वो जीती है और कुशल से है। उसके मैके वालों को कई पत्र लिखे, पर वहां व्यंग और कटु वाक्यों के सिवा और क्या रखा था। अंत में उन्होंने लिखा,
2: उस रत्न की खोज में मैं स्वयं जाता हूं, या तो लेकर ही आऊंगा या कहीं मुंह में कालिख लगाकर डूब मरूंगा।
0: इस पत्र का उत्तर आया,
3: अच्छी बात है, जाइए, पर यहां से होते हुए जाइएगा। यहां से भी कोई आपके साथ चला जाएगा।
0: सुरेश सिंह को इन शब्दों में आशा की झलक दिखाई दी। उसे दिन प्रस्थान कर दिया और किसी को साथ नहीं लिया। ससुराल में किसी ने उनका प्रेममय स्वागत नहीं किया। सभी के मुंह फूले हुए थे। ससुर जी ने तो उन्हें पति धर्म पर एक लंबा उपदेश दिया। रात को जब वो भोजन करके लेटे, तो दोनों सालियां आकर बैठ गईं और मुस्कुराकर बातें करने लगीं। ये बातें कोई सामान्य बातें न थीं, उनमें व्यंग था। वो शब्द थे जो उसे मुंह चिढ़ा रहे थे और हकीकत बयां कर रहे थे और उसे आईना दिखा रहे थे। तभी एक क्षण में मंगला की माता आकर बैठ गई और बोली,
3: बेटा तुम तो बहुत पढ़े लिखे हो, देश विदेश घूम आए हो, कहीं सुंदर बनने की कोई दवा नहीं देखी?
2: माता जी, अब ईश्वर के लिए और लज्जित न कीजिए।
3: तुमने तो मेरी प्यारी बेटी के प्राण ले लिए, मैं क्या तुम्हें लज्जित करने से भी गई? जी में तो था कि ऐसी ऐसी सुनाऊंगी कि तुम भी याद करोगे, पर मेहमान हो, क्या जलाऊं? आराम करो।
0: सुरेश आशा और भय की दशा में पड़े करवटें बदल रहे थे। तभी अचानक द्वार पर किसी ने धीरे से कहा, कुछ फुसफुसाहट सुनाई दी। सुरेश ने आवाज पहचानी, मानो प्यासे को पानी मिल गया। एक क्षण में मंगला उसके सम्मुख आई और सिर झुकाकर खड़ी हो गई। सुरेश को उसके मुख पर एक अनूठी छवि दिखाई दी, जैसे कोई रोगी स्वास्थ्य लाभ कर चुका हो। रूप वही था, रंग वही था, पर आंखें और थीं।
4: अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की कहानी आभूषण का चौथा और अंतिम भाग। पात्र परिचय इस प्रकार से है, सूत्रधार रेणु चतुर्वेदी, विमल सिंह, जी श्याम, शीतला, पूनम त्रिपाठी, सुरेश सिंह, जयंत पात्रीकर, मंगला, ममता सिंह, शीतला की सास दीपा माहेश्वरी, मंगला की माँ राजश्री त्रिवेदी, प्रस्तुति अनुश्री पाठक, परिकल्पना एवं निर्देशन रेणु चतुर्वेदी।

0: पतंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
1: सभी श्रोताओं को आपके साथी अजीत का नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत आप सबका उमंग कार्यक्रम में। तो श्रोताओं, आइए सबसे पहले सुनते हैं हमेशा की तरह आज का सुंदर विचार, जिसे हमें भेजा है बड़ा बम चौक खंडवा से ममता मार्कंडेय और संजय मार्कंडेय जी ने। बड़ा खूबसूरत लिखा है। लिखते हैं, आर्थिक स्थिति मजबूत हो या ना हो, लेकिन खुश रहने के लिए मानसिक स्थिति का मजबूत होना और सकारात्मकता बहुत जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद मार्कंडेय जी आपके सुंदर विचार के लिए। सच है श्रोताओं, प्रसन्न रहने का सबसे बड़ा तरीका है सकारात्मक भाव को बनाए रखना। और आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है बन बघेरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से योगेश सारवा, आशा सारवा, नीरज, नीलेश, अंजलि और रोशनी सारवा जी का। दूसरा संदेश हमें मिला है डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव, तुषार देव, डॉली, बेबी, पूजा, पुष्कर, लेहान और जिज्ञासा के साथ साथ विराट तामुरिया, तेजस्वी और गौरव तामुरिया जी का। बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिम्पल देवांगन का। अगला संदेश हमें मिला है भटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता और कमला देवी गुप्ता जी का। और आइए सुनते हैं संदेश भेजने वाले कुछ और श्रोता।

ताओ के नाम। तो अगला संदेश हमें मिला है ऊपर कोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निघत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान, अबान और अब्बासी परिवार के सभी सदस्य। अगला संदेश हमें मिला है रानी गांव नगरी छत्तीसगढ़ से खिलेश कुमार साहू, चित्ररेखा साहू और शुभम साहू के साथ साथ सेजल साहू जी का। और अब बारी है श्रोताओं पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर जानने की। तो सुनिए हमारा पहला प्रश्न जो कि हमने आपसे पूछा था। हमारा प्रश्न था, एक लोहे की सुई पानी में डूब जाती है लेकिन लोहे का बना हुआ जहाज पानी में नहीं डूबता, ऐसा क्यों? तो इसका उत्तर जान लेते हैं। इसका उत्तर है, लोहे की सुई पानी में इसलिए डूब जाती है क्योंकि उसका घनत्व यानी डेंसिटी पानी के घनत्व से अधिक होता है। इसके विपरीत लोहे का जहाज बहुत बड़ा और अंदर से खोखला होता है जिससे उसका औसत घनत्व पानी से कम हो जाता है और वो अपने भार से अधिक पानी को हटाकर तैरता रहता है। हमारा अगला सवाल था कि लोकटक झील में तैरते हुए द्वीप किस चीज से बने हैं? इसका उत्तर है, लोकटक झील में द्वीप मिट्टी, घास और कई ऑर्गेनिक पदार्थों से बने हैं जिन्हें फुमदी कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न था, मानसरोवर झील के पास की खारे पानी की झील का क्या नाम है? तो इसका उत्तर है, मानसरोवर झील के पास की खारे पानी की झील का नाम है राक्षस ताल। और अब सुनिए हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न था, चिल्का झील में आने वाले प्रवासी पक्षी मुख्य रूप से किन किन देशों से आते हैं? तो श्रोताओं इसका उत्तर है, चिल्का झील में आने वाले प्रवासी पक्षी मुख्य रूप से चीन, साइबेरिया, रूस और मंगोलिया से आते हैं। और अब सुनिए हमारा अंतिम प्रश्न जो कि हमने आपसे पूछा था। हमारा अंतिम प्रश्न था, डल का अर्थ कश्मीरी भाषा में क्या होता है? तो इसका उत्तर है, डल का अर्थ होता है जलाशय या झील। तो श्रोताओं ये थे हमारे पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। अब सुनिए आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है, सूर्य एक गैस का गोला है जो हाइड्रोजन और हीलियम गैस से बना है। ये दोनों गैसें ठंडी होती हैं तो फिर सूर्य से गर्मी कैसे पैदा होती है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए। सूर्य एक गैस का गोला है जो हाइड्रोजन और हीलियम गैस से बना है। ये दोनों गैसें ठंडी होती हैं तो फिर सूर्य से गर्मी कैसे पैदा होती है? 8800440559 है हमारा IBRS नंबर और audio@ciet.nic.in है हमारे ईमेल का पता। आप इन पतों पर हमें प्रश्नों के उत्तर और संदेश भेज सकते हैं। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप ताजा जानकारी के लिए CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं। और अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो आइए सबसे पहले सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम। शीर्षक है राग सिंदूरा। इस कार्यक्रम में राग सिंदूरा की स्वरमालिका, आरोह, अवरोह, थाट और गायन समय के बारे में विस्तार से बताया गया है। श्रोताओं, संगीत विद्यार्थियों और शिक्षकों के साथ साथ ये कार्यक्रम सामान्य श्रोता वर्ग के लिए भी उतना ही उपयोगी है। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम राग सिंदूरा।

राग सिंदूरा। राग सिंदूरा की उत्पत्ति काफी थाट से हुई है। इसे राग सैंधवी भी कहा जाता है। इसमें कोमल गंधार यानी कोमल ग और कोमल निषाद यानी कोमल नी के अलावा सभी स्वर शुद्ध प्रयोग किए जाते हैं। इसके आरोह में गंधार और निषाद अर्थात ग और नी ये दोनों वर्जित स्वर हैं तथा अवरोह में सातों स्वर प्रयोग किए जाते हैं। इस प्रकार इसके आरोह में पांच और अवरोह में सात स्वरों के प्रयोग होने के कारण इस राग की जाति औड़व संपूर्ण है। इसका वादी स्वर षडज यानी स है, संवादी स्वर पंचम यानी प है। इसका गायन समय रात्रि का

दूसरा प्रहर है। राग सिंदूरा के आरोह अवरोह और पकड़ इस प्रकार हैं। सबसे पहले सुनिए आरोह।

अब प्रस्तुत है राग सिंदूरा की स्वर मालिका जो तीन ताल मध्य लय में निबद्ध है। इसमें 16 मात्राएं होती हैं। पहले प्रस्तुत है राग सिंदूरा की स्वर मालिका की स्थाई।

अभी आपने राग सिंदूरा की स्वरमालिका सुनी। अब प्रस्तुत है इसी स्वरमालिका पर आधारित एक रचना। बोल हैं, कल कल नदिया बहती जाती। सबसे पहले सुनते हैं इस रचना की स्थाई।

0: और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम सीमित मत रहिए। श्रोताओं, ये कार्यक्रम प्रेरक प्रसंग श्रृंखला की एक कड़ी है, जिसके द्वारा बताया गया है कि हमारे पास अनंत संभावनाएं हैं, लेकिन हमारी नकारात्मक सोच ही हमें सीमित कर देती है और इसी कारण हम पूरी कुशलता से कार्य नहीं कर पाते।
1: साथियों नमस्कार।
2: नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
1: आज हम आपको एक बहुत ही खूबसूरत कहानी बताने जा रहे हैं और हमें आशा ही नहीं लेकिन पूरा विश्वास है कि आपको ये कहानी जरूर पसंद आएगी। कहानी का शीर्षक है सीमित मत रहिए।
2: तो आइए साथियों, सबसे पहले पूछिए एक पहेली। जरा ये बताइए कि दुनिया का ऐसा कौन सा देश है जो दो महादेशों में पड़ता है? सोचिए, जरा बताइए तो।
1: अच्छा चलिए, हम ही बता देते हैं। यदि आपने रूस देश का नाम सोचा है तो बिल्कुल सही सोचा है। जी हाँ, वो देश है रूस।

0: एशिया और यूरोप दोनों महादेशों में पड़ता है।
1: और हाँ, आपको हम ये भी बता दें कि क्षेत्रफल की दृष्टि से ये दुनिया का सबसे बड़ा देश है। इसकी राजधानी है मॉस्को, जिसे रूसी भाषा में मस्कवा कहते हैं।
0: और यहाँ की मुद्रा है रूबल। तो हाँ साथियों, जो कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं वो कहानी है रूस की। तो मित्रों, हम बात कर रहे थे रूस देश की एक कहानी की। जैसा कि आपने सुना कि वहां बहुत जंगल है, एक बार उन जंगलों में आग लग गई।

0: हजारों हेक्टेयर की भूमि उससे प्रभावित हुई।
1: पेड़ पौधे तो जले ही, बहुत से पशु पक्षी भी इस विकराल आग की वजह से जलकर मर गए। लेकिन एक छोटा सा भालू का बच्चा किसी तरह से बचकर पास के एक गांव में पहुंच गया। वो भूखा था और घायल भी।
0: एक किसान ने जब उसे देखा तो उसे बड़ी दया आई। वो उसे अपने घर ले गया।
1: अब वो भालू का बच्चा वहां के पालतू जानवरों के साथ ही रहता, उन्हीं के साथ घूमता और खेलता।
0: वो उन्हीं में घुल मिल गया और जैसा दूसरे घरेलू पशु व्यवहार करते वैसा ही वो भी व्यवहार करने लगा।
1: लेकिन पूरे गांव में वो एक कौतूहल का विषय तो था ही। लोग उसे देखने के लिए उत्सुक रहते थे, खास तौर से बच्चे।
0: धीरे धीरे ये बात आसपास के इलाकों में भी फैलने लगी और लोग बड़ी संख्या में उस भालू को देखने आने लगे।
1: लेकिन साथियों, ऐसा कब तक चलता? जैसे जैसे वो भालू का बच्चा बड़ा होने लगा, उसकी हिंसक प्रवृत्ति दिखाई देने लगी।
0: वो किसान अब उसे छोड़ना नहीं चाहता था, क्योंकि उस भालू को देखने के लिए बहुत से लोग उसके घर पर आने लगे थे।
1: साथियों, फिर जो हुआ वो बहुत ही दुखद था। उस किसान ने एक लोहे का पिंजरा बनवाया और भालू को उसमें बंद कर दिया।

0: साथियों, अब वही पिंजरा उस भालू की दुनिया हो गया। वो उसी में घूमता और आगे पीछे होता रहता था।
1: फिर जो बात हुई वो और भी दुखद थी। उस किसान ने जब देखा कि लोग बहुत बड़ी संख्या में वहां आते हैं तो उसने उनसे पैसा लेना शुरू कर दिया।
0: लोग आते और उसे देखते, कुछ लोग डंडे या लोहे की छड़ भी लेकर आते और भालू को परेशान करते। भालू बहुत परेशान और बेचैन रहने लगा।
1: दोस्तों, जरा सोचिए, क्या उस किसान ने ये जो काम कुछ पैसों की खातिर किया, क्या वो ठीक था? क्या पशुओं के साथ ऐसा व्यवहार ठीक है? क्या उन्हें स्वतंत्र होकर अपने पर्यावरण में रहने का अधिकार नहीं है? ये सोचने की बात है। जब आप किसी चिड़ियाघर में घूमने जाते हैं तो पशुओं के प्रति हमारा क्या रवैया रहता है?
0: ये बात धीरे धीरे वन विभाग तक पहुंची। पर्यावरण और वन विभाग के कर्मचारी आए और वे उस भालू को ले गए।
1: वो उसे एक बहुत बड़े जंगल में ले गए। उसका पिंजरा खोल दिया गया और उसे आजाद कर दिया गया।

0: वे देखना चाहते थे कि भालू इस नए वातावरण में कैसा व्यवहार करेगा।
1: उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब उन्होंने देखा कि वो भालू कहीं नहीं जा रहा था, वो वहां भी आगे पीछे घूम रहा था। उसके सामने स्वतंत्रता थी, उसके सामने विशाल विस्तृत जंगल था, वो जहां चाहता वहां जा सकता था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। निरीक्षण में पाया गया कि वो बहुत समय तक वहीं आगे पीछे घूमता रहा। लेकिन प्रश्न ये है कि ऐसा व्यवहार वो क्यों कर रहा था।
0: बात स्पष्ट है, उस पिंजरे में बहुत लंबे समय तक रहकर उसने सीख लिया था, या यूं कहें उसे सिखा दिया गया था कि उसकी दुनिया बस इतनी सी है, वो आगे जा ही नहीं सकता।
1: हाँ दोस्तों, उसे शायद अब लगने लगा था कि इससे अधिक अब वो कहीं नहीं जा सकता। लंबे समय की पराधीनता, या कह लीजिए कि उसकी नकारात्मक स्थिति की वजह से वो मान चुका था कि उसकी दुनिया सीमित है और वो इसके आगे कुछ भी नहीं कर सकता।
0: बहुत धीरे धीरे उस भालू ने सीखा कि उसकी दुनिया इतनी सीमित नहीं है, बल्कि उसके सामने आजादी का असीमित संसार है।
1: मित्रों, क्या हम भी कई बार उसी भालू की तरह नहीं हो जाते? हमारे आपके साथ भी अक्सर ऐसा हो सकता है। नकारात्मक परिस्थितियों से हम सीखने लगते हैं कि हम जितना कर रहे हैं उससे ज्यादा कर ही नहीं सकते। हो सकता है कि कभी किसी ने ऐसा कह दिया हो कि इससे अच्छा तुम कर ही नहीं सकते।
0: लेकिन मित्र, कोई कुछ भी कहे, कोई चाहे आपको बार बार याद दिलाता रहे कि आपसे कुछ नहीं होगा, आप स्वयं को याद दिलाइए कि आप में बहुत सी असीमित क्षमताएं मौजूद हैं और आप बहुत अच्छा कर सकते हैं।
1: तो विश्वास रखिए कि आप जितना कर रहे हैं उससे और भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। और हाँ, याद रखिए कि आपको अपनी तुलना किसी और से नहीं करनी है।
2: अभी आपने सुना कार्यक्रम सीमित मत रहिए, और अब इसी के साथ अपने साथी अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
3: उमंग उमंग उमंग उमंग।
4: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम, ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है 100.4 मेगाहर्ट्ज पर। और श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी बजा रही है शाम के 4, और इस समय है कार्यक्रम आपकी बात आकाशवाणी के साथ का। तो चलते हैं इस कार्यक्रम की ओर जिसका नाम है आपकी बात आकाशवाणी के साथ।
5: भाई जी बजेगा।

100.4 FM आकाशवाणी बरेली सुनने वाले सभी श्रोताओं को नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत आप सभी का कार्यक्रम आपकी बात आकाशवाणी के साथ में। श्रोताओं, ये वो कार्यक्रम है जिसमें हम आपसे करते हैं रोज नए नए विषयों पर चर्चा और जानते हैं आपके विचार। तो आज का जो कार्यक्रम का हमारा विषय है वो जुड़ा हुआ है हमारे माता पिता से। माता पिता हमें हमेशा सिखाने का काम करते हैं, यानी कि बचपन से जब से हम पैदा होते हैं तो वो हमें सिखाने का काम करते हैं, हमें शिक्षा देते हैं। और कहा तो ये भी जाता है कि माँ जो होती है वो प्रथम गुरु होती है, यानी कि हमें माँ सब कुछ सिखाती है और हम परिवार से सीखते हैं, परिवार से संस्कार सीखते हैं और सारी बातें सीखते हैं। इसके बाद समय के साथ साथ जब बच्चे बड़े होते हैं परिवार में तो जो माता पिता यानी कि जो अभिभावक हैं, माँ बाप हैं, वो दोस्त की भूमिका भी निभाते हैं हमारे। और दोस्त की भूमिका में जब वो होते हैं तो हम उनसे बहुत कुछ साझा कर सकते हैं, यानी कि जो बच्चे हैं वो अपने माँ बाप को सारी बातें बता सकते हैं। और बहुत सी परिस्थितियों में ऐसा होता है

0: कि बच्चे जो है जब माँ बाप को अपनी बात बता देते हैं तो वो स्वयं को काफी हल्का महसूस करते हैं और उनका जो है वो मार्गदर्शन भी हो जाता है। तो इसी विषय पर करेंगे आज अपने साथियों से चर्चा और जानेंगे उनके विचार। तो आप सुन रहे हैं 100.4 FM आकाशवाणी बरेली।
1: सभी श्रोताओं को नमस्कार। माता पिता बच्चों के दोस्त ऐसा गंभीरता से अपनी को देखते हैं कार्यक्रम में हमारे पहले कॉलर
0: कौन है? आपकी बात आकाशवाणी के साथ में, आपका स्वागत है। कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
2: जी बंटू भाई प्रजापति बोल रहे हैं।
0: कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
2: अकड़ा से बोल रहे हैं।
0: स्वागत है कार्यक्रम में आपका। और कार्यक्रम में आज का जो हमारा विषय है वो

0: वाणी बरेली।
1: सभी श्रोताओं को नमस्कार। वो माता पिता बच्चों के दोस्त ऐसा गंभीरता से अपनी को देखते हैं कार्यक्रम में। हमारे पहले कॉलर कौन है?
0: आपकी बात आकाशवाणी के साथ में, आपका स्वागत है। कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
2: जी बंटू भाई प्रजापति बोल रहे हैं।
0: कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
2: अकराकला से बोल रहे हैं।
0: स्वागत है कार्यक्रम में आपका। और कार्यक्रम में आज का जो हमारा विषय है वो विषय ये है कि माता पिता जो हैं उनको बच्चों का दोस्त होना चाहिए या शिक्षक?
2: हम तो इसके राय में यही कहना चाहेंगे, मतलब माता पिता बच्चों के लिए सबसे पहली प्रथम श्रेणी की है। ये शिक्षक ही मान लो चाहे वो मान लो, दोनों चीजों में काम करती है।
0: जी, दोनों भूमिकाएं जो है वो उनकी होती है। तो प्रोग्राम में आपका फोन लगा है, कौन सा गीत आज आप सुनेंगे?
2: गाना सुना दीजिए, माँ ओ माँ मैं आ गया।
0: हम आपको सुनवा रहे हैं ये गीत।

0: आपकी बात आकाशवाणी के साथ कार्यक्रम में आपका स्वागत है। कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: सर नमस्कार, मैं ग्राम ऐचोरा तहसील इमला जिला रामपुर से टॉपिक अमन मंसूरी बात कर रहा हूँ। सर
0: स्वागत है आपका कार्यक्रम में, कैसे हैं आप?
1: सर बढ़िया है सर, आप बताइए।
0: तो आज का जो प्रोग्राम का हमारा विषय है वो विषय ये है कि माता पिता जो है बच्चों के शिक्षक की भूमिका में होते हैं या दोस्त की।
1: जी जी,
0: तो बताइए इस पर क्या विचार हैं आपके?
1: देखिए सर, माता पिता होते हैं सर
0: जी,
1: उन्हें आप दोस्त भी कह सकते हैं
0: जी,
1: क्योंकि सर हमारी जिंदगी का पहला हिस्सा वही है सर।
0: जी जी,
1: तो सर अच्छी बुरी बातें हमको वही सिखाते हैं माँ बाप सर
0: जी,
1: उन्हीं के मार्गदर्शन पर हम सर चलते हैं।
0: तो प्रोग्राम में कौन सा गीत आज आप सुनेंगे?
1: सर देखिए, फिल्म का नाम है मोहब्बत और गाने के बोले चोरी चोरी चुप चुप मिलने ना आना, दुनिया से डर के ना दिल को लगाना।
0: हम आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: आपकी बात आकाशवाणी के साथ हो रही है, कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: नमस्कार सर, मैं ग्राम ऐतोरा तहसील मिलक जिला रामपुर से सरफराज मंसूरी बात कर रहा हूँ।
0: स्वागत है आपका कार्यक्रम में। तो आज का जो प्रोग्राम का हमारा विषय है वो है कि माता पिता जो है उनको बच्चों के शिक्षक की भूमिका में होना चाहिए या दोस्त की, तो बताइए इस पर आपके क्या राय है?
1: सर हमारी तो यही राय है कि माता पिता जो है जीवन भर की कमाई है और उनका जो है अच्छी तरीके से देखभाल करना चाहिए।
0: जी देखभाल तो आवश्यक है, लेकिन हमारा जो आज का जो विषय है वो ये है कि माता पिता जो है वो बच्चों के दोस्त की तरह होने चाहिए या टीचर की भूमिका में?
1: जी सर, वैसे तो दोस्त की तरह होना चाहिए, जो उनके जीवन में दोस्त बनकर उनके साथ देना चाहिए। उनके जीवन में जो दोस्त बनकर जो है साथ देंगे तो वो अच्छी तरह से अपनी मंजिल पर पहुंचने में उन्हें सहायता होगी।
0: जी तो प्रोग्राम में आपका फोन लगा है, कौन सा गीत आपको सुनवाए आज?
1: जी सर, हीरा रांझा फिल्म का गाना है, रब ने बनाया तुझे मेरे लिए।
0: हम आपको सुनवा रहे हैं ये गीत।

0: कहाँ से बोल रहे हैं?
1: मैं मोहल्ला तलैया ओला जागीर से फजरुद्दीन भाई बात कर रहा हूँ साहब।
0: स्वागत है फजरुद्दीन भाई प्रोग्राम में आपका, कैसे हैं आप?
1: हाँ बहुत बढ़िया है।
0: तो कैसे लग रहे हैं आजकल आकाशवाणी के कार्यक्रम आपको?
1: बहुत अच्छे लग रहा है साहब।
0: तो फजरुद्दीन भाई, हम ये जानना चाहेंगे, आज का जो हमारा प्रोग्राम का विषय है वो ये है कि माता पिता को जो है बच्चों के शिक्षक की भूमिका में होना चाहिए या दोस्त की, तो बताइए।
1: बाप मैं तारीफ होना चाहिए बच्चों की।
0: हाँ, बच्चों के जो है दोस्त की भूमिका में भी होना चाहिए और टीचर की भूमिका में भी होना चाहिए,
1: होना चाहिए
0: जिससे कि बच्चे उन्हें सारी बात अपनी बता सके तो प्रोग्राम में आपका फोन लगा है, कौन सा गीत आज आपको सुनवाया जाए?
1: फिल्म का नाम नहीं बताया, वो मतलब निकल गया तो कुछ पहचानते नहीं।
0: चलो हम आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: आपकी बात आकाशवाणी के साथ कार्यक्रम में आपका स्वागत है। कौन कहां से बात कर रहे हैं?
1: जी मैं राम प्रसाद सर बोल रहा सर पर सोनी सर जी सब
0: बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। कैसे हैं आप?
1: बढ़िया साहब दया कृपा मालिक के साहब
0: तो ये बताइए, आज का जो हमारा कार्यक्रम का विषय है वो ये है कि माता पिता को जो है बच्चों के शिक्षक की भूमिका में होना चाहिए या दोस्त की?
1: बच्चों को तो माता पिता के लिए संबंध चाहिए सर माता पिता सब कुछ है साहब
0: हाँ, वो बात बिल्कुल सही है, लेकिन प्रोग्राम का हमारा जो विषय है वो ये है कि माँ बाप जो होते हैं उनको अपने बच्चों के लिए एक टीचर की भूमिका में होना चाहिए या एक दोस्त की?
1: हाँ माता पिता को एक टीचर के रूप में उनको देखना चाहिए कि वो
0: बिल्कुल
1: सब कुछ शिक्षा दे सके सब कुछ समझा सके उनके लिए साहब
0: जी, टीचर तो माँ बाप होते ही हैं, यानी कि शिक्षक की भूमिका तो निभाते ही हैं, लेकिन बच्चों की उम्र बढ़ने के साथ साथ उन्हें एक दोस्त की भूमिका में भी आ जाना चाहिए, जिससे कि बच्चों के मन में अगर कुछ है तो वो अपने माँ बाप को बेझिझक बता सके, जिससे वो किसी समस्या में ना पड़े और उनका जो है मार्गदर्शन हो सके। तो प्रोग्राम में फोन आपका लगा है, कौन सा गीत सुनेंगे आज?
1: हाँ ये तो कहते हैं कि भगवान है सब
0: हम आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का ये गीत।
1: नमस्ते साहब
0: नमस्कार।

0: आपकी बात आकाशवाणी के साथ में, आपका स्वागत है। कौन कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: सर मैं गुजरात से बात कर रहा हूँ, धीरज अभाई।
0: स्वागत है आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत।
1: जी धन्यवाद सर।
0: तो कैसा
1: मैं
0: मौसम है गुजरात में इस समय?
1: मौसम गुजरात के कई सौराष्ट्र के कई इलाकों में बारिश शुरू हो गई है। मैं बात कर रहा हूँ अहमदाबाद से।
0: जी
1: यहाँ बादल छाए हैं, हम इंतजार कर रहे हैं मौसम का, यानी देखा जाए तो भी दूसरा और तीसरा बारिश, यानी शुरू तो अभी मौसम के यानी बारिश की ऋतु अभी शुरू होगी, लेकिन ये दूसरा
0: जी
1: के तीसरा बारिश होगा।
0: अच्छा जी, तो मौसम जो है यानी कि अच्छा है वहां पर।
1: बिल्कुल
0: तो
1: सर।
0: हम ये जानना चाहेंगे आपसे, क्योंकि कार्यक्रम का आज का जो हमारा विषय है वो ये है कि माता पिता को जो है बच्चों के शिक्षक की भूमिका में होना चाहिए या बच्चों के दोस्त की, तो इस पर
1: देखा जाए
0: आपका
1: तो
0: क्या विचार
1: सर,
0: है?
1: देखा जाए तो शिक्षक की भूमिका तो गुरु जी करते ही अपने पाठशाला में, लेकिन
0: जी
1: एक घर बैठे यानी मित्र, यानी उसको पास में बैठ के स्नेह से, यानी उसको अच्छी तरह समझाया जाए तो बच्चे को क्या है, छोटे बच्चे को अगर प्यार से समझाओ तो वो समझ सकता है।
0: जी
1: शिक्षक वहाँ पाठशाला में अपनी तरह से उनको जो भी शिक्षा देना हो तो देते हैं, लेकिन हमें घर पे मित्र बन के ही उनको जो भी कहना हो कह सकते हैं सर।
0: जी दोस्त की भी भूमिका में होना चाहिए, और शिक्षक की भूमिका तो वो शुरू से ही रखते हैं, क्योंकि वो जब बच्चा पैदा होता है तो माँ बाप से ही और परिवार से ही सारी चीजें सीखता है। शुरुआती संस्कार जो है वो परिवार से ही मिलते हैं। तो
1: बिल्कुल
0: प्रोग्राम
1: सर।
0: में आपका फोन लगा है, कौन सा गीत आपको सुनवाया जाए?
1: हेमलता के आवाज में अखियों के जरूर पेश का शीर्षक गाना सर।
0: हम आपको सुनवा रहे हैं ये की।

0: 104.4 FM आकाशवाणी बरेली सुनने वाले सभी श्रोताओं को नमस्कार। स्वागत आपका कार्य
1: आकाशवाणी के साथ में आपका स्वागत। आज का जो प्रोग्राम का हमारा विषय है
0: वो है कि माता पिता जो है उनको बच्चों के शिक्षक की भूमिका में होना चाहिए या दोस्त की, तो बताइए इस पर आपके क्या राय है।
2: सर हमारी तो यही राय है कि माता पिता जो है जीवन भर की कमाई है और उनका जो है अच्छी तरीके से देखभाल करना चाहिए।
0: जी देखभाल तो आवश्यक है,
1: बड़े हो जाए बच्चे तो उनको कुछ ज्ञान प्राप्त करें। हाँ ये माता पिता को बच्चों की शिक्षक की भूमिका में रहना चाहिए या दोस्त की, तो क्या विचार?
3: जी मैं बरेली जंक्शन से गरीब भाई बात कर रहा हूँ आपसे।
0: स्वागत है आपका कार्यक्रम में, कैसे हैं आप?
3: बस बढ़िया हैं साहब।
0: कैसे लग रहे हैं कार्यक्रम आकाशवाणी के?
3: आपके सभी कार्यक्रम बढ़िया लग रहे हैं, आपकी बात आकाशवाणी के साथ बहुत अच्छा कार्यक्रम है। इसमें एक रोज नया विषय होता है, अच्छा विषय होता है, जानकारी से भरपूर होता है।
0: तो आज का जो कार्यक्रम का हमारा विषय है वो ये है कि माता पिता को बच्चों की शिक्षक की भूमिका में रहना चाहिए या दोस्त की, तो क्या विचार हैं आपके?
3: ये विचार यही है कि माता पिता अपने बच्चों पर ध्यान दें, उनको शिक्षा के साथ साथ उनको कुछ संस्कार भी दें अच्छे अच्छे, और शिक्षा उनका ध्यान भी रखें, शिक्षित भी करते रहें, और जब बड़े हो जाएं बच्चे तो उनसे कुछ ज्ञान प्राप्त करें।
0: हाँ यानी कि बड़े होने के बाद उनके दोस्त की भूमिका में रहना चाहिए, जिससे कि बच्चे जो कोई अगर बात उनके मन में है तो वो उन्हें बेझिझक बता सके। तो
3: जी जी जी, क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी ज्यादा चल रही है जो बड़े बुजुर्गों को नहीं मालूम है, जैसे मोबाइल में तरह तरह की बातें हैं जो बच्चे बड़े लोगों को नहीं मालूम है, जो आज के बच्चे जानते हैं।
0: जी समय के साथ
3: भूमिकाएं, समय के साथ सबको बदलना पड़ता है, तो बच्चों को भी चाहिए कि अपने माता पिता को शिक्षित करें। वो
0: बिल्कुल दोनों का जो है एक दूसरे से जुड़ाव है, चाहे बच्चे बड़े का हो या बड़ों का बच्चों से हो, और भूमिकाएं भी जो है वो समय के साथ साथ बदलती रहनी चाहिए, क्योंकि माता पिता जो है बच्चों के शिक्षक की भूमिका शुरू से ही निभाते हैं। यानी कि जब वो पैदा होता है माँ को बच्चे की प्रथम गुरु कहा जाता है, और इसके बाद जो है जब समय बढ़ता है बच्चे बड़े होते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि परिवार में अगर एक जो माता और पिता और बच्चों के बीच में जो कम्युनिकेशन का गैप रहता है उससे बच्चे जो है वो एक तरीके से अपने मन की बात जो है वो घर पर नहीं बता पाते। अगर माता पिता बच्चों के दोस्त की भूमिका भी निभाएं तो जो है वो अपनी जो बात मन में होगी

0: तो वो अपने घर पर बता सकेंगे और घर वाले उनका मार्गदर्शन कर सकेंगे कि ये
1: बिल्कुल
0: सही है,
1: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत
0: ये
1: सही बात
0: सही
1: है
0: है
1: आपकी,
0: या गलत है।
1: बिल्कुल सही बात है आपकी।
0: तो कौन सा गीत आज आप प्रोग्राम में सुनेंगे?
1: एक गाना है, शिक्षा ही है, फिल्म आखिरी रास्ता का है,
0: जी,
1: पहले पढ़ाई फिर प्यार होगा। जी
0: मैं आपको सुनवा रहा
1: नमस्कार।
0: हूं आपकी पसंद का ये गीत। और आपकी इसी बात पर मुझे डॉक्टर राहुल अवस्थी का एक शेर याद आ गया कि नयन में प्यार
1: जी
0: हो तो आशनाई हो नहीं सकती, कभी सच्ची
1: जी
0: मोहब्बत में जुदाई हो नहीं सकती,
1: बहुत
0: कभी
1: बढ़िया,
0: कोई कसम भर लो, कहीं कोई जतन कर लो, इश्क के फेर में पढ़कर पढ़ाई हो नहीं सकती।
1: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर, आपका शेर लाजवाब है। जी
0: तो हम आपको सुनवाए देते हैं आपकी पसंद का ये
1: जी
0: गीत।
1: नमस्कार।
0: नमस्कार।

अपने इस प्रोग्राम में हम आपकी फ़ोन कॉल्स के अलावा आपके कुछ कमेंट्स भी शामिल करते हैं। तो हमारे प्रोग्राम में कमेंट आया है सादुल शहर राजस्थान से राम कुमार रेवाड़ और चंद्रकला रेवाड़ का। ये लिखते हैं कि मेरा मानना है कि अगर हम भारतीय संस्कार और संस्कृति की बात करें तो माता पिता एक अच्छे शिक्षक का रूप सर्वश्रेष्ठ रहता है। माता पिता अपने बच्चों को एक शिक्षक के रूप में अच्छी शिक्षा, अच्छे संस्कार और अच्छे मार्गदर्शन देकर एक अच्छा नागरिक बना सकते हैं, जो हर दुख सुख में और हर कार्य में अपना योगदान देकर अपने माता पिता का नाम रोशन कर सकते हैं, अपने समाज का, अपने देश का नाम रोशन कर सकते हैं। ये इन्होंने लिखा है। और अगला जो कमेंट है वह है तिगड़ी कस्बा शीशगढ़ से शाहरुख हाशिम अरहम बाबू और किशवा का। ये लिखते हैं कि माता पिता को बच्चों का शिक्षक, मार्गदर्शक और मित्र दोनों होना चाहिए। शुरुआत में उन्हें एक अनुशासित शिक्षक बनकर सही गलत का फर्क और संस्कार सिखाने चाहिए, लेकिन जैसे जैसे बच्चे बड़े हों उन्हें एक दोस्त की तरह उनका विश्वास जीतना चाहिए, ताकि वे बिना डरे अपनी परेशानियां साझा कर सकें। और अगला कमेंट है बीएल धाकड़ का। ये लिखते हैं कि माता पिता को बच्चों का दोस्त और गुरु दोनों होना चाहिए। जहां ज्ञान की बात आए वहां शिक्षक की भूमिका निभाई जाए, और जहां परिस्थिति अलग लगे वहां एक सखा की तरह बातचीत की जाए। भेरूलाल बागतरिया धाकड़ ने उन्हेल जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से कमेंट किया है। और ये कमेंट हमारे पास है प्रवीण चौहान का। ये लिखते हैं माता पिता को बच्चों का दोस्त और शिक्षक दोनों होना जरूरी है। लाल मोहम्मद अंसारी का कमेंट हमारे पास है, इन्होंने भी यही बात लिखी है। कटरा चांद खां मौर्य मंदिर वार्ड नंबर 11 पुराना शहर बरेली से अनोखे लाल मौर्य ने भी कमेंट किया है, और उन्होंने भी इसी बात का जिक्र किया है।

अभी आप आपकी बात आकाशवाणी के साथ कार्यक्रम सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 मेगाहर्ट्ज पर।

आइए अब आपको जानकारी दे देते हैं हमारी आज की सभा के शेष और कल की सभा में प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। 5:05 पर सुनिएगा कार्यक्रम भजन संध्या। 9:00 कार्यक्रम आप सुन सकेंगे 5:30 पर। युवा साथियों का कार्यक्रम युववाणी होगा 6:00। 6:30 पर सुनिएगा कार्यक्रम ग्राम जगत, चर्चा होगी बच्चों में टीकाकरण के बारे में। साथ ही आपको सुनवाएंगे वार्ता और क्षेत्र संकलित कार्यक्रम। अक्षयवट कार्यक्रम आप सुन सकेंगे 7:00। अनुरोध गीत कार्यक्रम का समय रहेगा 7:31। और हमारी कल की सभा में प्रातःपाठ 8:15 पर सुनिएगा कार्यक्रम नमस्ते बरेली। 8:45 पर आपको सुनवाएंगे लोकगीत। और कल प्रातः 9:00 सुनिएगा विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम, जिन्हें हम अनुप्रसारित करेंगे आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। कल प्रातः 10:00

बजे कार्यक्रम आपकी पसंद होगा। 11 बजे आप सुन सकेंगे सबरंग कार्यक्रम और 11:15 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम झुमका गिरारे। अनुरोध गीत कार्यक्रम होगा कल अपराह्न 1 बजे और रसरंग आप सुन सकेंगे कल अपराह्न 2 बजे। आपकी बात आकाशवाणी के साथ ये कार्यक्रम शाम के 4 बजे होगा और इसकी रिकॉर्डिंग हम करेंगे कल अपराह्न 2:30 बजे यानी कि 2:30 पर। भजन संध्या कार्यक्रम आप सुन सकेंगे कल शाम 5:05 पर और युववाणी कार्यक्रम होगा शाम 6 बजे। किसानवाणी कार्यक्रम आप सुन सकेंगे कल शाम 6:30 पर। कल बात करेंगे प्राकृतिक खेती के बारे में, साथ ही होगा

मिनट पर कल बात करेंगे प्राकृतिक खेती के बारे में, साथ ही होगा हेलो किसान कार्यक्रम, मौसम, बाजार भाव, कृषि समाचार और सवाल और नसीहत कार्यक्रम में रहेंगे। साथ ही लोकगीतों से आपका मनोरंजन भी करवाया जाएगा। ग्राम जगत कार्यक्रम आप सुन सकेंगे कल शाम 7 बजे। चर्चा होगी जलवायु परिवर्तन पर और रेडियो हेल्पलाइन कार्यक्रम आप शाम 7:31 पर कल सुन सकेंगे। तो श्रोताओं, ये तो थी हमारी आज की सभा के शेष और कल की सभा में प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 मेगाहर्ट्ज़ पर, और लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम भजन संध्या में कुछ भजन।

0: दान कदरदान बच्चे बूढ़े और जवान, सौ बात की एक बात है सही, सिर्फ पैसे भेजने के लिए QR स्कैन करते हैं या पिन डालते हैं, पैसे मिलने के लिए नहीं।
1: RBI कहता है QR कोड स्कैन करते समय या पिन डालते समय थोड़ा ध्यान से।
2: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भजन संध्या 100.4 FM पर।

इसी के साथ कार्यक्रम भजन संध्या अब यही संपन्न होता है। अभी आप भजन संध्या कार्यक्रम सुन रहे थे। 100.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में संध्या के 5:30 होने को हैं और लीजिए अब आप सुनेंगे कार्यक्रम नारी संसार

नमस्कार, गुड इवनिंग। प्रोग्राम नारी संसार सुनने वाली हमारी सखियों, सहेलियों और सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपकी रेडियो दोस्त प्रियंका हाजिर हूं आपके साथ 100.4 FM आकाशवाणी बरेली पर। सखियों, गर्मी काफ़ी पड़ रही है, धूप काफ़ी तेज़ है। आप अपने स्वास्थ्य का पूरा ख्याल रखिए, धूप से बचिए और पानी पीते रहें। सखियों, गर्मी की छुट्टियाँ चल रही हैं बच्चों की। जब छुट्टियां होती हैं तब हम ठंडे प्रदेशों में पहाड़ों पर घूमने जाते हैं, जिससे हमें गर्मी से कुछ राहत मिले, माइंड फ्रेश हो हमारा। जिन प्रदेशों को, राज्यों को ठंडी जगह माना जाता था, वहां पर भी तापमान बढ़ रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण है जंगलों की कटाई। सखियों, आज है 22 जून, आज मनाया जाता है विश्व वर्षावन दिवस। ये दिन दुनिया भर में वर्षावनों के महत्व के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देता है। आज अगर स्वच्छ हवा और पानी हम इंसानों तक पहुंच रही है तो इसका कारण है ये घने जंगल। वन जंगलों के होने से ही ये संभव है, लेकिन लगातार इनकी कमी के कारण आज दुनिया ग्लोबल वार्मिंग से जूझ रही है। पेड़ पौधों का संरक्षण करके इसके असर को कम किया जा सकता है। जीव जंतुओं, पशु पक्षियों और हम सब के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत है। बिना ऑक्सीजन के हम जिंदा नहीं रह सकते हैं। हर साल दुनिया भर के लोग विश्व वर्षावन दिवस मना है। इसका सबसे बड़ा कारण है जंगलों की कटाई। सखियों, आज है 22 जून, आज मनाया जाता है विश्व वर्षावन दिवस। ये दिन दुनिया भर में वर्षावनों के महत्व के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देता है। आज अगर स्वच्छ हवा और पानी हम इंसानों तक पहुंच रही है तो इसका कारण है ये घने जंगल। वन जंगलों के होने से ही ये संभव है, लेकिन लगातार इनकी कमी के कारण आज दुनिया ग्लोबल वार्मिंग से जूझ रही है। पेड़ पौधों का संरक्षण करके इसके असर को कम किया जा सकता है। जीव जंतुओं, पशु पक्षियों और हम सब के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत है। बिना ऑक्सीजन के हम जिंदा नहीं रह सकते हैं। हर साल दुनिया भर के लोग विश्व वर्षावन दिवस मना रहे हैं, जिसके जरिए वो वर्षावनों के महत्व और उनकी संरक्षण को ज़रूरत के बारे में लोगों को जागरूकता फैला रहे हैं। सखियों, हमें पेड़ पौधे ज़्यादा से ज़्यादा लगाने चाहिए, जिससे हमें शुद्ध वायु, फल फूल, औषधि सब्जी आदि प्राप्त हो सके और हम हरियाली व शुद्ध वातावरण में सांस ले सकें और पक्षियों के गुनगुनाने की आवाज़ भी सुन सकें।

0: सखियों, हर बार की तरह हम आज भी अपने प्रोग्राम में आज का सवाल लेकर आए हैं। हमारा सवाल है, ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली भारत की पहली महिला कौन थी? आप अपना सही जवाब हमें कमेंट्स कीजिए, हमें इंतजार है। अब आपको सुनवाते हैं वार्ता, परिवार में सामंजस्य कैसे बनाएं। वार्ताकार हैं नुसरत फातिमा, आइए सुनते हैं।
1: समाज की सबसे छोटी इकाई है परिवार ही। हर व्यक्ति, हर किसी के जीवन का मुख्य आधार भी है। इसके अलावा परिवार व्यक्तियों के व्यक्तित्व निर्माण और स्वस्थ एवं सुखमय वातावरण में निर्माण महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि एक सुखी और सामंजस्यपूर्ण परिवार व्यक्ति को भावनात्मक सहारा, सुरक्षा और स्नेह का एहसास प्रदान कर सकता है। परिवार के सभी सदस्यों के मन और विचारों को में समानता या एक रूपता होना भी ही पारिवारिक सामंजस्य है। परिवार समाज के लिए कई आवश्यक कार्य करता है। ये बच्चों के समाजीकरण करता है। परिवार में सामंजस्य बनाने के लिए आपसी विश्वास, खुला संवाद और सहनशीलता स्वयं महत्वपूर्ण है। हमें अपने परिवार में सामंजस्य बनाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखना चाहिए। हमें आपस में मेलजोल से रहना चाहिए और एक दूसरे की बात सुने। छोटी मोटी गलतियों को नज़रअंदाज करें और एक दूसरे

0: दूसरे के विचारों का सम्मान करना चाहिए। घर के सभी सदस्यों को बराबर महत्व देने से रिश्ते हमेशा मजबूत रहते हैं। परिवार के प्रत्येक व्यक्ति की सोच और स्वभाव अलग होता है, इसलिए हमें अपने परिवार के लोगों का स्वभाव भी जानकर ही उनके साथ सामंजस्य बनाना चाहिए। घर के छोटे बड़े कामों में एक दूसरे का हाथ बटाना चाहिए, इससे कुछ भी कम बोझ भी कम होता है और आपसी लगाव बढ़ता है। दिन भर की भाग दौड़ के बाद परिवार के साथ कुछ समय बिताएं और एक दूसरे के दिन के बारे में भी जानें। जब परिवार का कोई सदस्य अपनी परेशानी बताए तो उसे बिना टोके सुने और समझने की कोशिश करें। परिवार के में मेल जोल और प्यार बढ़ाने के लिए सबसे असरदार तरीका है गुणवत्तापूर्ण समय बिताना और निर्धारित संवाद का काम और परिवार के सदस्य की बात को धैर्य से सुने। हमें अपने परिवार में बुजुर्गों का विशेष कर ध्यान रखना चाहिए और उनके साथ शालीनता बनाए रखें। हमें अपने बुजुर्गों के साथ बहुत बहुत नहीं करनी चाहिए, उनके साथ शांति के साथ बहस नहीं करनी चाहिए, बात शांति के साथ रहना चाहिए। हमें बुजुर्ग कभी कभी चिड़चिड़े भी हो जाते हैं, समय बहुत बहस व विवाद की स्थिति में शांत रहने की कोशिश करना चाहिए और बात को टाल देना चाहिए। परिवार के में सामंजस्य बनाने के लिए आपसी बातचीत, सहनशीलता और सम्मान सबसे महत्वपूर्ण है। सबसे पहले हमें एक दूसरे की भावनाओं को छोटी गलतियों को नजरअंदाज करना सीखें, तभी हम अपने परिवार को सामंजस्य बना पाएंगे। परिवार में किसी भी सदस्य को कोई भी परेशानी आए तो सब मिलकर उसका समाधान करना चाहिए। हमें अपने वैसे परिवार के लिए भी समय निकालना चाहिए और अपने दिन भर के अनुभव को आपस में साझा करना चाहिए। परिवार में एक साथ बैठकर खाना खाना चाहिए। इस दौरान टीवी या मोबाइल फोन का प्रयोग ना करें और अपने परिवार के लोगों के साथ अच्छी बातें करें। घर में सभी सदस्यों के बराबर महत्व देने से रिश्ते मजबूत और खुशनुमा रहते हैं। परिवार में सामंजस्य बना रहे उस पर मैं कुछ पंक्तियां कहना चाहती हूँ। खुशियों का आशियाना है परिवार, हर मुश्किल में सहारा है परिवार, हर मुश्किल में सहारा है परिवार, रिश्तों की डोर से बंधा है परिवार, रिश्तों की डोर से बंधा है परिवार, जीवन का अनमोल तोहफा है परिवार, जीवन का अनमोल तोहफा है परिवार। परिवार वो मंदिर है जहाँ पर हम आपस में मिलजुल कर प्यार से रहते हैं, परिवार कर साझा करते हैं। परिवार में सामंजस्य बनाने के लिए परिवार के प्रत्येक सदस्य को एक दूसरे के व्यक्तिगत लक्ष्यों का सामना करना चाहिए। परिवार में हमें सब मिलकर अपनी उपलब्धियों का जश्न मनाएंगे और कठिन समय में एक दूसरे की सहायता भी करें, ऐसा संकल्प लेना चाहिए। आधुनिकता और शहरीकरण के इस दौर में पारिवारिक विघटन के फलस्वरूप हमारे समाज में प्राचीन काल से चली आ रही संयुक्त पारिवारिक व्यवस्था एकल परिवार के साथ में सिमटने लगी है। आज परिवार बहुत छोटे होते जा रहे हैं, इसलिए परिवार में सामंजस्य भी कम होता जा रहा है। प्राचीन समय में संयुक्त परिवारों में बच्चे दादा दादी के साथ रहते थे तो वो बचपन से सामंजस्य में रहना सीखते थे, लेकिन अब एकल परिवार में बच्चे अकेले रहते हैं तो वो सबसे के साथ नहीं रहना चाहते। परिवार में हर समय रिश्ते में रहकर हमें ये आश्वासन मिलता है कि दूसरा व्यक्ति मेरे लिए सहायक है, बाधा नहीं। मैं इन पंक्तियों के माध्यम से ये कहना चाहती हूँ कि हर फूल की अपनी एक अलग महक, वैसे ही परिवार के हर सदस्य की अपनी चमक है, वैसे ही परिवार के हर सदस्य की अपनी चमक है। सबको साथ लेकर चलने की कला सामंजस्य की असली परिभाषा और झलक है।
1: सखियों, अभी आपने वार्ता सुनी, परिवार में सामंजस्य कैसे बनाएं। वार्ताकार थी नुसरत जहां। अब सुनते हैं ये गाना।

0: सखियों, अब शुरू करते हैं अपना सेगमेंट इनसे मिलिए। आइए मिलते हैं श्रीमती पुष्पा देवी से, जो एक नर्सरी संचालिका हैं।
1: आपका नाम?
2: जी नमस्ते, मेरा नाम मौर्य।
1: क्या करती हैं पुष्पा जी?
2: मैम हमारा कार्य है खेती।
1: आपने पढ़ाई कितनी की है?
2: हमने पढ़ाई करी है इंटर।
1: आप पुष्पा जी हमें ये बताइए कि जो आप फूलों की खेती करती हैं, आपने इस काम की शुरुआत?
2: हमने ये बात करी थी, हम पहले NRLM से जुड़े थे, तो हमें ये जिला लेवल से जो होता है DRD ऑफिस में, वहाँ पे हमें प्रशिक्षण दिया गया था
1: जी
2: फूलों की खेती के बारे में।
1: जी जी,
2: तो हम वहाँ गए थे राजखंडवा में, तो वहाँ एक ग्राम विकास पड़ता है जो जिला लेवल का है DRDO बोलते हैं उसे, तो वहाँ जो है हमें NRLM के तहत प्रशिक्षण दिया गया था। तो वहाँ हमने सीखा आप लोग खेती कैसे करनी है क्या है, तो वहाँ एक मैम आई थी तो उन्होंने बताया था गुलाब और गेंदा करना, तब हम सीखे।
1: तो ये शौक आपको पहले से ही था कि मुझे कुछ इस फील्ड में जाना है?
2: मैम हाँ, थोड़ा सा रहता था कि हम अपने घर में नर्सरी लगाते थे, लेकिन जब से हमने प्रशिक्षण पाया थोड़ा सा एक सक्रियता से करने लगे। पहले से थोड़ा लगाव तो था कि अच्छी लगती है घर में थोड़ी सी बागवानी लगा लेते।
1: और वैसे ये तो हर महिला को पसंद होता है कि हम अपने घर में थोड़ी फुलवारी लगाएं, जिसे देख के मन थोड़ा खुश हो, अच्छा भी लगता है, घर की शोभा भी बढ़ जाती है। अच्छा शौक है आपका। इस वक्त आपने अपनी नर्सरी में कौन कौन से फूल लगाए हुए हैं?
2: मैम इस समय हमने गेंदी जो है ना, गेंदा की नर्सरी लगा रखी है मैम।
1: अच्छा, तो इस मौसम में सबसे अच्छा कौन सा फूल रहता है जो लगाया
2: जाए? अभी हमारे खेतों में गुलाब का तो चल रहा है, गुलाब का लगा हुआ है, लेकिन अभी हमारा लग रहा है गेंदा का जो है ना, उसकी नर्सरी हम तैयार कर रहे हैं। नर्सरी हमने डाल रखी है, बीज बो दिया है, अभी गेंदा का।
1: तो पुष्पा जी आप

0: किस तरह से देख रेख करती हैं इन फूलों की? कुछ खास देखभाल करनी पड़ती है?
1: मैम वैसे देखभाल तो कोई खास नहीं है। ये जो है जुलाई के महीने में हरी बहुत तैयार जब हो जाती है, पहले हम अपने घर पे ही बना लेते हैं गेंदा के फूलों का जो है ना, अच्छे अच्छे फूल सुखा लेते हैं, वो पका के फिर अभी हम ये जुलाई में नर्सरी तैयार करके अभी अगस्त में हमारा गेंदा लग जाएगा, फिर उसकी निराई गुड़ाई का ध्यान रहता है, उसमें खाद वगैरह लगाते हैं, कीड़ों से बचाने के लिए दवाइयाँ वगैरह लगाते हैं, रहता है
0: इसमें। और जैसे ठंड का मौसम आता है तो इनकी हर मौसम के हिसाब से अलग अलग देखभाल की जाती है या एक ही तरह से ही इसमें दवाई लगाने से, खाद लगाने से वो पौधा अपने आप बड़ा होता चला जाता है, किस तरह से?
1: मैम थोड़ी सी मौसम का ध्यान रखते हुए हमें देखभाल ना हो, गर्मी की वजह से या बारिश होने की वजह से पौधे को क्षति ना, पानी जब आ जाती है तो नहीं रहता है उधर, तो मतलब बचाने के लिए स्प्रे करना होता है, हमारे पाला ना लगे उसे कई तरह की दवाइयाँ मिलती।
0: पाले से बचाने के लिए आप क्या करती हैं? जब पाला पड़ता है तो फिर किस तरह से देख रेख करती हैं?
1: वो दवाइयाँ मिलती है मैम, बाकी छिड़काव वगैरह करती रहती
0: हूं। काफी अच्छी जानकारी दे रही हैं आप। पुष्पा जी आप हमारी बहनों को ये बताइए कि जो हमारे घर में जो फूल पौधे लगाती हैं बहनें, तो वो घर में किस तरह से देख रेख करें? कई बार क्या होता है फूल लगाते हैं और वो सूख जाते हैं, तो उसके लिए कोई खास देखभाल करनी पड़ती है?
1: मैंने ऐसे ही लगा देती है, वो पौधे लाती हूँ और मिट्टी में लगा दिया, तो हमें जो है खाद वगैरह गोबर की सड़ी हुई जो पौध की खाद है वो लगा के तब हमें पौधा लगाना चाहिए, तो हमारा पौधा हरा होता है और उसमें फूल भी
0: जाते। तो हर पौधे में लगाएं गोबर वाली खाद?
1: जी गोबर की सड़ी हुई खाद।
0: आप ये बताइए जो घर में आसानी से कौन से फूल हो जाते हैं जिन्हें हमारी बहनें घर में लगा सकें जो जल्दी खराब ना हो?
1: तो आसानी से तो जो है गुलाब जो है वो बहुत आसानी से उग जाता है और उसमें ज्यादा कोई क्षति पहुँचती है, वो गुलाब और गेंदा जो है आसानी से तैयार हो जाते हैं।
0: और ये भी कहा जाता है कि बारिश के मौसम में पौधे अच्छे चलते हैं, ऐसा भी कुछ है?
1: हाँ बारिश के मौसम में उन्हें समय से पानी मिलता है और एक प्रकृति ही होती है, आप देखती हो कहीं भी निकलो बारिश के मौसम में तो अधिक ही हरियाली होती है, ताजा सारा कुछ नई उमंग में होते हैं पौधे, पर्यावरण आप देखती हो जुलाई अगस्त में तो हरियाली हरियाली दिखती है, उसी हिसाब से हमारे घर में भी पौधे होते हैं,
0: उनको जल्दी बड़े भी हो जाते हैं।
1: हाँ जल्दी बड़े भी हो जाते हैं, देखभाल इतनी अधिक और वो तैयार भी हो जाते हैं।
0: बारिश में ज्यादा देखभाल की जरूरत भी नहीं होती है कि कुछ उसमें खाद लगाई जाए, वो अपना भी बड़ा होता चला जाता है। तो पुष्पा जी आपके घर में तो काफी अच्छे अच्छे फूल पौधे होंगे, जब आपको इतना शौक है फिर आप ये इसमें काम भी करती हैं इस फील्ड में?
1: हाँ मैम हमारे घर में गुलाब और गेंदे के।
0: पुष्पा जी आपसे बात ये बहुत अच्छा लगा, आपने हमारी सखियों को इतनी अच्छी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

सखियों, जून का महीना चल रहा है, गर्मी काफ़ी पड़ रही है। ऐसे मौसम में हम अक्सर बीमार हो जाते हैं ना चाह कर भी। कभी डिहाइड्रेशन, उल्टी, दस्त, कई दिक्कतें हो जाती हैं। हमें ये परेशानियां ना हो, इसके लिए ज़रूरी है हल्का और ताज़ा भोजन करें और बिना वजह घर से बाहर ना निकलें। जब कोई अर्जेंट वर्क हो तभी घर से बाहर जाएं। अपने पाचन तंत्र को मजबूत रखने के लिए मौसमी फल और सब्जियां खाएं और तरल पदार्थों का अधिक सेवन करें। भरपूर पानी पिएं, शरीर में पानी की कमी ना हो। इसके लिए आप नींबू पानी, नारियल पानी, छाछ, दही का भी सेवन कर सकते हैं। जब भी आप धूप में जाएं तो पूरी आस्तीन के सूती कपड़े ही पहनें जो हमें धूप से बचाते हैं। धूप से बचने के लिए आप छाता, चश्मा का यूज़ करें जो आपको धूप से बचाता है।

सखियो, हमने आपसे पूछा था आज का सवाल। सवाल है, ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली भारत की प्रथम महिला कौन थी? इसका जवाब है आशा पूर्णा देवी। जी हाँ, वर्ष 1976 में उनके प्रसिद्ध बंगाली उपन्यास प्रथम प्रतिश्रुति के लिए इस प्रतिष्ठित साहित्यिक सम्मान से नवाजा गया था। सही जवाब दिया है हमारे इन श्रोताओं ने, लाल मोहम्मद अंसारी, फरियाद हुसैन, अनोखेलाल मौर्य और विष्णु टेलर, रितिका वानी, चंद्रकला गणेश, काशीनाथ, संगीता आरोही प्रियांशी, सोनी दयानंद कॉलेज भवानीपेठ, सोलापुर, महाराष्ट्र से। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सखियों, कार्यक्रम का समय अब यहीं तक। अगले प्रोग्राम में आपसे फिर होगी मुलाकात। अपनी रेडियो दोस्त प्रियंका को दीजिए अनुमति। सखियों, नमस्कार।

अभी आप नारी संसार कार्यक्रम सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 मेगाहर्ट्ज पर, और स्टूडियो की घड़ी में शाम के 6 बजने को हैं, और आप सुनेंगे अब युववाणी कार्यक्रम।

नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी दोस्तों का प्रोग्राम युवाबाड़ी में। और आज के इस प्रोग्राम में आपके साथ हूँ मैं, आपकी अपनी रेडियो दोस्त माधुरी। दोस्तों, कहते हैं कि हर दिन नई उम्मीद नए अवसर लेकर आता है, और यदि हमारे विचार पॉजिटिव हो तो कठिन से कठिन रास्ता भी आसान लगने लगता है। जी हाँ दोस्तों, हमारी आपकी सफलता की सबसे पहली सीढ़ी है हमारी आपकी पॉजिटिव थिंकिंग। इसलिए जीवन में अच्छी सोच का होना बेहद ज़रूरी है। इसके अलावा दोस्तों, अच्छा संगीत भी हमारे मन को खुश करता है। तो चलिए, आपके चेहरे पर भी मुस्कान बिखेरते हैं और आपको सुनवाते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: दोस्तों, संगीत और नृत्य हमारी संस्कृति की खूबसूरत पहचान है। साथियों, डांस के माध्यम से कलाकार अपनी प्रतिभा और अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। अब डांस को सीखने की शुरुआत कैसे की जाए, इसके बाद करियर की क्या क्या संभावनाएं हैं, ये जानने के लिए आइए बातचीत करते हैं एक छात्रा से जो कि डांस सीख रही हैं और इसी क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं।
1: आपका नाम?
2: अपूर्वा कश्यप
1: जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या करती हैं?
2: मैं अपनी ग्रेजुएशन कर रही हूँ कथक से, बैचलर्स इन परफॉर्मिंग आर्ट यूनिवर्सिटी से लखनऊ।
1: जी, तो आपने कैसे मन बनाया कि मुझे इस क्षेत्र में जाना चाहिए?
2: शुरू से ही, जब मैं छोटी थी तब से मैं डांस इंडिया डांस देखती थी, वहीं से मेरे को डांस का शौक था। घर वालों ने मेरे ये चीज नोटिस करी और मेरे को जब मैं छोटी थी तभी कथक क्लासेस में डाल दिया। पढ़ाई के साथ साथ मैंने अपना प्रभाकर पूरा किया और जब इतना इंटरेस्ट बढ़ गया था मेरा कि अब मुझे इसी में करियर बनाना है, तो मम्मी के सपोर्ट से, पापा के सपोर्ट से उन्होंने मेरा एडमिशन बात करने के कराया था।
1: जी, तो आपके घर में भी कोई नृत्य के क्षेत्र से जुड़ा हुआ है या फिर खुद ही आपके मन में ये अभिलाषा हुई कि मुझे इस क्षेत्र से जुड़ना चाहिए?
2: ये खुद ही मेरे मन में आया। मेरे घर में कोई ऐसा नहीं है जो इस क्षेत्र में हो, लेकिन ये मेरे मन का खुद का ख्याल था कि मुझे इसमें जाना।
1: जी जी, तो पढ़ाई के साथ कैसे मैनेज करती हैं, कैसे करती हैं प्रैक्टिस?
2: प्रैक्टिस के लिए अलग आर्ट है, 3-4 घंटे का रियाज करती हूँ मैं फ्री टाइम में, तो यही है रूटीन मेरा।
1: जी जी, तो अभी तक आपने कहाँ कहाँ परफॉर्मेंस दी है?
2: मैंने अयोध्या में, आगरा में, दिल्ली में, फिरोजाबाद में, काफी अलग अलग जगह मैंने प्रस्तुति दी है।
1: जी, तो आपने जब परफॉर्मेंस दी तो आपको कैसा लगा, क्या अनुभव रहे आपके?
2: बहुत ही अच्छे एक्सपीरियंस भी रहे हैं, काफी खराब भी रहे हैं, ऊपर नीचे तो चलता रहता है, ये तो जिंदगी का पार्ट है, बट बहुत कुछ सीखा मैंने।
1: जी जी, तो आपने क्या क्या सीखा? कहते हैं कि अगर कोई गलतियां भी होती हैं तो वो भी हमें कुछ ना कुछ सिखा कर जाती हैं, तो आपने क्या सीखा सफलता से और असफलता से?
2: मैंने सीखा कि चाहे कुछ भी हो जाए वो चीज एक्सेप्ट करना सीखो। हो सकता है काफी बार हम चीजें प्लान करें उस हिसाब से चीजें ना हुए, लेकिन वो चीज एक्सेप्ट करो, मूव ऑन करो, उस चीज को बेटर तरीके से नेक्स्ट टाइम प्रस्तुति दो, तो ये सब चीजें मैंने।
1: जी अच्छा, क्या है, कथक जो है वो क्लासिकल डांस है, आजकल के जो बच्चे हैं जो रुचि है उनकी वो थोड़ी कम रहती है, तो क्या कहना चाहेंगे ऐसे युवा छात्रों से कि वो भी इस ओर आ सकते हैं, ये भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, क्या कहना चाहेंगी?
2: मैं तो बस यही कहना चाहूंगी कि जो अभी जैसे हिप हॉप है या वो सारे डांसेस हैं, अच्छे हैं वो, ऐसा नहीं है कि बुराई है उसमें, लेकिन इंडियन क्लासिकल डांस से जुड़ना हिंदुस्तानी होने के बाद बहुत बड़ी चीज है, तो आपको वो चीज करनी चाहिए। आप 1-2 साल भी अगर सीखोगे तो आपको बहुत सारी ऐसी नॉलेज पता चलेगी हमारे धर्म के बारे में, सब चीजों के बारे में। आपकी बॉडी एकदम थेरेपी मोड में चली जाती है जब आप कथक करते हो, फुटवर्क करते हो, तो बहुत सारी चीजें हेल्थ बेनिफिट्स भी हैं कथक करने के।
1: जी जी, अच्छा क्या होता है इस डांस में

0: घुंघरू की आवाज जो होती है और एक्सप्रेशन का बहुत बड़ा कनेक्शन होता है, तो
1: जी
0: किस
1: जी
0: तरीके से परफॉर्मेंस करती हैं आप, इस बीच कैसे मैनेज करती हैं खुद को?
1: जो हमारे एक्सप्रेशंस होते हैं उनको बैठ के समझना, गाने के साथ साथ उसके हर एक इमोशन को समझना, पहले उस चीज का रियाज करती हूँ, पहले जो भी गाना होता है, जो भी ट्रैक होता है, जो भी लिरिक्स होते हैं, उनको सोच के, सुन के, समझ के, वो एक्सप्रेशन का भाव लाना, मिरर में देखना कि क्या वो एक्सप्रेशन का भाव उतना मैं एक्सप्रेस कर पा रही हूँ, वीडियो बनाना कि उतना रिजल्ट दे पा रही हूँ, फिर फुटवर्क की प्रैक्टिस करना, ऐसे दोनों को एक दूसरे से कनेक्ट करके प्रेजेंट करना, इस तरीके से मैं अपना रियाज करती हूँ।
0: जी जी कोई युवा साथी अगर इस कोर्स में आना चाहता है और कथक सीखना चाहता है तो वो किस तरीके से आगे बढ़ सकता है? क्या बरेली में भी कोई ऐसे कॉलेजेस हैं जो इस प्रकार की शिक्षा दे रहे हैं?
1: जी जी बरेली में भी काफी तरह की अकेडमीज हैं जो कथक के कोर्सेज प्रोवाइड करती हैं। टेम्पररी कोर्सेज भी होते हैं कथक के, एक दो साल के, बाकी प्रभाकर 6 साल का ग्रेजुएशन होता है, डिप्लोमा कोर्स, वो
0: जी
1: भी
0: अच्छा
1: कर सकते हैं बच्चे। बाकी अगर आप जाके सर्च करेंगे कथक अकेडमीज नियर मी तो आपको काफी सारे ऑप्शन भी मिल जाएंगे।
0: जी जी अच्छा क्या होता है कि ऑनलाइन देखकर भी बच्चे सीख जाते हैं, तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे, सोशल मीडिया किस तरीके से हेल्प कर सकता है किसी बच्चे को सीखने में डांस के लिए?
1: सोशल मीडिया डेफिनेटली हेल्प कर सकता है, आजकल सोशल मीडिया का ही जमाना है। पे जाएंगे आप, लिखेंगे कथक बिगनर कोर्सेज तो आपको काफी सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। बट कथक ऐसी चीज है जिसमें बॉडी पोस्चर गुरु की गाइडेंस के बिना नहीं हो सकता, तो मैं तो सजेस्ट करूंगी सभी बच्चों से जो इंटरेस्टेड हैं कि आप ऑफलाइन ही सीखो, उससे काफी कुछ आपको सीखने को मिलेगा, ना कि ऑनलाइन। ऑनलाइन आप अपने नॉलेज के लिए सीख सकते हो, इम्प्रूवमेंट के लिए आप गाइड ले सकते हो वहां से, बट डिपेंडेंस नहीं मैं चाहूंगी कि वहां से आप करो,
0: जी
1: डिपेंड
0: जी
1: नहीं होना चाहिए।
0: जी जी इसका मतलब है आप कहना चाहती हैं कि गुरु का होना जरूरी है इस डांस के
1: जी
0: लिए?
1: बहुत जरूरी है। जी
0: जी बिल्कुल। अच्छा अगर कोई ये कोर्स कर लेता है, मान लो किसी छात्र या छात्रा ने ये कोर्स कर लिया, तो करियर की क्या क्या संभावनाएं रहेंगी, वो किस तरीके से आगे बढ़ सकती है?
1: काफी सारी जगह पे गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं कथक के लिए, डांस के लिए, तो एक तो वो ऑप्शन है। बाकी आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी या फिर गवर्नमेंट स्कूल्स में भी अप्लाई कर सकते हो, अपना खुद का अकेडमी खोल सकते हैं, वेडिंग कोरियोग्राफीज, इवेंट मैनेजमेंट कर सकते हैं, तो ये सारी काफी सारी फील्ड है जहाँ पे आप जा सकते हो, काफी अच्छा इनकम सोर्स और रिस्पेक्ट आपको मिलेगी।
0: जी जी बहुत अच्छी जानकारी आपने कथक के बारे में दी। और ऐसी कोई बात या ऐसा कोई मैसेज जो आप हमारे श्रोताओं को देना चाहें?
1: मैं तो बस यही कहना चाहूंगी कि जो भी बच्चे डांस में इंटरेस्टेड हैं, हिप हॉप या किसी भी डांस से पहले आप एक बार कथक को जरूर सीखें, वो आपको बहुत कुछ ऐसी चीजें सिखाएगा जो आपको नहीं पता होंगी, जो कि हिप हॉप या फिर वेस्टर्न डांस कल्चर से नहीं आप सीख पाओगे, तो वो चीजें आपको कथक से या फिर किसी भी इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म से सीखने को मिलेंगी। तो मैं तो यही कहूंगी कि आपको एटलीस्ट 4-5 महीने तो कथक सीख के देखना ही चाहिए, अगर आपका इंटरेस्ट और बढ़ता है उस फील्ड में तो आप और आगे कीजिए और आगे बढ़िए।
0: जी इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए और आकाशवाणी बरेली से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: मेहरबान कदरदान बच्चे बूढ़े और जवान, सौ बात की एक बात है सही, सिर्फ पैसे भेजने के लिए QR स्कैन करते हैं या पिन डालते हैं, पैसे मिलने के लिए नहीं।
1: RBI कहता है QR कोड स्कैन करते समय या पिन डालते समय थोड़ा ध्यान से।
2: दोस्तों अब बारी है आज के सवाल की। हमने आपसे पूछा था कि गोबी मरुस्थल किस देश में है, तो इसका सही उत्तर है मंगोलिया। और सही जवाब देने वाले हमारे श्रोता हैं विष्णु मिस्कीन, वेद प्रकाश मिद्धा, निसार सलमानी, मुकेश कश्यप, ताज अंसारी, सुदर्शन शाह, जॉन डिकेस्ट्रो, बिट्टू भाटिया, हीरा मणि वर्मा, दिनेश वर्मा, गंगा सिंह रावत, सतीश अनेजा, पुंजा जी नाहौकर, लाल मोहम्मद अंसारी, अजीत कसाना, फरियाद हुसैन अंसारी, राजेश वर्मा, महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, अशोक दाले, फरियाद हुसैन अंसारी, सोमदत्त नाभा, दिग्दर्शन गौड़, प्रवीण चौहान और अनोखे लाल मौर्य। तो ये था सवाल और जवाब, और अब सुनते हैं धूम धड़ाका में ये गीत।

साथियों प्रोग्राम है युवाड़ी और सेगमेंट चल रहा है धूम धड़ाका और अब बारी है फरमाइशी गीत की और इस गीत को सुनना चाहा है गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका बलविंदर विर्क जैतिक विर्क और मीका विर्क ने। तो आइए सुनते हैं आप सभी दोस्तों की पसंद पर कार्यक्रम का ये आखिरी गीत।

अभी आप युववाणी कार्यक्रम सुन रहे थे, ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है 100.4 मेगाहर्ट्ज़ पर, और लीजिए अब प्रस्तुत है कार्यक्रम ग्राम जगत।

कार्यक्रम ग्राम जगत सुन रहे सभी श्रोताओं को आपके भैया कन्हैया की ओर से राम राम। श्रोताओं, आज हम आपसे बातचीत करेंगे बच्चों का टीकाकरण और साथ ही चलेंगे एक गांव की ओर अपने क्षेत्र संकलित कार्यक्रम में और साथ ही साथ करावेंगे आज के कार्यक्रम में आपको भरपूर मनोरंजन। तो श्रोताओं, जैसे कि आप जानते हैं टीकाकरण एक ऐसी चीज़ है जो कि हमें संक्रामक बीमारियों से बचाव में सहयोग करती है। और जहाँ हमारे नन्हे मुन्ने बच्चन की बात आते हैं तो इनमें जो टीकाकरण है वो बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि हमें अपने बच्चों को खसरा, पोलियो, टीबी, तपेदिक और टिटनेस जैसी जो बीमारियां हैं इनसे अगर हमें बचाने हैं तो टीकाकरण बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि टीकाकरण जो संक्रामक बीमारियों के बचाव के साथ साथ इनसे लड़ने की जो प्रतिरोधक क्षमता है वो हमारे शरीर के अंदर पैदा करते हैं। और जो टीकाकरण हम करा लेते हैं तो अपने भविष्य को सुरक्षित करने में बहुत ही उपयोगी साबित होता है हमारा जो टीकाकरण। और जहां बात चलिए रही है तो टीकाकरण में जब किसी समाज में अधिकतर बच्चन में टीकाकरण हो जाता है तो जो बीमारियां फैलने वाली होती हैं उनको हम रोक सकते हैं। इससे वे बच्चे भी सुरक्षित हो जाते हैं जिन्होंने टीकाकरण ना कराओ है, जिनके टीका ना लगे हैं, क्योंकि जो संक्रामक बीमारियां होती हैं जब वो समाज में फैलती हैं तो ये टीकाकरण ही एक ऐसा साधन है जिससे कि हम अपने आप को सुरक्षित करने के साथ साथ जो टीकाकरण ना लगे हुए बच्चा होते हैं उन्हों को भैया हम सुरक्षित कर सकते हैं, क्योंकि टीकाकरण एक ऐसा सशक्त साधन है जिसके माध्यम से हम संक्रामक बीमारियों को पराजित कर सकते हैं। और बातचीत और करेंगे, लेकिन बात से पहले भैया आज हो जाए कछ गौण ही बज नहीं। और सबसे पहले हम आपके बीच में पहुंचा रहे हैं जो लोकगीत सैया मिले लड़कियां, और इस पर कुछ हमारे श्रोता ने अपनी फरमाइश सोशल मीडिया कमेंट्स के माध्यम से लेकर के हम तक भेजिए, बेनाम आपको पहुँचा पाएंगे आपके बीच में, लेकिन बात से पहले आपकी पसंद पहुँचाई देता आपके रेडियो सेट से

0: और जो लोकगीत के लिए हमें सोशल मीडिया कमेंट्स के माध्यम से जो नाम प्राप्त हुए उनको अब हम आपके बीच में पहुंचा देते हैं। शादुल शहर राजस्थान से राम कुमार रेवाड़, चंद्रकला रेवाड़, और आप लिख रहे हैं जिला मुरादाबाद, ग्राम दुल्लापुर, उत्तर प्रदेश से। मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सुरेश, सोनू, राजपाल, काजल, मानवी, लक्ष्मी, सोनी, मोहिनी, ऋतिक और बलवीर, आपने लिख करके भेजा है। दत्तेरी भटवारा छत्तीसगढ़ से हमें लिख रहे हैं। हीरामणि वर्मा, परस मणि, पुष्पेंद्र और नोखेलाल वर्मा, आप लिख रहे हैं हमें अगला लोकगीत सुनने के लिए। धनौरी तेलीवाला उत्तराखंड से लिखने वाले श्रोता हैं आप। निसार सलमानी, नौशाद और बेबी आलिया आयान बाबू। और भैया देखो, मनोरंजन तो आपको ही हो, लेकिन अब हम चलते हैं काऊ गांव की ओर, और किस गांव में पहुंच रहे हैं और किन से आज हम बात कर रहे हैं तो खुद ही उनकी जुबानी जान लेते हैं।
1: आज हम अपनी आकाशवाणी से निकल करके एक गांव में पहुंचे हैं। एक भैया हमें मिले हैं, पूछते हैं इनसे ये गांव कौन सा है, ये किस ब्लॉक का गांव है।
2: मजगमा।
1: आप हमको मिले हैं, क्या नाम है आपका?
2: पुष्पेंद्र शर्मा।
1: अच्छा पुष्पेंद्र जी, क्या उम्र होगी आपकी?
2: 23 साल।
1: पढ़ाई लिखाई कहाँ तक की आपने?
2: इंटर कर रहा था।
1: कितने दिन हो गए की हुए?
2: करीब हो गए, किसमें किया था मैंने इंटर।
1: कहते हैं हर कोई अपने जीवन यापन के लिए कोई ना कोई काम काज करता है, हम आपसे जानना चाहेंगे आप क्या काम काज करते हैं।
2: मैं कारपेंटर का।
1: कारपेंटर से हमारे सुनने वाले हैं वो क्या समझें?
2: लकड़ी का काम करता हूँ, विंडो चौखट।
1: अच्छा, तो ये विंडो है, चौखट है, और क्या क्या बनाते हैं आप?
2: बेड है, ड्रेसिंग है, और क्या कहते हैं, गेट बेट चढ़ाता हूँ, बाथरूम वगैरह, किचन, सारा कुछ बनाते हैं।
1: अभी आपने बताया कि ये बहुत सारे काम हैं ये आप करते हैं, उम्र आपकी बहुत कम है, लेकिन हम आपसे जानना चाहेंगे इतनी उम्र में इतने सारे काम आपने कैसे सीखे?
2: बाहर रहा था 4-5 साल, वहीं सीखा था, जीजा के पास अपने।
1: अच्छा, उसके बाद अपने घर पर आकर काम शुरू कर दिया?
2: हाँ, पापा भी मेरे पहले से ही काम करते थे। अच्छा। उनके साथ काम नहीं किया, दिल्ली गया था जीजा जी के साथ अपने, उनके साथ काम सीखा।
1: तो अगर कोई चीज आप बनाते हैं और उसमें अटक जाते हैं तो फिर किसका परामर्श लेते हैं?
2: पहले तो अपना ही कोशिश करते हैं कि हो जाए, यहाँ पर है तो पापा से पूछ लेते हैं।
1: अच्छा,
2: होना ही होना है
1: जी। देखिए, ये जो लकड़ी का काम है, आप बहुत बारीकी का काम होता है, कहीं पर कोई चीज अगर बनानी है या बात करें कोई चीज तैयार करनी है तो किन किन बातों का आप ध्यान रखते हैं?
2: मेन चीज तो इंची टाइप है उसका, सबसे ज्यादा सोचने विचारने के बाद उसके बाद लकड़ी का फिर काटते हैं। मशीन चलाते तो मशीन पे फिर उसकी गेज का भी ध्यान रखते हैं, उसको ब्लेड बांधते तो उसका भी ध्यान रखते हैं, कितने बनना है कितने पे नहीं बनना है
1: जी,
2: ये सब कुछ देखना पड़ता है।
1: लकड़ी का सामान आप बनाते हैं और लकड़ी एक ऐसी चीज है कहीं पर अगर थोड़ी बहुत कम ज्यादा कट जाती है तो फिर वो सही हो जाती है या फिर कहते हैं ना पूरी बेकार हो जाती है। अगर कहीं हम कोई चीज़ मिलानी है हमको तो फिर उसमें हमें कहीं ना कहीं चूर मिलानी पड़ती है या बात करें किसी साइज को साइज से जब बढ़ाना पड़ता है तो अगर वो छोटी बड़ी कट जाती है तो दिक्कत आती है।
2: बिल्कुल आती है, उसे मिलाने में फिर उसको ठीक किया जाता है, काट पीट के मतलब जो भी होता है
1: जी,
2: आरी डाल के मिलाया जाता है, फिर वो मिलती है बढ़िया करके, तब सही होती है।
1: कहीं पूरी लकड़ी तो बेकार नहीं।

0: दिए जाते हैं और वेस्ट नहीं होने देते, उसको फिर भी कहीं ना कहीं यूज कर लेते हैं।
1: अच्छा, यानी कि अगर उसमें जो चीज़ हम बना रहे हैं वो नहीं बन पा रही है तो उसे दूसरी जगह लगा लेते
0: हाँ जी
1: हैं,
0: हाँ जी,
1: लेकिन थोड़ी बहुत लापरवाही अगर हो जाती है तो कहीं ना कहीं समस्या तो आती है।
0: वो समस्या आती है फिर
1: जी
0: तो, खराबी होनी है उसको, कुछ
1: जी जी
0: लापरवाही की वजह से खराब होती ही होती है।
1: बिल्कुल। आपने बताया था कि आप एक मशीन चलाते हैं और उसमें लकड़ी की छिलाई आप करते हैं, तो मिलाना पड़ता है, कितनी छीलनी है, कितनी काटनी है, ये सब शायद जो आप बता रहे थे कि इंची टेप से तैयार करना होता है, वो कैसे करते हैं आप?
0: वो मशीन मेरी खड़ी है, ये करीब 5 फीट चौड़ी है कि इसका गेज बंधा हुआ है, उसमें गेज जो उठाने वाला है उस पर गेज बंधा हुआ है। वो मशीन मेरी खड़ी है, ये करीब 5 फीट चौड़ी है कि इसका गेज बंधा हुआ है, उसमें गेज जो उठाने वाला है उस पर गेज बंधा हुआ है, उसके लिए हम उठा के उसको बांध देते हैं वहाँ पर।
1: एक लकड़ी की जो सुंदरता है उसको आप बना करके तैयार करते हैं, तो हम आपसे जानना चाहेंगे अपने सुनने वालों के लिए उसमें क्या क्या ध्यान रखते हैं आप?
0: लकड़ी की सुंदरता देखने के लिए जैसे कोई बड़ा बड़ा था ग्लेंडर चला के उसको बढ़िया करके साफ करके क्वालिटी उसका साइज निकालने के बाद बढ़िया एकदम रूटर वोटर लगा के मोल्डिंग बना के तैयार करते हैं तो बहुत अच्छी लगती है। जैसे इसकी मोल्डिंग बनी हुई है सारी ग्लेंडर वगैरह की,
1: जी
0: इसमें होता है ये मोल्डिंग निकालने के बाद तब अच्छी लगती है वो। और
1: जी
0: प्लस जब ज़्यादा ही क्वालिटी अच्छी चाहिए होती है सनमाइका लगा के तैयार करते हैं, वो आदमी देखता है तब अच्छा लगता है वो।
1: जी आजकल कंपटीशन का दौर है, एक न एक नए नए मॉडल, नए नए जो साइज हैं वो आ रहे हैं, आप सीख पाते हैं उनको?
0: बिल्कुल, अगर कोई जैसे कस्टमर आता है मेरे पास, वो अपना फ़ोटो देता है या कोई डिज़ाइन वगैरह उसका क्लियर करके मेरे को देता है ये चीज़ बनानी, तो उसको सीख कर देख कर उसी हिसाब से बना के देनी पड़ती है उसके लिए, ये होता है।
1: जी तैयार कर देते हैं आप?
0: हाँ बिल्कुल,
1: अगर कहीं कोई समस्या आती तो?
0: फिर तो मेरे पापा हैं पास में बैठे हुए, उनके लिए फिर उनसे पूछा जाता है कि ये कैसे होगी, तो वो मुझसे नहीं होती तो वो तैयार करके देते हैं मेरे लिए कि ऐसे नहीं ऐसे होगी, वो बता देते हैं फिर मैं तैयार करता हूँ।
1: जी जैसे हमने अपनी बातचीत के शुरू में कहा था कि लकड़ी का काम जो है वो बहुत बारीकी का काम है, कोई भी चीज़ अगर हम तैयार करते हैं तो हमें बहुत सारी बातों का ध्यान रखना होता है, कहीं ना कहीं कोई अगर लापरवाही हो जाती है तो नुकसान भी हो जाता है, अगर कोई लापरवाही होती है तो नुकसान भी हो जाता है, तो नुकसान ना हो आपके द्वारा अच्छी चीज़ें और सुंदर चीज़ें तैयार की जाएं, इसके लिए आप क्या ध्यान रखते हैं?
0: इसके लिए मतलब टाइम देना पड़ता है, जैसे कि ज़्यादा समय जब कोई अच्छी चीज़ बनानी तो उसमें समय लगता है, जैसे 1 घंटे काम हो तो 2-4 घंटे में फिर वो करना
1: जी
0: पड़ता
1: एक
0: है।
1: बढ़िया चीज़ बनाने के लिए मान के चले लगभग कितना समय लग जाएगा?
0: अगर कोई अच्छी चीज़ बना रहे हो तो उसके लिए 2 से 3 दिन लगने लगने हैं, ये तो हो जाता है।
1: जी
0: अभी मैंने एक पल्ला बनाया था उसमें 5 दिन लगे थे करीब,
1: जी
0: बना के खराब हुआ।
1: आप इंटर करने के बाद में ये लकड़ी का काम कर रहे हैं, चौखट है, रोशनदान है, चौखट है, रोशनदान है, ये चीज़ें आप तैयार करते हैं, तो आपने कहा भी था कि समय लगता है कोई भी अच्छी चीज़ तैयार करने के लिए, आपकी दुकान की तरफ लोग आकर्षित हों, आपकी चीज़ बनी हुई देख करके आपसे प्रभावित हों, इसके लिए क्या ध्यान रखते हैं आप?
0: इसके लिए मतलब लोगों के व्यवहार बढ़िया होने चाहिए, सारा काम सोच है कि उनसे बातचीत कैसे करनी है, किस प्रकार से उन्हें रोकना है अपने पास, किस
1: जी
0: प्रकार से उनके लिए चीज़ देनी है, क्या बताना है, तब वो रुकते हैं, फिर वो देखते हैं कि काम कैसा है। काम कराने के बाद ही आदमी को पसंद आता है, काम किया है बढ़िया है, अक्सर होके आता है हमारे पास फिर काम कराता है।
1: अभी मशीनें आई हैं इनमें और पहले जो औजार चलाते थे उनमें कोई चलाने में अंतर है?
0: हाँ काफ़ी अंतर है, इनके लिए बांधना पड़ता है, अड्डे फड्डे बांधो मशीन के, उसके बाद चलती है।
1: जी पहले लकड़ी में छेद करने के लिए अलग होता था और उसको साफ करने के लिए अलग होता था, अब आज के दौर में समय का कम अभाव है, हर किसी के पास टाइम कम है और हर चीज़ को हम चाहते हैं जल्दी तैयार हो, ऐसा कोई यंत्र और है?
0: हाँ रंदा मशीन, ये बड़ी वाली मेरी मशीन खड़ी है, इसमें सब कुछ है, छिदाई भी होती है, कटाई भी हो रही है, चूर भी निकल रहा है, लकड़ी को साफ भी कर रही है, सारा काम इसी मशीन से कर लेता हूँ बड़ी वाली से।
1: जी तो इनसे जो सामान तैयार होता है उनमें तैयार करने में भी कोई समय की बचत होती है क्या?
0: हाँ, कई बार जो 2 घंटे वाला काम है 1.5 घंटे में हो जाता है, 1-2 घंटे का बचत हो जाता है अगर जल्दी करो जितना।
1: कोई समय की बचत होती है?
0: हाँ समय की बचत होती है, करीब अगर 2 घंटे का काम हो 1-1.5 घंटे में निकल जाता है ये।
1: माल जब हम तैयार करते हैं ऑर्डर पर तो तैयार करने में भी आसानी होती होगी?
0: हाँ तैयार करने में आसानी होती है, मशीनों से काम कर रहे तो जल्दी ही
1: जी
0: होगा।
1: कहीं ना कहीं समय की बचत और साथ ही साथ जो हमारी चीज़ तैयार हो रही है उसकी गुणवत्ता में तो कोई अंतर नहीं आता?
0: ना ना कोई, सब सेम तैयार होता है, कोई दिक्कत नहीं है वैसे।
1: जी आप इंटर करने के बाद इस व्यवसाय से जुड़ गए हैं, आप ही की तरह बहुत सारे लोग हैं जो हाई स्कूल इंटर बीए करने के बाद गांव में कहते हैं कि हमें नौकरी नहीं मिली, पढ़े लिखे तो काफ़ी हैं, तो आप चूंकि इंटर करने के बाद में अपने पिताजी के व्यवसाय से जुड़ गए हैं, ऐसे लोगों से क्या कहना चाहेंगे हमारे कार्यक्रम के माध्यम से?
0: मैं तो यही कहूँगा कि कोई काम देखें अपने पिताजी के साथ या कोई कुछ भी है, कोई काम सीखें।
1: जी हमारी आपकी बातचीत को आज के कार्यक्रम ग्राम जगत के माध्यम से बहुत सारे श्रोता सुनाए, चलते चलते संदेश के रूप में

0: कहना चाहेंगे?
1: आजकल फिलहाल काम की तो कमी है नहीं,
0: जी
1: और समय दोगे तो काम बहुत है, बहुत सारे काम हैं, सीखो आप तभी कुछ कर पाओगे।
0: पुष्पेंद्र जी, आप अपने स्वरोजगार से जुड़े हैं और पढ़ लिख करके अपना काम कर रहे हैं, और हमारे श्रोताओं के बीच में आपने जो अपने अनुभव थे वो हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से रखे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोताओं, अभी आपने पुष्पेंद्र कुमार के जो उनके खुद के कामकाज के अनुभव थे और नए यंत्र जो हमारे कामकाज के लिए आए हैं उनके उपयोग से कितनी सुलभता होगी और कितनों कम समय लगता है कोई चीज़ अगर हम तैयार करते हैं लकड़ी की, तो इस बारे में विस्तार से बताए रहे आपको और हमको पुष्पेंद्र कुमार, और जो ग्राम अखा विकास खंड मझगवां गाँव के रहने वाले थे। तो श्रोताओं, अब बातचीत चलिए रही है तो क्यों ना हम और कुछ गोने बजने की बात कर लें। जी हाँ, हमारे पास कुछ और श्रोता हैं जिन्होंने अपनी फरमाइश लिख कर के हम तक भेजी है कि जो अगलो लोकगीत हमारे साथ सुनना चाहते वे हैं, नाम लिख रहे हैं ग्राम छत्तीसगढ़ डोंगवारा से राष्ट्रीयपाल गजबिये और राधिका गजबिये, बेबी अनामिका और तन्मय गजबिये, कटरा चांद खा मौर्य मंदिर वार्ड नंबर 11 पुराना शहर बरेली से लिख करके हमें भेज रहे हैं। अनोखे लाल मौर्य, सुंदर देवी, प्रकाश, रिंकी, कपिल, बेदराम, कैलाश, सुनील, खुशबू, आरोही और स्वाति, और इसी लोकगीत को पसंद किया है ग्राम भड़ताना पोस्ट खुड्डा से प्रेम सिंह, ममता, नेमवती, संजू, आकाश और इनके समस्त परिवारीगण। आप हमें लिख करके भेज रहे हैं ग्राम व पोस्ट राजपुर कलां से गुरु आशीष, प्रफुल्ल, अनिरुद्ध और कल्लू, मुकेश, दफेदार और इनके समस्त ग्रामवासी। तो आप सभी श्रोताओं की पसंद पर सुन लेते हैं ओम प्रकाश व साथियन को गाओ जो राजा प्रथम।

0: आते हैं, जब वो नहीं मानते तो किस प्रकार राजा नल ने एक बात और कही।
1: देखो कंचन को टहाते रावण के सुरपति करता हाते सम्मान, आंकी दहीना भारत देन के कारण निसदिन जाता।

श्रोताओ, अब जानकारी और बातचीत होते हुए काफ़ी देर हो चुकी है, और भैया देर इतनी हो चुकी है कि सामने दीवार में लगी घड़ी हमें इशारों कर रही है कि अब आपसे विदा लेने को समय धीरे धीरे हो चलो। लेकिन जो लोकगीत हमने आपके बीच में पहुंचाए ओम प्रकाश व साथियों की आवाज़ में, इसमें कुछ सोशल मीडिया कमेंट्स के माध्यम से अपने नाम लिख करके और श्रोता हम तक भेज रहे हैं। ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम राही, मेर जहाँ, और ये लिख रहे हैं आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार उत्तराखंड से, और ये लिख करके भेजा है कोटवा नारायण बाबा पट्टी बलिया से, ओम प्रकाश राय, उषा, अमित कुमार, हैप्पी, दुधवा, नवेदा जिला गाजीपुर से, प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय और पेजल राय ने।

आप सभी श्रोताओं की पसंद आपके बीच में पहुंच गई। और अब हमें जो सामने दीवार में लगी घड़ी वह इशारों कर रही है कि अब धीरे धीरे आपसे विदा लेने को समय हो चलो। लेकिन भैया अपने बच्चन को संक्रामक रोगन से अगर बचाने हैं तो एक बार फिर आपसे कहेंगे कि उनको टीकाकरण समय समय पर जरूर कराएं। OPD OPV ये जो टीकाकरण होते हैं जिनके नाम से टीकाकरण होते हैं वे समय समय पर अवश्य कराएं। और अब यहीं पर कार्यक्रम ग्राम जगत संपन्न करने की अपने भैया कन्हैया को अनुमति दीजिए और स्वीकार कीजिए हमारी राम राम।

0: अभी आप ग्राम जगत कार्यक्रम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है 100.4 मेगाहर्ट्ज पर। स्टूडियो की घड़ी में संध्या के ठीक 7 बजे हैं और लीजिए अब प्रस्तुत है कार्यक्रम अक्षय वट।
1: ट्यून किया है आपने 100.4 एफएम आकाशवाणी का बरेली केंद्र। और श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, कार्यक्रमों का एक नया सिलसिला चला है। उसकी सिलसिले में एक प्रोग्राम है हमारे और आपके बीच, समाज के ही वृद्धजन जो सीनियर सिटीजन हैं उनके माध्यम से हम उनको जोड़ते हुए कार्यक्रम लेकर आए हैं। कार्यक्रम का नाम है अक्षयवट। अक्षयवट यानी वो प्रतिबिंब है, वो समानता है कि जो अक्षयता प्रदान करता है हम सबको अपनी बातों के माध्यम से, अपने अनुभवों के माध्यम से। इसी कड़ी में कार्यक्रम में आज हमारे साथ स्टूडियोज में आई हैं श्रीमती चंपा देवी जी। ना का समाज में रहने का, अपने जीवन को, रेडियो से जुड़ाव का, परिवार को संभालने का, इन सारी चीज़ों को मिला जुला कर अपना ही एक अनुभव है और उस अनुभव को हम जानेंगे अपने इस कार्यक्रम अक्षयवट में। तो कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका नाम क्या है?
2: चंपा देवी।
1: चंपा देवी, जैसा कि आपने हमें बताया कि आप एक हाउस वाइफ हैं, परिवार संभालती हैं, साथ ही साथ पशुपालन भी करती हैं। तो चंपा देवी जी, ये दोनों चीज़ों पे बात हम करेंगे, परिवार संभालने पर और पशुपालन पे। लेकिन उससे पहले आकाशवाणी अब मना रहा है अपने 90 वर्ष, यानी इस वर्ष आकाशवाणी 90 साल का हो गया है। जब जीवन में कुछ समय पहले जब आपने शुरुआत में देखा होगा, जीवन में आप बड़े हो रहे होंगे, हम लोग तो अभी बहुत छोटे हैं, रेडियो आया, मनोरंजन का एक साधन रहा, न्यूज़ इसी पे मिलती थी, कोई और साधन नहीं था। आपने भी देखा होगा अपने बचपन में, तो कुछ इससे जुड़ी बातें कि बचपन में आपने रेडियो को पहली बार कैसे देखा, उसके बारे में कैसे सुना?
2: पहली बार ऐसे सुना हमने, जो पहले रेडियो में जो मशीन लगती थी,
1: हाँ हाँ,
2: उसमें गाने आते थे।
1: अच्छा, जो उसमें मशीन लगती थी,
2: मशीन लगती,
1: हाँ हाँ हाँ,
2: पिन से चलती,
1: हाँ, पिन से चलती थी,
2: वो वाली के गाने सुने,
1: गाने सुने आपने। तो मतलब उस दौर में भी, यानी तब आपकी शादी हो गई थी?
2: शादी नहीं,
1: तब नहीं हुई थी,
2: नहीं।
1: तो गाने यानी उस दौर में ऐसे सुना आपने पहली बार
2: जी।
1: अच्छा, कभी आपने ये देखा हो कि आपके बाबा पापा परिवार के लोग जो है रेडियो सुन पे समाचार सुन रहे हो, या फिर ऐसा गांव में होता था पहले?
2: काम बिजी,
1: सब लोग खेतीबाड़ी में, अपने
2: खेतीबाड़ी में तो वो नहीं
1: नहीं सुन पाते थे, लेकिन हाँ आपने जो है पहली बार अपना वहाँ पिन पे गीत सुनने की शुरुआत हुई, तो कितनी बड़ी बात होती थी उस दौर में कि अपनी पसंद का अगर कोई गीत सुन ले रेडियो पर, तो कितना खुशी होती थी उस दिन,
2: खुशी होती थी,
1: है ना। फिर अच्छा, जीवन में आगे बढ़े, आपका विवाह हो गया, तो आप विवाह के बाद सीधे बरेली आ गई या अपने गांव ही रही?
2: गांव गए थे पहले।
1: अच्छा, गांव गए,
2: शादी होकर गांव में गए थे।
1: अच्छा अच्छा, उस समय बड़ा थोड़ा काम, इतने सारे काम, बड़ा परिवार होता था, सबको संभालना होता था, बहुत काम होता, तो उस बीच में मौका लगता था कभी कि कहीं रेडियो सुनने को मिल जाए?
2: सुन लेते थे,
1: सुन लेते थे,
2: काम करते हुए।
1: अच्छा, तो उस समय आपको कुछ याद आता है कि कौन सा स्टेशन बरेली या क्या आता था?
2: बरेली आती थी।
1: अच्छा,
2: और क्या कहते हैं,
1: नजीबाबाद या रामपुर?
2: नजीबाबाद आता था, रामपुर आता था
1: जी, इस तरीके से। विविध भारती,
2: विविध भारती आती थी, और बम्बई,
1: हाँ बम्बई विविध भारती जी जी। तो देखिए उस दौर से आज का दौर, आज आप देखिए कि आकाशवाणी को यानी रेडियो को, पहले क्या एक रेंज होती थी कि भाई यहाँ तक रामपुर आएगा, यहाँ तक नजीबाबाद आएगा, यहाँ तक बरेली, सब कुछ एक रेंज है। अब इतना प्रगति कर ली है हम लोगों ने कि रेडियो, आप आकाशवाणी को लोग विदेशों में सुन रहे हैं, कितनी दूर दूर तक चले गए, अपनी पसंद की गीत, अपनी पसंद की बातें हम लोग जो है अब कहीं भी सुन सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी लोग रेडियो पर विश्वास करते हैं हमारी इस पे कही गई। तो आपको क्या लगता है चंपा देवी जी, कि रेडियो पर जो भी बात हम लोग करते हैं, चाहे वो किसान संबंधी हो, पशुपालन संबंधी हो, महिलाओं का प्रोग्राम आता है, घर परिवार,
2: अच्छा लगता है सुनते हैं,
1: है ना, और इसमें ज्ञान की बातें हैं।

0: तो चंपा देवी जी, अच्छा एक बात और बताइए कि हम देख रहे हैं आज कितनी भागदौड़ भरी जीवन है ना, इंटरनेट सबके पास ही मोबाइल आ गया है ना। ऐसे में हम देखते हैं कि थोड़ा परिवार भी अब कम बात करते हैं आपस में, इतने ज्यादा सबके पास मोबाइल हो गए हैं कि लोग
1: एक
0: एक
1: दूसरे के पास नहीं
0: नहीं
1: बैठते,
0: बैठते,
1: नहीं
0: यहाँ तक कि
1: बैठते,
0: रोटी खाने ते भी नहीं है एक साथ,
1: नहीं है,
0: है ना, सबका अलग अलग।
1: नहीं खाते रोटी।
0: तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि क्या सब सबको एक साथ पिरो के रखने के लिए एक क्या क्या करना चाहिए कि एक साथ खाना खाएं, एक साथ बातें करें, परिवार में मिलजुल के क्या करें?
1: अब करें तो बहुत तेरा, लेकिन बच्चे नहीं
0: नहीं हो
1: नहीं
0: पाते
1: नहीं
0: हैं
1: बहुएं आई
0: तो
1: हैं
0: इस
1: तो वो
0: तरीके से।
1: नहीं चाहती हैं कि अब साथ में बैठ के
0: सब
1: खाना खाएं।
0: अच्छा, आप लोग जब अपने शादी करके आए तो कितना बड़ा परिवार था, तो कभी ऐसा लगता था इतने सारे लोगों का खाना बना रहे हैं
1: हमारे
0: हम?
1: मायके में बहुत बड़ा परिवार था, टोकरी में खाना

0: क्या क्या करना चाहिए कि एक साथ खाना खाएं, एक साथ बातें करें, परिवार में मिलजुल के क्या करें?
1: अब कर रहे हैं तो बहुत है, लेकिन बच्चे
0: नहीं हो पाते
1: नहीं
0: हैं
1: नहीं बहुएं आई हैं
0: तो
1: तो
0: इस
1: वो
0: तरीके से
1: नहीं चाहती हैं कि अब साथ में बैठ के
0: सब।
1: खाना खाएं।
0: अच्छा, आप लोग जब अपने शादी करके आए तो कितना बड़ा परिवार था, तो कभी ऐसा लगता था इतने सारे लोगों का खाना बना रहे
1: हमारे
0: हैं?
1: मायके में बहुत बड़ा परिवार था, टोकरी में खाना रखा
0: बनता
1: जाता
0: रखा
1: था।
0: जाता था। अच्छा, पहले ये कॉमन बात थी, ये सामान्य बात थी कि भाई 10 10 15 15 चाचा ताऊ सबके परिवार मिलजुल के रह रहे हैं, सब लोग एक साथ बना
1: सब
0: के
1: इकट्ठे रहते थे,
0: रहते थे और एक साथ ही मतलब
1: खाना खाते
0: कोई
1: थे।
0: खाना खाना बनता था तो सब एक दूसरे की मदद कर रहा है, कोई सब्जी काट ले रहा है, कोई छोंक रहा है, कोई आटा गूंद ले रहा है, कोई ऐसे, तो काम भी नहीं पता चलता था।
1: पहले चक्की चलती थी, जो चक्की थी नहीं
0: हाँ, वो जात वाली।
1: तो वो एक जनी पीस रही है तो एक जनी धान कूट रही है, एक जनी खाना बना रही है, ये
0: और
1: होता था
0: ये होता है, और आदमी खुशी खुशी उन चीजों को कर लेता
1: कर
0: था।
1: लेते।
0: अब विडंबना देखिए कि अब हम देख रहे हैं कि एक कुटिया होती थी लगभग हर परिवार में,
1: हाँ,
0: हर घर में
1: कुटिया
0: एक कुटिया जिसमें हम लोग जो है अभी गेहूं खंद गए तो उसके अंदर गेहूं रख दिया
1: रख
0: गया।
1: दिया।
0: और हम अपनी बचपन की ही बात बताएं तो हमारे पास ही लगभग 10 15 क्विंटल की एक कुटिया थी, साल भर का गेहूं उसमें खरीद के रख दिया गया, ढोल हर महीने अपनी जरूरत
1: सभी
0: के
1: लोग
0: अनुसार
1: रख लेते हैं,
0: रख
1: अब तो
0: लेते थे।
1: टीन के चल गई हैं,
0: वो
1: टीन में
0: टीन
1: रख
0: वाली
1: लेते
0: मान
1: हैं।
0: के,
1: पहले
0: अब वो भी यकीन करिए कि वो भी नहीं हो रहा है।
1: टीन की नहीं थी,
0: अब पहले तो वो
1: पहले मिट्टी की
0: मिट्टी
1: बना
0: की बनाई
1: लेते थे,
0: जाते थे,
1: हम खुद बनाते थे मिट्टी
0: अपनी
1: की,
0: कुटिया बना ली
1: बना
0: उसमें।
1: लेते थे।
0: अच्छा, अब आप देखिए कि वो प्रचलन भी ये पैकेट वाला आटा और ये सब, आधुनिकता जब बढ़ रही
1: बढ़ रही
0: है
1: है,
0: फिर लोगों पे अन्य काम बहुत ज्यादा हो गए हैं, लोग नौकरी पेशे में ज्यादा इन्वॉल्व हैं, तो इन सब कामों को यानी कि गेहूं को कौन अब उसको साफ करे, फटके धोए, फिर सुखाए, फिर पिसवाने ले जाए, ये सब काम भी अब जो है धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे
1: सब
0: विलुप्त
1: बंद
0: हो रहे
1: होते
0: हैं,
1: जा
0: खत्म
1: रहे
0: हो
1: हैं।
0: रहे हैं ना। तो चंपा देवी जी, कार्यक्रम में आप हमसे जुड़ रही हैं, आप हमसे बात कर रही हैं, ऐसे में कुछ अपनी बात बताइए कि कैसे आपने रेडियो सुना और रेडियो से आपको लाभ मिला, कोई ऐसी।
1: रेडियो ऐसे काम करते थे तब रख
0: हाँ
1: लिया,
0: हाँ
1: चला के तब सुन रहे हैं, काम भी हो रहा है
0: हाँ
1: रेडियो।
0: तो आप जो आज के हमारे समाज में कई वर्ग हैं, भाई बेटे हुए, बहू हुए, फिर नाती पोते, छोटे बच्चे हुए, तो अगर हम बहुओं की कैटेगरी मतलब एक सामान्य बात करें कि हमारे जो बच्चे हैं, हमारे यानी आपके
1: जी
0: जो बच्चे हैं, इस वर्ग को संबोधित करते हुए अगर आप बोलें तो क्या ऐसी चीजें करनी चाहिए जो नहीं हो रही हैं? लोग कैसे आपस में मिलजुल के रहें, समूह में खाएं पिए, बातें करें, कुछ काम करें जिससे कि परिवार आगे बढ़े, परिवार के बीच एकता और समरसता बनी रहे, वो लगता है क्या करना चाहिए बच्चों को?
1: बच्चे मानते तो ही नहीं,
0: हाँ हाँ
1: कितने भी समझाओ कुछ
0: जी
1: भी
0: जब
1: करो,
0: करेंगे अपने ही मन
1: लेकिन
0: का।
1: करेंगे अपने ही मन का,
0: हाँ,
1: लेकिन नहीं
0: फिर भी लेकिन आपको क्या
1: फिर
0: लगता है क्या क्या करना चाहिए, कुछ बताइए जिससे कि हमारे सभी श्रोता माने सुने कि भाई उनका परिवार में फिर से जो है दूरी आ रही है वो और अच्छी नजदीकियां बनी रहे करें, तो
1: कुछ।
0: जैसे लोग एक साथ बात
1: हाँ,
0: करें, बात करना बहुत जरूरी नहीं, आपको लगता है एक
1: बात
0: दूसरे
1: नहीं कर पाते,
0: एक दूसरे से
1: नहीं
0: नहीं,
1: कर पाते
0: और सब
1: बात
0: अपने अपनी अपनी जीवन में व्यस्त हैं। तो
1: बस।
0: चंपा देवी जी, अच्छा, एक बताइए, हम अब बात करते हैं हमारे नौनिहालों की, हमारे छोटे छोटे बच्चों की, तो बच्चे जो हैं, हम पहले अपने मान लीजिए कोई बाबा कोई चीज लाए, उन्होंने बच्चों को दिया और कहा लो भी बेटा बांटो, तो
1: बांटो
0: उसके पीछे की भावना ये होती थी कि पहले तुम सबको बांटो फिर खाना, वो चीजें मतलब संस्कार देते थे हम
1: देते
0: बच्चों को
1: थे,
0: किसी ना किसी तरीके से।
1: सही बात है।
0: तो अब वो क्या लगता है आपको कि बच्चों में संस्कार वो कम हो रहा है, तो कैसे बढ़ाएं, क्या करें?
1: अब बड़ा बढ़ तो जाएगा,
0: जी
1: लेकिन उन बच्चों की जो माँ है
0: हाँ,
1: जैसा सिखाएंगी वैसा ही सीखेंगे।
0: मतलब हाँ, लेकिन ऐसे में दादी दादा का भी तो रोल होता
1: दादी
0: है।
1: दादा का तब रोल होता है जब
0: हाँ,
1: दादी दादा इकट्ठे होंगे,
0: जब साथ में रह रहे हैं।
1: साथ में
0: हाँ,
1: रह
0: और अब
1: रहे
0: तो
1: हैं,
0: सब अलग अलग
1: जब
0: रह रहे
1: सब
0: हैं,
1: इकट्ठे
0: न्यूक्लियर।
1: रहे तो दादी दादा का रोल आता है,
0: जी
1: अब अलग अलग हैं
0: जी
1: तो
0: जी
1: मम्मी पापा का रोल चलेगा।
0: और फिर वो फिर सब अलगाव विलगाओ और लोग अलग अपनी अपनी बात है, लेकिन ये मानती हैं आप कि बच्चों में संस्कार कम हो रहे हैं?
1: कम हो रहे हैं,
0: है?
1: कम हो रहे हैं।
0: हम लोग क्या, पहले आप देखते होंगे हम लोग अपने बचपन में कोई आ जाए तो, या हम लोग कहीं अपने ननिहाल या गाँव जाए तो कमर दुख जाती थी पाँव छूते छूते,
1: छूते छूते अब
0: है?
1: कोई नहीं छुएगा पैर
0: है? और तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो नहीं लगता आपको कि
1: अब
0: धीरे
1: नहीं
0: धीरे
1: है,
0: गायब हो रही
1: अब
0: हैं?
1: तो पैर छूना बिल्कुल बंद
0: तो यानी एक
1: समझो।
0: तरीके से इसको पैर छूने को हम बस इसको संस्कार से जोड़ के बात कर रहे हैं कि बच्चों में संस्कारों की कमियां हो रही हैं, नहीं?
1: हाँ, संस्कार कमी नेकाद ना हो रही, बहुत हो रही है।
0: बहुत हो रही, तो अब इसको बढ़ाने की जरूरत है, हमें अपने बच्चों को समय समय पर संस्कार देने चाहिए, बताना चाहिए कि कौन बड़ा है, किससे कैसे बात करनी चाहिए, किससे सम्मान करना चाहिए, नहीं भाई खाते समय हाथ धोना चाहिए, बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं कि खाते समय हाथ धोएं, पहले खाने से पहले भगवान को याद कर लें, पहले हम लोग जब हम अपने पापा के साथ खाते थे बचपन में हमें याद है, तो पापा एक कौरा उसमें से सब में से निकाल के अलग रख देते थे,
1: रख देते
0: तो ये
1: पहले।

0: ये चीजें अब धीमे धीमे धीमे धीमे कम होती जा रही हैं। लेकिन खैर, आप आज हमसे कार्यक्रम में जुड़ रही हैं, इतनी सारी आपने हमसे बातें की और बताए अपने अनुभव कार्यक्रम में जुड़े हुए, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको जैसे गीत सुनना भी पसंद है, कभी कोई गीत पसंद आया आपको?
1: हाँ, गीत पसंद।
0: कौन सा गीत आपको पसंद है? आज आपको कार्यक्रम में सुनवाते हैं आपकी पसंद का कोई गीत। कोई गीत आपको याद हो जिसकी दो एक लाइन ही याद हो या गीत के बोल ही याद हो?
1: कोई सा
0: लेकिन गीत सुनना पसंद है। अच्छा, अगर हम आपसे कहें कि अपने मन की कोई बात आज कार्यक्रम में हमारे साथ साझा कीजिए, जिससे कि जो हमें सुन रहे हैं हजारों लाखों लोग, वो भी उससे लाभान्वित हो, चाहे वो पशुपालन की ही हो, चाहे वो अपने जीवन से ही जुड़ी हो, चाहे वो सबके लिए प्रेरणा का ही काम करें, तो क्या कहेंगी आप?
1: हमें तो बैलेंस को काम बहुत अच्छा लगता,
0: मतलब पशुपालन काम अच्छा लगता है। तो उसमें पशुपालन कैसे करती हैं आप? अगर अच्छा मानिए हमारे पशुपालक जो हैं भाई, वो लोग अपने पशुओं को ज्यादा से ज्यादा उत्पादन लें, ज्यादा से ज्यादा उनके पशु स्वस्थ रहें, उसके लिए क्या क्या करें?
1: उसके लिए भूसा में जो हरा चारा है वो भी डालना चाहिए, खर है और चोकर भी है, अब तो गेहूं हो गए हैं, गेहूं डालो पिसा के और तब ज्यादा।
0: आप मतलब जितना कहने का मतलब आप खिलाना चाहिए,
1: जितना खिला लोगे उतना ही मिलेगा।
0: कई बार हम लोग देखते हैं आजकल की ये जो डेयरी व्यवसाय एक चल गया है, इसमें पशुओं के साथ हम लोग देखते हैं कि प्रॉपर चारा भी नहीं देते हैं, और अगर कोई पशु बिदक जा रहा है या दूध नहीं दे रहा है तो इंजेक्शन या अन्य माध्यमों से
1: नहीं, हम कभी नहीं लगाते हैं,
0: और लगाना भी नहीं चाहिए, लेकिन ये क्रूरता ही तो है।
1: कभी नहीं लगाया हमने इंजेक्शन, बहुत वर्षों से भैंस, जब से हमारी शादी हुई आए हैं तब से हम भैंस पाल रहे हैं, लेकिन हमने इंजेक्शन कभी नहीं लगाया, चाहे दिया या नहीं दिया।
0: और लेकिन अच्छा खिलाएंगे तो पशु जरूर अच्छा दूध देगा। तो ये बात भी आपने अच्छी बात कही कि भाई पशुपालक भाई ये बस इस बात का ध्यान रखें कि जैसा कि आज चंपा देवी जी का अनुभव है कि जब से इन्होंने विवाह उपरांत भैंस रखना शुरू किया, आज तक कभी इंजेक्शन के माध्यम से दुधारू पशु का दूध नहीं उतारा है। तो आप लोग भी अगर ऐसा करते हैं तो बिल्कुल ना करें, ये भी एक तरीके की पशु क्रूरता है और अपराध भी है।
1: अपराधों है, और दूसरी बात उसमें क्या कहते हैं, बीमारियां फैलती हैं और नुकसान देता है,
0: नुकसान शरीर के लिए भी नुकसान है, न सिर्फ भैंस के लिए या पशु के लिए बल्कि हम लोग
1: नुकसान है, और जो लोग दूध पियेंगे उसका
0: उनके लिए
1: भी।
0: तो आप सुन रहे हैं ना श्रोताओं की, बिल्कुल भी अगर आप ऐसा करते हैं तो ना करें, क्योंकि हो सकता है आप थोड़े से आप किसी व्यवसाय में जुड़े हो तो थोड़ा सा आपका लाभ हो सकता है उससे बढ़ जाए, लेकिन एक लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो आपका जो पशु है वो बीमार होगा। तो आप चलते चलते चंपा देवी जी, आप ये हमको बताइए कि रेडियो के माध्यम से हमारे सभी पशुपालक भाई चाहे सभी लोग कैसे जुड़ सकते हैं? इस वर्ष हम मना रहे हैं अपने 90 वर्ष, तो कैसे ज्यादा से ज्यादा रेडियो सुने और इसका लाभ ले?
1: अब वो तो अपनी अपनी मर्जी है
0: जी,
1: जब मर्जी आए तो सुनो,
0: सुनिए और
1: क्या कहते हैं ना, मर्जी आए तो मत सुनो।
0: हाँ, लेकिन ये है कि सुनकर इन चीजों का लाभ उठाया जा सकता है, चाहे वो पशुपालन संबंधी हो चाहे वो
1: कुछ भी। सही।
0: तो चंपा देवी जी, कार्यक्रम में आज आप हमारे साथ यहाँ आई, स्टूडियोज में पधारी, आपने अपने जीवन से जुड़ी, पशुपालन से संबंधित और रेडियो से जुड़ी इतने संस्मरण हमारे साथ साझा किए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से श्रोताओं, आप सुन रहे थे कार्यक्रम अक्षयवट, और कार्यक्रम अक्षयवट में आज की हमारी मेहमान थी चंपा देवी जी, और हम आपका यहाँ से आकाशवाणी बरेली की तरफ से अनेक अनेक आभार व्यक्त करते हैं।
2: हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 MHz पर। एक सूचना सुनिए, स्वास्थ्य संबंधी विषय पर होने वाले हमारे फोन इन कार्यक्रम रेडियो हेल्पलाइन में बुधवार दिनांक 24 जून 2026 को सायं 7:31 पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम का विषय है दौरे पड़ने की बीमारी और उसका आधुनिक इलाज, शंकाएं व समाधान। इसकी रिकॉर्डिंग हम करेंगे मंगलवार दिनांक 23 जून 2026 को सायं 4 बजे से। इस संबंध में यदि आपका कोई प्रश्न हो तो हमें टेलीफोन नंबर 2517200 पर फोन करें। आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए हमारे स्टूडियो में बरेली के न्यूरोसर्जन डॉक्टर शकील अहमद उपस्थित रहेंगे। विवरण एक बार फिर सुन लें, विषय है दौरा पड़ने की बीमारी और उसका आधुनिक इलाज, शंकाएं व समाधान। रिकॉर्डिंग की तारीख और समय याद रखिएगा, मंगलवार दिनांक 23 जून 2026 को सायं 4 बजे से, और हमारा टेलीफोन नंबर है 2517200 और साथ में लगेगा बरेली का एसटीडी कोड यानी 0581। हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4

थोड़ी देर में आप प्रादेशिक समाचार सुनेंगे, जिन्हें हम अनुप्रसारित करेंगे आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से।

chica.

0: है, थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार प्रसारित किए जाएंगे।
1: यार कोई ऐसी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बताओ जिसमें कम प्रीमियम हो, बोनस भी अच्छा मिले और भरोसे

0: वाला भी हो।
1: PLI है ना?
2: सरकारी कर्मचारी के साथ साथ सभी प्रोफेशनल ग्रेजुएट और डिप्लोमा होल्डर्स ले सकते हैं PLI पॉलिसी का फायदा और साथ में पोस्टल डिपार्टमेंट का भरोसा भी। अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से आज ही संपर्क करें या लॉगिन करें indiapost.gov.in पर।
3: हमारा डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक।
4: बिल भरने के पहले तो आएगी ना।
5: सुगंध, क्या हो रहा है?
4: बिल हो रहा है।
5: चल अपना कार्ड दे, पिन दे।
6: RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। लखनऊ में बहुमंजिला इमारत में चल रहे एनिमेशन सेंटर में आग लगने से 14 छात्रों की मौत, 4 गंभीर रूप से घायल। घटना की उच्च स्तरीय जांच का दिया गया आदेश। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हादसे पर जताया दुख। मुख्यमंत्री, पुलिस महानिदेशक और अपर मुख्य सचिव गृह ने घटनास्थल का किया निरीक्षण। मुख्यमंत्री ने फिरोजाबाद और अलीगढ़ में विकास परियोजनाओं का किया शुभारंभ। कहा, नवाचार का नया केंद्र बना है फिरोजाबाद का ग्लास उद्योग। और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह गाजियाबाद में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान के 92 स्थापना दिवस समारोह में हुए शामिल। कहा, 2047 तक विकसित भारत बनाने में वस्त्र मंत्रालय निभाएगा बड़ा योगदान। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शैलेंद्र, और अब समाचार विस्तार से। लखनऊ के अलीगंज इलाके में आज एक बहुमंजिला इमारत में चल रहे एनिमेशन सेंटर में आग लगने से 14 छात्रों की मृत्यु हो गई, जबकि 4 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को उपचार के लिए KGMU के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है। मरने वाले छात्रों की उम्र 14 से 18 वर्ष के बीच है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। मौके पर पहुंचे उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने बताया कि आग इमारत के अंदर लगी और तेजी से फैल गई, जिससे छात्र अंदर फंस गए। आग पर काबू पाने के लिए दमकल विभाग की टीमें, पुलिसकर्मी और जिला प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे और बचाव और राहत कार्य में जुट गए। श्री पाठक ने बताया कि घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए गए हैं। घटना के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
8: 14 बच्चे इस घटना में हताहत हुए हैं, कुल 4 बच्चे घायल हुए हैं, जिनको KGMC ट्रामा सेंटर भेजा गया है। घटना के उच्च स्तरीय जांच के निर्देश दिए गए हैं। प्रमुख सचिव गृह महोदय और DGP महोदय मौके पर हैं, और प्राथमिकता भी है घायलों को अच्छे से अच्छा इलाज मिले, और घटना कैसे घटी, क्यों हुई, इसके जांच रिपोर्ट आने के बाद ही कह पाएंगे। पीड़ित परिवारों के साथ हमारी पूरी सरकार खड़ी है, हर स्थिति में हर संभव हम मदद करेंगे।
7: प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में हादसे पर दुख व्यक्त करते हुए कहा कि राहत और बचाव कार्य के लिए प्रशासन की ओर से हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि और घायलों को 50-50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने घटनास्थल का निरीक्षण कर पूरे मामले पर पुलिस महानिदेशक और अपर मुख्य सचिव गृह को विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है। साथ ही KGMU पहुंचकर मुख्यमंत्री ने घायलों का हाल जाना और समुचित इलाज के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, बसपा प्रमुख मायावती सहित कई नेताओं ने आग की घटना में जनहानि होने पर दुख व्यक्त किया है। मायावती ने इस तरह की घटनाओं पर रोकथाम के लिए आवश्यक कदम उठाए जाने पर जोर दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज फिरोजाबाद में 658 करोड़ रुपए से अधिक की 81 और अलीगढ़ में 462 करोड़ रुपए की 85 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना, शहरी के लाभार्थियों को चाभी और विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र, चेक और उपकरण वितरित किए। मुख्यमंत्री ने फिरोजाबाद के उद्यमियों और श्रमिकों की सराहना करते हुए कहा कि फिरोजाबाद का ग्लास उद्योग नवाचार का

0: को भी पछाड़ दिया है।
1: सनातन धर्म के अंदर बात होती है, हर सनातन धर्मावलंबी फिरोजाबाद की चूड़ियों की ओर देखता है और सुहाग की इस नगरी को आज यहाँ का कारीगर, यहाँ का उद्यमी एक नई ऊंचाई दे रहा है। मैं उन्हें आश्वस्त करता हूँ कि डबल इंजन की सरकार उनके साथ मिलकर के कार्य करेगी, उन्हें हर प्रकार से प्रोत्साहन उपलब्ध करवाएगी।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल नागरिक अलंकरण वर्ष 2026 के दूसरे समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। कल के समारोह में 2 पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण और उत्तर प्रदेश की 4 हस्तियों समेत 56 हस्तियों को पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा। पेश है एक रिपोर्ट।
2: उत्तर प्रदेश की जिन हस्तियों को कल पद्मश्री मिलेगा उनमें कला के क्षेत्र में अनिल कुमार रस्तोगी और चिरंजी लाल यादव, शिक्षा के क्षेत्र में मंगला कपूर के नाम शामिल हैं, जबकि कृषि के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए मुरादाबाद के रहने वाले रघुपत सिंह को मरणोपरांत ये सम्मान दिया जाएगा। इससे पहले पिछले महीने 25 मई को श्रीमती मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित पहले नागरिक अलंकरण समारोह में 66 प्रतिष्ठित व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार प्रदान किए थे। इस वर्ष राष्ट्रपति ने 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कारों सहित कुल 131 पद्म पुरस्कारों को स्वीकृति दी है। आकाशवाणी समाचार कक्ष से दीपाली सिंह।
0: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए प्रधानमंत्री के विजन को पूरा करने में वस्त्र मंत्रालय बड़ा योगदान निभाएगा। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने आज गाजियाबाद स्थित राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान निट्रा के 52वें स्थापना दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में संस्थान की उपलब्धियों पर विस्तार से प्रकाश डाला। इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री पवित्र मार्गरेट भी उपस्थित थीं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि आज भारत प्रत्येक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के साथ ही अन्य देशों की जरूरतों को पूरा कर रहा है। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार अनुसंधान पर जोर देने के साथ ही स्टार्टअप को भी प्रोत्साहन दे रही है, जिसमें निट्रा महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।
3: 2.5 लाख स्टार्टअप हो गए हर सेक्टर में है, कोई ऐसा सेक्टर नहीं है जिसमें स्टार्टअप नहीं। कभी पंजाब का प्रणाली लोगों के लिए एक समस्या थी, चाहे सीबीजी प्लांट लगे चाहे निट्रा उसे फाइबर में परिवर्तित कर दे पराली।
0: पीलीभीत के सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री जितेन प्रसाद के अनुरोध पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कासगंज लखनऊ एक्सप्रेसवे ट्रेन को मंजूरी दे दी है। मंत्री जितेन प्रसाद ने कहा कि इस नई ट्रेन के चल जाने से पीलीभीत के साथ ही लखीमपुर खीरी, सीतापुर सहित संपूर्ण तराई क्षेत्र की वर्षों पुरानी मांग पूरी हो गई है। उन्होंने कहा कि ये ट्रेन बदायूं, बरेली, इज्जतनगर, पीलीभीत, पूरनपुर, मैलानी, गोला गोकर्णनाथ, लखीमपुर, सीतापुर, सिधौली, मोहबुल्लापुर होते हुए पीलीभीत को राजधानी लखनऊ से जोड़ेगी। श्री प्रसाद ने प्रधानमंत्री और रेल मंत्री का आभार जताते हुए कहा कि इस ट्रेन के संचालन से यहाँ का कार्य, व्यापार और पर्यटन भी बढ़ेगा। रेलवे गोंडा से गोंडा कचहरी के बीच 5 किलोमीटर लंबी तीसरी रेल लाइन को कमीशन करने के लिए अगले माह प्री इंटरलॉकिंग और नॉन इंटरलॉकिंग की प्रक्रिया पूरी करेगा। इस कारण गोंडा रूट होकर चलने वाली कई ट्रेनों को 7 से 11 जुलाई तक निरस्त किया जाएगा। वहीं कई ट्रेनों के रूट बदलेंगे। 6, 7 और 10 जुलाई को छपरा मथुरा एक्सप्रेस लखनऊ नहीं आएगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की यूजीसी नेट जून 2026 परीक्षा आज से शुरू हुई। ये राष्ट्रीय स्तर की पात्रता परीक्षा कंप्यूटर आधारित टेस्ट सीबीटी माध्यम से 30 जून तक प्रतिदिन 2 पालियों में आयोजित की जाएगी। यूजीसी नेट परीक्षा उन अभ्यर्थियों के लिए आयोजित की जाती है जो जूनियर रिसर्च फेलोशिप, जीआरएफ, सहायक प्रोफेसर के पदों और पीएचडी पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए पात्रता प्राप्त करना चाहते हैं। कुख्यात अपराधी ललन सिंह को कल रात सहारनपुर में उत्तर प्रदेश विशेष कार्यबल एसटीएफ ने मुठभेड़ में मार गिराया। उस पर 1,25,000 रुपए का इनाम था। उसके एक फरार साथी की तलाश में पुलिस की कई टीमें संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही हैं। प्रदेश में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। वहीं गोरखपुर, महाराजगंज और कुशीनगर समेत

0: के कई जिलों में गरज चमक के साथ हुई हल्की बारिश से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में देवरिया, गोरखपुर, संत कबीरनगर, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर और बलरामपुर समेत कई जिलों में गरज चमक के साथ बारिश की संभावना व्यक्त की है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लखनऊ में बहुमंजिला इमारत में चल रहे एनिमेशन सेंटर में आग लगने से 14 छात्रों की मौत, 4 गंभीर रूप से घायल। घटना की उच्च स्तरीय जांच का दिया गया आदेश। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हादसे पर जताया दुख। मुख्यमंत्री, पुलिस महानिदेशक और अपर मुख्य सचिव गृह ने घटना स्थल का किया निरीक्षण। मुख्यमंत्री ने फिरोजाबाद और अलीगढ़ में विकास परियोजनाओं का किया शुभारंभ। कहा, नवाचार का नया केंद्र बना है फिरोजाबाद का ग्लास उद्योग। और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह गाजियाबाद में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान के 52वें स्थापना दिवस समारोह में हुए शामिल। कहा, 2047 तक विकसित भारत बनाने में वस्त्र मंत्रालय निभाएगा बड़ा योगदान। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: पापा, कॉलेज की फीस ज्यादा है।
2: मिठा,
3: याद है बोनस के कुछ पैसे हमने दूसरे खाते में रखे थे?
2: 2 साल से खाते में कोई लेन देन नहीं हुआ है, शायद इनऑपरेटिव हो गया होगा।
4: तो अब बैंक जाके या वीडियो KYC से KYC अपडेट कराओ, खाता होगा एक्टिव, एकदम फ्री। चलो,
3: कहाँ?
4: एडमिशन कराने, खाता हुआ एक्टिव।
3: RBI कहता है
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 मेगाहर्ट्ज पर, और लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम अनुरोध गीत। सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम अनुरोध गीत में। और अनुरोध गीत कार्यक्रम में हमें आपके ढेर सारे खत प्राप्त हुए हैं, तो करते हैं शामिल कार्यक्रम में आपके खतों को। ये खत हमारे पास है खुर्जा से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा का। अगला खत भेजा है हमें, इसे भेजने वाले हैं उड़दा जागीर से फजरुद्दीन अवरार अफजाल, मल्लू शबीना, रामू प्रजापति, धर्मपुर बरेली से फहीम खा सिद्दीकी, अली जमजम, फातिमा, अज्जू और साबिया। अगला खत हमारे पास आया है छावनी अशरफ खां पानी की टंकी के पास से, राम प्रसाद पानी की टंकी के पास से राम प्रसाद शर्मा, जय श्री देवी और वंदना शर्मा का। और इनके साथ हैं विनोद, गौरी और अनंत। ये खत हमारे पास तक पहुंचा है आबाद खान, नवील खान, आरफा, इल्मा का, परिमहल, कासगंज से। ये खत भेजने वाले हैं मोहल्ला हलवाईयान, शेरकोट, बिजनौर से इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी खान, बिट्टू भैया, साजदा रानी और हिना कौसर। तो आप सबके अनुरोध पर हम आपको सुनवा देते हैं ये प्यारा सा गीत। फिल्म है आनंद और स्वर है मुकेश का,

अनुरोध गीत कार्यक्रम आप सुन रहे हैं 100.4 FM पर। और ये खत हमारे पास है बड़ा बाम्बू गांव सुपाई साई से देवेंद्र, राकेश, कुमारी निशा, प्रकाश और देवेंद्र तांती का। अगला खत हमारे पास है सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, नवनीत राय, अमनदीप, अनिल शर्मा और कालका से शुभचंद्र बजाज, विट्टा बजाज और साहिल ने खत भेजा है। अगला खत हमारे पास पहुंचा है कोटवा नारायणपुर बाबापट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित कुमार राय और हैप्पी राय का। ये खत भेजने वाले हैं हमारे पास दुबिया नेवादा जिला गाजीपुर से प्रतीक राय, रोशनी राय और प्रांजल राय, शेरपुर कला गाजीपुर से अवधेश राय, प्रीति और नवनीत ने खत भेजा है। ये खत हमारे पास है पीर बहोड़ा बरेली से आजाद खान, दिलशाद, मुस्तकीम और तबस्सुम का। कटरा चांद खां वार्ड नंबर 11 पुराना शहर बरेली से अनोखे लाल मोरे, सुंदर देवी, प्रकाश, रिंकी, कपिल, वेदराम, कैलाश, सुनील, खुशबू, एरोही और स्वाति ने खत भेजा है। ये खत हमारे पास पहुंचा है ककराला बदायूं से मसरूफ खान, सरफराज खान, विकास सक्सेना, करमवीर, प्रवीण रावत, अनिल सागर नागर और सागर बख्शी और भरत यादव का। ये खत हमें भेजने वाले हैं सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से कमरुल्ला, नसीम, आयशा, हदिया, आसमा, सालिया, मुस्तफा, रऊ।

आप हैं 100.4 एफएम के साथ सुन रहे हैं कार्यक्रम अनुरोध गीत। एक खत है हमारे पास आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मेंडी शर्मा, सौरभ शर्मा, शाइना शर्मा और निवान शर्मा का। ये खत भेजने वाले हैं कनेरा मोहल्ला पटियाला से मुकेश भत्ता, नीलम, नितिन, करण, गीतू, निहारिका, वंश भत्ता। अगला खत हमारे पास पहुंचा है, इसे भेजने वाले हैं सुधीर नूतन, संदीप गुगलानी, जगमोहन प्रजापति और किरण और सुनीता शर्मा। अगला खत है हमारे पास गढ़िया बरेली से कैसर शमसी, अजीम शमसी, सलीम शमसी, नवेद शमसी, रजिया शमसी, राजा बाबू का। ये खत भेजने वाले हैं शीतल रेडियो श्रोता संघ, ग्राम बहरामपुर टेमा, जिला खरगोन, मध्य प्रदेश से त्रिलोक चंद वर्मा, भागवत वर्मा, अभिषेक, सीमा वर्मा, अमित वर्मा,

सचिन, समर राज, आर्यन वर्मा, आरोही, इशिका, अंजलि और श्वेता। ये खात हमारे पास पहुंचा है नाना डोंगर दुबे, रमाताई, सीमा, रीमा, दीक्षा और राहुल का। ये कृष्णानगर टीवी टावर सेमिनरी हिल्स नागपुर से खत भेजते हैं। अगला खत हमारे पास है कस्बा शेरगढ़ ग्राम टांडा से मोहम्मद उमर इदरीसी, परवीन, नेहा, निदा, शान, आलिया और हाशिम का। मोहम्मद कमर इम्तियाज इदरीसी ने ये खत भेजा है और ये खत आया है शना का। दौलतबाग मुरादाबाद से जाफर हुसैन, नईमा बेगम, कासिम अली, नदीम अली और जुनैद अब्बासी का खत आया है। बक्सर बिहार से शरीफुद्दीन अंसारी, फातिमा, आकरम, असलम, अल्ताफ अंसारी का खत है। डुमराव बिहार से डब्लू अंसारी, सोनम, दानिश का खत हमारे पास आया है। सारिमपुर बक्सर से आसमा, एस डी अंसारी, मेहताब, आफताब और मेराज अंसारी ने खत भेजा है। अगला खत भेजने वाले हैं तिवरता डबरीपारा छत्तीसगढ़ से महेंद्र प्रताप मरकाम, श्रीमती जया मरकाम, जगेंद्र गजेंद्र मरकाम। तो आप सबके अनुरोध पर हम आपको सुनवा दे रहे हैं सीआईडी फिल्म का गीत, स्वर मोहम्मद रफी का।

अनुरोध गीत कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बरेली से। और ये खत हमारे पास है अजीत नगर मलोट पंडा, अजीत नगर मलोट पंजाब से छिंदर सिंह, सतनाम कौर, दिलप्रीत सिंह और गगनदीप कौर का। ये खत हमारे पास भेजा है डोगरगांव से राष्ट्रपाल राधिका और अनिष्का ने। अयूब खान इरम शोएब नएब नवेद का खत है ये, सिंधौली मीरगंज बरेली से जीशान वारसी इसको भेजने वाले हैं। और अगला खत हमारे पास है दौलत बाग मुरादाबाद से जाफर हुसैन, नईमा बेगम, कासिम अली और नदी मली का। ये खत हमें भेजा है मोहल्ला संवाद मध्य प्रदेश से दिलीप, योगेश, सुनीता और मुस्कान ने। अगला खत आया है हमारे पास, इसको भेजने वाले हैं बरेली जंक्शन से सोनू मिश्रा, वीरेंद्र सिंह चौहान, वीरेश, राजू और अंकित चौहान। ये खत महाराष्ट्र हिंगोली से है शाहजी बोखड़े, नंदा बोखड़े, हनुमान और उत्तम और स्वराज जमदाड़े का खत है। अगला खत है परिमहल कासगंज से आरफा, इल्मा, आफरीन, जमीर खान का। तो आप सबके अनुरोध पर आपको सुनवा देते हैं ताजमहल फिल्म का गीत, स्वर लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी का।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम अनुरोध गीत 100.4 एफएम पर। यह खत हमारे पास है कस्बा शीशगढ़ बरेली से इलियास इदरीसी, नजरा इदरीसी, नई इदरीसी, नदी इदरीसी का। अगला खत आया है लच्छनपुर से रामजी साहू, जीवनलाल, निम्मी, शिवम, सतीश, मुकेश साहू का। ये खत भेजने वाले हैं बलवंत कुमार वर्मा, राजूबाई, माया, शोभा वर्मा, राहुल वर्मा, ज्योति और पायल वर्मा, प्रियांश और ऋषि वर्मा, प्रमिलागंज अलोट, जिला रतलाम, मध्य प्रदेश से। अगला खत आया है आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साविर रही और मेहराज जहां का। ये खत हमें भेजा है सतीश अनेजा और विमल अनेजा ने चंडीगढ़ से। ये खत आया है हमारे पास तक शोभित श्रीवास्तव का। इनके साथ है संजीव श्रीवास्तव, राजीव, राज, रानी, शोभा और रोहन श्रीवास्तव, फूलबाग, किला छावनी, बरेली से। ये खत है विमल वर्मा, विनय वर्मा और परिवार के सदस्यों का, मोहल्ला दुर्गा प्रसाद, बीसलपुर, पीलीभीत से। और अगला खत हमारे पास है पन्नीलाल सागर, बेनी सिंह, धर्मवीर, आशीष कुमार, अमर सिंह, हितेश्वर बंटी, रूबी भारती, एकता भारती, दिव्या भारती, ममता चौधरी, ओमवती, खनक नकुल, नैंसी और सारांशका। इनके साथ है रचना भारती। अगला खत भेजने वाले हैं राजेश कुमार, गीता रानी, गगनदीप और आरजू। आप सबके अनुरोध पर हम आपको सुनवा रहे हैं चौधरी का चांद फिल्म का गीत, स्वर मोहम्मद रफी का।

0: आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 मेगाहर्ट्ज पर। अगला प्रसारण आप सुनेंगे आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से।
1: मीडियम वेव के मीटर पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र का प्रसारण। रात्रि के 8 बजे हैं और अब प्रस्तुत है हिंदी कार्यक्रम। कार्यक्रम में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं वार्ता जिसका विषय है गुणवत्ता परक शिक्षा एवं शिक्षकों के दायित्व। वार्ताकार हैं अरुण कुमार निषाद।
2: शिक्षा किसी भी राष्ट्र के प्रगति का मूल होती है। शिक्षा मनुष्य के जीवन का आधार है। शिक्षा ही मनुष्य को सही गलत में अंतर करना सिखाती है तथा उसे एक अच्छा नागरिक बनाती है। आज केवल पढ़ना लिखना ही पर्याप्त नहीं बल्कि ऐसी शिक्षा की आवश्यकता है जो बच्चों में ज्ञान कौशल संस्कार और व्यक्तित्व का विकास करे। ऐसी शिक्षा को गुणवत्तापरक शिक्षा कहा जाता है। गुणवत्तापरक शिक्षा वह है जो विद्यार्थियों के ज्ञान कौशल नैतिक मूल्यों सृजनात्मकता तथा व्यक्तित्व का समग्र विकास करे। वर्तमान समय में जब ज्ञान विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विस्तार हो रहा है तब गुणवत्तापरक शिक्षा की आवश्यकता और अधिक बढ़ गई है। इस लक्ष्य की प्राप्ति में शिक्षकों की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। गुणवत्तापरक शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थियों को केवल परीक्षा उत्तीर्ण कराने तक सीमित नहीं होता बल्कि उन्हें जीवन उपयोगी ज्ञान आलोचनात्मकता चिंतन समस्या समाधान क्षमता सामाजिक दायित्व तथा नैतिक मूल्यों से संपन्न बनाना होता है। ऐसी शिक्षा विद्यार्थियों को आत्मनिर्भर जागरूक और जिम्मेदार नागरिक बनाने में सहायता प्रदान करती है। गुणवत्तापरक शिक्षा की विशेषताएं: विद्यार्थी केंद्रित शिक्षा, सर्वांगीण विकास, जीवन उपयोगी कौशलों का विकास, मूल्यपरक शिक्षा, समावेशिता, तकनीकी समन्वय। गुणवत्तापरक शिक्षा की आवश्यकता: व्यक्तित्व निर्माण के लिए, राष्ट्रीय विकास के लिए, रोजगार परकता के लिए, सामाजिक समरसता के लिए, वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए। गुणवत्तापरक शिक्षा के प्रमुख तत्व: योग्य शिक्षक, उपयुक्त पाठ्यक्रम, प्रभावी शिक्षण विधियां, अधिगम संसाधन, मूल्यांकन प्रणाली, अनुकूल वातावरण। शिक्षक का प्रथम दायित्व विद्यार्थियों को उचित एवं प्रामाणिक ज्ञान प्रदान करना है। ज्ञान प्रदान करते समय शिक्षक को विषय की गहरी समझ तथा नवीनतम जानकारी रखनी चाहिए। आज के युग में ज्ञान निरंतर परिवर्तित और विकसित हो रहा है, इसलिए शिक्षक को स्वयं भी निरंतर अध्ययन करते रहना चाहिए ताकि वह विद्यार्थियों को नवीनतम जानकारी उपलब्ध करा सकें। जब शिक्षक अपने विषय में दक्ष होगा तभी वह विद्यार्थियों में सीखने की रुचि उत्पन्न कर सकेगा। गुणवत्तापरक शिक्षा के लिए आवश्यक है कि शिक्षक केवल पाठ पुस्तक तक सीमित न रहे। शिक्षक का दूसरा महत्वपूर्ण दायित्व विद्यार्थियों में जिज्ञासा और सीखने की प्रवृत्ति विकसित करना है। शिक्षक का वास्तविक उद्देश्य विद्यार्थियों को रटने के लिए प्रेरित करना नहीं बल्कि उन्हें सोचने समझने और प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना है। एक अच्छा शिक्षक विद्यार्थियों की जिज्ञासाओं का सम्मान करता है तथा उन्हें स्वतंत्र रूप से विचार व्यक्त करने का अवसर देता है। जब विद्यार्थी किसी विषय को समझने और जानने के लिए उत्सुक होते हैं तब ही शिक्षा सार्थक बनती है। गुणवत्तापरक शिक्षा में शिक्षक विद्यार्थियों को स्वयं खोज कर सीखने और अपने अनुभवों से ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रेरित करते हैं। विद्यार्थियों के व्यक्तित्व विकास में शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। शिक्षा का उद्देश्य केवल बौद्धिक विकास नहीं बल्कि शारीरिक मानसिक सामाजिक और भावनात्मक विकास भी है। शिक्षक विद्यार्थियों में आत्मविश्वास नेतृत्व क्षमता अनुशासन सहयोग सहिष्णुता और संवेदनशीलता जैसे गुणों का विकास करता है। विद्यालय में शिक्षक का व्यवहार विद्यार्थियों के लिए आदर्श कार्य करता है। विद्यार्थी अपने शिक्षक के व्यक्तित्व और आचरण से बहुत कुछ सीखते हैं, इसलिए शिक्षक को सदैव नैतिक मूल्यों

आदर्शों का पालन करना चाहिए। गुणवत्ता परक शिक्षा में शिक्षक का दायित्व विद्यार्थियों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को समझना भी है। प्रत्येक विद्यार्थी की सीखने की क्षमता, रुचि, पृष्ठभूमि और मानसिक स्तर अलग अलग होता है। एक कुशल शिक्षक इन विभिन्नताओं को पहचान कर शिक्षण कार्य करता है। वह कमजोर विद्यार्थियों को अतिरिक्त सहायता प्रदान करता है तथा प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को उनकी क्षमता के अनुसार आगे बढ़ने का अवसर देता है। आज के समय में शिक्षक का कर्तव्य है कि वह सभी विद्यार्थियों को बराबर अवसर दें और उनके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव न करें। आज के तकनीकी युग में शिक्षक का दायित्व और भी बढ़ गया है। सूचना और संचार तकनीक ने पढ़ाने और सिखाने के तरीकों को नया रूप दिया है। गुणवत्ता परक शिक्षा के लिए शिक्षक को आधुनिक तकनीकों का उपयोग

0: गुणवत्तापरक शिक्षा के लिए शिक्षक को आधुनिक तकनीकों का उपयोग करना चाहिए। स्मार्ट क्लासेज, डिजिटल सामग्री, ऑनलाइन संसाधन, मल्टीमीडिया प्रस्तुतिकरण और ई लर्निंग के माध्यम से शिक्षण को और अधिक प्रभावी और रोचक बनाया जा सकता है। शिक्षक को स्वयं तकनीकी रूप में दक्ष होना चाहिए, तभी वह विद्यार्थियों को आधुनिक युग की आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार कर सकेंगे। नैतिक मूल्यों का विकास गुणवत्तापरक शिक्षा का एक महत्वपूर्ण पक्ष है। वर्तमान समय में भौतिकवाद और प्रतिस्पर्धा के कारण नैतिक मूल्यों का ह्रास देखने को मिलता है। ऐसे में शिक्षक का दायित्व है कि वह विद्यार्थियों में सत्य, अहिंसा, ईमानदारी, करुणा, सहानुभूति, सेवा, त्याग और मानवता जैसे मूल्यों का विकास करें। केवल किताबी ज्ञान व्यक्ति को श्रेष्ठ नागरिक नहीं बना सकता है, राष्ट्र और समाज के प्रति उत्तरदायित्व की भावना विकसित करना भी शिक्षा का महत्वपूर्ण उद्देश्य है। शिक्षक अपने व्यवहार और शिक्षण के माध्यम से विद्यार्थियों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। गुणवत्तापरक शिक्षा के लिए शिक्षक को शिक्षण विधियों में नवाचार अपनाना चाहिए। वर्तमान समय में केवल व्याख्यान देकर पढ़ाना पर्याप्त नहीं है, बल्कि शिक्षक को अब विद्यार्थियों को प्रोजेक्ट कार्य देकर, समूह चर्चा करके, प्रयोगों और अनुभवों के माध्यम से शिक्षा देनी चाहिए। अच्छा शिक्षक केवल पढ़ाता ही नहीं, बल्कि बच्चों को करके, समझ के और अनुभव से सीखने का अवसर भी देता है। शिक्षक को विद्यार्थियों की रुचि और आवश्यकता के अनुसार उपयुक्त शिक्षण विधियों का चयन करना चाहिए। मूल्यांकन की प्रक्रिया में भी शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। गुणवत्तापरक शिक्षा केवल परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने तक सीमित नहीं है। शिक्षक को विद्यार्थियों का सतत एवं व्यापक मूल्यांकन करना चाहिए। मूल्यांकन का उद्देश्य केवल कमियों को उजागर करना नहीं, बल्कि विद्यार्थियों की प्रगति का मार्गदर्शन करना चाहिए। शिक्षक को विद्यार्थियों को उनकी गलतियों और कमियों के बारे में सही मार्गदर्शन देना चाहिए, ताकि वे उसमें सुधार करके अच्छा प्रदर्शन कर सकें। शिक्षक का दायित्व केवल कक्षा शिक्षण तक सीमित नहीं है, उसे विद्यालय और समाज के बीच सेतु का कार्य भी करना होता है। शिक्षक अभिभावकों के साथ नियमित संवाद स्थापित करके विद्यार्थियों की प्रगति और समस्याओं की जानकारी साझा कर सकता है। जब विद्यालय और परिवार मिलकर कार्य करते हैं, तब विद्यार्थियों का विकास अधिक प्रभावी ढंग से होता है। गुणवत्तापरक शिक्षा के लिए शिक्षक, अभिभावक और समाज के बीच सहयोग आवश्यक है। शिक्षक को विद्यार्थियों में लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास भी करना चाहिए। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतंत्र की सफलता जागरूक तथा उत्तरदायी नागरिकों पर निर्भर करती है। शिक्षक विद्यार्थियों को समानता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्व जैसे संवैधानिक मूल्यों से परिचित कराता है। शिक्षक विद्यार्थियों को पर्यावरण के प्रति संवेदनशील बनाकर उनमें पर्यावरण संरक्षण की भावना विकसित कर सकता है। वृक्षारोपण, स्वच्छता अभियान और पर्यावरणीय गतिविधियों के माध्यम से विद्यार्थियों में प्रकृति के प्रति उत्तरदायित्व विकसित कर सकता है। गुणवत्तापरक शिक्षा में शिक्षक का दायित्व विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होता है। वर्तमान समय में विद्यार्थियों पर अध्ययन, प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी और सामाजिक अपेक्षाओं का दबाव बढ़ता जा रहा है। कई बार विद्यार्थी तनाव, चिंता और अवसाद जैसी समस्याओं का सामना करते हैं। शिक्षक को विद्यार्थियों की भावनात्मक आवश्यकताओं को समझना चाहिए और उन्हें उचित परामर्श तथा सहयोग प्रदान करना चाहिए। एक संवेदनशील शिक्षक विद्यार्थियों में आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। राष्ट्रीय एकता और सामाजिक सद्भाव को मजबूत बनाने में भी शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। भारत विविधताओं का देश है, जहाँ पर विभिन्न धर्म, भाषाएं, संस्कृतियाँ और परंपराएं विद्यमान हैं। शिक्षक विद्यार्थियों को विविधता में एकता का महत्व समझाता है और उनमें राष्ट्रीय एकता की भावना विकसित करता है। गुणवत्तापरक शिक्षा तभी संभव है जब शिक्षक निरंतर अपने ज्ञान और कौशल का विकास करता रहे। प्रशिक्षण कार्यक्रमों, कार्यशालाओं, संगोष्ठियों और शोध गतिविधियों में भाग लेकर शिक्षक अपनी व्यावसायिक दक्षता को बढ़ा सकता है। शिक्षा के क्षेत्र में नवीन प्रवृत्तियों और नवाचारों को अपनाना शिक्षक का दायित्व है। अंततः कहा जा सकता है कि गुणवत्तापरक शिक्षा में शिक्षक की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है। शिक्षक केवल पढ़ाने का कार्य नहीं करता, बल्कि वह विद्यार्थियों का चरित्र निर्माण करता है, उन्हें प्रेरणा देता है और सही मार्गदर्शन दिखाता है।
1: गुणवत्तापरक शिक्षा एवं शिक्षकों के दायित्व इस विषय पर भी आप सुन रहे थे अरुण कुमार निषाद की ये वार्ता। और इसी के साथ आज का हिंदी कार्यक्रम अब यहीं समाप्त हुआ।

रेडियो वेव 401.1 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र का प्रसारण। रात्रि के 8:10 हुए हैं और प्रस्तुत है सुगम संगीत कार्यक्रम में। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं सौरभ श्रीवास्तव के गाए कुछ भजन। कार्यक्रम का आरंभ कर रहे हैं मीराबाई की लिखी सुभक्ति रचना के साथ, आवाज है सौरभ श्रीवास्तव की।

सुगम संगीत कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति में आपको सुनवा रहे हैं सूरदास का लिखा ये भजन, आवाज है सौरभ श्रीवास्तव की।

हनुमान प्रसाद पोद्दार की लिखी अभी ये भक्ति रचना आप सुन रहे थे सौरभ श्रीवास्तव की आवाज में, और इन्हीं के स्वर में लीजिए सुनिए डॉक्टर योगेश प्रवीण की लिखी ये भक्ति रचना।

0: सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज आपने सुने सौरभ श्रीवास्तव की गाए कुछ भजन। आपके साथ संगत करता थे तबले पर ठाकुर प्रसाद मिश्रा, हारमोनियम पर दिनकर द्विवेदी, कीबोर्ड पर उदित राज शंकर और गिटार पर सरबजीत सिंह मारवा। और इसी के साथ ही आज का सुगम संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त हुआ।
1: मैं डॉक्टर राजेश हर्षवर्धन, चिकित्सा अधीक्षक SJPGIMS और संयुक्त निदेशक राज्य अंग एवं उत्तक प्रत्यारोपण संगठन उत्तर प्रदेश, आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे देश में अंग जैसे किडनी, लीवर, हार्ट, कॉर्निया, इनकी वैसे रोगियों की संख्या काफी ज्यादा हो रही है, बढ़ रही है। इनके केस में ये अंग काम नहीं कर रहे हैं और उन्हें अंग प्रत्यारोपण की आवश्यकता है। आप एक मुहिम के रूप में आगे आकर SOTOEP के वेबसाइट पे, होम पेज पे प्लीज नाउ बटन क्लिक करें और QR कोड स्कैन करके अंग दान करने का शपथ लें, क्योंकि अंग दान महादान है। आपके इस निर्णय से किसी की जिंदगी बच सकती है। दान जगत का नियत धर्म है, व्यर्थ मनुष्य डरता है, एक दिवस तो स्वयं उसे सब कुछ देना पड़ता है। बचते वही समय पर जो सर्वस्व दान करते हैं, ऋतु का ज्ञान रहा न जिन्हें वो देकर भी मरते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप यही मैसेज अपने सभी संपर्क में फैलाएंगे।

मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। रात्रि के 8:30 हुए हैं और प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट से।

कार्यक्रम की अगली पेशकश में आप सुन रहे हैं एक थर्ड टाइगर फिल्म का गीत। आवाजें हैं के और पलक मुच्छाल की। गीत के बोल लिखे हैं अनविता दत्त ने और संगीत से सवारा है सोहेल सेन ने।

सलाम नमस्ते फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे शान और गायत्री अय्यर की आवाजों में। और इसी गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट से अब यहीं समाप्त हुआ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। उत्तर प्रदेश के लखनऊ कोचिंग सेंटर में आग लगने से 15 लोगों की मौत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए। उद्धव ठाकरे गुट वाले शिवसेना के 6 लोकसभा सदस्य शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट में शामिल। भारतीय रेलवे ने पूर्वी तट रेलवे के 631 किलोमीटर के मार्ग पर स्वचालित रेल सुरक्षा प्रणाली कवच को मंजूरी दी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने लेबर पार्टी में असंतोष के बाद इस्तीफे की घोषणा की। ISSF जूनियर निशानेबाजी विश्व कप में प्रीतम केंद्रे ने स्वर्ण पदक सहित भारतीय निशानेबाजों ने 4 और पदक जीते। तालिका में भारत शीर्ष पर। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात अर्जेंटीना का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा। अब समाचार विस्तार से। लखनऊ के अलीगंज इलाके में आज दोपहर एक भीषण आग की घटना में 15 लोगों की मौत हो गई। इनमें ज्यादातर 16 से 18 वर्ष के छात्र थे। अलीगंज के पुरानिया इलाके में एक दुकान के ऊपर चल रहे एनिमेशन कोचिंग सेंटर में आग लग गई। 4 छात्र घायल हो गए हैं, जिन्हें लखनऊ के KGMC अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एक रिपोर्ट।
1: आग इमारत में अंदर से लगी और तेजी से फैल गई, जिससे लोग अंदर ही फंस गए। फायर ब्रिगेड, पुलिसकर्मी, SDRF और जिला प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे और बचाव और राहत अभियान शुरू किया। कुछ लोगों ने पहली मंजिल से कूदकर अपनी जान बचाने की भी कोशिश की। बचाव दल दीवार तोड़कर इमारत में दाखिल हुआ और लोगों को बाहर निकालने में भी कामयाब रहा। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने कहा कि राज्य के DGP और अपर मुख्य सचिव गृह की उच्च स्तरीय समिति मामले की जांच करेगी।
2: घटना की उच्च स्तरीय जांच के निर्देश दे दिए हैं। प्रमुख सचिव गृह DGP मौके पर बुलाया गया है और उनको निर्देश दिए कि घटना के कारणों की जांच और घटना कैसे घटी, भविष्य में न घटे, इसके कड़ी कार्रवाई करें।
1: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा।
3: मैं उन सभी परिजनों के प्रति जिन्होंने अपने परिवार के उन नौजवानों को खोया है, उनके प्रति मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। और इस पूरे मामले के लिए मैंने उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक और अपर मुख्य सचिव गृह को भी कहा है कि वे स्वयं मौके पे जाकर के इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करें, जिससे इस पूरे मामले की तह में हम जाकर के दोषियों को सजा दे सकें।
1: अलीगढ़ और फिरोजाबाद जिलों का अपना दौरा अधूरा छोड़कर लखनऊ लौटे मुख्यमंत्री ने घटना स्थल का निरीक्षण किया और अस्पताल में घायलों से भी मुलाकात की। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय एक निजी समाचार चैनल के कार्यक्रम ग्रेट पावर इंडिया नेशन फर्स्ट को संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
4: निभाया, देश के नागरिकों को मैं सलाम करता हूं। साथियों, यहां हमारे साथी सिद्धर बंबू जी बैठे हैं। जब हमारे उद्यमी नेशन फर्स्ट की भावना के साथ चलते हैं, जब वो देश की आवश्यकताओं को समझते हुए अपने लक्ष्य बनाते हैं, तो संस्थाएं भी बनती हैं और देश भी समृद्ध होता है। सिद्धार्थ बेंबू जी ने क्या काम किया है, शायद यहां बातों में कितना निकला होगा मुझे मालूम नहीं, लेकिन अभी मैं फ्रांस में विवाटेक में गया था। करीब 1.5-2 लाख नौजवान वहां होंगे। चलने के लिए भी मैं और फ्रांस के राष्ट्रपति अलग अलग स्टॉल पे जा रहे थे, देखने के लिए भी नौजवानों ने क्या काम किया है। तो हम जोहो के स्टॉल पे गए। मैं हैरान था जी और गर्व होता था कि जोहो के स्टॉल पर यूरोप के नौजवानों की जो भीड़ लगी थी और वो समझना चाहते हैं कि ये क्या है दुनिया में नई चीज। भारत में शायद उतनी चर्चा नहीं होगी जितनी मैंने वहां फ्रांस में देखी।
0: शिवसेना नेता और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने आज घोषणा की कि शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के 6 लोग

0: 50 सांसद उनकी पार्टी शिवसेना में शामिल हो गए हैं। श्री शिंदे ने इन सभी सांसदों का पार्टी में स्वागत किया। मुंबई में संवाददाताओं से बातचीत में श्री शिंदे ने कहा कि आज का दिन शिवसेना के लिए ऐतिहासिक है।
1: आज का दिन शिवसेना के लिए ऐतिहासिक दिन है। हमारे 6,000 शिवसेना में शामिल हुए हैं, इससे शिवसेना की ताकत बढ़ रही है। शिवसेना सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी महाराष्ट्र में हो चुकी है और ये डबल इंजन की सरकार है। महाराष्ट्र को आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी भी बहुत बड़े पैमाने पे सहयोग कर रहे हैं, इसलिए विकास हो रहा है।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। भारतीय रेलवे ने पूर्वी तट रेलवे के 631 किलोमीटर के मार्ग पर स्वचालित रेल सुरक्षा प्रणाली कवच को मंजूरी दे दी है। इससे सुरक्षा और परिचालन दक्षता में सुधार होगा।
2: रेल मंत्रालय ने बताया कि इस परियोजना में पूर्वी तट रेलवे के 6 महत्वपूर्ण खंड शामिल हैं। इनमें बागुआपाला बुद्धापंक, हरिदासपुर पारादी, खुर्दा रोड बलंगीर, नौपाड़ा गुनुपुर, लांजीगढ़ रोड जूनागढ़ और बोबिल्ली सालूर शामिल हैं। इन मार्गों पर कवच की स्थापना से स्वचालित रेल सुरक्षा और किसी भी तरह की टक्कर से बचाव की क्षमता प्रदान करके रेलगाड़ी संचालन में उच्च स्तर की सुरक्षा प्राप्त करने में मदद मिलेगी। मंत्रालय ने कहा कि इस परियोजना से पूर्वी तट रेलवे द्वारा सेवा प्रदान किए जाने वाले ओडिशा और पड़ोसी क्षेत्रों के प्रमुख खंडों पर यात्री और मालगाड़ी दोनों के संचालन को लाभ होने की उम्मीद है। यह भीड़भाड़ और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण मार्गों पर कवच का विस्तार करने के उद्देश्य से जारी रेलवे के अभियान को मजबूती भी प्रदान करेगा। सौम्या की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
0: पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया। रोजगार और जन कल्याण को बढ़ावा देते हुए राज्य के विभिन्न विभागों में 1,00,000 खाली पदों पर नियुक्ति की घोषणा की गई है।
3: वित्त मंत्री डॉक्टर ने आज 4,00,000 करोड़ रुपए से अधिक का राज्य बजट प्रस्तुत किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने इसे विकसित भारत के साथ विकसित बंगाल के निर्माण का बजट बताया। बजट में राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को 18% से बढ़ाकर 38% करने की घोषणा की गई। महिला सुरक्षा के लिए सभी थानों में नारी सहायता डेस्क और दुर्गा सुरक्षा स्क्वाड बनाया जाएगा। दार्जिलिंग और गंगा सागर को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। काश्मीर नहार, आकाशवाणी समाचार, कोलकाता।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज मंगोलिया के उलानबतार में मंगोलिया के राष्ट्रपति खुरेलसुख उखना से मुलाकात की। डॉक्टर जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि पिछले साल श्री उखना की भारत यात्रा ने भारत मंगोलिया रणनीतिक साझेदारी को मजबूती प्रदान की थी। उन्होंने मुलाकात के दौरान मंगोलिया के राष्ट्रपति को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से शुभकामनाएं दी। इससे पहले दिन में विदेश मंत्री ने उलानबतार में मंगोलिया के विदेश मंत्री बचनमुख से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि चर्चाओं में भारत मंगोलिया रणनीतिक साझेदारी मजबूती और संभावनाओं पर बात की गई। दोनों नेताओं ने विकास परियोजनाओं, क्षमता निर्माण, संस्कृति, शिक्षा, सुरक्षा और बहुपक्षीय मंचों में द्विपक्षीय सहयोग की प्रगति की समीक्षा की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में इसराइल के रक्षा मंत्रालय के महानिदेशक सेवानिवृत्त मेजर जनरल अमीर बाराम से मुलाकात की। रक्षा मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि श्री बाराम ने राजनाथ सिंह को दोनों देशों के विशेष रणनीतिक साझेदारी में भारत इसराइल रक्षा सहयोग को बढ़ाने के लिए इसराइल की प्रतिबद्धता से अवगत कराया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आज 16वीं ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बैठक से इतर नई दिल्ली में ईरान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार परिषद के रक्षा मामलों के उपसचिव गादिर निजामीपुर से मुलाकात की। विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों पक्षों ने पश्चिम एशिया की मौजूदा स्थिति की समीक्षा की। श्री डोभाल ने इथियोपिया की राष्ट्रीय खुफिया सुरक्षा सेवा के विश्लेषण कार्यकारी निदेशक मिलियन लेमा तेदेसा से भी मुलाकात की। श्री डोभाल ने ब्राजील के बहुपक्षीय और राजनीतिक मामलों के सचिव कार्लोस कोजेंडे से भी मुलाकात की। दोनों पक्षों ने ब्रिक्स ढांचे के तहत भारत और ब्राजील के बीच सहयोग का स्वागत किया। गृह राज्य मंत्री बंडी संजय कुमार ने कहा है कि राष्ट्रीय विकास में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF की बहुत बड़ी भूमिका है। उन्होंने कहा कि राष्ट्र के आर्थिक विकास में CISF के जवानों का बड़ा योगदान होता है। नई दिल्ली में आज CISF के नए मुख्यालय भवन की आधारशिला रखते हुए उन्होंने ये बात कही। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज नई दिल्ली में पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र के प्रतिनिधियों के साथ आयोजित ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के संवादात्मक सत्र में भाग लिया।

0: श्री शेखावत ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र का विकास लाखों लोगों के जीवन में परिवर्तन का साधन है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार रोजगार, विकास और समृद्धि के नए अवसर पैदा कर रही है। केंद्र सरकार ने आज सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने उन निजी छात्रों के मूल्यांकन के लिए एक नई नीति बनाई है जो हाल ही में ईरान अमेरिका संघर्ष के कारण खाड़ी देशों में कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा रद्द होने से प्रभावित हुए थे। न्यायमूर्ति SVN भट्टी और विपुल M पंचोली की पीठ को सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि क्षेत्रीय संघर्ष के कारण खाड़ी देशों में परीक्षा रद्द होने से प्रभावित छात्रों की चिंताओं को दूर करने के लिए नई अखिल भारतीय नीति तैयार की गई है। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ नेफेड के नीलामी पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। पोर्टल का शुभारंभ नीलामी प्रक्रिया में पारदर्शिता, दक्षता और सुगम संचालन को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। झारखंड में पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के विभिन्न हिस्सों में बिजली गिरने से 8 लोगों की मृत्यु हो गई और एक दर्जन से अधिक लोग घायल हुए। मृतकों में CPI के एक नेता, एक वार्ड सदस्य, एक किसान और अन्य निवासी शामिल हैं। घायलों को इलाज के लिए विभिन्न जिलों के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे NewsOnAIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने प्रधानमंत्री और लेबर पार्टी के नेता पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है। अपनी ही पार्टी के भीतर बढ़ते दबाव के बीच उन्होंने डाउनिंग स्ट्रीट में अपना कार्यकाल समाप्त किया। इस्तीफे का बयान देने से पहले स्टार्मर अपनी पत्नी के साथ 10 डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर निकले, जहां लोगों ने उनका उत्साह के साथ स्वागत किया और तालियां बजाई। श्री स्टार्मर ने कहा कि सितंबर में संसद के सत्र के शुरू होने से पहले जब तक नया नेता नहीं चुन लिया जाता तब तक वे पद पर बने रहेंगे।
1: Every decision I've taken,
2: मैंने जो भी फैसले लिए हैं उनमें हमेशा अपने देश को प्राथमिकता दी है, जिससे मैं प्यार करता हूं। इसीलिए मैं लेबर पार्टी के नेता का पद छोड़ रहा हूं। मैंने आज सुबह ब्रिटेन नरेश से बात करके उन्हें अपने फैसले के बारे में बता दिया है। अगर मुकाबले की स्थिति बनती है तो निश्चित रूप से सितंबर में संसद सत्र शुरू होने से पहले पार्टी का नेता चुन लिया जाए। प्रक्रिया पूरी होने तक मैं प्रधानमंत्री के पद पर बना रहूंगा।
0: कतर के औद्योगिक क्षेत्र रस लाफान में आज हुए विस्फोट में 13 लोगों की मौत हो गई। इनमें कुछ भारतीय नागरिक भी शामिल हैं। कतर के ऊर्जा मंत्री साद बिन श्रीदा अलकाबी ने बताया कि कल शाम बरजान स्थानीय गैस आपूर्ति संयंत्र में विस्फोट के कारण लगी आग में 66 लोग घायल हो गए। जर्मनी के सुहल में ISSF जूनियर निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप में आज भारत के प्रीतम केंद्रे ने 10 मीटर एयर राइफल पुरुष स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। वहीं 25 मीटर पिस्टल टीम स्पर्धा में महिलाओं और पुरुषों ने कांस्य पदक जीते। प्रतियोगिता में भारतीय निशानेबाजों ने आज अलग अलग स्पर्धाओं में 4 पदक हासिल किए। भारत 5 स्वर्ण, 1 रजत और 6 कांस्य पदक के साथ तालिका में शीर्ष पर है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप जे के मुकाबले में आज अर्जेंटीना ऑस्ट्रिया आमने सामने होंगे। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 10:30 बजे से खेला जाएगा। वहीं ग्रुप आई में फ्रांस का सामना इराक से होगा। प्रतियोगिता के अन्य मुकाबलों में मिस्र और स्पेन ने शानदार जीत दर्ज की। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं मनोज पाठक।
3: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 291 अंक बढ़कर 77,094 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 90 अंक बढ़त के साथ 24,103 दर्ज हुआ। और अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया 35 पैसे कमजोर होकर ₹94.68 पर बंद हुआ।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उत्तर प्रदेश के लखनऊ के कोचिंग सेंटर में आग की घटना में 15 लोगों की मौत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था होने के साथ ही भरोसेमंद विश्व शक्ति के रूप में उभर रहा है। उद्धव ठाकरे गुट वाले शिवसेना के 6 लोकसभा सदस्य शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट में शामिल। भारतीय रेलवे ने पूर्वी तट रेलवे के 631 किलोमीटर के मार्ग पर स्वचालित रेल सुरक्षा प्रणाली कवच को मंजूरी दी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर की लेबर पार्टी में असंतोष के बाद इस्तीफे की घोषणा। ISSF जूनियर निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप में प्रीतम केंद्रे के स्वर्ण पदक सहित भारतीय निशानेबाजों ने 4 और पदक जीते। तालिका में भारत शीर्ष पर। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात अर्जेंटीना का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये विविध भारती है देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम आपके लिए में सभी सुनने वालों को सलमा का नमस्कार। साथियों, कार्यक्रम का पहला गीत हम लाए हैं आपके लिए मोहम्मद रफी की आवाज में। गीतकार हैं असद भोपाली, संगीतकार हैं उषा खन्ना और फिल्म का नाम है एक सपेरा एक लुटेरा।

आइए सुनते हैं मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में उस गीत को जिसे लिखा है साहिर लुधियानवी ने, धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और फिल्म का नाम है मन की आंखें।

0: थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
1: 23 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: कार्यक्रम का अगला गीत है किशोर कुमार की आवाज में। गीत लिखा है अमित खन्ना ने, संगीत है राजेश रोशन का और फिल्म का नाम है स्वामी।

0: शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
1: खून से है क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती हैं, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
0: वो है शायर और गीतकार शकील आजमी।
2: एक टुकड़ा धूप का।
0: इस मंगलवार सेलुलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी।
1: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी

0: कई बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
1: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
0: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था, तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक हैं।
1: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
0: हम लोग बंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा, रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी, और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
1: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: ये विविध भारती है और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपके लिए। तो अगला गीत है आपके लिए मोहम्मद रफी की आवाज में। गीतकार है आनंद बख्शी, संगीतकार है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और फिल्म का नाम है तकदीर।

कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवाते हैं आशा भोसले की आवाज में, फिल्म दो बदन से। गीत है शकील बदायूनी का, संगीत है रवि का।

कार्यक्रम की अगली और अंतिम पेशकश है मोहम्मद रफी की आवाज में। नगमा निगार हैं असद भोपाली, संगीतकार हैं रवि, और फिल्म का नाम है उस्तादों के उस्ताद।

कार्यक्रम आपके लिए अब समाप्त होता है। हमें दीजिए आज्ञा और आप सुनते रहिए विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

0: प्रकृति के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मन।
1: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। वो बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर

कहानियां आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती।

पुरी का जन्म 22 जून 1932 को हुआ था। वे अपने जमाने के जाने माने चरित्र अभिनेता मदन पुरी के छोटे भाई थे। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद अमरीश पुरी ने केंद्रीय श्रम मंत्रालय में नौकरी कर ली थी, लेकिन सन 1961 से उन्होंने शौकिया तौर पर रंगमंच शुरू किया था। यहाँ से शुरू हुआ अमरीश पुरी का अभिनय की दुनिया का सफर।

0: होश है नहीं शोर है।
1: अमरीश पुरी बहुत देर से फिल्मों में आए। श्याम बेनेगल की फिल्म निशांत से उनका फिल्मी सफर शुरू हुआ सन 1973 में।

बाद मंथन और भूमिका जैसी फिल्मों में उन्होंने प्रभावशाली अभिनय के जरिए खूब नाम कमाया। सुनील दत्त की फिल्म रेशमा और शेरा ने व्यावसायिक फिल्म जगत में अमरीश पुरी को पहचान दी।

बीच अभिनय के अच्छे ऑफर्स उन्हें मिलने लगे और उन्होंने अपनी सरकारी नौकरी छोड़ दी। फिरोज खान की फिल्म कुर्बानी में बाकायदा एक बड़ी भूमिका के साथ वे फिल्म संसार में आए। छोटी बड़ी भूमिकाएं करने के बाद अमरीश पुरी को सबसे ज्यादा नाम अगर किसी फिल्म से मिला तो वो थी मिस्टर इंडिया।

1987 में आई इस फिल्म में अमरीश पुरी ने मोगैम्बो की भूमिका की थी। यहाँ से हिंदी फिल्म संसार को मिला एक प्रभावशाली खलनायक। मोगैम्बो की भूमिका को आज भी सभी याद करते हैं।

सन 1984 में अमरीश पुरी ने हॉलीवुड की एक फिल्म में काम किया। इस फिल्म का नाम था इंडियाना जोन्स एंड टेंपल ऑफ डूम। इस फिल्म के निर्देशक थे स्टीवन स्पीलबर्ग। इंडियाना जोन्स एंड टेंपल ऑफ डूम में अमरीश पुरी ने मोला राम की भूमिका निभाई थी।

0: बरस पहले अमरीश पुरी विविध भारती के स्टूडियोज में आए थे और उन्होंने फौजी भाइयों के लिए जय माला कार्यक्रम प्रस्तुत किया था। इस कार्यक्रम में उन्होंने अपने मन की बहुत सारी बातें हमें बताई थी।
1: मेरी आवाज तो कई बार आप रेडियो पर, टीवी पर और सिनेमा हॉल में सुनते ही होंगे। वो सब तो फिल्मी डायलॉग होते हैं, लेकिन आज मैं अपने दिल की बात आपसे कहना चाहता हूँ। फिल्मों में मैं ज्यादातर एक खलनायक की, या यूं कहिए कि एक विलन की भूमिका निभाता हूँ। किसी का मर्डर, कहीं डाका, किसी का रेप या ऐसी खराब हरकतें,

लेकिन साहब मैं भी एक इंसान हूं और आप सबकी तरह सीने में दिल रखता हूं, जो कभी हंसता है कभी रोता है। आप सबकी तरह मेरा भी परिवार है, बच्चे हैं। मैं जानता हूं और महसूस करता हूं कि कितना मुश्किल होता है अपने प्यारों से दूर रहना।

अगर आज फिल्मों में नहीं होता तो शर्तिया आपकी तरह एक फौजी होता। बहुत तमन्ना थी बचपन से ऐसा करने की। मैट्रिकुलेशन का इम्तिहान पास करने के बाद मैंने नेशनल डिफेंस एकेडमी में अप्लाई किया, लेकिन भाग्य में कुछ और ही था। इंटरव्यू की कॉल मुझे 3 रोज लेट मिली और उसके बाद फिर एज लिमिट होने के कारण मैं दोबारा अप्लाई नहीं कर सका, वरना आज मैं भी आपकी तरह अपने देश की रक्षा कर रहा होता। लेकिन आज मैं कर क्या रहा हूं ये तो आप बखूबी जानते हैं। जी चाहता है अपने देश की मोहब्बत और याद में दूर सरहदों पर बैठा हुआ मैं कुछ इस तरह से गुनगुना उठूं।

0: देश का मनोरंजन करते हैं। मनोरंजन जिंदगी का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। जब तक आप नाचेंगे नहीं, गाएंगे नहीं और जिंदगी की खुशियां जाहिर नहीं करेंगे, जिंदगी फीकी फीकी सी रह जाती है। मुझे इस बात का फख्र है कि हमारे परिवार में इस चीज की कुछ परंपरा ही रही है। कुंदनलाल सहगल मेरे भुआ के लड़के थे, उन्होंने बहुत सालों तक हमारा मनोरंजन किया। अपने परिवार की परंपराओं को जारी रखते हुए मैं अपने बड़े भाइयों का नाम लेना चाहता हूं। मेरे सबसे बड़े भाई श्री चमनपुरी जी, जो फिल्मों में पार्टीशन से पहले लाहौर में काम करते थे, उसके बाद बंबई आए, यहां भी वो कुछ फिल्मों में काम करते रहे। उनसे छोटे थे मेरे मरहूम भाई साहब मदनपुरी जी। मदनपुरी जी ने आपका कितने तरीकों से मनोरंजन किया है, कितने भेसों में, कितने रूपों में, कितने ही किस्म किस्म के रोल अदा करके।
1: सन 1997 में आई फिल्म परदेश, सुभाष घई की इस फिल्म में अमरीश पुरी पर ये नगमा फिल्माया गया था।

1995 में आई यश चोपड़ा की फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। इस फिल्म में अमरीश पुरी की भूमिका को आज भी लोग याद करते हैं।

0: कमल हासन की फिल्म चाची 420 सन 1998 में आई। इस फिल्म में भी अमरीश पुरी ने प्रभावशाली अभिनय किया था। गोविंद नेहलानी की फिल्म देव अमरीश पुरी की एक महत्वपूर्ण फिल्म है। सुभाष घई की कई फिल्मों में अमरीश पुरी नजर आए। सुभाष घई के साथ उन्होंने जो आखिरी फिल्म की वो थी किसना।
1: हम हैं इस

0: डेविड धवन की हास्य फिल्म मुझसे शादी करोगी में वे एक रिटायर्ड कर्नल बने थे। फिल्म शरारत में भी उन्होंने एक वरिष्ठ नागरिक की भूमिका निभाई थी। इस फिल्म के सितारे थे अभिषेक बच्चन, ऋषिता भट्ट, ओम पुरी और अमरीश पुरी।
1: आती जाती है मुश्किलें बड़ी, हार हम कभी मानते नहीं, जान जाओगे मान जाओगे, तुम अभी हमें जानते नहीं, ये बताएंगे बेटा कल तुझे बूढ़े पेड़ की देंगे फल, तुझे बुजुर्गों की।

0: भोजपुरी हिंदी फिल्म संसार के एक निराले अभिनेता के तौर पर हमेशा याद किए जाएंगे। चाहे फिल्में हों या रंगमंच, उनकी स्मृतियां हमेशा हमारे मन में ताजा बनी रहेंगी।
1: मस्ताना, अल्लेना, सिर्फ एक तू है लाखों में।

0: राज्य केंद्रित था। अभिनेता अमरीश पुरी पर
1: शोध, आलेख और स्वर यूनुस खान, प्रस्तुति रमेश गोखले।
2: आज के फनकार।

दोस्तों, सन 1960 और 70 के दशक में जितेंद्र जी ने अपने अभिनय और डांस से एक अलग पहचान बनाई। उनकी फिल्म फर्ज ने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया। इस फिल्म में उनके चंचल अंदाज और जोशीले अभिनय को दर्शक ने खूब पसंद किया। उनकी सफेद जूते पहचान बनकर नृत्य करने की शैली

जितेंद्र जी ने कई मशहूर अभिनेत्रियों के साथ भी साथियों काम किया, जिनमें हेमा मालिनी, रेखा, श्रीदेवी और जया प्रदा प्रमुख हैं। सन 1980 के दशक में श्रीदेवी और जितेंद्र की जोड़ी ने कई सुपरहिट फिल्में दी। दर्शकों ने इस जोड़ी को भरपूर प्यार दिया। हिम्मत वाला फिल्म का गीत आपको सुनवा रहे हैं, आवाजें हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार की।

साथियों, आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत आकाशवाणी लखनऊ पर अपनी रेडियो होस्ट और दोस्त मीनू के साथ। और कार्यक्रम में आज हम बात कर रहे हैं कुछ रोचक किस्सों की फिल्म अभिनेता जितेंद्र जी के बारे में। साथियों, जितेंद्र जी की फिल्मों की सबसे बड़ी खासियत थी पारिवारिक मनोरंजन। उनकी फिल्मों में भावनाएं थी, संगीत था, हास्य था और सबसे बड़ी चीज सामाजिक संदेश भी शामिल हुआ करता था। उनकी लोकप्रिय फिल्मों में हमजोली, कारवां, तोहफा, हिम्मत वाला और मवाली जैसी फिल्में शामिल हैं। तो आइए आपको सुनवा देते हैं हमजोली फिल्म का एक प्यारा सा ट्रैक। हमजोली फिल्म का गीत आप सुन रहे हैं, आवाजें हैं मोहब्बत रफी और आशा भोसले की।

साथियों, जितेंद्र जी उन कलाकारों में से हैं जिन्होंने बदलते समय के साथ खुद को ढाला। रोमांटिक भूमिकाओं से लेकर पारिवारिक किरदारों तक उन्होंने हर भूमिका को पूरी ईमानदारी से निभाया। उनकी फिल्मों के गीत आज भी लोगों की जुबान पर हैं। यही वजह है कि कई पीढ़ियों के दर्शक आज भी उन्हें देखना पसंद करते हैं।

साथियों, जितेंद्र जी केवल एक सफल अभिनेता ही नहीं बल्कि एक सफल निर्माता और टेलीविजन उद्योग से जुड़े एक सफल व्यक्तित्व भी रहे हैं। उनका परिवार का मनोरंजन जगत में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उनकी बेटी एकता कपूर भारतीय टेलीविजन की सफल निर्माताओं में गिनी जाती है और पुत्र तुषार कपूर भी फिल्म जगत से जुड़े हुए हैं।

दोस्तों, अपनी सादगी, मेहनत और शानदार अभिनय से हिंदी सिनेमा में एक विशेष स्थान बनाने वाले अभिनेता जितेंद्र जी को समर्पित आज का ये विशेष अंक अब यही समाप्त होता है। कार्यक्रम समाप्ति की अनुमति दीजिए अपनी वीडियो साथी मीनू को। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम फिल्म संगीत मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। रात्रि के 10:30 हुए हैं और प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में। आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं उस्ताद इल्मास हुसैन खान का तबला वादन।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आपने सुना उस्ताद इल्माज हुसैन खान का तबला वादन आपके साथ हारमोनियम पर लहरा दिया दिनकर द्विवेदी ने, और ये प्रस्तुति ताल रूपक में आधारित थी।

0: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
1: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
0: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
1: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
0: बुकिंग है तो संपर्क करें 870-001-4242 पर।
1: 870-001-4242।
2: मीडियम वेव 4.6 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र का प्रसारण। रात्रि के 11 बजने को है, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रवि कपूर। उत्तर प्रदेश के लखनऊ के अलीगंज इलाके में आज दोपहर आग दुर्घटना में 16 से 25 वर्ष की आयु के अधिकांश छात्र सहित 15 लोगों की मौत हो गई और 6 छात्र घायल हो गए। उन्हें लखनऊ के केजीएमसी में भर्ती कराया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। शिवसेना नेता और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने आज घोषणा की कि शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के 6 लोकसभा सांसद उनकी पार्टी शिवसेना में शामिल हो गए हैं। श्री शिंदे ने इन सभी सांसदों का पार्टी में स्वागत किया। मुंबई में संवाददाताओं से बातचीत में श्री शिंदे ने कहा कि आज का दिन शिवसेना के लिए ऐतिहासिक है।
4: आज का दिन शिवसेना के लिए ऐतिहासिक दिन है। हमारे 6,000 शिवसेना में शामिल हुए।

0: से शिवसेना की ताकत बढ़ रही है। शिवसेना सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी महाराष्ट्र में हो चुकी है और ये डबल इंजन की सरकार है। महाराष्ट्र को आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी भी बहुत बड़े पैमाने पे सहयोग कर रहे हैं, इसलिए विकास हो रहा है।
1: पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया। रोजगार और जन कल्याण को बढ़ावा देते हुए राज्य के विभिन्न विभागों में 1,00,000 खाली पदों पर नियुक्ति की घोषणा की गई है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज नई दिल्ली में पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र के प्रतिनिधियों के साथ आयोजित ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के संवादात्मक सत्र में भाग लिया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शेखावत ने कहा कि पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र का विकास लाखों लोगों के जीवन में परिवर्तन का साधन है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार रोजगार, विकास और समृद्धि के नए अवसर पैदा कर रही है। भारतीय रेलवे ने पूर्वी तट के रेलवे के 631 किलोमीटर के मार्ग पर स्वचालित रेल सुरक्षा प्रणाली कवच की मंजूरी दे दी है। इससे सुरक्षा और परिचालन दक्षता में सुधार होगा। रेल मंत्रालय ने बताया कि इस परियोजना में पूर्वी तट रेलवे के 6 महत्वपूर्ण खंड शामिल हैं। इन मार्गों पर कवच की स्थापना से स्वचालित रेल सुरक्षा और किसी भी तरह की टक्कर से बचाव की क्षमता प्रदान करके रेलगाड़ी संचालन में उच्च स्तर की सुरक्षा प्राप्त करने में मदद मिलेगी। केंद्र सरकार ने आज सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने उन निजी छात्रों के मूल्यांकन के लिए एक नई नीति बनाई है जो हाल ही में ईरान अमेरिका संघर्ष के कारण खाड़ी देशों में कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा रद्द होने से प्रभावित हुए थे। न्यायमूर्ति SVN भट्टी और विपुल M पंचोली की पीठ को सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि क्षेत्रीय संघर्ष के कारण खाड़ी देशों में परीक्षा रद्द होने से प्रभावित छात्रों की चिंताओं को दूर करने के लिए एक नई अखिल भारतीय नीति तैयार की गई है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने प्रधानमंत्री और लेबर पार्टी के नेता पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है। अपनी ही पार्टी के भीतर बढ़ते दबाव के बीच उन्होंने डाउनिंग स्ट्रीट में अपना कार्यकाल समाप्त किया। श्री स्टार्मर ने कहा कि सितंबर में संसद के सत्र के शुरू होने से पहले जब तक नया नेता नहीं चुन लिया जाता तब तक वे अपने पद पर बने रहेंगे।
2: मैंने जो भी फैसले लिए हैं उनमें हमेशा अपने देश को प्राथमिकता दी है जिससे मैं प्यार करता हूं। इसीलिए मैं लेबर पार्टी के नेता का पद छोड़ रहा हूं। मैंने आज सुबह ब्रिटेन नरेश से बात करके उन्हें अपने फैसले के बारे में बता दिया है। अगर मुकाबले की स्थिति बनती है तो निश्चित रूप से सितंबर में संसद सत्र शुरू होने से पहले पार्टी का नेता चुन लिया जाए। प्रक्रिया पूरी होने तक मैं प्रधानमंत्री के पद पर बना रहूंगा।
1: जर्मनी के सोहल में ISSF जूनियर निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप में आज भारत के प्रीतम केंद्रे ने 10 मीटर एयर राइफल पुरुष स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। वहीं 25 मीटर पिस्टल टीम स्पर्धा में महिलाओं और पुरुषों ने कांस्य पदक जीते। प्रतियोगिता में भारतीय निशानेबाजों ने आज अलग अलग स्पर्धाओं में 4 पदक भी जीते। भारत 5 स्वर्ण, 1 रजत और 6 कांस्य पदकों के साथ पदक तालिका में शीर्ष पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अभिनीत शुक्ला। Fifteen people, most of them students, lost their lives in a tragic fire incident in the Aliganj area of Lucknow in Uttar Pradesh this afternoon. The tragedy occurred when a massive fire broke out at an animation coaching center located inside a commercial complex. Several injured persons have been admitted to nearby hospitals. Chief Minister Yogi Adityanath has said a high-level committee comprising the Director General of Police and the Additional Chief Secretary Home will investigate the incident and those found responsible would face strict action. President Draupadi Murmu, Vice President C.P. Radhakrishnan and Prime Minister Narendra Modi have expressed grief over the loss of lives in the fire. In a social media post, Mr. Modi announced an ex gratia of 2 lakh rupees from the Prime Minister's National Relief Fund for the next of kin of each deceased. The injured will receive 50,000 rupees each. Prime Minister Narendra Modi has stated that India is a